सुप्रभात। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के आश्विन मास की 18वीं तिथि, तदनुसार 10 अक्टूबर सन 2026। सुबह के 7 बजने को हैं। आप सभी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आप सभी का दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ अब आज की प्रातःकालीन सभा का शुभारंभ करते हैं।

90.5 मेगाहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं रेडियो आजाद हिंद से। लीजिए श्रोताओं, सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी। जीवन सौरभ कार्यक्रम आप सुनेंगे अब से कुछ ही देर के बाद। आज का शीर्षक, ईश्वर कौन है। अक्षय निधि कार्यक्रम का प्रसारण समय होगा 7:10 से, जिसमें आप सुनेंगे प्रथम मंडल से सूक्त 38 का वाचन। भक्ति संगीत का प्रसारण होगा 7:20 से। हमारा नियमित कार्यक्रम वतन का राग आप सुनेंगे 8:00। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित होगा तुषार कांति घोष पर। इसी कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप सुन सकेंगे 6:00। सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से, जिसमें आज इस कार्यक्रम का 10वां भाग प्रसारित किया जाएगा। विषय होगा रानी दुर्गावती के युद्ध की विजय गाथा। योग संवाद कार्यक्रम का समय होगा 9:00। विषय, वक्ता और प्रश्नकर्ता के लक्षण। नौ बजकर 30 मिनट पर भारत विभूति कार्यक्रम आप सुनेंगे।

0: सुबह 9:30 पर आप सुनेंगे विशेष कार्यक्रम में आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर डॉक्टर जेपी अग्रवाल मनोचिकित्सक से सुनीता सिंह की खास बातचीत। भोपाल शहर की साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों की जानकारी सुबह 10 बजे कार्यक्रम परिक्रमा में सुनी जा सकेगी। हिंदुस्तान हमारा ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 10:30 से। आज का कार्यक्रम केंद्रित होगा बदरुद्दीन तैयब की जयंती पर। उर्मिला देशपांडे का गायन सुनेंगे आज आप दिन में 11 बजे कार्यक्रम सुर सागर में। 11:30 पर कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। हमारे कार्यक्रमों को आप प्रतिदिन सुबह 10 बजे से, क्षमा करें, प्रतिदिन सुबह 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक निरंतर सुन सकते हैं मिक्सलार एप्लीकेशन पर भी। बने रहिए रेडियो आजाद हिंद के साथ 90.8 MHz पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम जीवन सौरभ, आज का आकर्षण ईश्वर कौन है।
1: जीवन सौरभ। द्रौपदी के स्वयंवर में जाते हुए अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, लक्ष्य मछली की आंख पर ही केंद्रित हो, इसका विशेष ध्यान रखना। इस पर अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, अगर सब कुछ मुझे ही करना है तो फिर आप कहां सहायता करेंगे। वासुदेव ने हंसते हुए कहा, हे पार्थ, जो तुमसे नहीं होगा वो मैं करूंगा। इस पर अर्जुन ने कहा, प्रभु, ऐसा क्या है जो मुझसे न होगा। वासुदेव फिर हंसे और बोले, जिस विचलित हिलते हुए पानी में तुम मछली की आंख को देखोगे, उस अस्थिर पानी को स्थिर तो मैं ही रखूंगा ना। कहने का तात्पर्य ये है कि हम चाहे कितने भी निपुण, कितने भी बुद्धिमान क्यों न हो, लेकिन हम स्वयं हर परिस्थिति के ऊपर पूरा नियंत्रण नहीं रख सकते। हम सिर्फ अपना प्रयास कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी एक सीमा है, और जो उस सीमा से आगे की बागडोर संभालता है उसी का नाम ईश्वर है।
2: जीवन सौरभ।
0: नब्बे.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जीवन सौरभ। आइए अब सुनते हैं अक्षय निधि।
3: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय।

0: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज सुनिए ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के सूक्त 38 से वाचन। ऋषि हैं ग्रत्समत एवं भार्गव शौनक, देवता है सविता और छंद है त्रिष्टुप।
1: उदिश्य देवः सविता सवाय शश्वत्तमं तदपा वहनी रस्थात नूनम देवेभ्यो विहिधाति रत्नमथा भजद्वीति होत्रम स्वस्तौ। संपूर्ण जगत को धारण करने वाले प्रकाशक तथा तेजस्वी सविता देव सभी प्राणियों को कर्म की प्रेरणा देते हुए प्रतिदिन उदित होते हैं। देवत्वधारियों स्तोताओं के लिए ये सविता देव रत्न धारण करते हैं, अतः वे स्तोता अपने मंगल की कामना से यज्ञ करें। विश्वस्य ही सृष्टये देव ऊर्ध्वः प्रबाहवा पृथुपाणिः सिसर्ति आपश्चिदस्य व्रत आ निम्रग्रा अयम् चिद्वातो रमते परिजमन। ये तेजस्वी सविता देव उदित होकर संपूर्ण विश्व के सुख के लिए अपनी विशाल किरणों रूपी भुजाओं को फैलाते हैं। सविता देव के अनुशासन में ही अत्यंत पवित्र जल प्रवाहित होता है तथा उन्हीं के नियमों में आबद्ध वायु भी प्रवाहित होते हुए आनंदित होती है। आशुभिश्चिद्यान्वी मुचाति नून मरीर मदतमानं चिदेतोह अह्यर्षूणां चिन्नयां अविश्यामनुव्रतं सवितुर् मोक्यागात। अस्त होते हुए सविता देव अपनी द्रुतगामी रश्मियों को समेट कर चलते हुए यात्रियों को रोक देते हैं। शत्रुओं पर आक्रमण करने वाले वीरों को रोक देते हैं। उनके इस कार्य की समाप्ति के बाद ही रात्रि का आगमन होता है। पुनः समव्यद्वितम वयंती मध्या कर्तोर्ण्य धाच्छक्म धीरः उत्साहम हायास्थाद व्यवृतूर दर्ध ररमति सविता देव आगात। अंधकार रूपी रात्रि वस्त्र बुनने की तरह संपूर्ण प्रकाश को आबद्ध कर लेती है। ज्ञानी जन ऐसी स्थिति में करने योग्य कार्यों को बीच में ही रोक देते हैं तथा कभी न रुकने वाले ऋतु विभाग कर्ता सविता देव के उदित होते ही संपूर्ण जगत निद्रा को त्याग देता है। ना नौकांसि दुर्यो विश्वमायुर वितिष्ठते प्रभवः शोको अग्नेः ज्येष्ठं माता सूनवे भागमाधा दन्वस्य केतमिषितं सवित्रा। जिस प्रकार अग्नि का तेज घरों तथा समस्त जीवन में व्याप्त है, उसी प्रकार सविता देव का तेज संपूर्ण लोकों में व्याप्त है। उषा माता सविता देव द्वारा प्रदत्त यज्ञ के श्रेष्ठ भाग को अपने पुत्र अग्नि के लिए धारण करती हैं। समाववर्ती विष्ठितो जिगीशुर विश्वेशाम कामश्च रता ममाभूत शश्वाम अपो विकृतम हित्वयागादनुव्रतम सवितुर दैव्यस्य। सविता देव के अस्त हो जाने पर विजयाकांक्षी वीर योद्धा आक्रमण को बीच में ही रोक देता है। गतिमान प्राणी घर जाने की इच्छा करते हैं तथा सतत कार्य करने वाले भी अधूरे काम को रोककर घर लौट आते हैं। त्वया हितमप्यमप्सु भागम धनवान्वा मृगयसो वितस्थुः वनानि विभवो नकिरस्य तानि व्रता देवस्य सवितुर मिनन्ति। हे सविता देव, अंतरिक्ष में आपने जो जल भाग स्थापित किया है उसे प्राणी मरु प्रदेशों में भी प्राप्त करते हैं। आपने ही पक्षियों के आश्रय के लिए जंगल प्रदान किए हैं। ऐसे तेजस्वी सविता देव के कर्म को कोई नष्ट नहीं कर सकता। याद्राध्यम वरुणो योनिमप्यमनिषितम् निमिषि जरभुराणः विश्वो मार्तांडो व्रजमा पशुर्गास्थशो जन्मानि सविता व्याकः। सविता देव के अस्त हो जाने पर सतत गमनशील वरुण देव सभी को सुखकारी तथा वांछनीय आश्रय प्रदान करते हैं। इस प्रकार सविता देव के अस्त होते ही पक्षी तथा जानवर अपने अपने स्थान पर पहुंचकर अलग अलग हो जाते हैं। न यस्येन्द्रो वरुणो न मित्रो वृत मरियमा न मिनन्ति रुद्रः नारातयस्तमिदं स्वस्ति हुवे देवं सवितारं नमोभिः। जिन सविता देव के अनुशासन को इंद्र वरुण मित्र अर्यमा तथा रुद्रदेव भी नहीं तोड़ सकते हैं और न ही शत्रु तोड़ सकते हैं, ऐसे तेजस्वी सविता देव को हम अपने मंगल की कामना से नमस्कार पूर्वक आवाहित करते हैं। भगम धियम वाजयन्तः पुरंधिम नराशंसो ग्नास्पतिर नो अव्याह आये वामस्य संगते रईणाम प्रिया देवस्य सवितुः स्याम। समस्त जगत को धारण करने वाले सुखदाता स्तुत्य भजनीय ज्ञानदाता तथा प्रजापालक सविता देव हमारी रक्षा करें। उत्तम ऐश्वर्य तथा पशु आदि संपदाओं के प्राप्त होने पर भी हम सविता देव के प्रिय होकर रहें। अस्मभ्यं तद्दिवो अद्भ्यः पृथिव्यास्त्ववया दत्तं काम्यं राध आगात शम यत् स्तोत्रिभ्य आपये भवात्युरुशंसाय सवितर जरित्रे। हे सविता देव, आपके द्वारा प्रदत्त ऐश्वर्य स्तोताओं तथा उनके वंशजों के लिए कल्याणकारी है। अतः द्युलोक, भूलोक तथा अंतरिक्ष लोक का कांति युक्त ऐश्वर्य हमें प्रदान करें। हम आपकी स्तुति करते हैं।
0: अभी आप सुन रहे थे ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के सूक्त 38वें वाचन, प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम्बू त्रिपाठी।
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए। हमारे कार्यक्रमों को आप प्रतिदिन सुबह 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक निरंतर सुन सकते हैं मिक्सलर एप्लीकेशन पर भी। बने रहिए रेडियो आजाद हिंद के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम भक्ति संगीत।

अपनी भक्ति के द्वारा अपने आराध्य की आराधना के साथ साथ अपने स्व को समर्पित करके आत्मविस्मृत होकर अपने आराध्य से तादात्म्य स्थापित करना और उसे रिझाना, भक्तों का यही तो परम ध्येय रहा है।

प्रभु से प्रार्थना करने पर हर प्रकार की आसक्ति दूर हो जाएगी। हमारे भगवान हमारे अपने हैं, ये बोध हो जाने पर मुक्ति हो जाती है। उनसे हट करिए, वे दर्शन अवश्य देंगे।

भक्ति मार्ग ही एक ऐसा उपाय है जिसमें जल कमलवत प्रवृत्त होते हुए भी व्यक्ति इंसान संसार से निर्लिप्त होकर प्रभु के प्रति समर्पित जीवन में आनंद की अनुभूति कर सकता है।

स्वयं को समर्पित करके। भक्त का ध्येय ये होना चाहिए कि मुझ भक्ति मार्ग का क्या स्वप्न हो सकता है। कोई लौकिक कामना शेष न रहे, बस प्रभु चरणों की सेवा मिलती रहे और यही एकमात्र लक्ष्य हो।

0: श्रोताओं, इस भक्ति गीत के साथ ही कार्यक्रम भक्ति संगीत अब यहीं पर संपन्न होता है। अगला कार्यक्रम वतन का राग आप सुनेंगे कुछ ही पलों में।
1: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार।
2: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
3: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
2: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
3: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
2: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

वतन का राग कार्यक्रम में आज चर्चा एक ऐसे कलम के सिपाही की, जिनकी जीवन यात्रा एक दीपक की तरह थी, जिसने आंधियों से रोशनी का अर्थ सीखा, जिनके लिए पत्रकारिता केवल घटनाओं की खबर पहुंचाना भर नहीं था, बल्कि उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ था समय की आंखों में आंखें डालकर सच कहने का साहस। वो महान और प्रखर पत्रकार थे तुषार कांति घोष, जिनकी कलम ने गुलामी की रात में भी स्वतंत्रता का स्वप्न देखा और आजादी के बाद लोकतंत्र की चौकसी को अपना जीवन धर्म बनाया। तुषार कांति घोष का जन्म 21 सितंबर सन 1898 को अविभाजित बंगाल के कलकत्ता में हुआ था। उनका परिवार बंगाल का एक सम्मानित परिवार था। भारतीय पत्रकारिता और स्वाधीनता संग्राम से इसका गहरा संबंध था। उनके पिता शिशिर कुमार घोष भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उन पुरोधाओं में से थे जिन्होंने अपने भाइयों मोतीलाल घोष और वसंत कुमार घोष के साथ मिलकर अंग्रेजी दैनिक अमृत बाजार की शुरुआत की थी। अमृत बाजार केवल एक समाचार पत्र भर नहीं था, बल्कि ये ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विचारों का एक सशक्त और निर्भीक मंच बन चुका था। इस तरह बचपन से ही तुषार कांति घोष ने देश, समाज और स्वाधीनता की बातें सुनी, अन्याय के विरुद्ध उठती आवाजें सुनी। इसीलिए पत्रकारिता उनके लिए केवल पेशा नहीं, पारिवारिक संस्कार और राष्ट्रीय दायित्व था। उनकी आरंभिक शिक्षा कोलकाता के प्रतिष्ठित हिंदू स्कूल में हुई, जो उस समय राष्ट्रवादी मेधा का प्रमुख केंद्र माना जाता था। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबद्ध बंगवासी कॉलेज में प्रवेश लिया। यहाँ से उन्होंने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। अध्ययन के साथ साथ अंग्रेजी और बांग्ला साहित्य ने उनके भीतर भाषा की शक्ति जगाई तथा देश की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों ने उनके भीतर प्रश्न करने की बेचैनी पैदा की।

शिक्षा पूर्ण करने के बाद तुषार कांति घोष के समक्ष कई विकल्प थे, लेकिन उन्होंने अपने पारिवारिक मूल्यों और राष्ट्रीय दायित्व को सर्वोपरि मानते हुए पत्रकारिता के कठिन और जोखिम भरे मार्ग को चुना। सन 1930 के दशक की शुरुआत में उन्होंने अमृत बाजार पत्रिका के संपादक का दायित्व संभाला। उस दौर में किसी पत्र का संपादन करना केवल सुंदर और प्रभावकारी लेख लिखना भर नहीं था, ब्रिटिश सरकार की कड़ी निगरानी, क्षेत्रीय सेंसरशिप और वित्तीय अनिश्चितताओं के बीच समाचार पत्र निकालना एक युद्ध की तरह था। प्रेस चलाने के लिए कागज चाहिए, मशीन चाहिए, श्रम चाहिए और वितरण का जाल चाहिए। तुषार कांति घोष ने पत्रकारिता को केवल संपादकीय कक्ष में बैठकर नहीं समझा, वो मुद्रण कक्षों में जाते, तकनीक समझते और संकट के समय स्वयं समाधान ढूंढ निकालते। जब जेसूर क्षेत्र में कागज की कमी हुई तो कागज निर्माण और प्रसंस्करण की तकनीक समझने के लिए वो पांडुआ तक गए। तुषार कांति घोष ने भारतीय भाषाओं की पत्रकारिता को सशक्त बनाने का संकल्प लिया। इसी कड़ी में सन 1937 में अमृत बाजार पत्रिका समूह ने बंगाली दैनिक समाचार पत्र जुगांतर का प्रकाशन शुरू किया। कुछ ही समय में जुगांतर बंगाल और पूर्वी भारत का सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली बंगाली समाचार पत्र बन गया। ये अरविंद घोष के साप्ताहिक पत्र जुगांतर से अलग पत्र था। इसके माध्यम से क्षेत्रीय भाषाओं में निर्भीक पत्रकारिता और राष्ट्रवादी चेतना की एक नई लहर पैदा हुई। तुषार कांति घोष के भीतर ब्रिटिश सत्ता के समक्ष न झुकने का अटूट संकल्प था। यही कारण है कि उनके संपादन काल में अमृत बाजार पत्रिका अंग्रेज अधिकारियों और औपनिवेशिक न्यायपालिका की आंखों की किरकिरी बनी रही। तुषार कांति घोष के जीवन की सबसे उल्लेखनीय घटनाओं में से एक था सन 1935 का वो प्रसिद्ध अवमानना का मुकदमा, जिसने पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया। दरअसल 21 मार्च सन 1935 को बंगाल विधान परिषद में एन.के. बसु ने कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की आलोचना की थी। इसके बाद अमृत बाजार पत्रिका में कलकत्ता हाई कोर्ट शीर्षक से संपादकीय प्रकाशित हुई। इसमें अदालत के न्यायाधीशों पर कार्यपालिका के साथ निकटता के कारण न्यायपालिका की स्वतंत्रता प्रभावित होने जैसी गंभीर टिप्पणी की गई थी। इसे अदालत की अवमानना मानते हुए तुषार कांति घोष और तारिक कांति बिस्वास के विरुद्ध कार्रवाई की गई। अदालत में तुषार कांति घोष ने बताया कि उनकी अनुपस्थिति के दौरान ये लेख छपा था, लेकिन वो इसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। साथ ही उन्होंने अपने पक्ष में तर्क भी रखा। अदालत ने उन्हें माफी मांगने का अवसर दिया, लेकिन वो झुकने को तैयार नहीं हुए। परिणाम स्वरूप उन्हें 3 माह कारावास की सजा सुनाई गई। लेकिन वो जिंदगी भर न कभी झुके न रुके, वो निर्भीक निडर बस चलते रहे।

तुषार कांति घोष अपनी हाजिर जवाबी, तीक्ष्ण बुद्धि और हास्य व्यंग के लिए विशेष रूप से जाने जाते थे। अंग्रेजों के साथ उनकी संवाद शैली अत्यंत रोचक रहा करती थी। इसी तरह का एक किस्सा पत्रकारिता जगत में प्रचलित है। बताया जाता है कि एक बार बंगाल प्रांत के तत्कालीन गवर्नर ने चुटकी लेते हुए कहा, श्रीमान घोष, मैं आपकी अमृत बाजार पत्रिका नियमित रूप से पढ़ता हूँ। अखबार तो अच्छा है, लेकिन इसमें कई बार अंग्रेजी व्याकरण सही नहीं होता है और आपकी पत्रिका अंग्रेजी भाषा के साथ काफी हिंसा करती है। इस पर बिना एक क्षण गंवाए तुषार कांति घोष ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महोदय, अंग्रेजी भाषा के साथ हिंसा करना ही तो भारत के स्वाधीनता संग्राम में मेरा और मेरी पत्रिका का सबसे छोटा सा योगदान है। जवाब सुनकर गवर्नर महोदय चुप रह गए। इस तरह तुषार कांति घोष ने कलम के सहारे ऐसा युद्ध घोष किया कि ब्रिटिश सत्ता कभी चैन से नहीं बैठ सकी। अमृत बाजार पत्रिका और जुगांतर, मानो उनकी कलम ने दो भाषाओं में एक ही संदेश लिखा, जनता को जागना होगा। तुषार कांति घोष ने कभी शब्दों से तो कभी अपने मौन से भी जागरण का ये मंत्र फूंका। 16 अगस्त सन 1946 को अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग को लेकर मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आह्वान किया और कलकत्ता की सड़कों पर भयानक नरसंहार, सांप्रदायिक दंगे और आगजनी के दृश्य थे। पूरा शहर हिंसा की आग में जल रहा था। अनेक समाचार पत्र भड़काऊ खबरें छाप रहे थे, एक तरफा रिपोर्टिंग कर रहे थे। ऐसे समय में अमृत बाजार पत्रिका का संपादकीय कॉलम खाली छोड़ दिया गया। ऐसा 3 दिनों तक किया गया। 3 दिनों का ये मौन संपादकीय ब्रिटिश हुकूमत की विफलता और राजनीतिक उन्माद के विरुद्ध तुषार कांति घोष का तीखा और मौन प्रतिरोध था। स्वाधीनता के बाद भारत में कई बार ऐसी स्थितियां आईं जब केंद्र या राज्य सरकार ने मीडिया पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण का प्रयास किया। तुषार कांति घोष ने सदा इसका कड़ा विरोध किया। वो इस बात के पक्षधर थे कि समाचार पत्रों को किसी भी राजनीतिक दल, विचारधारा या कॉरपोरेट घराने का मोहरा नहीं बनना चाहिए। उन्होंने अमृत बाजार पत्रिका को एक ऐसा मंच बनाया जहां प्रशासनिक भ्रष्टाचार, नीतिगत कमियों और सत्ता के अहंकार पर बिना किसी डर के कड़ा प्रहार किया जाता था। तुषार कांति घोष प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया और द इंडियन न्यूज सोसाइटी के सर्वोच्च पदों पर रहे। उन्होंने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के गठन का पुरजोर समर्थन किया ताकि पत्रकारिता सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त रहे। इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट और कॉमनवेल्थ प्रेस यूनियन में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पत्रकार होने के साथ साथ उन्होंने बच्चों के लिए कई मनोरंजक, प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद पुस्तकें भी लिखीं। उन्होंने अमृत बाजार पत्रिका में भी बच्चों के लिए विशेष कॉलम शुरू किए थे ताकि बच्चों में पढ़ने की आदत और नैतिक मूल्यों का विकास हो। राष्ट्र निर्माण, साहित्य, शिक्षा और स्वतंत्र पत्रकारिता में उनके योगदान को देखते हुए सन 1964 में उन्हें पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया गया। एक समृद्ध और प्रेरणादायक जीवन जीते हुए 29 अगस्त सन 1994 को उन्होंने अंतिम सांस ली। नमन ऐसी महान विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

0: साहस की बुलंद शुरुआत से लेकर आसमान की असीम ऊंचाइयों तक 8 अक्टूबर को पूरा देश मना रहा है भारतीय वायुसेना का 94वां वायुसेना दिवस।
1: वर्ष 1947-48, 1965 और 1971 के ऐतिहासिक युद्धों से लेकर ऑपरेशन मेघदूत और ऑपरेशन सफेद सागर तक विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायु सेना ने हर पल कर दिखाया है अदम्य पराक्रम, अत्याधुनिक तकनीक और सर्वोच्च बलिदान।
0: तो मध्य प्रदेश के जाबाज युवाओं, क्या आप तैयार हैं? बादलों को चीरकर देश का मान बढ़ाने के लिए तो बनिए अग्निवीर वायु, हासिल कीजिए वो मुकाम जो जिंदगी भर की पहचान बन जाए और गर्व से कीजिए भारत माँ की सेवा।
1: भर्ती और पात्रता से जुड़ी पूरी जानकारी के लिए
0: 15 एयरमैन चयन केंद्र के इंस्टाग्राम पेज 15ASC_भोपाल और आधिकारिक वेबसाइट IAFRecruitment.edcil.co.in पर विजिट करें।
1: नभः स्पृशं दीप्तम्।
2: जय हिंद।

0: आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।
1: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा और आज हम अपने कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से की 10वीं कड़ी लेकर हाजिर हैं। इतिहास के पन्नों से हमने अपनी पिछली कड़ी में सुना था, यानी 9वीं कड़ी में सुना था कि गढ़ा राज्य और दिल्ली की मुगल सेना के बीच अब से 459 वर्ष पहले सन 1564 ईस्वी में नरई का ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में पहले दिन गढ़ा के राजा वीर नारायण ने मुगल सेना का सामना किया और 3 बार मुगल सेना को नरई घाटी से पीछे धकेल दिया। इस प्रकार पहले दिन गढ़ा राज्य की विजय हुई, किंतु युद्ध में वीर नारायण के घायल हो जाने पर उन्हें सुरक्षित युद्ध क्षेत्र से बाहर निकाल लिया गया और युद्ध की कमान रानी दुर्गावती ने अपने हाथों में ले ली। वो अत्यंत पराक्रम से लड़ रही थी। उस दिन दोपहर के बाद आसफ खां की सेना के तोपखाने ने भी आग उगलनी शुरू कर दी। दोनों सेनाओं के मध्य भीषण युद्ध चल रहा था। दोनों ओर के सैनिक हताहत हो रहे थे। शाम होने को थी। इसी बीच रानी दुर्गावती की दाई कनपटी पर एक तीर आकर लगा, जिसे उन्होंने अपने हाथों से निकाल दिया। लेकिन अगले ही क्षण एक तीर और उनकी गर्दन में जा लगा और दूसरा तीर उनके सीने पर। रानी दुर्गावती अच्छी तरह जानती थी कि शत्रु मुगल सेना के हाथों जीवित लगना कितना अपमानजनक होगा। उन्होंने स्थिति को भांपते हुए अपने महावत आधार सिंह बखीला को कहा कि वो अपनी कटार से रानी की जीवन लीला समाप्त कर दे, जिससे वो शत्रुओं के हाथ ना लगे। लेकिन महावत आधार सिंह बखीला तो उन्हें अपनी मां मानते थे, वो ऐसा कैसे कर सकते थे। उन्होंने रानी के सामने हाथ जोड़ दिए और उनसे निवेदन किया कि वो किसी भी प्रकार से युद्ध क्षेत्र से उन्हें बाहर ले जाएंगे, वो केवल उन्हें आज्ञा प्रदान करें। लेकिन रानी दुर्गावती युद्ध क्षेत्र से कैसे पलायन कर सकती थी, इसलिए वो इसके लिए राजी

0: लिए वीरांगना हुई थी। वह प्राणोत्सर्ग करने के बाद भी विजयी हुई। उनकी वीरता, शौर्य, पराक्रम, जिजीविषा आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण बन गई। जैसा कि आख्यान में भी कहा गया है कि ताक निशाना महारानी के हो नहीं कोई उपचार, जख्मी चोट लगिन सतन मां बहे रक्तन की धार। माता का रक्त जो है वो बह रहा है, उनके सीने पर वाण लगा है, चोट लगी है। जोर फिरंगी माथा मां मोहे नहीं जावे आँच, नारी के तन आए बचा हूं यही है हवे मोला सांच। नारी का तन अब बचाना होगा, उसके अपमान से बचाना होगा। कहत कहत माता गिरिए पावे गति निर्वाण, अमृत चोला ला करके हो परलोके सिधार। फिर आगे कहते हैं कि माता अब गिर रही हैं और निर्वाण को प्राप्त कर रही हैं। सोचिए, एक वीरांगना है, वो युद्ध क्षेत्र में युद्ध करके अपने कर्तव्य का निर्वाह करके अब निर्वाण को प्राप्त हो रही है। ऐसे भी निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है, अमृत चोला ला करके हो परलोके सिधार। और उन्होंने तो अब अमृत का चोला पहन लिया है
1: जी।
0: और वो अब परलोक को सिधार रही हैं। चलो चढ़ी गढ़ा माँ मितवा, करवो तन निसार, हाथ जोर विनती करे हो जय जय होए तुम्हार। तो माँ की जय है जिन्होंने अपना सब कुछ निछावर कर दिया इस युद्ध क्षेत्र में।
1: रानी महारानी जो आए, माता दुर्गा जो आए, रणमा जूझे तलवार, माता दुर्गा कहाए, जय जय होवे तुम्हार, जय जय होवे तुम्हार। वाह पूजा जी, रानी के प्राणोत्सर्ग करने पर जिस प्रकार हमें आख्यान में ये वर्णन मिलता है, उसी तरह क्या अन्य ग्रंथों में भी कुछ उल्लेख है?
0: जी हाँ, गणा राज्य के ख्याति लब्ध कवि थे कवि केशव दीक्षित और नरहरि महापात्र, जिनकी चर्चा हमने पहले भी की थी
1: जी।
0: इनके द्वारा गणेश नृप वर्णन संग्रह श्लोका नाम का एक ग्रंथ लिखा गया था
1: जी।
0: जिसमें इन्होंने लिखा कि रानी दुर्गावती वीर शिरोमणि राजा दलपति शाह की लक्ष्मी के समान है, जिसकी स्तुति चारों दिशाओं में श्रेष्ठ राजाओं और उत्तम ब्राह्मणों द्वारा की जाती है। सत्य के प्रति आसक्त मन वाली, चंद्रमा की तरह पवित्र कीर्ति युक्त, कर्ण के समान दानी, दुर्गा के अवतार वाली यह रानी दुर्गावती अपने असंख्य प्रबल शत्रुओं का मान हरण कर लेती है
1: जी।
0: इतना सुंदर वर्णन इन्होंने कहा है। और आगे लिखते हैं कि जिसके नाम की कीर्ति रूपी लता स्वर्ग पृथ्वी पाताल तीनों लोकों में अबाध गति से गंगा की तरह बढ़ने लगी, दुर्गा की अवतार यह रानी दुर्गावती अपने असंख्य प्रबल शत्रुओं का मान हरण करने वाली थी।
1: वाह क्या बात है पूजा जी। जैसे आपने बताया था कि मुगल सेना की तरफ से भी कुछ ऐसे ग्रंथ मिले हैं जिसमें रानी के बारे में उल्लेख था, क्या प्राणोत्सर्ग के बाद का भी कुछ उल्लेख है उनमें?
0: बिल्कुल, मुगल साहित्य में भी रानी दुर्गावती के पराक्रम की चर्चा होती रही, इसलिए अकबरनामा में उस पल को चित्रित किया गया जब रानी को अनेक तीर लग चुके थे।
1: अच्छा।
0: वह प्राणोत्सर्ग करने ही वाली थी। इस पेंटिंग में दिखाया गया है कि उनके हाथी सरमन को भी अनेक तीर लगे हुए हैं, फिर भी वह रण में चिंघाड़ रहा है। महावत आधार सिंह बखीला ने भी रानी को बचाने के लिए तलवार उठा रखी है और वह भी वीरतापूर्वक लड़ रहा है। उनके सेनानायक उन्हें चारों ओर से बचाने का प्रयास कर रहे हैं और मुगल सेना का शिकंजा कसता ही जा रहा है। अनेक सैनिक नदी के किनारे लहूलुहान पड़े हैं। अबुल फजल ने इस भीषण युद्ध का शब्दों में भी जिक्र किया, जिसमें अनेक सैनिकों के हताहत होने और गढ़ा राज्य के प्रमुख सेनापतियों जैसे कनूर कल्याण बखीला, चकरमान खरचली, खान जहान डकीत और महारक ब्राह्मण के नाम भी उल्लेखनीय हैं, जिन्होंने इस युद्ध में वीरगति प्राप्त की थी।
1: अच्छा।
0: मुगल इतिहासकार बदायूं ने भी रानी के प्राणोत्सर्ग पर लिखा है, लेकिन जिस तरीके से लिखा है वो बहुत बुरा है। बदायूं ने लिखता है कि प्रत्येक घृणित पशु अपना घृणित भोजन प्राप्त कर ही लेता है, यानी उसका कहने का अर्थ है कि दुर्गावती को जैसी मौत मिलनी चाहिए थी वैसी ही मिली, जो उसकी नियति होनी चाहिए थी वैसी ही हुई
1: जी।
0: और यहाँ तक ही वो रुकता नहीं है और आगे लिखता है कि यह सच है कि किसी ईसाई का कुआं शुद्ध नहीं होता, किंतु वह कम से कम एक यहूदी की लाश धोने के काम तो आ ही जाता है। युद्ध में शत्रुओं के लिए इस तरीके से टीका टिप्पणी करने की परंपरा भारत में कभी नहीं रही थी
1: बिल्कुल।
0: किंतु बदायूनी अपनी सीमाएं भूल जाता है और एक रानी जो पराक्रम के साथ पराकाष्ठा तक लड़ी, उसके प्रति इस प्रकार से लिखना उसकी तुच्छ मानसिकता को दर्शाता है।
1: निश्चित रूप से पूजा जी, क्योंकि हमारे यहाँ तो कभी भी इस तरह की बात नहीं हुई। आपने जब बात की अकबरनामा की, उसमें कितनी ही बार ये जिक्र आया कि वो कितनी बड़ी योद्धा थी, उनके रूप सौंदर्य के साथ उनके गुणों की भी चर्चा की गई, और फिर मृत्यु के पश्चात तो हमारे यहाँ दुश्मन की भी कोई बुराई नहीं की जाती रही है। लेकिन मुगल सेना के साहित्य में यदि इस तरह का कुछ मिला है तो निश्चित रूप से इस तरह की लिखावट ही हम कह सकते हैं कि वो घृणित है। पूजा जी, रानी तो यहाँ वीरांगना हो गई, ये जिक्र आ गया, कहानी हमारी यहाँ तक हो गई। लेकिन जब रानी वीरांगना हुई, उसकी एक दिन पहले उनके पुत्र जो कि राजा वीर नारायण थे, वो बहुत गंभीर रूप से घायल हुए थे और उन्हें सेना किसी तरह बचा करके ले गई थी। तो उस सेना की टुकड़ी का क्या हुआ, राजा वीर नारायण का क्या हुआ, और क्या मुगल सेना ने उन पर हमला नहीं किया?
0: जैसा कि हम जानते हैं कि नरई के युद्ध में घायल राजा वीर नारायण को गढ़ा की सेना की एक टुकड़ी बचाकर चौरागढ़ के किले में ले गई थी
1: जी।
0: और यहाँ बुरी तरह से घायल वीर नारायण का उपचार होने लगा। लेकिन आसफ खां को ये खबर लग चुकी थी कि वीर नारायण चौरागढ़ के किले में है। उसने चौरागढ़ की ओर अपनी सेना सहित कूच कर दिया।
1: अच्छा।
0: आसफ खां की सेना का सामना गढ़ा राज्य के मंत्री आधार सिंह कायस्थ ने किया, किंतु आसफ खां की सेना के सामने निश्चित ही था कि चौरागढ़ का बचना मुश्किल था
1: जी।
0: इसलिए जब सेना चौरागढ़ के प्रवेश द्वार पर पहुंच गई तो घायल वीर नारायण भी पूरी वीरता से उनका सामना करते हुए लड़े, किंतु इस युद्ध में वीर नारायण युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए।
1: निश्चित रूप से गढ़ा की सेना यहाँ पर बहुत वीरता से लड़ी, लेकिन बहुत दुखद के माँ और बेटे दोनों की मृत्यु एक दो दिन के अंदर अंदर वहां पर हो गई। तो क्या फिर मुगल सेना ने किले में प्रवेश किया?
0: अब यह निश्चित था कि मुगल सेना किले में प्रवेश करेगी ही
1: जी। जी,
0: वीर नारायण वीरगति को प्राप्त हो ही चुके थे
1: जी,
0: आधार कायस्थ भी मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। तो मुगल सेना ने किले में प्रवेश किया, लूटपाट, आगजनी, फसलों को नुकसान पहुंचाना, पशुओं को खदेड़ना, ये सब तो होना ही था
1: जी।
0: और हुआ भी। लेकिन इसके अलावा स्त्रियों के साथ अत्यधिक दुर्व्यवहार होगा, जैसा कि उस समय होता भी था, तो उसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। इसलिए युद्ध के परिणाम के अनुमान के अनुसार किले में जौहर की तैयारियां की जा चुकी थी। जैसे ही मुगल सेनापति आसफ खां की सेना चौरागढ़ के किले के अंदर घुसी, दूसरी ओर किले की स्त्रियों ने भीषण अग्नि में प्रवेश कर जौहर कर लिया। यह कितना भयावह दृश्य रहा होगा आप सोच भी नहीं सकते हैं। अबुल फजल ने इस जौहर का उल्लेख इस प्रकार किया है कि वृत्ताकार यानी कि एक गोलाकार कुंड में भीषण आग लगी थी, सभी स्त्रियां एक एक करके उसमें प्रवेश कर गईं। वह कहता है जैसे गुलाब की फसल आग लग जाने पर राख में तब्दील हो जाती है, उसी प्रकार स्त्रियां भी अग्निकुंड में प्रवेश करते ही राख में तब्दील हो गईं। सभी स्त्रियां उसमें जलकर राख हो गईं। वह आगे लिखता है कि जब उस जगह का द्वार खोला गया जहां अग्निकुंड था, तो केवल दो ही स्त्रियां जीवित अवस्था में मिली थीं।
1: अच्छा।
0: ये दोनों स्त्रियां इसलिए बच गई थीं क्योंकि लकड़ी का एक विशाल शहतीर यानी कि बीम
1: जी
0: उनके पास आकर इस प्रकार गिरा कि वह आग में झुलस नहीं पाई और बेहोश हो गई।
1: वाकई श्रोताओं, कितना विभत्स, कितना ये कठिन दृश्य रहा होगा जिस किसी ने भी वो देखा होगा, भले ही वो दुश्मन सेना ही क्यों ना हो। और यदि आप उस जौहर की कल्पना भी करें तो रोंगटे यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि जो गढ़ा की जो महिलाएं थीं, वो वाकई में सब की सब अपनी रानी की तरह ही उस जौहर में कूदकर वीरांगना हुई, क्योंकि उन्होंने अपने आप को दुश्मन के हाथों नहीं सौंपने दिया। पूजा जी, ये दो स्त्रियां कौन थी जो उस कुंड में जौहर करने के बाद भी किसी तरह से बच गई थी, और क्या उनके साथ भी बुरा सलूक हुआ?
0: ये दोनों स्त्रियां कौन थी इसका भी उल्लेख अबुल फजल ने ही किया है। पहली थी वीरांगना रानी दुर्गावती की बहन कमलावती।
1: अच्छा।
0: और दूसरी थी पूरागढ़ के राजा की कन्या यानी पूरागढ़ की राजकुमारी। इनका नाम तो नहीं मिलता है
1: जी,
0: पर उल्लेख है। इस राजकुमारी से ही राजा वीर नारायण का विवाह तय हुआ था।
1: ओहो।
0: और कुछ ही दिनों में इनका विवाह होने भी वाला था, किंतु राजा वीर नारायण के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो जाने का समाचार सुनते ही पूरागढ़ की राजकुमारी ने सहर्ष जौहर करना स्वीकार किया।
1: जबकि वो विवाहित भी नहीं थी।
0: जी हाँ, तब वह विवाहित भी नहीं थी, 16-17 साल की रही होंगी। वह अन्य स्त्रियों के साथ जौहर के लिए अग्निकुंड में सहर्ष ही प्रवेश कर गई थी। संभवतः रानी दुर्गावती की बहन कमलावती और इस राजकुमारी ने सर्वप्रथम अग्निकुंड में प्रवेश किया होगा, क्योंकि शायद आग पूरी तरह फैल नहीं पाई होगी और आग लगते ही ऊपर की ओर लगा लकड़ी का एक विशाल शहतीर यानी बीम का कोना जल गया होगा और वो नीचे गिरा। उसके गिरते ही ये दोनों उसके पीछे दब कर बेहोश हो गईं और बच गईं। लेकिन इनका बचना शायद जौहर से भी ज़्यादा घातक सिद्ध हुआ। इनकी जो परिणति हुई उसका भी उल्लेख मिलता है। रानी दुर्गावती की बहन कमलावती के साथ ही राजकुमारी को भी अकबर के मुगल हरम की घृणित यातनाओं को झेलना पड़ा।
1: हो, ये कितना दुखद है श्रोताओं। देखिए कि एक 16-17 साल की जो बालिका जिसका विवाह राजा से तय हुआ है, और जब उस बच्ची ने, उस बालिका ने, उस तरुणी ने जब ये सुना कि उसके होने वाले पति वीर गति को प्राप्त हो गए हैं, तो वो सहर्ष जौहर के लिए तैयार हो गई और उस किले में आ गई जहाँ पे जौहर होना तय हुआ था। मनचाही मौत तो उसे नसीब नहीं हुई, वो किसी तरह बच गई, लेकिन फिर भी उसके शौर्य की गाथा सुनकर हम आज उसे वीरांगना निश्चित रूप से कह सकते हैं। लेकिन यहाँ आप अकबर का चरित्र देखिए कि अकबर का जो हरम था जहाँ इन बची हुई दो मासूमों को वहाँ पर ले जाया गया, जो किसी तरह मौत के मुँह से बच गई थी, फिर भी अकबर के हरम में उन्हें शामिल किया गया। ये कितना घृणित था, और इससे समझ में आता है पूरी मुगल सेना का चरित्र किस तरह का था। पूजा जी, जैसा कि महिलाओं ने जिस स्थिति से बचने के लिए जौहर किया था उससे ये तो नहीं बच पाई, लेकिन जिसके लिए हमेशा से अकबर की सेना, मुगल सेना और पहले के भी मुगल बदनाम थे कि जब वो युद्ध क्षेत्र के लिए जाते थे, जब वो कहीं किसी तरह से विजय प्राप्त कर लेते थे, उसके बाद वो जो जो चीज़ें करते थे वहाँ पर, क्या यहाँ पे भी उन्होंने वही किया, लूटपाट मचाई, क्या फसलों को नुकसान पहुँचाया?
0: बिल्कुल, रानी दुर्गावती के प्राणोत्सर्ग के बाद आसफ खां की सेना गढ़ा राज्य में घुस गई
1: जी।
0: और जैसा कि अक्सर मुगल सेना किया करती थी, उन्होंने यहाँ अंधाधुन पशुओं को खदेड़ा, फसलों को नुकसान पहुँचाया और उससे भी अधिक शहरों में लूटपाट की, गाँवों में घुस गए, वहाँ लूटपाट की। इसके अलावा जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत सारे मंदिरों को, मठों को क्षतिग्रस्त किया। और लंबे इतिहास में अगर हम देखें तो जो हम एक देख रहे थे कि गढ़ा राज्य में वैष्णव संप्रदाय की एक बहुत बड़ी श्रृंखला चल रही थी, लगातार आचार्य आ रहे थे और वैष्णव धर्म के अनेक मठ मंदिर यहाँ बन रहे थे, उनमें विद्या अध्ययन और अध्यापन किया जा रहा था, उस सब पर एक लगाम सी लग गई और बहुत लंबे समय तक, हम देखते हैं लगभग 100 वर्षों तक, फिर दोबारा इस तरीके के अध्यापन केंद्र हमको गढ़ा राज्य में न के बराबर दिखाई देते हैं
1: जी।
0: इसके अलावा जो मंदिरों का निर्माण हो रहा था वो भी रुक गया और बहुत तरीके से क्षति पहुँचाई गई।
1: अच्छा पूजा जी, एक और चीज़ का वर्णन यहाँ पर सुनने को आता है कि आसफ खां, जिसे कि अकबर ने खुद वहाँ पर अपनी सेना का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा था, उसने खुद अकबर से ही यहाँ पर गद्दारी की थी, क्या ये बात सही है?
0: बिल्कुल सही है। चौरागढ़ पर अधिकार करने के उपरांत आसफ खां को अपरिमित धन मिला, कोई सीमा नहीं थी जिसकी
1: जी।
0: अबुल फजल खुद लिखता है कि उसे वहाँ सिक्के, ठोस रूप में सोना, नक्काशीदार पात्र, हीरे जवाहर मोती, सोने से बनी पशुओं की अनेक ठोस आकृतियां और अन्य दुर्लभ कीमती वस्तुएं मिली थीं। उसे 100 से अधिक बड़े बड़े घड़े मिले थे जो सोने के अशर्फियों से भरे हुए थे। लेकिन वह आगे भी लिखता है कि आसफ खान ने मुगल शासक अकबर के साथ ही धोखाधड़ी की, यह तो उसका पुराना चरित्र ही था
1: जी।
0: और चौरागढ़ के लूट के माल का सही ब्यौरा अकबर को आसफ खान ने दिया ही नहीं, बल्कि जो धन, सोना चांदी, हीरे जवाहरात, बड़ी संख्या में हाथी और अन्य दुर्लभ वस्तुएं मिली थी, उसकी सही जानकारी उसने अकबर को दी ही नहीं
1: जी।
0: उसका 10% भी उसने नहीं बताया, ऐसा अबुल फजल ने लिखा है
1: जी।
0: जिसका खुलासा बाद में हुआ था और पता चला कि 10% ही केवल बताया गया था। अकबर नामक की एक अन्य पेंटिंग है जिसमें आसफ खां को चौरागढ़ की लूट का माल अकबर के सामने पेश करते हुए दिखाया गया है।
1: अच्छा,
0: इसमें सोने की अशर्फियों से भरे हुए कई थाल दिखाए गए हैं और कुछ में तो हीरे जवाहरत भरे हुए हैं
1: जी।
0: कुछ हाथी खड़े हैं और कुछ अन्य दुर्लभ वस्तुएं भी वो पेश कर रहा है जो उसने गढ़ा राज्य से लूटी थी
1: जी।
0: यानी जो पेंटिंग में दर्शाया गया है वह तो चौरागढ़ से प्राप्त संपदा का बहुत ही कम भाग है
1: जी।
0: किंतु मुगल दरबार इतनी संपदा देखकर ही आश्चर्यचकित हो गया था। आसफ खां लूट के माल का कुछ अंश अकबर को देकर और रानी को प्राणोत्सर्ग पर विवश करने जैसे कुकृत्य पर वाहवाही बटोर कर गढ़ाराज्य वापस लौट आया।
1: अच्छा,
0: इसके बाद मुगल दरबार और गढ़ाराज्य के बीच युद्ध के उपरांत की संधि हुई।
1: अच्छा,
0: गढ़ा राज्य की ओर से अपना अगला उत्तराधिकारी चंद्र शाह को घोषित किया गया। चंद्र शाह राजा वीर नारायण के चाचा थे
1: जी।
0: यानी कि राजा दलपत शाह के छोटे भाई और वीरांगना रानी दुर्गावती के देवर हुए
1: जी।
0: तो इस युद्ध के परिणाम स्वरूप गढ़ा के विशाल राज्य पर मुगलों का कब्जा हो गया
1: जी।
0: हमने गढ़ा राज्य के प्रतापी राजा संग्राम शाह के विषय में जब चर्चा की थी
1: जी।
0: तो बताया था कि उनके अधिकार में 52 किले थे। इन 52 गढ़ों में से 10 गढ़ गढ़ा राज्य को अकबर को देने पड़े।
1: पूजा जी, जो संधि के मुताबिक गढ़ा राज्य और मुगल शासक के अकबर के बीच जो संधि हुई तो उसमें जो 10 किले थे, जो 10 गढ़ थे, वो मुगल शासक अकबर को गढ़ा राज्य ने दे दिए। तो क्या फिर अकबर ने उन पर शासन किया उसके आगे?
0: जी हाँ, अब ये 10 गढ़ों पर मुगल शासक का अधिकार था
1: जी।
0: और आसफ खां गढ़ा लौट चुका था
1: जी।
0: अब वो यहाँ का सूबेदार बन गया था। उसके पास अकूत संपदा थी जो उसने गढ़ा राज्य से लूटी थी
1: जी।
0: जिसका पता अकबर को भी नहीं था
1: जी।
0: तो अब वो यहाँ आकर अपनी मनमानी करने लगा। और जब अकबर को खबर पहुंची तब फिर अकबर ने उसकी खबर ली।
1: अच्छा।
0: ये आगे का इतिहास है।
1: अच्छा।
0: लेकिन जब 10 गढ़ मुगल साम्राज्य के पास आ गए तो अकबर को ये बात बहुत जल्दी समझ में आ गई कि इन गढ़ों पर दिल्ली से शासन करना अत्यधिक कठिन है। ये विंध्य पर्वत श्रृंखला के घने जंगलों में है, इन पर कब्जा जमाए रखना आसान नहीं था। इसलिए अकबर को यह गढ़ गोंडों को वापस करने पड़े।
1: वाह।
0: किंतु अकबर ने यह गढ़ गढ़ा मंडला के गोंड राजवंश के उत्तराधिकारी चंद्र शाह को वापस नहीं किए।
1: अच्छा।
0: बल्कि उन गढ़ों में जो स्थानीय किलेदार आदि थे उनको ये गढ़ वापस किए गए, जिससे नए गोंड राजवंशों का उदय हुआ।
1: अच्छा।
0: ये जो 10 गढ़ दिए गए थे ये थे रायसेन, कारूबाग, कुरबाई, भोपाल, भोरासो, गढ़गुन्नौर, बारीगढ़, चौकीगढ़, राहतगढ़ और मकड़ाई।
1: अच्छा।
0: ये सभी किले मध्य प्रदेश की वर्तमान राजधानी भोपाल
1: जी।
0: और उसके आसपास स्थित हैं।
1: जी।
0: भोपाल और रायसेन तो आसपास हैं ही, हम जानते हैं, मध्य प्रदेश में, और आजकल बड़े शहर भी हैं। गढ़गुन्नौर अब गिन्नौरगढ़ के नाम से जाना जाता है
1: जी।
0: बारीगढ़, चौकीगढ़, राहतगढ़ ये भी भोपाल के आसपास के जिलों में स्थित हैं
1: जी, बिल्कुल।
0: मकड़ाई और कारूबाग यह मध्य प्रदेश के हरदा जिले और उसके आसपास स्थित हैं। तो गिन्नौरगढ़ से भोपाल के गढ़ा राज्य का उदय हुआ, जिसमें सुप्रसिद्ध रानी कमलापति हुई
1: जी, बिल्कुल।
0: और मकड़ाई भी गोंड शासित स्वतंत्र राज्य बना जो सर्वाधिक लंबे समय तक, यानी कि भारत की स्वतंत्रता तक, 1947 तक
1: जी,
0: गोंड राजवंश द्वारा शासित रहा।
1: अच्छा।
0: इधर गढ़ा मंडला के गोंड राजवंश में राजा चंद्र शाह के उत्तराधिकारी भी हुए
1: जी।
0: उनके उपरांत मधुकर शाह और प्रेम शाह क्रमशः गढ़ा के राजा बने
1: जी।
0: यहाँ जो उल्लेखनीय राजा रहे वो थे हृदय शाह
1: जी, बिल्कुल,
0: जो 1635 ईस्वी में सिंहासन पर बैठे
1: जी,
0: जिन्होंने गढ़ा की राजधानी स्थानांतरित करके वर्तमान मंडला जिला जो है मध्य प्रदेश का
1: जी,
0: वहां पर नर्मदा नदी के किनारे रामनगर के नाम से बसाई।
1: तो सच में बहुत इंटरेस्टिंग जानकारियां श्रोताओं हमें मिल रही हैं। 10वीं कड़ी आप सुन रहे हैं इतिहास के पन्नों से की, और हमारे साथ बनी हुई है इन तमाम एपिसोड्स में डॉक्टर पूजा सक्सेना, प्रसिद्ध पुरातत्वविद। पूजा जी, इसके बाद की कहानी क्या, किसका जिक्र होने वाला है, थोड़ा सा एक हिंट दे दीजिए, क्योंकि आज तो समय हो गया है, श्रोताओं की उत्सुकता जरा बरकरार रहनी चाहिए।
0: अब हम आगे जो सुनेंगे वो राजा हृदय शाह की कहानी सुनेंगे। उन्होंने अपनी राजधानी कैसे परिवर्तित की, कैसे बसाई, और क्योंकि वो बहुत अधिक संगीत प्रेमी थे,
1: अच्छा,
0: तो संगीत में उनका जो योगदान है वो उल्लेखनीय है, और स्थापत्य कला में भी। तो अगली कड़ी में हम उनके बारे में
1: जानेंगे। चलिए, तो राजा हृदय शाह, यानी कि जो कि राजा हृदय शाह के नाम से बहुत ज्यादा मशहूर हैं, खास तौर पर बुंदेलखंड रीजन में, हमारे पूरे मध्य प्रदेश में, उनके बारे में हम अपने अगले एपिसोड में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए अपने रेडियो मित्र संदीप शर्मा को। हम आपको बता दें, पूजा जी हमारे साथ बनी हुई है, डॉक्टर पूजा सक्सेना। अगले एपिसोड में भी पूजा जी हमारे साथ रहेंगी, तमाम जानकारियां हमसे साझा करेंगी। इस पूरे एपिसोड को रिकॉर्ड किया है और संपादन किया है अमित कुंदानी ने। बहुत बहुत शुक्रिया। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। इतिहास के पन्नों से, इतिहास के पन्नों से। साहस की बुलंद शुरुआत से लेकर आसमान की असीम ऊंचाइयों तक 8 अक्टूबर को पूरा देश मना रहा है भारतीय वायुसेना का 94वां वायुसेना दिवस।
2: वर्ष 1947-48, 1965 और 1971 के ऐतिहासिक युद्धों से लेकर ऑपरेशन मेघदूत और ऑपरेशन सफेद सागर तक विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना ने हर पल कर दिखाया है अदम्य पराक्रम, अत्याधुनिक तकनीक और सर्वोच्च बलिदान।
1: तो मध्य प्रदेश के जाबाज युवाओं, क्या आप तैयार हैं? बादलों को चीरकर देश का मान बढ़ाने के लिए तो बनिए अग्निवीर वायु। हासिल कीजिए वो मुकाम जो जिंदगी भर की पहचान बन जाए, और गर्व से कीजिए भारत माँ की सेवा।
2: भर्ती और पात्रता से जुड़ी पूरी जानकारी के लिए
1: 15 एयरमैन चयन केंद्र के इंस्टाग्राम पेज 15ASC_भोपाल और आधिकारिक वेबसाइट IAFRecruitment.edcil.co.in पर विजिट करें।
2: नभास प्रशम दीप्तम।
3: जय हिंद।

0: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह, लेकर उपस्थित हूं हमारी सनातन यौगिक परंपरा पर प्रकाश डालता कार्यक्रम योग संवाद। श्रोताओं, संवाद केवल दो आवाजों की एक दूसरे तक पहुंचने की यात्रा नहीं है, ये तो दो जिज्ञासाओं के बीच खुलती हुई वो खिड़की है जहां से ज्ञान का प्रकाश धीरे धीरे भीतर उतरता है। योग वासिष्ठ हमें बताता है कि प्रश्न करना भी एक साधना है और उत्तर देना भी, क्योंकि प्रश्न की निर्मलता ही उत्तर की गहराई को जन्म देती है और वक्ता की दृष्टि ही शब्दों को ज्ञान का रूप देती है। आज हम जानेंगे कि एक सच्चा प्रश्नकर्ता कैसा हो जिसकी जिज्ञासा केवल उत्तर पाने की नहीं सत्य को समझने के लिए उठे, और वो वक्ता कैसा हो जिसके शब्द केवल सुनाई न दें बल्कि श्रोता के भीतर विचार का दीप जला दें। तो आइए आज योग संवाद कार्यक्रम में प्रवेश करें उस संवाद की परंपरा में जहां प्रश्न विनम्रता से जन्म लेते हैं और उत्तर आत्मबोध की ओर ले जाता है। आज का विषय वक्ता और प्रश्नकर्ता के लक्षण। हमारे बीच बातचीत के लिए उपस्थित हैं योग अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी। नमस्कार शशिकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका योग संवाद के इस अंक में।
1: नमस्कार।
0: वक्ता और प्रश्नकर्ता के लक्षण हम जानेंगे जो योग वासिष्ठ में बताया गया है। मेरे मन में पहला प्रश्न तो यही है, जब इसके पन्ने में पलट रही थी तो राज विद्या और राज गुह ज्ञान की चर्चा हुई, तो आप बताएं कि ये क्या है।
1: देखिए, राज विद्या राज गुह ज्ञान इसे इसलिए कहा गया कि सर्वप्रथम जो यह अध्यात्म विद्या है यह राजसभा में उपदिष्ट हुई, तदनंतर इसका प्रसार लोक में हुआ, इसी कारण इसे राज विद्या कहा गया। वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, राज विद्या एवं राजगुह्य नाम से जिसकी प्रसिद्धि है उस उत्तम अध्यात्म ज्ञान को पाकर राजा लोग दुख से रहित हो परमानंद को प्राप्त हो गए। देखिए, सतयुग के समाप्ति से पूर्व भारत में जो पवित्र कर्मकांड तथा ज्ञान कांड का उपदेश होता था वो अज्ञान रूपी रोग के वशीभूत रहने वाले लोगों के कष्ट को दूर करने के लिए होता था। अब यहां पर अभी वर्तमान में जब कलयुग आ गया तो इसमें इसके क्रम बदल गए। अब कर्मकांड पवित्रता का विषय नहीं रहा
0: जी।
1: अब कर्मकांड में देखें तो जो कर्मकांड कराने वाले विशेषज्ञ हैं उनकी भी अपनी कामनाएं हैं, और जो लोग कर्मकांड करा रहे हैं उनकी भी अपनी कामनाएं हैं। और पवित्रता इसलिए नहीं है कि जैसे कहा गया कि चित्त की अशुद्धि का मूल कारण है अज्ञान, तो देखें तो कर्मकांड की जो पूरी साधना है वो एक प्रकार से अज्ञान से प्रेरित है, वो मोक्ष के लिए नहीं है
0: जी।
1: जबकि उस समय सतयुग में कर्मकांड भी मोक्ष के लिए था, संसार में किस तरीके से आप अपनी अज्ञानता को दूर कर सकें, अंतःकरण के दूषण को समाप्त कर सकें, अंतःकरण को निर्मल कर सकें, क्योंकि आप देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितना सुंदर कहा, निर्मल मन जन सो मही पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा।
0: बड़ी रोचक सी बात है कि कोई भी कर्मकांड मन को निर्मल करने के लिए नहीं है।
1: नहीं है आज के समय में,
0: आज के समय
1: उस समय था सतयुग में। तो सतयुग के समाप्ति के बाद ऐसा मतलब उसका क्षरण हुआ, तो फिर उस समय ये जो उपदेश था ये राजाओं तक सीमित रखा गया। कई बार ये आजकल के समाज में मुझे सामना करना पड़ता है ऐसे प्रश्नों का कि इसका मतलब इसे गोपनीय रखा गया, गोपनीय नहीं रखा गया। ये देखिए क्या है, कोई भी साधन अगर पवित्र हृदय या पवित्र ज्ञान के साथ रहने वाले लोगों के पास है तो वो साधन आपके भय को निर्मूल करने का कारण बन सकता है, लेकिन वही अपवित्र कामना के साथ किसी के हाथ में वो साधन आ जाए तो वो व्यक्ति वो खुद भी अपवित्र है, साथ ही साथ उसका उपयोग भी वो चित्त शुद्धि के लिए नहीं करेगा। इसलिए आप देखिए कि हम कई बार कहते भी हैं कि हथियार अगर रक्षाकर्मी के हाथ में हो तो आप निर्भय होकर घूमते हैं, लेकिन वही हथियार अगर किसी ऐसे व्यक्ति के पास आ जाए जिसका कर्तव्य रक्षा करना न हो तो उससे आपको डर लगेगा, मतलब उसी पात्र से या उसी साधन से आप डरोगे। कारण क्या हुआ इसमें, क्योंकि वो जो शस्त्र है वो ऐसे व्यक्ति के हाथ आ गया है जो शास्त्र की मर्यादा को नहीं जानता। इसीलिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि शस्त्रधारियों में मैं राम हूं, क्योंकि राम जैसी मर्यादा जिसके पास है शस्त्र की शोभा उन्हीं हाथों में है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: रावण के पास भी शस्त्र हैं, लेकिन वो शस्त्र लोगों के भय का कारण है।
0: जी जी जी जी जी। अच्छा वशिष्ठ जी, श्री राम को उपमा देकर बात करते हैं, क्या वो उपमा है और क्यों ऐसी उपमा उन्होंने दी है उन्हें?
1: आपने बड़ा मतलब रिलेवेंट प्रश्न पूछा जी। वशिष्ठ जी राम को कहते हैं हे शत्रु मर्दन, माने शत्रुओं का मर्दन करने वाले राम, तुम्हारा मन अत्यंत निर्मल है, इसलिए किसी निमित्त के बिना स्वाभाविक ही तुम्हारे मन में यह परम पावन और उत्तम वैराग्य जाग उठा है। अब देखिए कितनी बड़ी बात है। आप देखिए कई बार मन की मलिनता से लोग वैराग्य की तरफ उन्मुख होते हैं।
0: जी जी।
1: संसार की सिद्धि नहीं हुई इसलिए वैरागी हो गए, या संसार में दुख दिखाई दिया इसलिए वैरागी हो गए। इसका मतलब का देखिए, ये वैराग्य जो है सब नैमित्तिक वैराग्य है ये। जैसे अगर आपको संसार में दुख न दिखता, संसार में सुख ही सुख दिखाई देता, तो क्या कोई वैरागी होता?
0: नहीं,
1: नहीं होता। तो ऐसा व्यक्ति जो संसार में दुख देख रहा है तो उसके संसार से विराग का कारण क्या है? दुख,
0: दुख है।
1: अगर दुख न दिखता तो विरागी नहीं होता,
0: तो विरागी नहीं।
1: जबकि राम जी ऐसे नहीं है, ये निर्मल मन का द्योतक नहीं है। कल्पना करिए, मैं तो कई बार देखता हूं कि संसार से वैराग्य लेने वाले लोग अपनी साधनाओं में राग कर बैठते हैं।
0: बिल्कुल,
1: कह सकते हैं कि आप जगत से दूर जा रहे हैं, जंगल में चले गए, लेकिन जंगल में एक संसार बना लिया आपने, अपनी साधना का संसार, और वो संसार आपको राग से ग्रसित कर लिया, तो वैराग्य की सिद्धि कहाँ हुई? भाई यहाँ का आदमी संसार के पीछे भाग रहा है और वहां संसार से आप भागने में लगे हैं, यानी आपका संसार संसार से भागना हो गया
0: जी।
1: तो ये गलत है कि नहीं? एक बहुत सुंदर गीत किसी ने लिखा था कि अपमान रचयिता क्या होगा रचना को अगर ठुकराओगे तो
0: जी जी जी
1: है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, संसार में आपको इसका ज्ञान होना चाहिए। वैराग्य ज्ञान का विषय है, अज्ञान से वैराग्य जो उत्पन्न होता है वो नैमित्तिक वैराग्य है, उसको राजस वैराग्य भी कह सकते हैं आप।
0: अच्छा, कि उस तो वैराग्य के प्रकार भी हैं।
1: वैराग्य के प्रकार भी हैं
0: जी जी,
1: बिल्कुल।
0: तो आपने राजस वैराग्य की चर्चा कर दी है
1: जी,
0: तो मैं चाहती हूँ थोड़ा विस्तार दें इसे।
1: राजस वैराग्य का मतलब हुआ कि जो वैराग्य किसी निमित्त से उत्पन्न हुआ हो, या उस निमित्त के कारण उत्पन्न होने वाले वैराग्य का मूल विषय उस निमित्त को मिटाना होगा। जैसे किसी को संसार में दुख का दर्शन हुआ, तो दुख के दर्शन के नाते उन्होंने संसार का त्याग किया, तो उनका निमित्त क्या बना? दुख।
0: दुख।
1: तो ऐसे में ये जो वैराग्य है ये राजस वैराग्य है, ये दुख के निर्मूलन के बाद ये वैराग्य समाप्त हो जाएगा, क्योंकि उसका कारण ही मूल ही दुख है। और जहां भी उन्हें कहीं सुख की अनुभूति होगी तो सुख में वो राग कर बैठेंगे, चाहे वो सुख किसी भी प्रकार का हो। तो एक प्रकार से देखें तो राजस वैराग्य हमेशा नैमित्तिक होता है। तो इसलिए जब भी हमारे अंदर वैराग्य उत्पन्न हो तो हमें अपने चित्त का एक बार स्वाध्याय करना चाहिए कि हमारे वैराग्य का कारण क्या है। अगर रिश्तों की विफलता है, अगर संसार में देखा जाने वाला दुख है, अगर संसार में असंतुष्ट लोगों को देखने के बाद हमारे चित्त में वैराग्य की उत्पत्ति हो रही है, तो निश्चित ही अगर ये दृश्य न होते तो क्या हमारे चित्त में वैराग्य उत्पन्न होता? शायद नहीं होता। वैराग्य की उत्पत्ति अगर ज्ञान से हो रही है
0: जी,
1: ज्ञान जबकि निमित्त नहीं है। अब यहां पर भी कुछ लोग सोच सकते हैं कि यहां तो ज्ञान निमित्त हो गया, ज्ञान निमित्त नहीं है, ज्ञान से वैराग्य होता ही है। वैराग्य उत्पन्न होने का मूल कारण है सत्य का ज्ञान। अगर सत्य आपके सामने उद्घाटित हो रहा है तो ऐसा ज्ञान सात्विक वैराग्य कहलाएगा, क्योंकि सात्विकता से सत्य प्रकट होता है। इसलिए सत्वगुण जो है वो प्रकाश का द्योतक है, कि उसके प्रकाश में आप अच्छा बुरा सब देख सकते हैं। कबीर साहब अपने दोहों में अक्सर हंस शब्द का प्रयोग करते हैं। हंस एक ऐसा पक्षी है, ऐसी मान्यता है कि वो दूध और पानी अगर मिला दिया जाए तो पानी छोड़ देगा, दूध को ग्रहण कर लेगा, ऐसी एक मान्यता है। इस नाते हंस विशेष माना जाता है पक्षियों में। तो इसका मतलब हुआ कि सार को ग्रहण करने वाला, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए, ये है वैराग्य, कि जो त्यागने योग्य है या जिसका संग नहीं हो सकता है उस संग का त्याग कर दें और सत का संग कर लें, तब वैराग्य हुआ। वैराग्य सत्संग करने का एक प्रबल माध्यम है।
0: तो आपने राजस वैराग्य और सात्विक वैराग्य दोनों को ही समझाया। तो सात्विक वैराग्य से हम ये समझें कि वो वैराग्य जो ज्ञान के साथ हमारे भीतर बना रहता है,
1: ज्ञान के साथ उत्पन्न होता। देखिए ज्ञान के साथ सत्य प्रकट होगा। भारत में ज्ञान, विषय के ज्ञान को ज्ञान नहीं कहा गया। भारतीय ज्ञान परंपरा में जब भी ज्ञान शब्द आया है वो आया है आत्मा के संबंध में, ब्रह्म के संबंध में, ब्रह्म ज्ञान। इसीलिए कहते हैं कि ब्रह्म विद्या। भगवान ने भी गीता में कहा कि मैं विद्या में अध्यात्म विद्या हूं। तो अध्यात्म विद्या क्या है? अध्यात्म विद्या ये है कि जिस विद्या का आधार आपकी आत्मा हो, आपका ब्रह्म तत्व हो। चेतन का ज्ञान, उस ज्ञान से चित्त निर्मल होगा, अमल होगा, और सतत सुख जो सुख की राशि है, ऐसा सुख जो दुख पर आधारित नहीं है, यानी संसार में जिस सुख दुख का हम अनुभव करते हैं ये परस्पर आश्रित हैं, एक दूसरे के अनुपूरक हैं, क्योंकि संसार में जब भी आप कोई सुख का अनुभव करते हैं तो वो दुख से संदर्भित होता है, दुख पर आधारित होता है। ये कहते हैं कि सुख की राशि वो जो है वो तभी आप सुख की राशि तक जुड़ सकते हैं जिसको सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्ण वयम नुमः, यानी कि जो जहां तीनों तापों का विनाश हो ऐसा ज्ञान जो है सहज सुख की राशि होगा, और उसी को सच्चिदानंद रूप कहा गया। सत्चित आनंद है वो स्वरूप, यानी स्वरूप का ज्ञान ज्ञान है भारत में। बाकी विषयों के ज्ञान को ज्ञान कहा जाता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण में जब भी ज्ञान शब्द आएगा तो वो आएगा ब्रह्म ज्ञान के लिए, आत्म ज्ञान के लिए, चित्त की शुद्ध करने वाले ज्ञान के लिए, चित्त को निर्मल करने वाले ज्ञान के लिए।
0: अच्छा, आप ये बताएं कि ये ग्रंथ क्या कहता है कि परब्रह्म को कौन प्राप्त होता है?
1: परब्रह्म को वह प्राप्त होता है जिसकी सांसारिक बुद्धि नष्ट हो चुकी हो, जिसने सांसारिक बुद्धि को त्याग दिया हो। सांसारिक बुद्धि के त्याग के बिना परब्रह्म की अनुभूति नहीं हो सकती। यहाँ वशिष्ठ जी कहते हैं कि जो राजस वैराग्य है वो संसार में किसी न किसी निमित्त से उत्पन्न होता है, परंतु राम तुम्हारे मन में उत्पन्न हुआ वैराग्य अपूर्व है। अपूर्व का मतलब इसके पहले किसी को ऐसा वैराग्य नहीं हुआ। आप देखिए, शब्दों पर हम अगर ध्यान देंगे तभी वो शब्द अपने अर्थ के साथ अपनी आत्मा को प्रकट कर पाएंगे। अपूर्व शब्द का हम प्रयोग करते हैं, अपूर्व का मतलब पहले किसी को नहीं हुआ।
0: जी, जी।
1: तो राम का वैराग्य ऐसा वैराग्य है जो अपूर्व है, यह किसी निमित्त की अपेक्षा न रखकर स्वयं अपने विवेक से उत्पन्न हुआ है और सत्पुरुषों को आश्चर्य में डालने वाला है, अतः सात्विक है। ऐसा वैराग्य जो सत्पुरुषों के भी आश्चर्य का कारण बन जाए, ऐसा अपूर्व वैराग्य राम जी को हुआ है जिसका कोई निमित्त नहीं है। वो कहते हैं कि संसार के दुख को देखा, ऐसा नहीं है कि दुख को देखा, ऐसे तो कहने में बात जब आती है तो उसका एक पक्ष या एक दृष्टिकोण सामने आ पाता है, लेकिन अगर हम उसको समग्रता से देखें तो राम जी को जो वैराग्य हुआ वो वैराग्य सात्विक वैराग्य है जो किसी निमित्त से उत्पन्न नहीं हुआ है, जिसका कारण विवेक है। विवेक से उत्पन्न होने वाला वैराग्य आत्म ज्ञान की तरफ व्यक्ति को ले जाता है, प्रकाशित करता है।
0: अच्छा, आप ये बताएं कि दुख को सहन करने का सामर्थ्य कैसे आता है?
1: आपने सुंदर सवाल किया। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राघव, श्रेष्ठ पुरुषों में शीत उष्ण वात आदि द्वंद जनित दुखों को सहन करने की क्षमता ज्ञान के बल पर ही आती है, अन्यथा ज्ञान युक्ति के अतिरिक्त वे किसी प्रकार इसको सहन नहीं कर सकते। दुख की चिंताएं अज्ञानी मनुष्यों को पद पद पर आके घेर लेती हैं और समय अनुसार उन्हें संतप्त करती हैं, परंतु जो ज्ञानी पुरुष हैं वो इसको ज्ञान के बल पर नष्ट करते हैं। ऐसा नहीं विपरीत परिस्थितियां उनके जीवन में नहीं आती हैं। जब देह में व्यक्ति होगा तो देह विषमता को अनुभव करेगा।
0: जी जी।
1: आपके अनुरूप भी विषय हो सकते हैं और प्रतिकूल भी हो सकते हैं।
0: जी।
1: लेकिन ज्ञान के बल पर इसको सहन करने का जो सामर्थ्य है वो ज्ञान के बल पर आता है। इसलिए दुख कभी भी अगर आप चाहते हैं नष्ट करना या चाहते हैं कि दुखों को हम निर्मूल करें
0: जी, जी।
1: तो उसके लिए ज्ञान की आवश्यकता है, और ज्ञान में अध्यात्म ज्ञान जो चित्त के रोग को मिटाता है, और चित्त के रोग का कारण है अज्ञान, और चित्त का रोग ज्ञान से ही मिटता है। अंतःकरण के रोग को ज्ञान से दूर किया जा सकता है। तो ज्ञान बल से जो सात्विक पुरुष हैं वो अपने को विवेक से उत्पन्न वैराग्य की साधना करते हैं और संसार के दुखों से अपने को मुक्त रखते हैं, यद्यपि परिस्थितियां उनके जीवन में भी अनुकूल प्रतिकूल होती रहती हैं।
0: जी। अच्छा, आप ये बताएं कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति हेतु किससे प्रश्न करना चाहिए?
1: बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन लोगों के पास जाए जो श्रुति आदि प्रमाण देने में कुशल तथा आत्म तत्व का यथार्थ ज्ञाता हो। ऐसे ज्ञानी पुरुष के पास जाकर प्रयत्न पूर्वक विनय भाव से प्रश्न करे। यानी वक्ता में ये गुण होना चाहिए कि वो श्रुति परंपरा का व्यक्ति हो। श्रुति परंपरा और स्मृति परंपरा, ये दोनों अलग अलग है। श्रुति परंपरा में ऋषि होते हैं, इसीलिए ऋषियों को मंत्र दृष्टा कहा गया, यानी ऋषि का मतलब देखने वाला, जिसने उसको देखा है, जिसको कबीर साहब ने लोक भाषा में कहा कि तुमने जो कही किताबन लेखी, हमने जो कही वो आंखन देखी। तो जिसने देखा है वो उस श्रुति परंपरा का संवाहक हो सकता है, क्योंकि वो जानता है। और गीता में भी भगवान ने अर्जुन को कहा कि तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेशंति ते ज्ञानम ज्ञानत तत्वदर्शिना। कि जो तत्वदर्शी है यानी जो देखने वाला है, उसके पास तुम जाओ और जा करके उससे प्रश्न करो। ऐसे लोगों से मत प्रश्न करो जो कहीं सुनी बातों को सुन करके बता रहे हैं। इसलिए आप जब उपनिषद का अध्ययन करेंगी तो आपको ऐसा लगेगा, उसमें ऋषि साफ साफ कहते हैं कि जो ये ज्ञान है ये प्रवचन से प्राप्त नहीं होता, यह शास्त्र से प्राप्त नहीं होता, ये मेधा से प्राप्त नहीं होता, ये तब प्राप्त होता है और उन लोगों को प्राप्त होता है जो इसको ग्रहण करने की पात्रता रखते हैं, उनमें ये उतरता है। ये कहते हैं ना कि ये आत्मा का जो प्रकाश है वो सब में है, लेकिन प्रकट वहां होती है जहां पर उतरने का सामर्थ्य आया, यानी आपको अपने को योग्य बनाना है। ज्ञान तो आप में है ही, किसी संत ने इसको कहा है कि बलिहारी उस घाट की जामे प्रगट होए, घट घट व्यापे साइयां सूनी सेज न कोए, और बलिहारी उस घाट की जामे प्रगट होए, यानी परमात्मा तो हर घट में व्याप्त है, लेकिन वो धन्यवाद है उस घट का जिसमें उसका प्राकट्य हो गया, क्योंकि वो प्राकट्य करने के लिए विवेक ज्ञान से संपन्न हो गया, उसका जो वैराग्य था वो निमित्तिक नहीं रहा, वो बिना निमित्त के वैराग्य उत्पन्न हुआ, इसलिए उस सत्य को प्रकट करने का उसने सारी बाधाएं अपने जीवन से हटा दी, चित्त निर्मल हुआ और फिर स्वयं का प्रकाश प्रकाशित हो गया।
0: जी। अच्छा, प्रश्नकर्ता कैसा होना चाहिए, क्या इसके लक्षण बताए जा सकते हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल, आप कभी सोचिए ना कि जिस ज्ञान के प्रकाश ने उस गुरु को प्रकाशित नहीं किया जिससे आप प्रकाशित होने की कामना करके उसके पास गए हैं, तो जब वो गुरु विषम बुद्धि के साथ खड़ा है, उसकी बुद्धि समत्व में स्थित नहीं है, वो योगी नहीं है, तो फिर ऐसे में उसके द्वारा दिया गया ज्ञान आपके चित्त की विषमता को दूर कैसे करेगा? ये विचारणीय विषय है। तो प्रश्नकर्ता में तो इतनी समझ होनी चाहिए या वक्ता में इतनी समझ होनी चाहिए कि जिस ज्ञान से हम अपने जीवन को प्रकाशित नहीं कर पाए, उस ज्ञान के द्वारा हम अपने अनुयायी या हमसे जो प्रश्न लेकर के हमारे पास जिज्ञासु आए हैं उनके अज्ञानता को दूर कैसे कर देंगे? तो यहां पर ये बात उन्होंने कहा कि अतएव प्रश्न करने वाला जो है वो उस प्रमाण कुशल और तत्वज्ञानी वक्ता के उपदेश का जो पुरुष यत्न पूर्वक अनुसरण नहीं करता, उससे बढ़कर दूसरा कोई नराधम नहीं है। यानी अगर कोई तत्वज्ञानी जिससे आपने प्रश्न पूछा और उसने जो उत्तर दिया उसका जो अनुपालन नहीं कर रहा है, उसको इन्होंने कहा कि वो नराधम है। अतः वक्ता के व्यवहार आदि कार्यों से उसकी अज्ञता और तत्वज्ञाता का पहले निर्णय करके जो पुरुष उससे प्रश्न करता है, वह प्रश्नकर्ता उत्कृष्ट बुद्धि वाला माना जाता है। परंतु जो जिज्ञासु उत्तम वक्ता का निर्णय किए बिना ही उससे प्रश्न करता है, वह अधम कहलाता है और उसे तत्वज्ञान रूप महान अर्थ की प्राप्ति भी नहीं होती। इसलिए ज्ञानी को चाहिए कि पूर्वापर का विचार करके उस जिज्ञासु के प्रश्न का उत्तर दे।
0: तो ये तो प्रश्नकर्ता की बात हुई, अब हम वक्ता की भी बात करते हैं कि जो वक्ता है वो प्रश्न का उत्तर देते समय किन बातों पर विचार करे, क्या कहा गया है?
1: वक्ता को इस बात का पहले विचार करना चाहिए कि जो आपका प्रश्नकर्ता है क्या उसे पूर्वापर का ज्ञान है। पूर्वापर मतलब पूर्व के पक्ष का। जैसे आप देखिए, आप कहीं भी जहां हैं वहीं से तो चलना प्रारंभ करेंगे, तो जब तक प्रश्नकर्ता की स्थिति आपको पता न हो और बिना उसकी स्थिति जाने आप उसको वहां का ज्ञान देना शुरू कर दिए जहां वो है ही नहीं, तो निश्चित ही उसके लिए चलना दूभर हो जाएगा। तो पूर्वापर का जिसे ज्ञान हो, ऐसा विवेचन वक्ता को करना चाहिए। उसका निश्चय करने में जिसकी बुद्धि समर्थ हो और जो निंदनीय न हो, मतलब ऐसा वो प्रश्नकर्ता न हो कि वो निंदनीय दृष्टि का हो या वो पूर्वापर को जानता भी नहीं हो या ज्ञान को ग्रहण करने का सामर्थ्य नहीं रखता हो, ऐसे पुरुष को उसके पूछे हुए तत्व का उपदेश दे। परंतु जो आहार निद्रा भय मैथुन आदि पशुधर्म से संयुक्त हो, ऐसे अधम को तत्व का उपदेश न दे। यानी तत्व का उपदेश देने के लिए सबको उन्होंने अलाउ नहीं किया, इसीलिए इसको राज विद्या और राजगुह्य कहा गया, क्योंकि राजा लोग इसके पात्र थे। इसका उद्देश्य नहीं था कि राजाओं को जानबूझ करके किसी डिस्क्रिमिनेशन की वजह से उनको ये ज्ञान दिया गया, वो पात्र हो गए थे, इसलिए उनको उनके अंदर विवेक जागृत था। तो विवेकवान को ही तत्व ज्ञान का उपदेश देना चाहिए,
0: पात्रता देखकर ही
1: जी, क्योंकि प्रश्नकर्ता की श्रुति आदि परमाणुओं द्वारा निर्णित पदार्थों के ग्रहण करने की योग्यता विचार किए बिना ही जो वक्ता उसे उपदेश देता है, मतलब अगर आपने प्रश्नकर्ता का विचार नहीं किया और उसको तत्व ज्ञान का उपदेश देना शुरू कर दिया, ऐसा वक्ता कहा गया कि वो वक्ता श्रेष्ठ नहीं है। इसीलिए आप देखिए, अपने सामाजिक व्यवस्थाओं के संचालन के लिए भी जब हम व्यक्ति का चुनाव करते हैं तो चुनाव में हम उस व्यक्ति की पात्रता देखते हैं कि क्या ये व्यक्ति इस पद के अनुसार कार्य करने योग्य है कि नहीं, या ये शक्ति इसे दी जाए कि नहीं दी जाए। ये अलग बात है कि वहां पहुंच जाने के बाद लोग जिन संकल्पों के साथ उस पद तक पहुंचना चाहते हैं वो संकल्प भूल जाते हैं।
0: बिल्कुल, है ना। मुझे भी यही एक प्रसंग याद आ गया पात्रता की, चूंकि हम बात कर रहे हैं, तो उस्ताद अलाउद्दीन खान जो थे
1: जी,
0: वो संगीत सिखाया करते थे और उनकी जो पुत्री थी अन्नपूर्णा देवी, बहुत छोटी थी
1: जी,
0: और अचानक उन्होंने उनका गाना सुन लिया था और कहा था कि इसे मैं संगीत दूंगा। तो उस वक्त उन्होंने ये बात कही थी कि उनके घर में उस समय तक लड़कियां संगीत नहीं सीख रही थी। एक बेटी ने सीखा था जिसका हश्र अच्छा नहीं हुआ था, तो उन्होंने अन्नपूर्णा देवी को संगीत नहीं सिखाने का निर्णय लिया था। लेकिन जब गाना सुन लिया तो उन्होंने ये बात कही कि कुपात्र को संगीत सिखाना पाप है और सुपात्र को संगीत न सिखाना पाप है।
1: जी बिल्कुल।
0: तो ये मतलब पात्रता वहां भी
1: जी
0: थी, तो वैसी बात ही हो गई।
1: वैसी ही बात है
0: जी।
1: आप देखिए ये सब जो बातें हैं ना, ये इतनी अरवाचीन, मतलब मैं इसकी इतनी जरूरत है, इसकी प्राचीनता के साथ साथ इसकी महत्ता आज के समय में और अधिक है। वशिष्ठ जी कहते हैं राम से, रघुनंदन तुम प्रशंसनीय गुणों से युक्त अत्यंत श्रेष्ठ प्रश्नकर्ता हो और मैं उपदेश देना जानता हूँ। देखिए उन्होंने कहा कि मुझे भी मालूम है तुम्हारे प्रश्नकर्ता की हैसियत, मुझे पता है मैं उपदेश देना जानता हूँ, अतः हम दोनों का यह समागम उचित है। अब आप देखिए योग वासिष्ठ में वशिष्ठ जी के शिष्य राम के अन्य भाई लोग भी हैं, लेकिन ये योग वासिष्ठ ग्रंथ की चर्चा सिर्फ राम से हुई है क्योंकि बाकी लोगों में ऐसे प्रश्न की उत्कंठा नहीं है, ऐसी जिज्ञासा नहीं है जो जिज्ञासा राम में है।
0: जी, जी, जी। अच्छा ये बताएं कि इसी ग्रंथ में मोक्ष प्राप्ति में सहायक द्वारपालों की चर्चा हुई, बड़ी रोचक है वो।
1: जी जी।
0: तो कौन कौन से वो द्वारपाल हैं, क्या बताया गया है हमारे सुनने वालों को, आप बताएं।
1: जी, उस मोक्ष के द्वार पर निवास करने वाले चार द्वारपाल बतलाए गए हैं जिनके नाम हैं शम, विचार, संतोष और साधु संगम। ये चार द्वारपाल हैं मोक्ष दिलाने में जो सहयोगी हैं। और राम को वो कहते हैं तुम शब्दार्थ के ज्ञाता हो, इस नाते तुम्हारे जो प्रश्न हैं वो श्रेष्ठ हैं और तुम इस उपदेश को सुनने की पात्रता रखते हो। तो जो ये चार द्वारपाल बताए गए हैं उसको कहते हैं वशिष्ठ जी, मनुष्य को इन चारों का ही प्रयत्न पूर्वक सेवन करना चाहिए, क्योंकि इनका भली भांति सेवन होने पर यह मोक्ष रूपी राजमहल के द्वार खोल देते हैं। यहाँ पर मोक्ष को राजमहल कहा गया है, यानी राजमहल का मतलब जहां उससे बड़ा कोई महल नहीं हो सकता, या उस महल में जाने के बाद किसी और महल की कामना नहीं हो सकती, यह है मोक्ष। यानी कामनाओं से मुक्त हो जाना मोक्ष का नाम है। तो कहते हैं कि भली भांति सेवन करना चाहिए, यदि इन चारों का सेवन न हो सके तो तीन का या दो का सेवन तो अवश्य करना चाहिए, दो का भी सेवन न हो सके तो सभी उपायों द्वारा प्राणियों को बाजी लगाकर किसी एक का आश्रय तो अवश्य ग्रहण करना चाहिए।
0: अच्छा।
1: क्योंकि जब एक वश में आ जाता है तब तीनों भी उसके अधीन हो जाते
0: हैं।
1: कितनी सरलता उन्होंने कह दी, किसी एक का अगर चार नहीं कर सकते तो किसी एक को भी साधो, इसी को कहा गया एक ही साधे सब जाए।
0: अच्छा, मेरे मन में ये था कि जो चार द्वारपाल उन्होंने बताए, इन चारों को अलग अलग से भी आप समझा दें हमारे सुनने वालों के लिए कि जो उन्होंने सम कहा या विचार कहा।
1: सम का मतलब होता है जो अपन शरीर के लेवल पर जो अनुशासन का पालन करते हैं उसको सम कह सकते हैं।
0: सम,
1: ठीक है। सम के बाद दम आता है, यानी जो मन के लेवल पर जो अनुशासन को पालन किया जाए, वहां पर उन्होंने दम न कह के उसको विचार कहा कि देखा जाए तो जब तक शरीर की इंद्रियों पर आपका अनुशासन नहीं होगा तब तक आप सद्विचार करने का सामर्थ्य नहीं रखेंगे, क्योंकि इंद्रियां लंपट हैं स्वभाव से, इंद्रियां हमेशा विषयों की तरफ भागेंगी। और कोई व्यक्ति ये कितना भी दावा करे कि हम सदचिंतन करते हैं, सदचिंतन आप तभी कर सकते हैं जब आपको सदव्यवहार करना आता हो, है ना। आपको सदव्यवहार का मतलब अनुशासित व्यवहार करना आता हो, ठीक है। हाँ। और अनुशासित व्यवहार बिना विचार के नहीं होगा, सद्विचार और सद्व्यवहार, तो ये दो बात हो गई, यानी सम और विचार। सम और विचार के बाद जो आता है संतोष आता है। अगर विचारों पर आपने संयम प्राप्त कर लिया, विचारों को अनुशासित कर लिया, विचार अब आपको नहीं बल्कि विचारों को आप नियंत्रित करते हैं, तो ऐसे में आपके अंदर संतोष अपने आप प्राप्त हो जाएगा।
0: जी, जी।
1: और जैसे ही संतोष आपको आता है तब आप साधुओं का संग करने के योग्य हो जाएंगे, जो साधु संगम कहा उन्होंने।
0: जी, जी,
1: कि साधुओं के पास जाकर के भी लोग साधु संगम नहीं करते, वहां पर भी संसार का संगम
0: जी,
1: करते
0: जी,
1: हैं
0: जी,
1: संसार की कामना लेकर के जाते हैं कि महाराज जी के आशीर्वाद से हमारी ये कामना सिद्धि हो जाएगी। जबकि साधु संगम करने का सामर्थ्य उसी में आता है जिसको शम विचार संतोष इन तीन साधनों की सिद्धि जिसने की हो। हालांकि वशिष्ठ जी ने कहा किसी एक को भी अगर साधें आप तो ये चारों ये तीनों बाकी सद जाते हैं।
0: जी, जी,
1: एक को साध लेने से भी, क्योंकि साधु के पास जाकर के आप संसार लेके जाएंगे लेकिन अगर वास्तव में वो साधु है तो वो संसार की नश्वरता का ज्ञान आपको कराएगा। बार बार वही कहेगा कि संसार किसको सुख दिया है, जाके ढूंढ के लाओ। मुझे याद आता है महात्मा बुद्ध जी जिन दिनों में प्रवास पर होते थे, भ्रमण करते थे, तो वहां पर एक रानी थी जिनको बहुत तपस्या के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। कुछ साल के बाद वो पुत्र नहीं रहता है। अब पुत्र के मर जाने के बाद वो इतनी विह्वल हो गई कि सारा सुध-बुध खो बैठी और पुत्र के शव को अपने सीने से चिपका कर रोती रहीं। अब राजा परेशान कि कैसे इनको मुक्त कराया जाए, तो उसी समय उनके राज्य में बुद्ध का विहार होना था, तो कहा कि बुद्ध आए हैं, बुद्ध के उपदेशों का इनके ऊपर असर होगा। तो वो आह्लादित होकर बुद्ध के पास पहुंची और बुद्ध से उन्होंने कहा कि मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए। महात्मा बुद्ध बड़े अद्भुत संत रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं तो चित्त का वैद्य, उन्होंने कहा कि मैं तो चित्त का वैद्य हूँ, यानी चित्त के रोगों का शमन करता हूँ और इनका चित्त रोगग्रस्त हो गया है, इसलिए इस सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रही हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं आपके पुत्र को जीवित कर दूंगा लेकिन मेरी एक शर्त है। उन्होंने कहा बताइए, मैं तो रानी हूँ, इस राज्य में तो मेरा ही चलता है, मतलब मेरी बात को कौन नहीं मानेगा। कहते मुझे एक मुट्ठी जो है पीला सरसों चाहिए। तो बहुत खुश हो गए कि एक मुट्ठी पीला सरसों
0: और बेटा
1: जीवित हो जाए। तो वो तो फिर इतने भाव में आई, उनको बेटा का जीवन दिखने लगा, वो पूरे राज्य में खुद ही दौड़ने लगी हर घर में कि मुझे एक मुट्ठी पीला सरसों दे दो। और जब पूरा राज्य उनको देने को तैयार था तो फिर वो पूछती थी तुम्हारे यहाँ कोई मृत्यु तो नहीं हुई है। वो राजा एक शर्त थी,
0: ये बुद्ध की वो थी,
1: बुद्ध की शर्त थी कि सरसों वहीं का होना चाहिए जिसके घर में कोई मृत्यु नहीं हो। तो वो जहां भी जाती थी वहां मृत्यु की श्रृंखला तो है, जहां जन्म हुआ है वहां मृत्यु तो होगी।
0: ये चित्त का उपचार
1: था। तो फिर वो अंत में शाम तक उनका चित्त शांत हो जाता है और फिर वो बेटे के जो सौदाह में सहभागी बनती हैं तो उनका चित्त शांत हो गया कि भाई मृत्यु तो होनी ही है। तो इस तरीके से आप देखें तो साधु संगम का असर होता है, प्रभाव होता है कि संसार के द्वारा मलिन चित्त भी निर्मल हो जाता है।
0: तो शशिकांत जी, बहुत ही सुंदर चर्चा रही आज की। योग वासिष्ठ में जो बताया गया है वक्ता और प्रश्नकर्ता के लक्षण, उस पर विस्तार से आपने चर्चा की। आज आप हमारे बीच उपस्थित हुए, आपका हम हृदय से आभार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नमस्कार।
0: तो श्रोताओं, योग संवाद कार्यक्रम में आज हमने बात की वक्ता और प्रश्नकर्ता के लक्षणों पर। उम्मीद है आज का ये अंक आपको पसंद आया होगा। अगले अंक में बहुत जल्द फिर आपसे मिलेंगे। चलते चलते आपको हम बता दें कि इस कार्यक्रम में विशेषज्ञ के तौर पर हमारे बीच उपस्थित थे योग अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी। मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा का था, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का, और आपके साथ थी मैं सुनीता सिंह। अब इस कार्यक्रम से अनुमति दें। नमस्कार। आप सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: साहस की बुलंद शुरुआत से लेकर आसमान की असीम ऊंचाइयों तक 8 अक्टूबर को पूरा देश मना रहा है भारतीय वायुसेना का 94वां वायुसेना दिवस।
1: वर्ष 1947-48, 1965 और 1971 के ऐतिहासिक युद्धों से लेकर ऑपरेशन मेघदूत और ऑपरेशन सफेद सागर तक विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायु सेना ने हर पल कर दिखाया है अदम्य पराक्रम, अत्याधुनिक तकनीक और सर्वोच्च बलिदान।
0: तो मध्य प्रदेश के जाबाज युवाओं, क्या आप तैयार हैं? बादलों को चीरकर देश का मान बढ़ाने के लिए तो बनिए अग्निवीर वायु, हासिल कीजिए वो मुकाम जो जिंदगी भर की पहचान बन जाए और गर्व से कीजिए भारत माँ की सेवा।
1: भर्ती और पात्रता से जुड़ी पूरी जानकारी के लिए
0: 15 एयरमैन चयन केंद्र के इंस्टाग्राम पेज 15ASC_भोपाल और आधिकारिक वेबसाइट IAFRecruitment.edcil.co.in पर विजिट करें।
1: नभस प्रशम दीप्तम।
0: जय हिंद।
2: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह, लेकर उपस्थित हूं आज का विशेष कार्यक्रम। श्रोताओं, अक्सर हम कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है, यानी शरीर अच्छा हो तो मन भी अच्छा रहता है। लेकिन मन अगर बीमार हो तो इसका प्रभाव हमारे शरीर, हमारे जीवन और समाज पर कैसा होता है, क्या कभी आपने इस पर सोचा है? मन का स्वास्थ्य, जिसका संबंध आपकी भावनाओं से है, आपके विचारों से है, आपके तनाव, आपकी खुशी से है, निर्णय लेने की क्षमता या आपके जो आपसी संबंध हैं, सामाजिक संबंध हैं, उनसे होता है। इन सभी को प्रभावित करता है आपका मानसिक स्वास्थ्य। लेकिन ये एक ऐसा विषय है जिस पर अमूमन चर्चा बहुत कम होती है और इसीलिए जागरूकता भी इसके लिए कम है। मानसिक स्वास्थ्य को लेकर लोग जागरूक हों, खुलकर इस विषय पर बातचीत हो, बेहिचक बातचीत हो और जानकारी का प्रसार हो, इसी उद्देश्य से 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विशेष बात ये कि मन हमारे अस्तित्व का एक ऐसा हिस्सा है जिसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं है, लेकिन मन है तो, क्योंकि तभी मन कहीं लगता है, कहीं उचटता है, कभी उदास तो कभी उद्विग्न होता है, कभी काबू तो कभी बेकाबू होता है, यानी मन के इर्द गिर्द मनुष्य घूमता है। इसलिए मन का स्वस्थ रहना जरूरी है, मानसिक स्वास्थ्य बहुत आवश्यक है। आज इसी महत्वपूर्ण विषय पर हम बातचीत करने जा रहे हैं। हमारे बीच हैं डॉक्टर JP अग्रवाल, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष मनोचिकित्सा विभाग, गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल। नमस्कार डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में।
3: नमस्कार।
2: आज 10 अक्टूबर है और हम मानसिक स्वास्थ्य दिवस मना रहे हैं, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। तो मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले इस पर ही आप प्रकाश डालें कि इसका क्या इतिहास रहा है, किस उद्देश्य के साथ ही मनाया जाता है।
3: प्रतिवर्ष 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा मनाया जाता है। ये पूरे विश्व में एक साथ मनाया जाता है और ये साल 1992 से लगातार मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य, जैसा कि आपने सही बताया, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता कम है, लोग मानसिक रोगों को भूत प्रेत की बाधा के रूप में कई बार देखते हैं, अथवा मनोचिकित्सक के पास या मनोवैज्ञानिक के पास जाने में हिचकते हैं। तो उस हिचक को दूर करने के लिए, उस स्टिग्मा को कम करने के लिए और अवेयरनेस फैलाने के लिए हर वर्ष 10 अक्टूबर को यह दिवस मनाया जाता है। प्रति वर्ष इसकी कोई स्पेशल थीम भी होती है। इस साल जो 2024 का मानसिक स्वास्थ्य दिवस है, उसकी थीम है कि कार्यस्थल पर हम मानसिक स्वास्थ्य को महत्व दे पाए। तो इट इज अबाउट प्रायोरिटाइजिंग मेंटल हेल्थ एट द वर्क।

0: सकते हैं कि जो हमारे आम सुनने वाले हैं, मानसिक स्वास्थ्य विषय पर चर्चा होती है लेकिन सामान्य तौर पर जब बीमारी की हम बात करते हैं तो शारीरिक बीमारी की चर्चा ज्यादा होती है, मानसिक स्वास्थ्य की चर्चा कम ही होती है, उसकी चिंता भी कम होती है, चर्चा भी कम होती है, जागरूकता भी कम है। तो दरअसल मानसिक स्वास्थ्य से आशय क्या है, हम ये जानना चाहते हैं।
1: विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हेल्थ की एक डेफिनेशन दी है, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हेल्थ मतलब किसी को कोई बीमारी नहीं है तो वो हेल्दी है। हेल्थ इज द स्टेट ऑफ वेलबींग, हेल्थ इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग। जब हम मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं तो हम बात करते हैं मेंटल वेलबींग की। मेंटल वेलबींग वो अवस्था है जहाँ पे कोई भी व्यक्ति अपनी क्षमता के हिसाब से कार्य कर पाता है।
0: अच्छा।
1: वो अपनी क्षमताओं को सही तरीके से समझ पाता है, उस हिसाब से समाज के लिए और परिवार के लिए काम कर पाता है, वो अपनी दैनंदिन जो तनाव है उनको हैंडल कर पाता है। तो स्ट्रेस इज अ पार्ट ऑफ एवरी डेज लाइफ, स्ट्रेस हर जगह है, हर इंसान को है
0: जी।
1: पर अगर वो अपने रूटीन स्ट्रेस को खुद से मैनेज कर पा रहा है, वो अपनी पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज कर पा रहा है, वो समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, अपने परिवार के लिए ठीक ठाक से काम कर पा रहा है, तो उसको स्टेट ऑफ वेलबींग मानते हैं, उसको मानसिक स्वास्थ्य मानते हैं।
0: तो ये मानसिक स्वास्थ्य है आपने बताया। अच्छा, अगर कोई व्यक्ति स्वयं पहचानना चाहे, जैसे कि मानसिक स्वास्थ्य का जो संबंध है, मुझे ऐसा लगता है कि भावनाओं से ही उसका ज्यादा संबंध है, हमारी जो भावनाएं हैं उनका उतार चढ़ाव, उनका जो डेविएशन है वो भी मानसिक स्वास्थ्य में आता है। तो अगर हम तनाव की बात करें, से आपने कहा कि तनाव को वो हैंडल कर लेता है, मान लीजिए मैं काम करती हूँ और मुझे भी अपने काम का एक तनाव होता है, मैं कब समझूंगी कि मैं तनाव को हैंडल कर पा रही हूँ और नहीं कर पा रही हूँ, या मेरा परिवार कैसे समझे कि जिन परिस्थितियों में काम कर रही हूँ, जिस प्रकार का मेरा स्ट्रेस है काम का, वो हैंडल हो रहा है या नहीं हो रहा, वो कैसे समझे?
1: जब हम तनाव को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाते तो हमें कुछ चेंजेस दिखाई देने लगते हैं, कुछ घबराहट के, तनाव के या अवसाद के, तो अलग अलग तरह के चेंजेस दिखाई दे सकते हैं। अगर हम तनाव को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहे तो हो सकता है हमारी नींद प्रभावित हो सकता है हमारी भूख प्रभावित हो सकता है हमारी काम करने की क्षमता प्रभावित हो सकता है हम अपने आप को अकेला कर लें, समाज से कट जाएं, लोगों से जितना पहले हम मिलते जुलते थे उतना नहीं मिले। कई बार ऐसे सिम्टम्स आते हैं जैसे कि हार्ट रेट बढ़ जाना, पसीना ज्यादा आना, हाथ पैर फूलना, हाथ पैर कांपना, जुबान सूखना, ये सब जो सिम्टम्स हैं वो एंजाइटी के सिम्टम्स हैं। तो ये जब तनाव बढ़ता है और हम वो तनाव को हैंडल नहीं कर पाते तो इस तरह के सारे फिजिकल सिम्टम्स, नींद से संबंधित सिम्टम्स, भूख से रिलेटेड सिम्टम्स, हमारी प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड सिम्टम्स, ये सब दिखाई देने लगते हैं।
0: तो हम समझ सकते हैं कि हम मानसिक, हमारा स्वास्थ्य जो है वो बिगड़ रहा है और उस पर हमें काम करने की जरूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम ये जानना चाहते हैं कि जो मानसिक रोग हैं उनके कितने प्रकार हैं और कितने प्रतिशत लोगों में ये पाए जाते हैं?
1: देखिए, मानसिक रोग अलग अलग प्रकार के हैं। अगर ब्रॉडली हम बात करें तो दो प्रकार के मानसिक रोग हैं। एक होते हैं गंभीर मानसिक रोग, जिसके अंदर सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, सिजोअफेक्टिव डिसऑर्डर, ये आते हैं
0: जी।
1: ये हमारे प्रदेश में करीब 1.5 से 2% लोगों में पाए जाते हैं। मतलब अगर हमारी 8 करोड़ की आबादी है तो करीब करीब 20 लाख के आसपास लोगों में ये रोग हो सकते हैं
0: जी।
1: दूसरे होते हैं जिन्हें कहते हैं कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स। कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स मतलब सामान्य मानसिक परेशानियां, जैसे कि डिप्रेशन है, एंजाइटी डिसऑर्डर है, इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर है, या स्ट्रेस रिलेटेड अदर डिसऑर्डर्स है, ये करीब के 12% लोगों में पाए जाते हैं। तो टोटल अगर हम बात करें तो करीब के 14 से 15% लोगों में भिन्न तरह के मानसिक रोग पाए जाते हैं।
0: मतलब 14 से 15% लोग मानसिक स्वास्थ्य की गड़बड़ी से जूझ रहे होते।
1: और इसमें समस्या ये है कि ट्रीटमेंट गैप बहुत बड़ा है। जो हमारा नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे हुआ था उसमें ये पाया गया 90.6% लोगों को कभी भी मानसिक रोगों के लिए जो पीड़ित हैं उनको इलाज नहीं मिल पाता।
0: ये गंभीर बात है,
1: ये गंभीर बात
0: है। तो जरूरी है इस पर बात करना और जरूरी है इसका इलाज लेना। अच्छा डॉक्टर साहब, मानसिक स्वास्थ्य पर इन दिनों चर्चा भी बहुत है और लगातार, ऐसा क्या आपके सोच में या जानकारी में है कि मानसिक स्वास्थ्य से जो संबंधित रोगी हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है, और क्या कारण इसका आप देखते हैं, क्यों ये समस्या इतनी ज्यादा होती जा रही है इस समय, इन दिनों?
1: मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं काफी मात्रा में बढ़ रही है। अगर हम देखें आंकड़े तो जो आंकड़े हमें 2010, 12, 15 के मिलते हैं उससे मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं काफी बढ़ी हैं। इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं।
0: अच्छा।
1: एक अगर जो सिग्निफिकेंट कारण मुझे पिछले 3-4 वर्ष में नजर आता है वो है कोरोना वायरस की वजह से जो महामारी आई। कोविड महामारी के बाद अलग अलग तरह की मानसिक समस्याएं बढ़ी हैं।
0: अच्छा।
1: उसके अलावा हम पहले जैसे ओवरऑल हम अगर देखें तो हमारी लाइफस्टाइल में चेंजेस आए हैं, हमारे समाज में ट्रांसफॉर्मेशन आया है, अलग अलग तरीके से बदलाव आए हैं, और वो उनमें से कई कारण ऐसे हैं जो मानसिक बीमारियों को बढ़ा रहे हैं। पहले ज्वाइंट फैमिलीज का ट्रेंड था, पहले हम रिलीजियस एक्टिविटी में अलग तरीके से पार्टिसिपेट करते थे, पहले हम बाहर की दुनिया में खेल कूद करके या लोगों के घर जाके लोगों से मिल के बात करते थे, और जब से कोरोना वायरस आया एक तरह से तब तक हमारी दुनिया मोबाइल की तरफ अधिक सीमित हुई है, और मोबाइल की दुनिया जो है वो अपने आप में कई चीजें बढ़ा देती है, प्रॉब्लम बढ़ा देती है।
0: आपका कहना है कि जो सोशल मीडिया से जो हमारा इतना अधिक संपर्क है या मोबाइल से इतना ज्यादा कॉन्टेक्ट है, दिन में इतनी बार हम मोबाइल देखते हैं, इससे हमारा मानसिक स्वास्थ्य खराब होता है।
1: जी, तो कोरोना वायरस से अलग अलग तरीके की समस्याएं बढ़ी, किसी ने अपने परिवारजनों को खोया, किसी की आजीविका प्रभावित हुई, और बच्चों के साथ जो सबसे बड़ी समस्या आई क्योंकि उन्हें बाहर जाने का अवसर नहीं मिला,
0: बिल्कुल
1: पेरेंट्स ने ही रोका उन्हें घर के अंदर, और उसके कारण उनकी जो सोशल स्किल्स डेवलप हो सकती थी वो कम हुई, कई बच्चे पढ़ाई में पीछे हुए, और जो मोबाइल का असीमित उपयोग उस फेज में चालू हुआ उसकी वजह से कई सारी समस्याएं आज तक चली आ रही हैं। अगर हम आत्महत्या के आंकड़ों की बात करें तो 2018 के अंदर 134,000 लोगों ने आत्महत्या की वजह से जान गंवाई।
0: अच्छा,
1: 2019 में आंकड़ा 139,000 पे पहुंचा।
0: अच्छा,
1: पर जब कोरोना वायरस आया तो वो आंकड़ा सिग्निफिकेंटली पिछले 3 साल में काफी बढ़ा है। 2020 में वो आंकड़ा पहुंचा 153,000 के ऊपर, 2021 में पहुंचा 164,000 के ऊपर, और जो हालिया नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़े आए हैं उस हिसाब से 171,000 लोगों ने 2022 के अंदर अपने प्राण आत्महत्या की वजह से गंवाए हैं।
0: अच्छा,
1: तो अगर आप देखें 2018 से लेकर 2022 तक तो हम 134,000 से 171,000 तक पहुंच चुके हैं, जो कि काफी चिंताजनक है।
0: बिल्कुल, तो ये जो आपने बात की कि एक गलत कदम उठाना, अपने जीवन को समाप्त करने की कोशिश करना, जाहिर सी बात है कि ये भी मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा विषय है। अक्सर यूं होता है कि हम सुनते हैं कि कहीं ऐसी घटना हुई तो हम सुनते हैं कि उनके आसपास के लोग या जो भी उस व्यक्ति से जुड़ा व्यक्ति बताता है कि अभी तो 2 घंटे पहले सब कुछ ठीक था, आधे घंटे पहले तो सब कुछ ठीक था, अचानक ही कर लिया। तो वो कौन सी स्थिति होती है जो अचानक ऐसा एक व्यक्ति करता है, और दूसरी बात, क्या वाकई कोई लक्षण नहीं होता, सामान्य जीवन चल रहा होता है और एक व्यक्ति अचानक आत्महत्या कर लेता है?
1: नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। आमतौर पे सुसाइड करने वाला व्यक्ति प्लान करके सुसाइड करता है, ये बस उसके मन की भावनाएं हम समझ नहीं पाते, शायद हम सुसाइड के जो वार्निंग साइंस है उनको नहीं समझ पाते, जो परिवारजन है या जो उसके मित्र है, और इस वजह से टाइमली उसका रोकथाम नहीं हो पाता। कई बार ऐसा होता है कि जो सुसाइड करने वाला व्यक्ति है वो अलग अलग तरह के संकेत दे रहा होता है, वो कई बार ऐसी बातें कर रहा होता है कि मेरी मरने की इच्छा कर रही है, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं, तो ऐसी कोई भी अगर बातें करे तो हमें गंभीरता से लेना चाहिए। उसके अलावा कई बार वो ऐसा कह रहा होता है कि मेरे अगर नहीं रहा तो आप ये काम कर लेना, या अपने रिश्तेदारों को कोई और सजेशन दे रहा होता है, कई बार उसे उसकी विशलिस्ट होता है कि मरने के पहले मैं क्या क्या काम करके जाऊं, तो कई बार उस तरह की गतिविधियां कर रहा होता है, किसी को जाके थैंक यू बोल रहा होता है कि आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया, किसी को हो सकता है जाके अपने नोट्स दे रहा हो कि मैं ये दे के जाऊं, तो मरने के अलग अलग संकेत कई बार वो दे रहा होता है,
0: उसको हम देख नहीं पाते हैं,
1: हम समझ नहीं पाते, उसके व्यवहार में परिवर्तन आ रहा होता है, वो समाज से कई बार कटा कटा रह रहा होता है, या जब उससे बात करने की कोशिश की तो वो उस हिसाब से जवाब नहीं दे रहा, उसकी पर्सनैलिटी में चेंजेस हमें दिखाई देते हैं, जो उसकी प्लानिंग है उसे हम समझ नहीं पाते, और ऐसे कई सुसाइड केसेस होंगे उसकी एक तरह से अगर हिस्ट्री देखें तो हमें मिलेगा कि हाँ ये बात कह रहा था, ये ऐसी बात कह रहा था, ये ऐसी बात कह रहा था, शायद इसके मन में ऐसा था कि मरना चाह रहा है,
0: बिल्कुल,
1: पर उस समय हम शायद पकड़ नहीं पाए।
0: लेकिन बहुत छोटे संकेत हैं। अमूमन कोई आदमी कह देता है ऐसी जिंदगी से क्या फायदा, कह देता है एक आदमी,
1: उसे भी गंभीरता से लेना चाहिए,
0: लेकिन उसे गंभीरता से लेना चाहिए, वही मैं कहने जा रही थी कि बहुत एक साधारण सी पंक्ति सुनाई पड़ती है ये, लेकिन हो सकता है कि उस व्यक्ति के भीतर कुछ बहुत गहरी घुटन हो जिसकी प्रतिक्रिया इस तरह से निकल रही
1: है। एक तरह से हम कहते हैं, अभी एक नया कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं गेट कीपर ट्रेनिंग। गेट कीपर एक तरह से वो लोग हैं जो समाज के अलग अलग वर्गों से आते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, एम्प्लॉय हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, नर्सेज हो सकती हैं। अगर उन्हें ये ट्रेनिंग दी जाए कि भाई ये सुसाइड के वार्निंग साइंस है, अगर आपको इनमें से कोई भी ऐसा लगता है कि किसी के अंदर है तो आपके कान अलर्ट हो और आप उसे आगे समझा पाए, खुद से रोक पाए या दूसरों की मदद कर पाए। जैसे मान लीजिए नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स है, NDRF है, SDRF है, वो भी एक तरह से उस गेटकीपर का ही पार्ट है। मान लीजिए उन्होंने किसी इंडिविजुअल को बचाया फ्लड में से या किसी और चीज से, और उस फ्लड में या उस जो डिजास्टर था उसमें उसका कुछ नुकसान हुआ, हो सकता है ऐसे व्यक्ति में जिसका नुकसान हुआ है पर जिसे बचाया जा सका, उसके मन में भी आत्महत्या के विचार है,
0: बिल्कुल
1: ठीक है, तो उसका जो साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड है, मानसिक जो उसे हम रिलीफ दे सकते हैं, उसका प्रयास की ट्रेनिंग एक तरह से बहुत वाइड लेवल पे होनी चाहिए। तो अगर उसकी वाइड लेवल पे ट्रेनिंग होगी तो लोगों को मानसिक स्वास्थ्य की वैल्यू भी समझ आएगी और ये भी वो जज कर पाएंगे कि क्या इस इंसान में कोई सुसाइड के विचार हैं। और अगर हैं तो उसकी देखभाल भी की जानी चाहिए।
0: तो मतलब सिर्फ बचा लेना आवश्यक नहीं है, उसके बाद एक ध्यान रखने की भी आवश्यकता है कि किस मानसिक स्थिति से एक व्यक्ति,
1: जैसे मान लीजिए एक आदमी ने डूब कर आत्महत्या की कोशिश की, गोताखोरों ने उसे बचा लिया, ठीक है, बचा के उन्होंने वापस उसके घर छोड़ दिया, पर उसके जो सुसाइडल विचार है वो अभी भी चलते आ रहे हैं। वो अगले दिन वापस गया और अगले दिन वापस डूब गया और इस बार नहीं बचा पाए। तो जब समाज के हर सेक्शन को मानसिक स्वास्थ्य की वैल्यू समझ आएगी, को हमारे सोसाइटी में एक मैकेनिज्म होगा कि भाई ये आदमी को खतरा है, इसकी इस तरीके से देखभाल की जानी चाहिए।
0: बिल्कुल, तो ये बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया कि एक जागरूकता हर इंसान, समाज में जितने भी लोग हैं उनके भीतर होनी चाहिए। और थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि ये समय जो है, ये जो दौर है कम से कम सोशल मीडिया का, इसमें हर इंसान को कहने की बहुत जल्दी है और बहुत शौक, सुनने वाले लोग कम हो गए हैं। सुनना बहुत जरूरी है, कोई व्यक्ति क्या कह रहा है, उसके ऊपर क्या गुजर रही है, वो क्या महसूस कर रहा है, इन बातों को खामोश होकर सुनने की आवश्यकता बहुत गहरी है, तभी फिर हम मानसिक स्वास्थ्य की बात कर सकेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, जो नशे की प्रवृत्ति है ये भी लगातार बढ़ती जा रही है, इसका संबंध भी मानसिक स्वास्थ्य से है?
1: नशा एक तरह से मानसिक रोग है जी। अगर कोई भी व्यक्ति नशे पर निर्भर है या वो अत्यधिक नशा कर रहा है, वो एक मेंटल डिसऑर्डर है, जिसे हम कहते हैं मेंटल डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू साइकोएक्टिव सब्सटेंस।
0: अच्छा,
1: जो नशा है वो दिमाग के अंदर कुछ बायोलॉजिकल चेंजेस करता है, बायोकेमिकल चेंजेस करता है, जिस वजह से इंसान नशे का आदि हो जाता है। कई बार क्या होता है कि इंसान को कोई और मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं, जैसे कि एंजाइटी है या डिप्रेशन है या टेंशन ही है, और वो सोचता है कि शायद नशा करने से ये समस्याएं कम होगी क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता कम है, तो उसे ये समझ नहीं आता है कि इसके लिए मुझे साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए या साइकाइट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, वो नशे की तरफ चला जाता है। नशा करने से तनाव का कोई लॉन्ग लास्टिंग फायदा नहीं मिलता, पर होता क्या है कि पहले तो सिर्फ थोड़ा बहुत तनाव या अवसाद या एंजाइटी थी, अब उससे एक बड़ी समस्या उसने खुद पैदा कर ली है कि वो नशे का आदी हो गया है।
0: बिल्कुल।
1: और नशे के आदी होने के बाद तो समाज में कई सारी समस्याएं बढ़ती हैं, क्राइम बढ़ता है, एक्सीडेंट बढ़ते हैं, परिवार टूटते हैं, आजीविका चली जाती है, और पूरे समाज पर इसका विकृत प्रभाव पड़ता है। तो नशा किसी समस्या का हल नहीं है, नशा अपने आप में एक बड़ी समस्या है।
0: बिल्कुल।
1: और अगर आप नशे को बीमारी के रूप में देखेंगे तभी हम उस व्यक्ति को उचित इलाज दिला पाएंगे।
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि अगर नशे के पदार्थों की वजह से दिमाग में कुछ बायोकेमिकल चेंजेस हुए हैं तो उन्हें दवाइयों से ठीक करना आवश्यक है। सिर्फ काउंसलिंग से या बातों से ठीक करना कई बार संभव नहीं है।
0: तो जो नशे की लत है इसको एक मानसिक रोग की तरह देखा जाए, है ना, एक सामान्य बात नहीं है कि आपने यूं ही कोई नशा कर लिया। ये आपके भीतर, अगर आप किसी भी नशे पर डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है और आपको उपचार की आवश्यकता है। अच्छा, सामान्य तौर पर डॉक्टर साहब, कोई भी इंसान अपने मानसिक रोग पर चर्चा नहीं करना चाहता, और अगर उसको कोई ऐसी दिक्कत है तो वो डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहता, या ऐसे उसके मन में कुछ विचार आते हैं कि लोग मुझे पागल समझेंगे, है ना, या चिकित्सा के समय उसको इस प्रकार की भ्रांति होती है कि पता नहीं किस तरह का ट्रीटमेंट होगा, क्या किया जाएगा मेरे साथ, तो इन भ्रांतियों पर आप क्या कहेंगे और क्यों नहीं जाकर डॉक्टर से बात कर पाता कोई व्यक्ति?
1: देखिए, मानसिक रोगों के प्रति, मानसिक रोग विशेषज्ञों के प्रति और मानसिक रोग की दवाइयों के प्रति लोगों में बहुत सी भ्रांतियां हैं और इससे समाज का बहुत नुकसान हो रहा है। इन भ्रांतियों का निराकरण बहुत आवश्यक है। और मानसिक रोग वैसे ही हैं जैसे कि शारीरिक रोग है। मानसिक रोग एक तरह से जो हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है, ब्रेन या दिमाग, उसके रोग है। तो जैसे किसी को लीवर, किडनी, हार्ट की कोई बीमारी हो सकती है, वैसे दिमाग से संबंधित रोग किसी को भी हो सकता है। अगर किसी को डिप्रेशन हो रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो कमजोर है। किसी को अगर हार्ट अटैक आ रहा है इसका मतलब भी नहीं वो कमजोर है। बीमारियां किसी को भी हो सकती है, सही जानकारी मिलना अति आवश्यक है। मानसिक रोगों के प्रति जो भ्रांतियां हैं वो अलग अलग किस्म की हैं। कई लोग ये मानते हैं कि शायद जादू टोना करने से ठीक हो जाएंगे। कई लोग इसे भूत प्रेत की बाधा मानते हैं। कई लोग ये मानते हैं कि ये कमजोरी की निशानी है। कई लोग मानते हैं कि शायद शादी करने से ठीक हो जाएगी। कई लोग ये मानते हैं कि जो मानसिक रोग के प्रति दवाइयां दी जा रही हैं उनसे नुकसान बहुत ज्यादा होता है। मेरे पास बहुत रेगुलरली वो पेशेंट आते हैं जिन्हें अगर थोड़ी सी भी दवा दी जाए तो वो बड़े घबरा जाते हैं कि पता नहीं हम दवाइयों से क्या क्या नुकसान हो जाएंगे। जबकि वास्तविकता यह है कि दवाइयों के फायदे बहुत ज्यादा हैं। और नुकसान बहुत कम है, और नुकसान वो है जो साइकेट्रिस्ट जानता है। तो वो आमतौर पे दवाई के जो बेस्ट ऑप्शन होते हैं पेशेंट के लिए उस वही दवाई देने की कोशिश करता है। तो जो अगर नियमित इलाज मनोचिकित्सक के मार्गदर्शन में चलेगा उसके साइड इफेक्ट नहीं होंगे। पर कई बार क्या होता है, पेशेंट ने दवाई लेनी चालू की, वो आया ही नहीं दिखाने वापस, और वही दवाइयां सालों साल खाता रहा। तो ऐसी कंडीशन भी नहीं आनी चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: अगर रेगुलर फॉलोअप रहेगा, रेगुलर ट्रीटमेंट चलेगा, तो मरीज को फायदा अवश्य होगा। तो इन भ्रांतियों को दूर करने के लिए एक तरह से, जैसे आज हम ये मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, इसका मेन टारगेट ही जागरूकता फैलाना और भ्रांतियों को दूर करना है।
0: दूर करना है, बिल्कुल। तो इसमें कोई संकोच की बात नहीं है। जैसे शरीर का कोई भी अंग बीमार हो सकता है, उसी तरह आपका मस्तिष्क भी बीमार हो सकता है, और उसी तरह उसका इलाज हो सकता है।
1: मानसिक रोग शारीरिक रोगों की तरह ही है, उनका भी वैसा ही उपचार संभव है जैसा कि शारीरिक रोगों का है। तो अगर किसी को डिप्रेशन हो सकता है, वैसा ही है जैसा कि किसी को डायबिटीज हो सकता है, या किसी को ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, तो उनमें भी कई बार लंबा ट्रीटमेंट चल सकता है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी पेशेंट को हमने दवाई चालू की तो जीवन भर चलेगी। बीमारी की अवस्था के ऊपर, बीमारी के टाइप के ऊपर डिपेंड करता है कि दवाई कब तक देनी पड़ेगी। पर बहुत से मरीजों की दवाई बंद भी हो जाती है और उसके बाद कभी उनका वापस बीमारी नहीं आती है।
0: नहीं आती, बिल्कुल। अच्छा, मेरे मन में एक बात थी कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो आपकी दिनचर्या है उसमें परिवर्तन कर लें, या योग प्राणायाम करें, ध्यान करें, थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटीज बढ़ा लें, तो इससे भी बहुत आपके मानसिक स्वास्थ्य पर असर होता है। ये कारगर बातें होती हैं?
1: बिल्कुल। देखिए, जितना तनाव बढ़ता है उतने मानसिक स्वास्थ्य समस्या या मानसिक रोग बढ़ते हैं। तो कोई भी चीज जो हमें रिलैक्स करती है, जो हमारे दिमाग को रिलैक्स करती है, वो जैसे योगा हो, प्राणायाम हो, एक्सरसाइज हो, जो हमें हमारी समस्याओं से निजात दिलाती है, वो लाभकारी हो सकती है। तो मानसिक रोगों से बचने के भी यही मेन उपाय हैं कि हमें स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए, हमें व्यायाम को टाइम देना चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए, हमें योगा प्राणायाम मेडिटेशन की ओर ध्यान देना चाहिए, हमें मोबाइल का उपयोग सीमित करना चाहिए,
0: बिल्कुल,
1: और हमें नींद को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। अगर हम नींद कम करते हैं तभी मानसिक रोग बढ़ते हैं।
0: अच्छा,
1: तो इन सबको अगर ध्यान देंगे तो हम बेहतर मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त कर सकेंगे।
0: बिल्कुल। आपने मोबाइल की बात की तो मुझे बच्चों की याद हो आई कि बच्चे जो हैं उनका जो एडिक्शन है मोबाइल को लेकर, वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। किस तरह की जो नकारात्मक प्रभाव है वो हो रहे हैं उन पर?
1: देखिए, कोई भी टेक्नोलॉजी है उसके कुछ फायदे होते हैं और कुछ नुकसान भी होते हैं। अगर मोबाइल नहीं होता तो शायद कोविड काल में पढ़ाई बंद हो जाती।
0: बिल्कुल।
1: तो कुछ हद तक तो मोबाइल ने हमें राहत दी, पढ़ाई हो पाए, बच्चे पास हो पाए।
0: जी।
1: प्रॉब्लम ये है कि जब हमने असीमित उपयोग चालू कर दिया, असीमित उपयोग मतलब अब मोबाइल का जो ड्यूरेशन है वो 6 से 8 घंटे का हो गया प्रति बच्चा, तो वो चिंताजनक है। उसे रेस्ट्रिक्ट करना बड़ा आवश्यक है।
0: बिल्कुल।
1: जो ऑनलाइन गेम्स हैं, ऑनलाइन शॉपिंग है, ये एक तरह से आजकल एडिक्शन की कैटेगरी में आने लग गए हैं।
0: तो बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है?
1: बिल्कुल प्रभावित हो रहा है। और अगर किसी के भी बच्चे को अत्यधिक मोबाइल की लत लग रही है, तो उसे मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक के पास जाकर उपचार कराना चाहिए।
0: तो बहुत ही सुंदर तरीके से आपने बताया। अब मैं ये जानना चाह रही थी कि हम कितना भी कहें, लेकिन जब तक हमें स्वयं को नहीं लगता कि ये दिक्कत हमारे साथ है, तब तक हम डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। और जो मनोरोग है या मानसिक स्वास्थ्य जो है, वो एक ऐसा कोई बुखार तो है नहीं कि थर्मामीटर लगाया और एक टेम्परेचर नज़र आ गया और हम डॉक्टर के पास चले गए। ये तो नहीं हो पाता मानसिक रोगी के साथ। तो क्या ऐसा कोई उपाय है कि घर बैठे हम खुद अपनी जांच कर सकें कि क्या हमें परामर्श की आवश्यकता है, डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता है?
1: मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने अभी एक नया मोबाइल प्ले स्टोर का ऐप लॉन्च किया है, जिसका नाम है मनहित।
0: मनहित
1: एक बहुत अच्छा ऐप है। उसके बनाने में मैं, हमारे डिपार्टमेंट की डॉक्टर समीक्षा, नेशनल हेल्थ मिशन के डिप्टी डायरेक्टर और एम्स के साइकाट्रिस्ट और मध्य प्रदेश के बाहर के भी साइकाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट सबने सहयोग करके उस ऐप को बनाया है। वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है।
0: जी।
1: वो ऐप इस मामले में यूनिक है कि उसके अंदर एक तो अवेयरनेस मटेरियल काफी है, वीडियोस हैं अवेयरनेस के, जो भ्रांतियां हम जिनकी बात कर रहे थे उनको निराकरण करने के लिए भी अवेयरनेस मटेरियल है। उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है सेल्फ असेसमेंट।
0: अच्छा।
1: जैसे आप अगर उसमें अपना सेल्फ असेसमेंट करना चाहते हैं तो क्वेश्चनेयर आता है, आपने क्लिक किया, अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, उसका आप अपना रिप्लाई डालते जाते हैं और वो फिर आपको आपका स्कोर बताता है उस क्वेश्चनेयर का।
0: अच्छा।
1: कि अगर आपका स्कोर सामान्य है तो ये बताता है कि आपका स्कोर सामान्य है, अगर आपका स्कोर सामान्य से अधिक है या आप मानसिक अस्वस्थता की श्रेणी में आ रहे हैं तो ये बताता है कि भाई आपको ये तकलीफ लग रही है, अब या तो आप टेलीमानस के माध्यम से संपर्क कर लीजिए काउंसलर को, या मन कक्ष जो खुले हुए हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, या मेडिकल कॉलेजेस के जो साइकेट्री डिपार्टमेंट है वहां जाके संपर्क कीजिए ताकि आप अपनी समस्या का समाधान खोज पाए।
0: तो मनहित इसकी आपने चर्चा की।
1: और जो दूसरा है इसके अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक स्कीम है जिसे कहते हैं टेलीमानस, उसमें एक हेल्पलाइन नंबर है। मनहित जो है आपको बीमारी है या नहीं है इसकी जानकारी दे सकता है, पर अगर आपको कुछ प्रॉब्लम निकलती है तो उसके सॉल्यूशन के रूप में टेलीमानस है। तो टेलीमानस का जो हेल्पलाइन नंबर है डेट इज 144 16
0: 144 16 16
1: ये 24/7 हेल्पलाइन है, हर रीजनल लैंग्वेज में अवेलेबल है, हर स्टेट में इंडिया के संचालित हो रही है। इसमें ट्रेंड काउंसलर्स हैं, साइकाट्रिस्ट भी हैं, जो आपकी प्रॉब्लम गंभीरता से सुनेंगे और उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे।
0: बिल्कुल।
1: अगर उसका समाधान ऑनलाइन या फोन के माध्यम से नहीं भी हो पाया तो वो आपको सलाह देंगे कि आप मनकक्ष जो कि जिला अस्पताल में है या मेडिकल कॉलेज के जो साइकेट्री डिपार्टमेंट है वहां जाके अपनी समस्या का उपचार कराएं।
0: तो आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि हमें ये समस्या है या नहीं, हमारा मानसिक स्वास्थ्य कैसा है, उस रोग की ओर हम बढ़ तो नहीं रहे, ये हम अगर स्वयं जांच करना चाहते हैं तो मनहित ऐप के जरिए हम ये पता कर सकते हैं।
1: मेरा मानना ये है कि मध्य प्रदेश के हर नागरिक के मोबाइल में टेलीमानस का नंबर सेव होना चाहिए और मनहित ऐप इंस्टॉल होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो वो मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी होगा, उसकी अवेयरनेस की सामग्री भी पढ़ पाएगा, सेल्फ असेसमेंट भी कर पाएगा, और कोई अगर रोग की श्रेणी में आ रहा है तो उसका टेलीमानस के माध्यम से निराकरण भी होगा।
0: और जो मानसिक स्वास्थ्य है उसमें सबसे बड़ी जो चुनौती है वो यही है कि इंसान बोल नहीं पाता है, क्योंकि मन में एक घुटन की अवस्था है, वो बोल नहीं पा रहा, वो परेशान है, या मान लीजिए तनाव की स्थिति है। कोई युवाओं में कितने इस तरह की बातें होती हैं जो वो न अपने दोस्तों से कर पा रहे हैं, न माता पिता से कर पा रहे हैं, न भाई बहन से कर पा रहे हैं, तो एक अपरिचित व्यक्ति से जो उनकी सहायता के लिए खड़ा है उससे वो कह सकते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है।
1: बिल्कुल। क्या होता है कई बार मानसिक तौर पर परेशान व्यक्ति जाके सेवाएं लेने में संकोच महसूस करता है,
0: बिल्कुल,
1: और अगर उसके मोबाइल के अंदर ही कुछ होगा असेसमेंट टूल तो वो ज्यादा इजीली ले पाएगा, और अगर उसका स्कोर ज्यादा आता है तो अपने घर वालों को भी बता पाएगा कि देखिए मेरे को ये समस्या थी, मैंने ये स्कोर किया है इसके अंदर, इसमें समस्या ज्यादा आ रही है तो आप मुझे ले चलिए, तो घर वाले भी उसे अति गंभीरता से लेंगे और उसका उपचार करा पाएंगे।
0: बिल्कुल। तो हम ये चाहते हैं डॉक्टर साहब कि चलते चलते हमारे जो सुनने वाले हैं उनके लिए आप कोई एक अच्छा सा संदेश दें आज के दिन इस विषय को लेकर।
1: मानसिक स्वास्थ्य के महत्व को समझना बहुत आवश्यक है। अगर हम मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे तो हम समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को और अपने कर्तव्यों को अच्छे से निभा पाएंगे, और हम समाज के लिए अधिक उपयोगी होंगे, हमारी प्रोडक्टिविटी भी अपनी वर्क प्लेस पे बेस्ट होगी।
0: तो श्रोताओं, आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर हमने डॉक्टर जेपी अग्रवाल जी से बातचीत की और बहुत विस्तार से उन्होंने इस विषय पर आपको जानकारी दी। उम्मीद है आज की ये जो जानकारी है वो आपके लिए लाभप्रद होगी और ये जानकारी आप अपने जानने वालों तक भी जरूर पहुंचाएंगे। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। चलते चलते आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की परिकल्पना की अदिति गौड़ ने, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का था, और आपके साथ थी मैं आपकी दोस्त सुनीता सिंह। अब इस कार्यक्रम से इजाजत दें। नमस्कार, सुनते रहिए 90.8 MHz पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्रवंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।
1: साहस की बुलंद शुरुआत से लेकर आसमान की असीम ऊंचाइयों तक 8 अक्टूबर को पूरा देश मना रहा है भारतीय वायुसेना का 94वां वायुसेना दिवस।
2: वर्ष 1947-48, 1965 और 1971 के ऐतिहासिक युद्धों से लेकर ऑपरेशन मेघदूत और ऑपरेशन सफेद सागर तक विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायु सेना ने हर पल कर दिखाया है अदम्य पराक्रम, अत्याधुनिक तकनीक और सर्वोच्च बलिदान।
1: तो मध्य प्रदेश के जाबाज युवाओं, क्या आप तैयार हैं? बादलों को चीर कर देश का मान बढ़ाने के लिए तो बनिए अग्निवीर वायु, हासिल कीजिए वो मुकाम जो जिंदगी भर की पहचान बन जाए और गर्व से कीजिए भारत माँ की सेवा।
2: भर्ती और पात्रता से जुड़ी पूरी जानकारी के लिए
1: 15 एयरमैन चयन केंद्र के इंस्टाग्राम पेज 15ASC_भोपाल और आधिकारिक वेबसाइट IAFRecruitment.edcil.co.in पर विजिट करें।
2: नभस प्रशम दीप्तम।
3: जय हिंद।
4: आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी तो वो है जो हालात को बदल दे। ऐसे ही महान वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद पर 90.8 मेगाहर्ट्ज। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
5: नब्बे दशमलव 8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। श्रोताओं, आप समय मिला सकते हैं, दिन के ठीक 10 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।

परिक्रमा कार्यक्रम में श्रोताओं आप सुनते हैं भोपाल शहर की साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों की जानकारी। तो आइए सबसे पहले चलते हैं दुष्यंत संग्रहालय। दस्तक संवाद की ओर से दुष्यंत कुमार स्मारक पांडुलिपि संग्रहालय के राजसदन में कवि सुनील कुमार शर्मा के कविता संग्रह सिलिकॉन की शिराओं में शब्द का विमोचन एवं परिचर्चा आयोजित की गई। साहित्यकार राजेश जोशी की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हुआ। वक्ताओं ने संग्रह की कविताओं पर गहन विचार रखे। प्रकाश शुक्ल, निरंजन क्षोत्रिय और नलिन रंजन सिंह ने कविताएं आधुनिक डिजिटल दौर में मानवीय संवेदनाओं और तकनीक के रिश्तों को नई दृष्टि से रेखांकित करती हैं, इस प्रकार प्रस्तुत की। कार्यक्रम का संचालन माया मिश्रा ने किया। साहित्य प्रेमी और प्रबुद्ध जन इस आयोजन में उपस्थित थे।

अब समाचार नृत्योत्सव 10 के नृत्य मंजरी कलापीठ द्वारा 10 अक्टूबर को लिटिल वैलेट ट्रूप हॉल में सांस्कृतिक कार्यक्रम नृत्योत्सव 10 का आयोजन होगा। गुरु एवं नृत्य निर्देशक नीरजा विशाल सक्सेना के निर्देशन में ये उत्सव होगा। ये भारतीय शास्त्रीय नृत्य की गरिमा, गुरु शिष्य परंपरा और कला के प्रति समर्पण को समर्पित है। आयोजन में 92 नृत्यांगनाएं भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रस्तुतियां देंगी। नृत्य नाटिका मैं हूं नृत्य का काव्यात्मक और काव्यात्मक संचालन है। मुख्य अतिथि राजीव वर्मा, शेखर कराटकर और गुरु भारती होम्बल होंगे। आयोजन में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित कमल जैन भी मौजूद रहेंगे। पारंपरिक पुष्पांजलि से शुरू होने वाले इस कार्यक्रम में हस्त अलारिपू के तहत एक हाथ की 28 और दोनों हाथों की 23 मुद्राओं का प्रदर्शन होगा। मैं तो नहीं जाऊं और कहां छुपे हैं नंदलाला पर कृष्ण भक्ति की कलाकार प्रस्तुति देंगे। देविकी नंद मुकुंद में श्री कृष्ण की लीलाएं, श्री रामचंद्र में प्रभु श्री राम की स्तुति, शिवो हमें जीवन मृत्यु का संतुलन विशेष होगा। रंगमंच पर अभिनय और नृत्य अभिव्यक्ति के माध्यम से नवरस के नौ भावों को साकार किया जाएगा। आइए अब चलते हैं आपको लेकर के भारत भवन में। बच्चों को स्क्रीन की आभासी दुनिया से दूर कर पुस्तकों की जीवंत संसार से जोड़ने के लिए भारत भवन में शनिवार 10 अक्टूबर से बोकारो फेस्टिवल ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर का आयोजन किया जा रहा है। उत्सव 4 से 14 वर्ष के बच्चों की कल्पना शक्ति और सृजनात्मकता को नई उड़ान देगा। शुक्रवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में भारत भवन के न्यासी सचिव शिवशेखर शुक्ला, संयोजक वेंकटेश मुथुस्वामी और स्वाति राय ने आयोजन की जानकारी दी। शुक्ला ने बताया कि इस उत्सव का मुख्य उद्देश्य बच्चों में पठन पाठन की आदत का विकास करना और उनकी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाना है। बच्चों की उम्र और रुचि को ध्यान में रखते हुए सभी कार्यक्रमों को 5 अलग अलग आयु वर्गों में बांटा गया है। उत्सव के दौरान कुल 42 सत्र आयोजित होंगे, जिनमें कहानी ट्री, ऑडिटोरियम सत्र, रचनात्मक कार्यशालाएं और डूडल वॉल जैसी गतिविधियां शामिल हैं। देश विदेश के 24 चित्रकार और कहानीकार बच्चों से सीधा संवाद करेंगे। इनमें डेनमार्क, पुर्तगाल और नीदरलैंड्स के वक्ता भी हिस्सा लेंगे। अब समाचार सरोजिनी नायडू कॉलेज से। सरोजिनी नायडू शासकीय कन्या स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय में सेवा संकल्प अभियान 2026 के अंतर्गत 9 अक्टूबर 2026 को हिंदी विभाग द्वारा स्वरचित कहानी लेखन प्रतियोगिता का सफल आयोजन हुआ। इस प्रतियोगिता का मुख्य विषय शासन की योजनाओं से लाभदायक परिवर्तन रखा गया। महाविद्यालय के प्राचार्य की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। हिंदी विभाग अध्यक्ष ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य छात्राओं को शासन की हितकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करना है। डॉक्टर कृष्ण बिहारी राय के संयोजन में आयोजित इस प्रतियोगिता में 25 छात्राओं ने सहभागिता की। छात्राओं ने मौलिक कहानी लेखन के साथ साथ अपनी कहानियों का पाठ भी किया।

आइए अब चलते हैं रविंद्र भवन में। रिश्तों के बनते बिगड़ते ताने बाने और संवेदनाएं, नाटक के मंचन के दौरान दर्शकों को मंच पर ये भाव देखने को मिले। रविंद्र भवन के मुक्ताकाश सभागृह में बुधवार शाम 14वें करुणेश नाट्य समारोह की शुरुआत नाटक सहयात्रा के मंचन के साथ हुई। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से द राइजिंग सोसाइटी आर्ट एंड कल्चर द्वारा आयोजित सांस्कृतिक संध्या में कला प्रेमियों की खासी मौजूदगी रही। रत्नाकर मतकरी द्वारा लिखित इस नाटक का निर्देशन पुणे से आए रंगकर्मी विद्या निधि बनारसी ने किया। कहानी जिंदगी के उतार चढ़ाव, आपसी रिश्तों और संवाद के बीच सह यात्रा के वास्तविक अर्थों को सहजता से रेखांकित करती है। मंच पर कलाकारों के जीवंत अभिनय और सधे हुए निर्देशन ने दर्शकों को अंत तक बांधे रखा। समारोह में आयोजकों ने बताया कि नाट्य कला को बढ़ावा देने और रंगमंच की समृद्ध परंपरा को दर्शकों तक पहुंचाने के उद्देश्य से इस समारोह का आयोजन किया जा रहा है।

और अब आपको हम बताते हैं मौसम का हाल। भोपाल में मानसून की विदाई के बाद दिन में गर्मी और रात में हल्की ठंडक अब महसूस होने लगी है। इस साल अक्टूबर के शुरुआती दिनों में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री तक पहुंच गया है। पिछले 20 वर्षों के आंकड़े बताते हैं कि इस अवधि में दो बार ही पारा 18 डिग्री और एक बार इससे नीचे आया है। हालांकि पिछले साल भी 9 अक्टूबर को न्यूनतम तापमान 18 डिग्री दर्ज हुआ था, इसलिए इस बार की गिरावट सामान्य नहीं है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि मानसून की विदाई के बाद बादल कम होने से रात में धरती की गर्मी तेजी से निकलती है। इसे विकिरणीय शीतलन कहते हैं। दिन में जमीन गर्म होती है जबकि रात में बादलों का आवरण कम होने से तापमान गिरता है, जिससे दिन रात के तापमान में अंतर बढ़ता है। अक्टूबर का ये समय मानसून और सर्दी के बीच का संक्रमण काल है। दिन में तेज धूप और रात में ठंडक इसी का असर है। एक दो दिन तापमान गिरना सर्दी की शुरुआत नहीं मानी जा सकती। तो श्रोताओं, मौसम का ये मिजाज कुछ इस तरह से चल रहा है। आप अपनी सेहत का ध्यान रखें। इसी के साथ अब कार्यक्रम परिक्रमा यहीं पर संपन्न होता है। नमस्कार। नब्बे दशमलव 8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं देशभक्ति गीत।

0: साहस की बुलंद शुरुआत से लेकर आसमान की असीम ऊंचाइयों तक 8 अक्टूबर को पूरा देश मना रहा है भारतीय वायुसेना का 94वां वायुसेना दिवस।
1: वर्ष 1947-48, 1965 और 1971 के ऐतिहासिक युद्धों से लेकर ऑपरेशन मेघदूत और ऑपरेशन सफेद सागर तक विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायु सेना ने हर पल कर दिखाया है अदम्य पराक्रम, अत्याधुनिक तकनीक और सर्वोच्च बलिदान।
0: तो मध्य प्रदेश के जाबाज युवाओं, क्या आप तैयार हैं? बादलों को चीरकर देश का मान बढ़ाने के लिए तो बनिए अग्निवीर वायु, हासिल कीजिए वो मुकाम जो जिंदगी भर की पहचान बन जाए और गर्व से कीजिए भारत माँ की सेवा।
1: भर्ती और पात्रता से जुड़ी पूरी जानकारी के लिए
0: 15 एयरमैन चयन केंद्र के इंस्टाग्राम पेज 15ASC_भोपाल और आधिकारिक वेबसाइट IAFRecruitment.edcil.co.in पर विजिट करें।
1: नभः स्पृशं दीप्तम्।
2: जय हिंद।

हिंदुस्तान हमारा स्वाधीनता संघर्ष की महाकथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अनुसूचित जाति और जनजाति सहित सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं।

0: अरे काका मजा आ गया, क्या बात है। लोकल ट्रेन, अरे काका कितनी ऊंची बिल्डिंग है मुंबई में, बाप रे बाप।
1: हाँ बेटा, मैं इस मुंबई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 150 साल पुरानी मुंबई की बात कर रहा हूँ। उस समय ऐसी बिल्डिंग तो नहीं थी, लेकिन इस मुंबई में एक रईस मुसलमान परिवार रहा करता था। अच्छा? और उसमें एक लड़का पैदा हुआ, उसका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी।
0: अरे काका बदरुद्दीन तैयब जी तो नाम सुना है मैंने।
1: हाँ, जैसा कि तुम जानते हो कि पढ़ाई लिखाई करके वो 16 साल का हुआ और सन 1860 में वो बैरिस्ट्री पास करने इंग्लैंड गया।
0: अच्छा, मुंबई से इंग्लैंड।
1: 150 साल पुराना इंग्लैंड।
2: यार बदरुद्दीन, लगता है हम इंग्लैंड में नहीं यार, हिमालय की वादियों में आ गए। हिमालय की वादियों में।
3: बिल्कुल ठीक कहा यार तुमने।
2: ये यार कहां हमारे बंबई का प्यारा मौसम और कहां ये इंग्लैंड की जानलेवा ठंड।
3: अरे जनाब, आईने में जाकर अपनी नाक देखिए,
4: ठंड के मारे कैसी टमाटर जैसी लाल हो रही है।
2: अरे हाँ, नाक का जिक्र किया तुमने तो मुझे याद आया, अरे कॉन्ग्रेचुलेशन डियर।
3: अरे किस बात के लिए भला?
2: अरे मुल्क की और अपने वालदेन की नाक ऊंची करने के लिए।
3: अच्छा अच्छा, समझा। छोड़ो भी अब उस किस्से को।
2: अरे वाह, छोड़ो कैसे, लेक्चर कंपटीशन में अव्वल आए हो अव्वल।
3: अरे वो तो बस यूं ही।
2: जिनकी मादरी जबान अंग्रेजी, उन अंग्रेजों को अंग्रेजी जबान में ही पटकनी दे दी और कहते हैं बस यूं ही। क्या दाए मिया।
3: अरे भाई, इंग्लैंड में रहते हमें 150 साल भी तो हो गया है।
2: तुम कुछ भी कहो बदर, लेकिन कमाल तुमने किया है, केवल 150 साल। अरे सिर्फ 150 साल में अंग्रेजी, लैटिन और फ्रेंच, बाप रे बाप, तीन तीन जबानों पर कमाल की पकड़ की है तुमने।
3: भाई वल्ला। नहीं, कमाल कुछ नहीं यार, बस मन किया सीखने का, मेहनत की और सीख ली।
2: हम तो ना सीख पाए।
0: डेढ़ साल में अंग्रेजी, लैटिन और फ्रेंच, तीनों भाषाओं पे कमांड।
1: अरे सल्लू, हमने पहले ही कहा था कि मियां बदरुद्दीन कमाल के होनार थे। अब दिमाग तो अल्लाह के फजल से तेज पाया ही था और दिमाग तेज बना भी रहा, पर नजरें कमजोर हो गई उनकी। सो मियां बदरुद्दीन को पढ़ाई बीच में ही छोड़कर मादरे वतन यानी हिंदुस्तान लौटना पड़ा।
3: अच्छा।
1: लेकिन सेहत ठीक होने पर बदरुद्दीन पढ़ाई जारी रखने के खातिर फिर लौट गए इंग्लैंड।
0: अरे वाह, ये हुई ना बात।

0: दिन कहिए जनाब, सेहत कैसी है?
1: थैंक्स।
2: सेहत तो बिल्कुल उम्दा है। तुम सुनाओ, क्या हाल चाल है यहाँ का?
0: यहाँ भी सब उम्दा ही है। कल ही फिरोज शाह मेहता जी से एक मीटिंग में हिंदुस्तान

0: ओमान के महारानी विक्टोरिया के ऐलान के बाद हिंदुस्तान पर हुकूमत गोरों की हो गई।
1: ठीक कहा भाई, उस दिन फिरोज शाह मेहता जी ने भी अपनी तकरीर में यही कहा था कि महारानी विक्टोरिया अब हिंदुस्तान की भी महारानी हो गई है।
0: कितनी शर्मनाक बात है ये हम सब के लिए।
2: पर यार हम लोग कर भी क्या सकते हैं यहाँ?
0: जो कुछ होना है और जो कुछ करना है वो हमें ही करना होगा। रियासतें और रियासतदार तो महारानी के इस ऐलान से कि अब उनकी रियासतों को अंग्रेज नहीं हड़पेंगे खुश हैं। उनसे उम्मीदें लगाना फिजूल है।
1: अरे भाई, जनता गदर के बाद पहले से ही सहमी हुई है, और फिर कौन करेगा?
0: मैंने अभी तो कहा ना तुमसे कि जो कुछ करना है हमें ही करना होगा।
2: यहाँ गोरों के मुल्क में रहते हुए
0: क्या दिक्कत है इसमें? गोरे हजारों मील दूर रहकर हमारे मुल्क में घुसकर हम पर हुकूमत करने की हिमाकत कर सकते हैं, तो हम उन्हीं के मुल्क में घुसकर इस हिमाकत पर उनको सबक सिखाने का काम क्यों नहीं कर सकते?
1: वाह भाई वाह। भाई देख रहा हूं कि तुम्हारे दिल में आजादी का दिया टिमटिमाने लगा है।
0: नौरोजी, बैनर्जी और मेहता जी की जलाई मशाल को दिया तो ना कहो मेरे दोस्त।
1: मुल्क के हालातों से मन में बेचैनी होने लगी है, लेकिन इसका असर हमारी तालीम पर ना हो इसका ख्याल हमें रखना चाहिए।
0: बजा फरमाते हैं जिल्ले इलाही, बाखुदा तालीम बेहतर ढंग से ही ली जाएगी, कोई बेनियाजी ना बरती जाएगी।
3: आमीन
1: सुम्मा आमीन।
3: दरबार की आज की कार्रवाई बर्खास्त। शब बख़ैर।
4: अरे काका फिर क्या हुआ?
5: तालीम बेहतर ढंग से हासिल की बदरुद्दीन ने, और कानून की पढ़ाई पूरी करके बंबई लौट आए।
4: फिर से बंबई लौट आए?
5: हाँ भाई, वो फिर बकाला शुरू कर दी।
4: अच्छा अच्छा।
6: क्या मैं भीतर आ सकती हूँ?
0: कौन? बेगम लाहौल विलाकुवत, हमारे कमरे में आने के लिए आपको कब से इजाजत की दरकार होने लगी?
6: दूसरे कमरों की बात और है, दफ्तर दफ्तर होता है आखिर। किसी मुवक्किल से बात चल रही हो और हम यूं ही दफ्तर में घुसे चले आए, क्या ये ठीक होगा?
0: मुवक्किल? कह तो आप ऐसे रही हैं जैसे हालात से नावाकिफ हो। क्या समझे हम इसे कि आप भी हमारा मजाक
6: उड़ाएं? तौबा तौबा, हम आपका मजाक उड़ाएंगे भला? आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया?
0: अरे आप तो नाहक ही नाराज होने लगी।
6: हमारी नाराजगी बेवजह नहीं थी। खैर छोड़िए।
0: छोड़ दिया। हाँ अब बताइए मसला क्या है जो आपने दफ्तर की ओर रुख किया?
6: कुछ खास नहीं, बस यूं ही आजकल आप काफी उलझे नजर आते हैं, खासकर तब जब आप अदालत से लौट कर आते हैं। क्या वहाँ कोई परेशानी है?
0: हाँ परेशानी है, लेकिन मेरे अकेले की नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तानी वकीलों की है।
6: भला ऐसी कौन सी परेशानी है?
0: हाई कोर्ट में सभी जज विलायती हैं, और वे हिंदुस्तानी वकीलों के मुकाबले विलायती वकीलों को ज्यादा तरजीह देते हैं।
6: ये तो सरासर नाइंसाफी है।
0: हालात तो यहाँ तक खराब है कि तमाम काबिलियत के बावजूद ये म्यूनिसिपैलिटी, रेलवे, डाक्टर और तमाम कंपनियों के मालिक हिंदुस्तानी वकीलों को विलायती वकीलों के मुकाबले कमतर समझते हैं, क्योंकि वो सारी विलायती कंपनियां हैं ना।
6: ओहो, ये तो परेशानी की बात है।
0: परेशानी सहने की भी एक हद होती है। फिरोज शाह मेहता को ही देख लीजिए, आजकल हिम्मत हार कर घर पर बैठे हुए हैं। वाडिया तो उकता कर सब कुछ छोड़ छाड़ कर पहले ही काठियावाड़ चले गए थे।
6: क्या वहाँ सब ठीक ठाक चल रहा है?
0: ठीक चल रहा है कि क्या बात है, वहाँ तो वो नाम और पैसा दोनों ही कमा रहे हैं।
6: आपने क्या सोचा है?
0: छोटी मोटी परेशानियों से घबराने वाला आदमी नहीं है बदरुद्दीन। मैं यहीं डटा रहूंगा और हालात का मुकाबला करूंगा। आई एम सन ऑफ इंडिया, भारत पुत्र हूँ मैं।
6: आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू डियर।
0: थैंक यू।
7: अल्लाहू अकबर।
5: हाँ तो सल्लू, ऐसा था बदरुद्दीन का जज्बा मुल्क के लिए और मुल्क वालों के लिए।
4: वाह,
5: अपनी लगन, मेहनत, विषय की पकड़, सूझबूझ और सॉलिसिटर

0: भाई कमरुद्दीन की मदद से बद्रुद्दीन ने धीरे धीरे पैर जमा लिए।
1: वाह काका वाह।
2: तो एडवोकेट बदरुद्दीन तैयब जी साहब ने आखिरकार तमाम मुश्किलातों पर फतह पा ही ली।
3: इस फतह में आप बराबरी से शरीक हैं बेगम, मुबारकबाद कबूल करें।
2: या अल्लाह, हम किस तरह शरीक हैं भला? बिना वकालत किए आपकी बीवी होने के नाते वकीलन भी कहलाती हैं जरूर, पर वो अलग बात है।
3: अरे आप साथ रहकर हौसला अफजाई ना करती तो मुमकिन है कि हम भी हालात का सामना ना कर पाते। भाई
2: इतने मक्खन के बाद तो आपकी पेश की हुई मुबारकबाद दोनों हाथों से थामना पड़ेगी, वरना चिकनाई पर खड़ी फिसल कर गिर जाएगी।
3: इस वक्त कौन आ गया दाल भात में? मूसल चंद।
4: अरे भाई बद्रुद्दीन,
2: बग्घी से तो मूसल चंद नहीं, आपके मित्र गोपी चंद उतर रहे हैं।
3: नाम भले ही गोपी चंद हो, काम तो मूसल चंद का ही किया है। आया भाई।
5: अस्सलाम वालेकुम मियां।
3: वालेकुम अस्सलाम। आइए आइए।
5: ये मूलचंद कौन है मियां? क्या कोई नया मुवक्किल है?
3: उसे छोड़ो मियां, आप तो ये बताइए आना कैसे हुआ?
5: बस तुम्हारी याद खींच लाई यार दोस्त।
3: बैठो बैठो बैठो, रहे नसीब। हुजूर ने याद तो फरमाया।
5: अरे सोचा मुलाकात के साथ दो दो बातें भी हो जाएंगी। अरे हाँ, ये बताओ कि क्या तुम्हें बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर जॉर्ज कैंप बेल के नए फतूर के बारे में पता है कि नहीं है?
3: अब घोरों की तो आदत हो गई है, कोई ना कोई नया गोल खिलाते रहते हैं। अरे अब कौन सा नया गोल खिलाया है इस कैंप बेल ने?
5: अरे सुनोगे तो हैरान रह जाओगे।
3: अच्छा सुना लीजिए अब आप। बस
5: हुजूर, कैंप बेल साहब ने प्रस्ताव रखा है कि वकालत और वकीलों वाला सिस्टम ही खत्म कर दिया जाए।
3: वल्लाह क्या दिमाग पाया है हुजूर ने, काबिले तारीफ सच में।
5: अरे आपका दिमाग चल गया है हुजूर मेरे ख्याल से तो। अरे वो आपके पेट में लात मारने का प्रस्ताव लेकर आया है और आप हैं तो उसके दिमाग की तारीफ कर रहे हैं, भाई हद है।
3: पहली बात तो ये है कि कोई किसी के पेट पर लात मारने की कुव्वत नहीं रखता।
5: अच्छा,
3: अरे सब अल्लाह मियां का दिया हुआ खाते हैं यार। रही दूसरी बात, तो मियां बिलाशक दिमाग तो कमाल का पाया है उसने, आप कुछ भी कह लीजिए।
5: अरे मैं कुछ समझा नहीं।
3: मैं समझाता हूँ। देखिए, अंग्रेजों को शुभा है कि हिंदुस्तानी वकील, खासकर इंग्लैंड में पढ़े लिखे बैरिस्टर, उनकी हुकूमत के दुश्मन साबित हो सकते हैं।
5: इससे ज्यादा अहमकाना ख्याल दूसरा हो ही नहीं सकता।
3: ना ना ना ना, इसे अहमकाना ख्याल समझना आपकी भूल है हुजूर। कैंपबेल बहुत तेज दिमाग शख्स है, इसीलिए आने वाले समय के खतरों को वो पहले ही पहचान चुका है।
5: मैं अभी भी कुछ नहीं समझ पाया हूँ यार।
3: देखिए, वकील जनता के हिमायती बनकर जनता को उनके हकों के बारे में जगा सकते हैं।
5: अच्छा ठीक है।
3: बहस मुबाहिसे और तकरीरों में हम वकील ही तो माहिर होते हैं मियां।
5: वाकई कमाल का दिमाग पाया पट्टे ने।
3: नमूने के लिए देख लीजिए, बंगाल में जो उमेश चंद्र बनर्जी, मनमोहन घोष और लालचंद घोष कर रहे हैं, तीनों वकील,
5: और यहाँ मुंबई में फिरोज शाह मेहता, तेलंग और खुद आप जनता को जगाने का काम जो कर रहे हैं, तीनों वकील।
3: अब मेरी छोड़िए, मैं कुछ खास नहीं कर पा रहा हूँ।
5: अरे खास ही कर रहे हैं आप जनाब, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जनता के हर आंदोलन के पीछे आप वकीलों का ही तो हाथ है, और किसका है?
3: लगता है मियां अंदर करवा गई मानोगे।
5: अच्छा चलते हैं, खुदा हाफिज।
3: अरे जा रहे हो?
5: अरे
3: अरे तो चाय
5: नहीं नहीं
3: थोड़ा सा
5: बस।
3: अरे
0: हाँ तो सल्लू, देखा तूने?
1: हाँ काका,
0: बदरुद्दीन सिद्धांत के पक्के और आत्मसम्मानी शख्स थे।
1: ये तो दिखा काका।
0: बहुत गंभीर सौम्य बदरुद्दीन साहब को किसी किस्म की कोई लत नहीं थी, सिगरेट शराब से कोसों दूर।
1: अच्छा।
0: सारे काम नियम पूर्वक करते और समय के पावन थे, आत्मसम्मान तो जैसे कूट कूट कर भरा था उनमें।
1: वाह।

0: ये मिस्टर पार्सन क्या समझते हैं अपने आप को?
1: क्या हो गया मिस्टर पार्सन को और आप इतनी जल्दी कैसे लौट आए?
0: अरे नया आया है बम्बई में जज बनकर, इसलिए सोचा कर्सी विजिट दे आऊं।
1: ठीक किया आपने।
0: पर मिस्टर पार्सन ने कहाँ ठीक किया?
1: आखिर किया क्या उसने?
0: कहने लगा इस वक्त बिजी हूँ।
1: अरे ये तो सरासर बदतमीजी है।
0: वही तो मैं कह रहा हूँ।
1: पता नहीं ऐसे लोगों को क्या देखकर जज बना दिया है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने।
0: अरे रंग देखकर, गोरा होने से बड़ी और कोई काबिलियत नहीं होती उनकी नजर में।
1: ओह इसीलिए आप इतनी जल्दी चले आए?
0: मैंने भी कह दिया बहुत काम रहते हैं मेरे पास, बहुत बिजी हूँ, जल्दी आया वहाँ से मैं।
1: ठीक किया आपने।
0: उसे उसकी गलती का एहसास हो गया था शायद, इसीलिए मेरे पीछे पीछे बग्गी तक चला आया और लगा घोड़ों की तारीफ करने, पर मैंने उसकी बातों पर कान नहीं दिया, चला आया वहाँ से मैं।
2: वाह काका, बड़े स्वाभिमानी थे बदरुद्दीन साहब।
3: हाँ सल्लू, ऐसे स्वाभिमानी थे बदरुद्दीन तैयब जी साहब। बकाला धीरे धीरे जमने लगी थी, अब उन्होंने सार्वजनिक कामों में भी खुलकर हिस्सा लेना शुरू कर दिया। सन 1872 में एक नया कानून पास हुआ जिसके तहत 1873 में बम्बई कॉरपोरेशन के कुछ सदस्यों का चुनाव हुआ।
4: अरे बदरुद्दीन साहब आदाब अर्ज़ है, आइए।
5: आदाब।
4: बदरुद्दीन साहब सुना है आप चुनाव में खड़े हो रहे हैं?
0: ठीक सुना है आपने।
4: हमारे लायक कोई काम हो तो बताइए।
0: अरे हम तो सिर्फ खड़े हो रहे हैं मियाँ, सारे काम तो आप लोगों को ही संभालने हैं।
2: अरे इत्मीनान रखिए, माशाल्लाह फतह हमारी होगी।
0: आमीन आमीन।
4: बदर साहब तो इजाजत दीजिए, आज ही से काम में लगना होगा।
3: हाँ तो सल्लू, बम्बई कॉरपोरेशन का चुनाव उन्होंने शानदार तरीके से जीता, फिर 1882 बम्बई व्यवस्थापिका परिषद में नामजद हुए।
2: अरे वाह।
3: पर खराब सेहत होने के कारण इस्तीफा देना पड़ा, पर जब तक रहे तब तक भारतीयों के अधिकारों की जोरदार तरीके से वकालत करते रहे।
2: वाह वाह।
0: बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के सदर होने के नाते एक और अहम जिम्मेदारी हमारे कंधों पर आ पड़ी है।
1: सदर हैं तो जाहिर है कि जिम्मेदारियां भी होंगी ही।
0: ठीक फरमाती हैं आप, पर इस बार एक अलग किस्म की और ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी एसोसिएशन के कंधे पर आ पड़ी है।
1: ऐसी कौन सी जिम्मेदारी है भला जिसने आपको इतना परेशान किया हुआ है?
0: परेशान नहीं है हम, परंतु जिम्मेदारी तो आखिर जिम्मेदारी होती है ना, जिसे अच्छे से निभाना होता है। एसोसिएशन के झंडे तले इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन भी होगा और चुनाव भी।
1: फिर तो आपकी मसरूफियत आने वाले दिनों में बहुत बढ़ जाएगी।
0: ठीक फरमाती हैं आप।
1: हमारा तो कहना है कि जो भी करना है जरूर करिए, पर पहले खुद की सेहत का ख्याल रखिए।
0: अच्छा अच्छा, आज आपने वो आपकी हमेशा वाली कहावत नहीं दोहराई, क्या है वो, एक से क्या,
1: एक से सेहत हजार
0: नियामक।
1: हाँ हाँ, उड़ा लीजिए मजाक।
3: इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए खूब धूमधाम से तैयारियां की गईं, पर आखिरी वक्त बदरुद्दीन साहब को किसी काम से कैम्बे जाना पड़ा और वे कांग्रेस के पहले अधिवेशन में भाग न ले पाए। दूसरे अधिवेशन में भी वे उपस्थित न रह पाए क्योंकि उनकी सेहत ठीक नहीं थी।
1: लीजिए आ गए आपके दोस्त।
0: आइए आइए, पूरे 3.5 मिनट लेट हैं आप, सुनाइए क्या हाल है।
4: 3 मिनट और 41 सेकंड। खैर हमारे हाल चाल तो ठीक है, पर सुना है अंग्रेजों को ठीक नहीं है।
0: जो सबके हाल खराब किए रहते हैं उनके हाल खराब है क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया?
4: ये पूछो कि क्या नहीं हुआ है, कांग्रेस का गठन हुआ है
0: तो
4: अरे अंग्रेज सरकार फिक्रमंद हो गई है, उन्हें शक होने लगा है कि कांग्रेस आगे चलकर उनके लिए मुसीबत का कारण न बन जाए।
0: अरे इन गोरों को तो हम हिंदुस्तानियों की हर बात पर शक होता है,
4: और इस शक का इलाज लुकमान हकीम के पास भी नहीं होता है।
0: अरे इलाज करना किसे है, कांग्रेस के अपने मकसद है और वो उन मकसदों के लिए काम करेगी।
4: अरे सुनने में तो और बहुत कुछ आया है।
0: और क्या सुना है आपने?
4: ब्रिटिश गवर्नमेंट उसी पुरानी फूट डालो राज करो वाली नीति चला रही है, पता नहीं कितना सच है कितना झूठ।
0: 100% सच, 100%।
4: क्या कह रहे हो?
0: लॉर्ड डफरिन बम्बई आकर मुझसे मिलकर गए हैं, दोनों कौमों को बांटने वाली भड़काऊ बातें, बोले कांग्रेस तो हिंदुओं की संस्था है और हम लोग कैसे झांसे में आ गए। देखिए
4: आपने क्या जवाब दिया?
0: हमने साफ साफ कह दिया कि मियां डफरीन साहब आपकी दाल यहां नहीं गलने वाली, और बेहतर तो यही होगा कि इस मकसद से आप कहीं और बात करने न जाएं, अगर आपको अपनी इज्जत प्यारी है तो।
4: आपकी बात समझ में आई या यूं ही सर के ऊपर से निकल गई?
0: देखो मियां, कुछ तुम्हें 12 साल बाद भी नलकी से बाहर निकालो तो टेढ़ी ही निकलती हैं। और कुछ मर्दूत तो नलकी को भी टेढ़ा कर देती हैं।
4: भैया दुम वाली मिसाल तो खूब दी आपने।
0: कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में सेहत खराब होने की वजह से हम नहीं जा पाए, पर पता चला कि उसमें मुस्लिमों ने भाग नहीं लिया था।
4: हाँ भाई, हमें भी इस बात का पता चला था और सुनकर बहुत अफसोस हुआ था इस पर।
3: कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन का अध्यक्ष सर्वसम्मति से बदरुद्दीन तैयब जी को चुना गया। अध्यक्ष पद से उन्होंने बड़ा प्रभावशाली, ओजस्वी और मर्मस्पर्शी भाषण दिया। जाति के आधार पर आपस में भेदभाव ना करने की सलाह दी और बंटवारे के खतरों से आगाह किया।
5: कौन है भाई, कौन है?
2: अरे साहब, आपकी चिट्ठी आई है पोस्टमैन ने।
5: ओ, आता हूँ, ठहरो एक मिनट, मैं जाता हूँ, तुम बैठो।
3: ये लीजिए।
5: कैसे हो?
0: डियर मिस्टर बदरुद्दीन तैयब, प्लीज मेक ऑफ दी ऑफ जज बेगम, बेगम मुबारकबाद। अरे भाई, अदालत में एक जगह खाली है जज की, सरकार ने हमें जज बनने का ऑफर दिया है।
1: क्या? अरे सच में?
0: खत का मजमून तो यही कह रहा है भाई।
1: फिर क्या सोचा है आपने?
0: अब सोचना क्या है, कबूल करेंगे और क्या।
1: क्या अंग्रेज सरकार की मुलाजिमत करेंगे?
0: बेगम, इसका दूसरा पहलू देखिए। इन गोरे जजों के हाथों तो हिंदुस्तानियों को इंसाफ मिलने से रहा। कम से कम एक काला हिंदुस्तानी दूसरे काले हिंदुस्तानियों को इंसाफ तो दिला पाएगा।
1: बात तो एकदम सच है, पर क्या ये मुमकिन होगा?
0: देखिए बेगम, आदमी उसूलों का पक्का बना रहे बस, फिर कुछ नामुमकिन नहीं रहता। किसी ताकत या खतरे से टकरा जाने की ताकत आ जाती है उसमें। कल ही अपना जवाब भिजवा दूंगा।
1: कल क्यों, आज क्यों नहीं? भूल गए पुरानी सीख, काल करे सो आज कर।
2: अरे वाह, तो काका बदरुद्दीन तैयब जी जज बन गए।
3: और थोड़े ही समय में बदरुद्दीन तैयब जी साहब जज के रूप में खासे मशहूर हो गए।
2: वो तो होना ही था काका। क्या बात है?
3: काबिलियत और स्वतंत्र विचारों के दम पर उन्होंने अच्छे अच्छों को कायल कर दिया। उनकी निष्पक्षता और न्याय प्रियता की चर्चा हर कहीं हर कोई करता था।
2: वाह।
4: अरे कमाल कर दिया बदर साहब, आपने तो वाकई कमाल कर दिया। काफी लोगों की निगाहें लगी थी इस मसले पर, किस पेचीदा मामले पर, देखें जज साहब क्या फैसला सुनाते हैं।
0: हमें भी इस बात का भली भांति एहसास था।
4: अच्छा, ऐसे फैसले करते समय कुछ घबराहट होती है क्या?
0: यकीन करो, ऐसा कुछ नहीं होता।
4: अगर हम आपकी जगह होते तो हमें तो घबराहट होती, क्यों भाई?
0: हमारे ख्याल से एक बात बहुत साफ होनी चाहिए हर जज के दिमाग में।
4: और वो क्या है?
0: यही कि इंसाफ केवल कानून की किताबों में ढूंढने से नहीं मिलता, क्योंकि उनमें केवल दफाएं और उन दफाओं में दी जाने वाली सजाएं होती हैं बस।
4: तो इंसाफ कहाँ रहता है?
0: आपके साफ दिलो दिमाग में रहता है। दिल की गहराई से आवाज उठे और उसकी ताईद आपका दिमाग भी करे तो समझिए कि आप इंसाफ की राह पर हैं।
3: वकालत और फिर जज का काम करने के अलावा बदरुद्दीन साहब ने राजनीति, शिक्षा और समाज सुधार के कामों को भी बखूबी किया।
4: अच्छा।
3: जज रहते हुए भी उनकी इजलास में एक बार लोकमान्य तिलक की जमानत का मामला भी आया।
4: अरे वाह। अच्छा।
3: लोकमान्य तिलक। हाँ सुनो, तो किस्सा कुछ यूं था कि जून 1897 में रैंड नाम के एक अंग्रेज की हत्या कर दी गई।
4: आधा वर्जे बदर साहब, और क्या हाल चाल है?
0: आधा वर्जे, आजकल तो ये रैंड मर्डर का मामला बहुत गर्म है
4: भाई। पता चला है कि अंग्रेज बहुत बौखलाए हुए हैं। हुकूमत के खिलाफ इसे साजिश समझ रहे हैं।
0: ठीक कहा आपने, ये अशांति और उत्तेजना फैलाने के इल्जाम में सरकार ने तिलक के खिलाफ वारंट जारी कर दिया है।
4: लेकिन ये रैंड मर्डर से तिलक जी का क्या संबंध?
0: बात आपको समझ में आ गई है पर सरकार को नहीं मिया।
4: मामला क्या है?
0: अरे देखिए, तिलक एक अखबार निकालते हैं, केसरी, पता है ना आपको?
4: जी जी जी।
0: तिलक ने शिवाजी मेले में शिवाजी द्वारा की हत्या को उचित ठहराने वाले भाषण दिए, हाँ, और यही भाषण केसरी में छाप दिए। बहाना मिल गया सरकार को।
4: सरकार तो नाइंसाफियों की हदें पार कर रही है।
0: तिलक की जमानत की दरखास्त 2 बार खारिज की जा चुकी है। तीसरी बार मेरे सामने मेरी अदालत में जमानत के लिए दरखास्त दाखिल की गई है, मालूम है आपको?
4: तीसरी बार? अरे साहब, आपको तो कोई परेशानी नहीं होगी ना?
0: बिल्कुल नहीं, कल जमानत की दरखास्त पर फैसला सुनाना है।
3: और अगले रोज फैसला सुनाया बदरुद्दीन तैयब जी साहब ने।
0: ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। तिलक एक सज्जन और विद्वान पुरुष हैं, लिहाजा सुनवाई के वक्त वे अदालत नहीं पहुंचेंगे, ऐसा शक करने की कोई वजह नहीं बनती। जमानत मंजूर न होने की दशा में इंसाफ का गला घुट जाएगा, क्योंकि मुमकिन है कि 1 महीने बाद वे बेगुनाह साबित हो जाएं। इसीलिए जमानत मंजूर करना ही न्याय संगत होगा।
3: निष्पक्ष न्यायाधीश के रूप में बदरुद्दीन की ऐसी धाक थी सल्लू कि इस फैसले के खिलाफ बोलने का साहस किसी को ना हुआ, अंग्रेजों को भी नहीं हुआ। इस महान देशभक्त और समाज सुधारक ने 11 साल जज के रूप में गुजारे और 19 अगस्त 1906 को इंग्लैंड में हार्ट फेल से वे गुजर गए। सारा देश शोक में डूब गया। हमारा शत शत नमन।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हिंदुस्तान हमारा। निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग। अब हमें आज्ञा दीजिए, फिर मिलेंगे एक और क्रांतिवीर की जीवन गाथा लेकर कार्यक्रम हिंदुस्तान हमारा।

0: फिर से हो रहा।
1: जननायक स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी तो वो है जो हालात को बदल दे। ऐसे ही महान वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद पर 90.8 मेगाहर्ट्ज़। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
3: साहस की बुलंद शुरुआत से लेकर आसमान की असीम ऊंचाइयों तक 8 अक्टूबर को पूरा देश मना रहा है भारतीय वायुसेना का 94वां वायुसेना दिवस।
4: वर्ष 1947-48, 1965 और 1971 के ऐतिहासिक युद्धों से लेकर ऑपरेशन मेघदूत और ऑपरेशन सफेद सागर तक विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायु सेना ने हर पल कर दिखाया है अदम्य पराक्रम, अत्याधुनिक तकनीक और सर्वोच्च बलिदान।
3: तो मध्य प्रदेश के जाबाज युवाओं, क्या आप तैयार हैं? बादलों को चीर कर देश का मान बढ़ाने के लिए तो बनिए अग्निवीर वायु, हासिल कीजिए वो मुकाम जो जिंदगी भर की पहचान बन जाए और गर्व से कीजिए भारत माँ की सेवा।
4: भर्ती और पात्रता से जुड़ी पूरी जानकारी के लिए
3: 15 एयरमैन चयन केंद्र के इंस्टाग्राम पेज 15ASC_भोपाल और आधिकारिक वेबसाइट IAFRecruitment.edcil.co.in पर विजिट करें।
4: नभास प्रशम दीप्तम।
5: जय हिंद।

भारत भवन में पधारे हुए सभी सिद्धिजनों को हृदय से नमन करूंगा, वंदन करूंगा। आज बुंदेली सस्थान में जो बहन अरुला पांडे जी के साथ में संगत कर रहे हैं, वो मेरी बाईं तरफ से जो दिख रहे हैं, जो आर्गन पर संगत कर रहे हैं, वही अमित गंगेले, आशीर्वाद जरूर प्रदान करते जाइए। एक बुंदेली जगत की बहुत बड़ी विभूति वीरेंद्र गुरु जी, जो हमेशा बुंदेली के लिए समर्पण भाव से काम करते हैं, आदरणीय वीरेंद्र गुरु जी। और जो पेट पर साथ दिया है आज भाई हर्ष लोधी, एक बहुत अच्छी बात है कलाकार हैं। और एक जो तबला पर संगत पैदा कर रहे हैं आदरणीय मधुरेंद्र आनंद जी, जो हमेशा बुंदेली के लिए समर्पण भाव से काम करते हैं। और जो ढोलक पर बहुत अच्छी संगत कर रहे हैं भाई अंकित गंगेले, इनके लिए भी आशीर्वाद प्रदान करें। और आज सहगायिका के रूप में पधारी हैं बहन उर्मिला पांडे जी के पास में विराजमान हैं गायत्री दुबे जी, और उन्हीं के बगल में विराजमान हैं अनामिका पांडे जी, क्योंकि गायकी के अलावा सभी का साथ बहुत जरूरी है। तो आप सबका समर्पण इस बुंदेली के लिए मैं सभी लोगों का हृदय से नमन करूंगा। आपके बीच राजेश तिवारी, जो पुनः सभी का वंदन और नमन करूंगा।

0: युद्धों से लेकर ऑपरेशन मेघदूत और ऑपरेशन सफेद सागर तक विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायु सेना ने हर पल कर दिखाया है अदम्य पराक्रम, अत्याधुनिक तकनीक और सर्वोच्च बलिदान।
1: तो मध्य प्रदेश के जाबाज युवाओं, क्या आप तैयार हैं? बादलों को चीरकर देश का मान बढ़ाने के लिए तो बनिए अग्निवीर वायु, हासिल कीजिए वो मुकाम जो जिंदगी भर की पहचान बन जाए और गर्व से कीजिए भारत माँ की सेवा।
0: भर्ती और पात्रता से जुड़ी पूरी जानकारी के लिए
1: 15 एयरमैन चयन केंद्र के इंस्टाग्राम पेज 15ASC_भोपाल और आधिकारिक वेबसाइट IAFRecruitment.edcil.co.in पर विजिट करें।
0: नभास प्रशम दीप्तम।
2: जय हिंद।

0: आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।
1: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: स्वामी जी की द्वितीय अमेरिका यात्रा 1899 के लिए तैयारियां की जा रही थी। वे अपने एक मित्र से मिलने कलकत्ता गए हुए थे और लौटते समय कुछ क्षण बाग बाजार में बलराम बाबू के घर रुक गए थे। बेलूर मठ तक साथ चलने के लिए उन्होंने अपने एक मित्र प्रियनाथ सिंह जी को बुलवा भेजा। उनके आने पर स्वामी जी का और उनका इस प्रकार वार्तालाप हुआ।
1: आज एक मजेदार बात हुई। मैं एक मित्र के घर गया था। उन्होंने एक चित्र बनवाया था। विषय था कुरुक्षेत्र में अर्जुन कृष्ण संवाद। श्री कृष्ण रथ में खड़े हैं, हाथ में रास है और अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं। उन्होंने मुझे ये चित्र बताकर मेरी सम्मति मांगी। मैंने कहा ठीक ही है, किंतु जब वे नहीं माने तो उन्हें मुझे अपना ये प्रमाणिक मत बताना ही पड़ा कि उस चित्र में मुझे प्रशंसा योग्य कुछ नहीं दिखाई पड़ा। प्रथम तो श्री कृष्ण के युग का रथ आज के स्तूपाकार वाहनों के समान नहीं होता था, और दूसरे श्री कृष्ण की आकृति में भावों का नितांत अभाव था।
2: क्या उस युग के रथ स्तूपाकार नहीं होते थे?
1: क्या आप नहीं जानते कि बौद्ध युग के बाद इस देश की हर बात में एक प्रकार की व्यवस्था सी आ गई। प्राचीन राजागण स्तूपाकार रथों में कभी युद्ध नहीं करते थे। राजस्थान में आज भी कुछ रथ हैं जो उन प्राचीन रथों से कुछ मिलते जुलते हैं। यूनान की पौराणिक कथाओं में वर्णित रथों के आपने चित्र देखे हैं? उनमें दो पहिए होते हैं और इन पर पीछे से चढ़ा जाता है। हमारे रथ ऐसे ही थे। यदि चित्र के इन गौण अंगों का ही सही अंकन नहीं हुआ तो चित्र बनाने से क्या लाभ? ऐतिहासिक चित्र तभी उच्च कोटि का होगा जब उचित अध्ययन और गन्वेषणा के पश्चात वस्तु का वैसा ही चित्रण किया जाए जैसी वो उस युग में थी। यदि चित्र में यथार्थता नहीं है तो उसका कोई मूल्य नहीं। आजकल हमारे जो युवक चित्रकला के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं वे साधारणतया ऐसे होते हैं जिन्हें पढ़ाई में कोई सफलता नहीं मिली और जिनसे घर वाले भी निकम्मा समझकर निराश हो गए हैं। इन व्यक्तियों से आप कैसे कलाकृति की आशा कर सकते हैं? सुंदर चित्र बनाने के लिए उतनी ही प्रतिभा लगती है जितनी की एक श्रेष्ठ रूपक लिखने में।
2: तो फिर इस चित्र में श्री कृष्ण का चित्रण कैसा होना चाहिए था?
1: श्री कृष्ण का चित्रण वैसा ही होना चाहिए जैसे वे थे, गीता के मूर्त स्वरूप। उस समय वे किंग कर्तव्य विमूढ़, मोहग्रस्त और कर्मण्य दोषोपहत अर्जुन को धर्म का उपदेश कर रहे थे। इसलिए श्री कृष्ण की छवि से गीता का मूल तत्व अभिव्यक्त होना चाहिए।
2: वो कैसी छवि स्वामी जी? कहते कहते स्वामी जी ने अपनी मुख मुद्रा और भाव

0: रथ में कायर की भांति शिथिल और शोक मग्न होकर बैठ गया है, और श्री कृष्ण एक हाथ में कोड़ा लिए और दूसरे हाथ से रास खींचे अर्जुन की ओर थोड़ा सा मुड़ गए हैं। उनका शिशु सरल मुख स्वर्गीय प्रेम और सहानुभूति से दीप्त हो उठा है और वे अपने सखा को गीता का संदेश सुना रहे हैं। अब बताओ, गीता नायक के इस प्रकार के चित्र से मन में कैसे भाव जागृत होंगे?
1: ऐसे चित्र से श्री कृष्ण कर्मरत स्थित प्रज्ञ महान कर्मयोगी मालूम होंगे।
0: हाँ, बिल्कुल ठीक है। शरीर का एक एक अंग कार्यरत है और फिर मुख पर नील गगन की गंभीर शांति और प्रसन्नता व्याप्त है। यही तो गीता का मूल तत्व है, सब परिस्थितियों में शांत और स्थिर अनिद्विग्न रहते हुए शरीर मन और आत्मा ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देना। कर्म करते हुए भी जिसका मन शांत है और जब कोई बाह्य चेष्टा नहीं हो रही, तब भी जिसमें ब्रह्म चिंतन रूपी महान कर्म की धारा सतत बन रही है, वही मनुष्यों में बुद्धिमान है, वही योगी है, वही कर्म कुशल है।
2: इसी समय जो व्यक्ति नाव का प्रबंध करने गया था वो लौट आया और उसने सूचना दी कि नाव तैयार है। इसलिए स्वामी जी ने अपने मित्र से कहा,
0: चलो अब मठ चलें। तुम घर पर तो कहकर आए ही होगे कि मेरे साथ मठ तक जा रहे हो।
2: नौका तक जाते उनका वार्तालाप चलता ही रहा। स्वामी जी बोले,
0: फल की चिंता त्याग कर मन और आत्मा को प्रभु में लगाकर कर्म करना, अनंत कर्म करना। गीता के इस निष्काम कर्म योग का संदेश हर एक तक पहुंचाना चाहिए।
1: क्या यही कर्म योग है?
0: हाँ, यही कर्म योग है। पर बिना साधना के कोई सन्यासी नहीं बन सकता। चारों योगों को मधुर समन्वय जब तक नहीं हो पाता, तब तक किस प्रकार मन और आत्मा प्रभु में तल्लीन हो सकेगी?
1: साधारणतया ये धारणा हो गई है, गीता में कर्म से केवल वैदिक यज्ञों और धार्मिक अनुष्ठानों से ही तात्पर्य है और किसी अन्य प्रकार का कर्म निरर्थक है।
0: ये ठीक है, पर इस परिभाषा को विस्तृत करना होगा। तुम्हारी हर चेष्टा, एक एक सांस और मन में प्रतिक्षण उठने वाले एक एक विचार के लिए कौन उत्तरदायी है? क्या तुम स्वयं नहीं?
1: हूं भी और नहीं भी हूं। मेरे पास इसका कोई संतोषप्रद उत्तर नहीं है। सच तो यह है कि मनुष्य केवल निमित्त मात्र है, कर्म तो ईश्वर कराते हैं, और जब उनकी इच्छा और प्रेरणा से ये शुभाशुभ कर्म होते हैं तो मैं उनके लिए कैसे उत्तरदायी हो सकता हूं?
0: ठीक है, पर यह तर्क उस पर ही लागू होगा जिसे सिद्धावस्था प्राप्त हो गई है। जब कर्म से मन और चित्त शुद्ध हो जाता है और इसका ज्ञान हो जाता है कि सारे काम ईश्वर ही करा रहे हैं, तभी ऐसा कहने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, नहीं तो यह कोरी बकवास ही है।
1: क्यों? यदि किसी तर्क से यह धारणा निश्चित हो गई हो कि सब काम ईश्वर ही करा रहे हैं तो?
0: जिस क्षण ये दृढ़ धारणा हो जाती है, उस क्षण में किए गए कार्य के लिए ये युक्ति लागू की जा सकती है। पर ऐसी धारणा क्षण भर ही टिकती है, ज्यादा नहीं। अच्छा, जरा मनन करके तो देखो कि अपने दैनिक जीवन में ऐसे कितने काम हैं जिनके संबंध में ये कहा जा सकता है कि ये काम मैं स्वयं अहम भाव से नहीं कर रहा हूं। कब तक मनुष्य को इस बात की स्मृति रहती है कि ईश्वर ही ये सब कार्यकलाप करवा रहे हैं? किंतु इस प्रकार सतत चिंतन, मनन और अध्यवसाय से धीरे धीरे एक अवस्था आ जाती है जब अहम भाव नष्ट हो जाता है और उसके स्थान में प्रभु की स्थापना हो जाती है। तब तुम ये कह सकोगे कि अंतर्यामी प्रभु ही मुझसे ये सब करा रहे हैं। किंतु मित्र, यदि हृदय में अहंकार भरा हुआ है तो वहां ईश्वर के लिए स्थान ही कहां रह पाता है? तब हृदय में ईश्वर रह ही नहीं सकते।
1: पर दुष्कर्म की प्रेरणा भी तो ईश्वर ही देते हैं।
0: नहीं, कभी नहीं। इस तरह सोचना प्रभु का अनादर है।
1: मैं समझा नहीं स्वामी जी।
0: ईश्वर दुष्कर्म में किसी को प्रेरित नहीं करते। दुष्कर्म का कारण तो मनुष्य की आत्मतुष्टि की इच्छा है। यदि कोई ऐसा कहे कि ईश्वर सब कर्म कराते हैं और स्वेच्छा पूर्वक दुष्कर्म करता जाए तो उसका नाश अवश्यम भावी है। यही तो आत्म प्रवंचना का मूल है। क्या तुम्हें कोई सत्कर्म करने पर प्रसन्नता नहीं होती और फिर तुम उस सत्कार्य का श्रेय अपने को देने लगते हो? कहते हो ये मैंने किया, मैंने। ये मानवीय स्वभाव है। मनुष्य ऐसा कहे बिना नहीं रहेगा। किंतु ये कितना अनुचित है। अच्छे काम का श्रेय तो मनुष्य स्वयं ले ले और बुरे काम का दोष ईश्वर के सिर मढ़ दे। ये एक खतरनाक तर्क है।
1: थोड़ा और विस्तार से समझाइए स्वामी जी।
0: जिन्होंने वेदांत और गीता पढ़ ली पर उसका मर्म नहीं समझा, वे ही उस तरह की बात करते हैं। कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए, बल्कि ये मानना चाहिए कि हमारे भले काम तो भगवान की प्रेरणा से हुए और बुरे काम के लिए हम ही उत्तरदायी हैं। इससे परमात्मा में श्रद्धा और विश्वास जागृत होगा और पग पग पर उनकी असीम कृपा का अनुभव होने लगेगा। सच तो ये है कि अहम का निर्माण करने वाले हम ही हैं, कोई और नहीं। यही सत विवेक है, वही वेदांत है। इसलिए साधक को हमारे अच्छे काम तो परमेश्वर हमसे करवाते हैं और बुरे काम स्वयं प्रेरित हैं। चित्त शुद्धि का ये सबसे सरल मार्ग है। इसलिए वैष्णवों में ये द्वैत भाव इतना दृढ़ दिख पड़ता है। प्रारंभ में अद्वैत भाव प्राप्त कर लेना दुष्कर है।
1: ये तो बहुत कठिन काम है।
0: ढोंग और आत्म प्रवंचना बहुत खतरनाक है। अगर जानबूझकर कोई अपने को धोखा नहीं दे रहा है और किसी को यह दृढ़ विश्वास हो गया है कि नीच से नीच कृत्य भी ईश्वर की इच्छा और प्रेरणा से ही होता है, तो मेरा यह विश्वास है कि उस व्यक्ति से कोई नीच काम भविष्य में नहीं होगा। शीघ्र ही उसके मन के सब विकार नष्ट हो जाएंगे। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों पद्धति की पूजा हमारे देश में बौद्ध धर्म के अवनति काल में शुरू हुई, जबकि बौद्धों के अत्याचारों से त्रस्त होकर लोग छिप छिप कर वैदिक यज्ञानुष्ठान करने लगे। दो दो महीनों तक लगकर यज्ञ करने का अब उन्हें कोई अवसर ही नहीं मिल पाता था। इसलिए वे मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसकी रातों रात पूजा कर लेते और फिर पानी में उसे विसर्जित कर लेते, जिससे पूजा का कोई चिन्ह सवेरे शेष न रह जाए।
1: लोग क्या इतने डरे हुए थे कि छुप छुप कर पूजा करते थे?
0: हाँ, मनुष्य को एक मूर्त पार्थिव प्रतीक चाहिए। उसके बिना उसके हृदय को संतोष नहीं मिलता। इसलिए हर घर में रात की पूजा शुरू हो गई। फिर मनुष्यों की प्रवृत्तियां भी कुछ इंद्रिय सुख भोग की ओर झुकी। श्री रामकृष्ण कहा करते थे कि कुछ लोग घर में पीछे के दरवाजे से ही आते हैं। इसलिए जब उस युग के धर्माचार्यों ने देखा कि कुछ लोग अपनी दुष्ट वृत्तियों और दुष्ट स्वभाव के कारण धर्म विमुख हो गए हैं, धार्मिक क्रियाकलापों और यज्ञानुष्ठानों में भाग नहीं लेते हैं, तो उन्हें धीरे धीरे क्रम से धर्म और सदाचार के मार्ग पर लाने के लिए उन्होंने तांत्रिक पूजा प्रणाली का आविष्कार किया।
1: जब वे तांत्रिक पूजा में होने वाले नीच कर्म धर्म सम्मत और अच्छा समझकर करने लगे तो इससे उनकी दुष्ट प्रवृत्तियां कैसे नष्ट हुईं?
0: नहीं, अब उनकी ये प्रवृत्तियां विपरीत दिशा में अग्रसर होने लगी। अब उनके आचरण का लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति हो गया।
1: पर क्या वास्तव में यह संभव है?
0: क्यों नहीं। ईश्वर प्राप्ति के लक्ष्य से किए गए किसी भी काम का फल शुभ ही होता है। लक्ष्य अच्छा रहे फिर एक ही बात है। और बताओ, उनके सफल होने में क्या बाधा हो सकती है?
1: किंतु इस तरह की साधना करने वाले अधिकांश मांस मदिरा आदि प्रलोभन में फंस जाते हैं।
0: हाँ, और इसलिए भगवान श्री राम कृष्ण को आना पड़ा। इस प्रकार की तांत्रिक साधना के दिन अब लद गए। उन्होंने भी तांत्रिक साधनाएं की। पर उस तरह नहीं। जहां मदिरा पान का विधान होता, वहां वे केवल एक बूंद से अपनी ललाट का स्पर्श करा देते। तांत्रिक साधना में फिसलने का बहुत ज्यादा डर है, इसलिए तो मैं कहता हूं इस प्रांत में तांत्रिक साधनों की अब इति होना चाहिए। हमें इन साधनाओं से आगे बढ़कर वेदों का अध्ययन करना चाहिए, चारों योगों के एक मधुर समन्वय का अभ्यास करना चाहिए और ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण करना चाहिए।
1: चारों योगों के समन्वय से आपका क्या तात्पर्य है?
0: सत और असत का विवेक, विचार शून्यता और भक्ति, कर्म और ध्यान योग का अभ्यास, इसके साथ साथ स्त्रियों के प्रति आदर भाव होना चाहिए।
1: स्त्रियों के प्रति आदर किस तरह प्रकट किया जाए?
0: स्त्रियां आदि शक्ति जगमाता की प्रतीक हैं। जिस दिन से हम मां की सच्ची पूजा करने लगेंगे और हर एक व्यक्ति मां के लिए अपना बलिदान दे देगा, उसी दिन से भारत का यथार्थ में भला होने लगेगा और वो समृद्धि के मार्ग पर अग्रसर होता जाएगा।
3: एक अन्य अवसर पर प्रियनाथ जी ने स्वामी जी से कहा था,
1: स्वामी जी, आपके बाल्यकाल में जब हम आपसे विवाह कर लेने को कहते तो आप क्या कहा करते थे? मैं विवाह नहीं करूंगा और तुम लोग देखोगे कि मैं क्या बनता हूं। आपने अपना कथन सत्य कर दिखाया।
0: हाँ बंधु, तुम्हें तो मालूम ही है उन दिनों मेरे पास खाने को भी नहीं था और साथ ही मुझे कठिन परिश्रम भी करना पड़ता था। ओह, कितना कठोर श्रम था वो। आज अमेरिका वालों ने प्रेम से मुझे ये अच्छा सा बिछौना दे दिया है और खाने को भी मिल जाता है, पर मेरे लिए शारीरिक सुखों का विधान ही नहीं है और बिछौने पर लेटने से तो मैं बीमार हो जाता हूं और मेरा दम घुटने लगता है। पलंग से उतरकर फिर जब मैं जमीन पर सोता हूं तब मुझे आराम मिलता है।
2: इस तरह के अनेकों विषयों में दोनों ने बातचीत की थी। प्रियनाथ जी के संस्मरण से हमें और भी कई विषयों में स्वामी जी के विचार मालूम पड़ते हैं। आत्मसंयम विषय पर उन्होंने कहा था,
0: हमारे वार्तालाप या संगीत आदि सामूहिक कार्यकलापों में आत्मनियंत्रण और संयम का शोचनीय अभाव पग पग पर दृष्टिगोचर होता है। हर एक व्यक्ति आत्म प्रदर्शन का ही प्रयत्न करता रहता है। रेलवे स्टेशनों और बंदरगाहों पर जो धक्का मुक्की और ठेलम ठेल होती है वो भी इसी का उदाहरण है।
3: स्वामी जी के मित्र प्रियनाथ सिंह की एक दिन बेलूर मठ में इस विषय पर बातचीत हुई। स्वामी जी ने कहा,
0: देखो, अपने यहां एक कहावत है, यदि लड़के की पढ़ने में रुचि नहीं है तो उसे सभा में भेद दो। सभा का तात्पर्य यहां सामाजिक गोष्ठियों और भेंटों से नहीं है, जो कि समय समय पर लोगों के घरों में होती रहती हैं। सभा का तात्पर्य राजसभाओं और दरबारों से है। जब बंगाल स्वतंत्र था तो सुबह शाम राजाओं के दरबार भरा करते थे। वहां प्रातःकाल राज्य के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा होती थी और उन दिनों कोई समाचार पत्र न होने से राजा राजधानी के प्रमुख व्यक्तियों से बातचीत कर जनता और राज्य संबंधी समस्त जानकारियां प्राप्त करते थे। सभी प्रमुख व्यक्तियों को इन सभाओं में उपस्थित रहना पड़ता था, क्योंकि यदि वे अनुपस्थित रहते तो राजा इस संबंध में पूछताछ करते। इस प्रकार के दरबार अपने ही देश में नहीं, सभी देशों में सभ्यता और संस्कृति के केंद्र रही हैं। आजकल पश्चिम भारत, विशेषतः राजस्थान, इस विषय में बंगाल से कहीं अधिक अच्छा है, क्योंकि वहां आज भी हमें इन प्राचीन दरबारों की झलक दिखाई पड़ती है।
1: तो महाराज, हमारे अपने राजा ना रहने से हमारी जनता के आचार विचार और सभ्यता लुप्त हो गई है।
0: इस अधः पतन का मूल हमारी स्वार्थ वृत्ति है। जहाज में चढ़ना हो तो सब यही देखते हैं कि अपनी जान सलामत रहे। संगीत या आमोद प्रमोद के कार्यक्रमों में प्रत्येक व्यक्ति आत्म प्रदर्शन करने के प्रयत्न में रहता है। ये सब हमारी स्वार्थमयी मनोदशा की ही अभिव्यक्ति है। आत्मत्याग और संयम का अभ्यास ही इसे मिटा सकेगा। ये अभिभावकों और माता पिता का दोष है कि वे अपने बच्चों को सदाचार की भी शिक्षा नहीं दे सकते। आत्मत्याग ही व्यथार्थ में सभ्यता की नींव है।
1: तो क्या माता पिता अपने बच्चों को डांटे फटकारे नहीं? इससे तो वे और बिगड़ जाएंगे।
0: माता पिता का आवश्यकता से अधिक शासन होने से हमारे बच्चों को उचित विकास का अवसर नहीं मिल पाता। कुछ माता पिता संगीत को अनुचित समझते हैं, किंतु जब उनका पुत्र कोई अच्छा सा गीत सुन लेता है और उसे सीख लेने की उसमें लगन पैदा हो जाती है तो उसे कोई अड्डा ढूंढना पड़ता है। हम धूम्रपान को अत्यंत गर्हित समझते हैं, तो लड़कों के लिए घर के नौकरों के साथ छिप छिप कर बीड़ी सिगरेट पीने के सिवाय कोई चारा नहीं रह जाता।
1: तो फिर बच्चों में सदाचार कैसे पैदा हो?
0: हर एक व्यक्ति की असंख्य वृत्तियां हैं जिसकी तुष्टि के लिए उसे उचित अवसर और सुविधाएं चाहिए, पर हमारे देश में वो नहीं दी जाती। इसलिए यदि हमें ये स्थिति बदलनी है तो पहले माता पिता और पालकों को ही शिक्षित करना होगा। कितनी शोचनीय और दयनीय दशा है हमारी। अभी तो हमारी सभ्यता का ही हम पर्याप्त विकास नहीं कर पाए। तदुपरांत भी हमारे शिक्षित बाबू लोग चाहते हैं कि अंग्रेज शासन व्यवस्था उन्हें सौंप दें। मुझे तो हंसी भी आती है और रोना भी। पहले तो हम में वो क्षत्रिय भाव ही कहाँ है जो हर व्यक्ति को आत्मनियंत्रण, संयम, सेवा और आज्ञा पालन सिखलाता है। ये भाव वीरता, आत्मतुष्टि और प्रभुत्व में नहीं, आत्मत्याग में है। हमें दूसरों के हृदय और जीवन पर अधिकार पाने के पहले आदेश मिलने पर अग्रसर हो अपने जीवन की बलि देने के लिए तैयार रहना चाहिए। पहले अपनी बलि देनी चाहिए।
3: श्री रामकृष्ण के किसी भक्त ने एक बार अपनी एक पुस्तक में श्री रामकृष्ण को प्रभु का अवतार न मानने वालों की बहुत कटु आलोचना की। स्वामी जी ने उन्हें बुलाकर इस प्रकार

0: 98.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रम। श्रोताओं, दिन के ठीक 12 बजे हैं। अब हमारी प्रातःकालीन सभा यहीं पर संपन्न होती है। दोपहर कालीन सभा में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम तराने आजादी।
1: पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम भारत भारती। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं पंडित रमाकांत गुंदेचा और पंडित उमाकांत गुंदेचा का ध्रुपद गायन।
2: नमस्कार, हम लोग शुरुआत कर रहे हैं आदि शंकराचार्य रचित गंगा स्तोत्रम से। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे।

0: अब इसके बाद राग भोपाली में संक्षिप्त आलाप और एक प्रकृति की रचना है, प्रकृति की पूजा है।
1: एक इंटरप्रिटेशन ये भी है कि भोपाली भू को पालने वाली,

0: आज के भारत भारती कार्यक्रम में आपने पंडित रमाकांत गुंदेचा और पंडित उमाकांत गुंदेचा का ध्रुपद गायन सुना। अब ये कार्यक्रम खत्म करने की प्रमिला को दीजिए इजाजत। नमस्कार। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। सुनते रहिए।
1: सुनो कहानी, कहानी जो बचपन में नानी दादी सुनाया करती थी, कहानी जो हमें स्वप्न लोक और काल्पनिक लोक में ले जाया करती हैं, कहानी जिनको सुनते सुनते हम बड़े हो गए, कहानी जो मन को छू लेती हैं, दिल में उतर जाती हैं, जीवन के अनछुए मार्मिक और ज्ञान वर्धक पहलुओं पर प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम सुनो कहानी।

नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद। मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा और आज हम अपने कार्यक्रम में आपको सुना रहे हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी सज्जनता का दंड।

साधारण मनुष्य की तरह शाहजहांपुर के डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर सरदार शिव सिंह में भी भलाइयां और बुराइयां दोनों ही विद्यमान थीं। भलाई ये थी कि उनके यहां न्याय और दया में कोई अंतर न था, बुराई ये थी कि वे सर्वथा निर्लोभ और निस्वार्थ थे। भलाई ने मातहतों को निडर और आलसी बना दिया था, बुराई के कारण उस विभाग के सभी अधिकारी उनकी जान के दुश्मन बन गए थे। प्रातः काल का समय था, वे किसी पुल की निगरानी के लिए तैयार खड़े थे, मगर साइस अभी तक मीठी नींद ले रहा था। रात को उसे अच्छी तरह सहेज दिया था कि पाव फटने के पहले गाड़ी तैयार कर लेना, लेकिन सुबह भी हुई, सूर्य भगवान ने दर्शन भी दिए, शीतल किरणों में गर्मी भी आई, पर साइस की नींद अभी तक नहीं टूटी। सरदार साहब खड़े खड़े थक कर एक कुर्सी पर बैठ गए। साइस तो किसी तरह जागा, परंतु अर्दलियों का पता नहीं था। जो महाशय डाक लेने गए थे वे एक ठाकुर द्वारे में खड़े चरणामृत की प्रतीक्षा कर रहे थे। जो ठेकेदार को बुलाने गए थे वे बाबा रामदास की सेवा में बैठे गांजे का दम लगा रहे थे। धूप तेज होती जा रही थी। सरदार साहब झुंझलाकर मकान में चले गए और अपनी पत्नी से बोले, इतना दिन चढ़ाया अभी तक अर्दली का भी पता नहीं, इसके मारे तो मेरे नाक में दम आ गया। पत्नी ने दीवार की ओर देखकर दीवार से कहा, ये सब उन्हें सिर चढ़ाने का फल है। सरदार साहब चिढ़कर बोले, क्या करूं, उन्हें फांसी दे दूं? सरदार साहब के पास मोटर कार का तो कहना ही क्या, कोई फिटन भी नहीं थी। वे अपने इक्के से ही प्रसन्न थे, जिसे उनके नौकर चाकर अपनी भाषा में उड़न खटोला कहते थे। शहर के लोग उसे इतना आदर सूचक नाम न देकर छकड़ा कहना ही उचित समझते थे। इस तरह सरदार साहब अन्य व्यवहारों में भी बड़े मितव्ययी थे। उनके दो भाई इलाहाबाद में पढ़ते थे, विधवा माता बनारस में रहती थी, एक विधवा बहन भी उन्हीं पर अवलंबित थी। इनके सिवा कई गरीब लड़कों को छात्रवृत्तियां भी देते थे, इन्हीं कारणों से वे सदा खाली हाथ रहते। यहां तक कि उनके कपड़ों पर भी सार्थक दशा के चिन्ह दिखाई देते थे, लेकिन ये सब कष्ट सहकर भी वो लोभ को अपने पास फटकने न देते थे। जिन लोगों पर उनका स्नेह था वे उनकी सज्जनता को सराहते थे और उन्हें देवता समझते थे। उनकी सज्जनता से उन्हें कोई हानि ना होती थी, लेकिन जिन लोगों से उनके व्यवसायिक संबंध थे वे उनके सद्भावों के ग्राहक न थे, क्योंकि उन्हें हानि होती थी। यहां तक कि उन्हें अपनी सहधर्मिणी से भी कभी कभी अप्रिय बातें सुननी पड़ती थी। एक दिन वे दफ्तर से आए तो उनकी पत्नी ने स्नेहपूर्ण ढंग से कहा, तुम्हारी ये सज्जनता किस काम की जब सारा संसार तुमको बुरा कह रहा है? सरदार साहब ने दृढ़ता से जवाब दिया, संसार जो चाहे कहे, परमात्मा तो देखता है। रामा ने यह जवाब पहले ही सोच लिया। वो बोली, मैं तुमसे विवाद तो करती नहीं, पर जरा अपने दिल में विचार करके देखो कि तुम्हारी सच्चाई का दूसरों पर क्या असर पड़ता है। तुम तो अच्छा वेतन पाते हो, तुम अगर हाथ ना बढ़ाओ तो तुम्हारा निर्वाह हो सकता है, रूखी रोटियां मिल ही जाएंगी, मगर ये 10-5 रुपए के अर्दली मुहर्रिर दफ्तरी बेचारे कैसे गुजर करें? उनके भी बाल बच्चे हैं, उनके भी कुटुंब परिवार हैं, शादी गमी तिथि त्योहार ये सब उनके पास लगे हैं। भल मनसी का भेष बनाए काम नहीं चलता, बताओ बताओ उनका गुजर कैसे हो? अभी रामदीन की घरवाली आई थी, रोते रोते आंचल भीगता था, लड़की सयानी हो गई, अब उसका ब्याह करना पड़ेगा, ब्राह्मण की जाति, हजारों का खर्च, बताओ उसके आंसू किसके सर पड़ेंगे? ये सब बातें सच थीं, इनसे सरदार साहब को इनकार नहीं हो सकता था। उन्होंने स्वयं इस विषय में बहुत कुछ विचार किया था। यही कारण था कि वो अपने मातहतों के साथ बड़ी नरमी का व्यवहार करते थे, लेकिन सरलता और शालीनता का आत्मिक गौरव चाहे जो हो उनका आर्थिक मोल बहुत कम है। वे बोले, तुम्हारी बातें सब यथार्थ हैं, किंतु मैं विवश हूं, अपने नियमों को कैसे तोड़ूं? यदि मेरा वश चले तो मैं उन लोगों का वेतन बढ़ा दूं, परंतु यह नहीं हो सकता कि मैं खुद लूट मचाऊं और उन्हें लूटने दूं। रामा ने व्यंगपूर्ण शब्दों में कहा, तो यह हत्या किस पर पड़ेगी? सरदार साहब ने तीव्र होकर उत्तर दिया, ये उन लोगों पर पड़ेगी जो अपनी हैसियत और आमदनी से अधिक खर्च करना चाहते हैं। अर्दली बनकर क्यों वकील के लड़के से लड़की ब्याहने को ठानते हैं? दफ्तरी को यदि ठहलुए की जरूरत हो तो किसी पाप कार्य से कम नहीं। मेरे साइज की स्त्री अगर चांदी की सिल गले में डालना चाहे तो ये उसकी मूर्खता है। इस झूठी बढ़ाई का उत्तरदाता मैं नहीं हो सकता।
इंजीनियरों का ठेकेदारों से कुछ ऐसा ही संबंध है जैसे मधुमक्खियों का फूलों से। अगर वे अपने नियत भाग से अधिक पाने की चेष्टा न करें तो उनसे किसी को शिकायत नहीं हो सकती। ये मधुरस कमीशन कहलाता है। रिश्वत लोक और परलोक दोनों का ही सर्वनाश कर देती है। उसमें भय है, चोरी है, बदमाशी है, मगर कमीशन एक मनोहर वाटिका है जहां न मनुष्य का डर है न परमात्मा का भय। यहां तक कि वहां आत्मा की छिपी हुई चुटकियों का भी गुजर नहीं है, और कहां तक कहें, उसकी ओर बदनामी आंख भी नहीं उठा सकती। ये वो बलिदान है जो हत्या होते हुए भी धर्म का एक अंश है। ऐसी अवस्था में यदि सरदार शिव सिंह अपने उज्जवल चरित्र को इस धब्बे से साफ रखते थे और उस पर अभिमान करते थे तो क्षमा के पात्र थे। मार्च का महीना बीत रहा था। चीफ इंजीनियर साहब जिले में मुआयना करने आ रहे थे, मगर अभी तक इमारतों का काम अपूर्ण था। सड़कें खराब हो रही थी, ठेकेदारों ने मिट्टी और कंकड़ भी जमा नहीं किए थे। सरदार साहब रोज ठेकेदारों को ताकीद करते थे, मगर इसका कुछ फल ना होता था। एक दिन उन्होंने सबको बुलाया, तुम लोग क्या यही चाहते हो कि मैं इस जिले से बदनाम होकर जाऊं? मैंने तुम्हारे साथ कोई बुरा सलूक नहीं किया। मैं चाहता तो आपसे काम छीन कर खुद करा लेता, मगर मैंने आपको हानि पहुंचाना उचित न समझा, उसकी मुझे ये सजा मिल रही है। खैर, ठेकेदार लोग यहां से चले तो बातें होने लगी। मिस्टर गोपाल दास बोले, अब आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। शाहबाज खान ने कहा, किसी तरह इसका जनाजा निकले तो यहां से। सेठ चुन्नी लाल ने फरमाया, इंजीनियर से मेरी जान पहचान है, मैं उनके यहां काम कर चुका हूं, वो उन्हें खूब लताड़ेगा। इस पर बूढ़े हरिदास ने उपदेश दिया, यारो स्वार्थ की बात है, नहीं तो सच ये है कि ये मनुष्य नहीं देवता है। भला और नहीं तो साल भर में कमीशन के 10,000 तो होते, इतने रुपयों को ठीकरे की तरह तुच्छ समझना क्या कोई सहज बात है? एक हम है कि कौड़ियों के पीछे ईमान बेचते फिरते हैं। जो सज्जन पुरुष हमसे एक पाई का रवादार ना हो, सब प्रकार के कष्ट उठाकर भी जिसकी नियत डामाडोल ना हो, उसके साथ ऐसा नीच और कुटिल बर्ताव करना पड़ता है, इसे अपने अभाग्य के सिवा और क्या समझें? बूढ़े हरिदास की बातों की जिन लोगों ने पुष्टि की थी, वे सब गोपाल दास की भी हां में हां मिलाने लगे। निर्बल आत्माओं में सच्चाई का प्रकाश जुगनू की चमक है। सरदार साहब की एक पुत्री थी, उसका विवाह मेरठ के एक वकील के लड़के से ठहरा था। लड़का होनहार था, जाति कुल का ऊंचा था। सरदार साहब ने कई महीने की दौड़ धूप में इस विवाह को तय किया था, और अब बातें तय हो चुकी थी, केवल दहेज का निर्णय नहीं हुआ था। आज वकील साहब का एक पत्र आया, उसने इस बात का भी निश्चय कर दिया, मगर विश्वास आशा और वचन के बिल्कुल प्रतिकूल। पहले वकील साहब ने एक जिले के इंजीनियर के साथ किसी प्रकार का ठहराव व्यर्थ समझा, बड़ी सस्ती उदारता प्रकट की। इस लज्जित और घृणित व्यवहार पर खूब आंसू बहाए, मगर जब ज्यादा पूछताछ करने पर सरदार साहब के धन वैभव का भेद खुल गया, तब दहेज का ठहराना आवश्यक हो गया। सरदार साहब ने आशंकित हाथों से पत्र खोला, 5,000 रुपए से कम पर विवाह नहीं हो सकता। वकील साहब को बहुत खेद और लज्जा थी कि वे इस विषय में स्पष्ट होने पर मजबूर किए गए, मगर वे अपने खानदान के कई बूढ़े खुर्राट विचारहीन स्वार्थांध महात्माओं के हाथों बहुत तंग थे, वहां उनका कोई वश न था। इंजीनियर साहब ने एक लंबी सांस खींची, सारी आशाएं मिट्टी में मिल गईं। क्या सोचते थे और क्या हो गया, विकल होकर कमरे में टहलने लगे। उन्होंने जरा देर बाद पत्र को उठा लिया और अंदर चले गए। सोचा कि यह पत्र रामा को सुनाए, मगर फिर ख्याल आया कि यहां सहानुभूति की कोई आशा नहीं, क्यों अपनी निर्बलता दिखाऊं, क्यों मूर्ख बनूं, वो बिना बातों के बात न करेगी, ये सोचकर वे आंगन से लौट गए। सरदार साहब स्वभाव के बड़े दयालु थे और कोमल हृदय आपत्तियों में स्थिर नहीं रह सकता। वे दुख और ग्लानी से भरे हुए थे, सोच रहे थे कि मैंने ऐसे कौन से बुरे काम किए हैं जिसका मुझे ये फल मिल रहा है। बरसों की दौड़ धूप के बाद जो कार्य सिद्ध हुआ था वो क्षण मात्र में नष्ट हो गया, अब वो मेरी सामर्थ्य से बाहर है, मैं उसे संभाल नहीं सकता। उनके नेत्र सजल हो गए। सामने मेज पर ठेकेदारों के बिल रखे थे, वो कई सप्ताहों से यूं ही पड़े थे, सरदार ने उन्हें खोल कर भी न देखा था। आज इस आत्मिक ग्लानी और नैराश्य की अवस्था में उन्होंने इन बिलों को सतृष्ण आंखों से देखा। जरा से इशारे पर ये सारी कठिनाइयां दूर हो सकती हैं, क्लर्क केवल मेरी सम्मति के सहारे सब कुछ कर लेंगे।
मुझे जबान हिलाने की भी जरूरत नहीं, ना ही मुझे लज्जित होना पड़ेगा। इन विचारों का इतना प्राबल्य हुआ कि वास्तव में बिलों को उठाकर वो गौर से देखने और हिसाब लगाने लगे कि उनमें कितनी निकासी हो सकती है। मगर शीघ्र ही उन्हें आत्मा ने जगा दिया। आह, किस भ्रम में पड़ा हूं। क्या उस आत्मिक पवित्रता को जो मेरी जन्म भर की कमाई है, केवल थोड़े से धन पर जो मैं अपने सहकारियों के सामने गर्व से सर उठाए चलता था, जिससे मोटर कार वाले भ्रातृगण आंखें नहीं मिला सकते थे, वही मैं आज अपने उस सारे गौरव और मान को, अपनी संपूर्ण आत्मिक संपत्ति को 10-5 हजार रुपयों पर त्याग दूं? ऐसा कदापि नहीं हो सकता।

0: सरदार साहब ने उन बिलों को उठाकर मेज के नीचे डाल दिया, फिर उन्हें पैरों से कुचला। तब इस विजय पर मुस्कुराते हुए वे अंदर गए। बड़े इंजीनियर नियत समय पर शाहजहांपुर आए, उसके साथ सरदार साहब का दुर्भाग्य भी आया। जिले के सारे काम अधूरे पड़े हुए थे। उनके खानसामे ने कहा, हुजूर काम कैसे पूरा हो, सरदार साहब ठेकेदारों को बहुत तंग करते हैं। हेड क्लर्क ने दफ्तर के हिसाब को भ्रम और भूलों से भरा हुआ पाया। उन्हें सरदार साहब की तरफ से न कोई दावत दी गई और न ही कोई भेंट। तो क्या वे सरदार साहब के नातेदार थे जो गलतियां ना निकालते। जिले के ठेकेदारों ने एक बहुमूल्य डाली सजाई और उसे बड़े इंजीनियर साहब की सेवा में लेकर हाजिर हुए। वो बोले, हुजूर चाहे गुलामों को गोली मार दें, मगर सरदार साहब का न्याय अब नहीं सहा जाता। कहने को तो कमीशन नहीं लेते, मगर सच पूछिए तो जान ले लेते हैं। चीफ इंजीनियर साहब ने मुआयने की किताब में लिखा, सरदार शिव सिंह बहुत ईमानदार आदमी हैं, उनका चरित्र उज्ज्वल है, मगर वे इतने बड़े जिले के कार्य का भार नहीं संभाल सकते। परिणाम यह हुआ कि वे एक छोटे से जिले में भेज दिए गए और उनका दर्जा भी घटा दिया गया। सरदार साहब के मित्रों स्नेहियों ने बड़े समारोह से एक जलसा किया, उसमें उनकी धर्मनिष्ठा और स्वतंत्रता की प्रशंसा की। सभापति ने सजल नेत्र होकर कंपित स्वर से कहा, सरदार साहब के वियोग का दुख हमारे दिल में सदा खटकता रहेगा, ये घाव कभी ना भरेगा। मगर फेयरवेल डिनर में यह बात सिद्ध हो गई कि स्वादिष्ट पदार्थों के सामने वियोग का दुख दुस्सह नहीं। यात्रा के सामान तैयार थे। सरदार साहब जलसे से आए तो रामा ने उन्हें बहुत उदास और मलिन मुख देखा। उसने बार बार कहा था कि बड़े इंजीनियर के खानसामा को इनाम दो, हेड क्लर्क की दावत करो, मगर सरदार साहब ने उसकी बात न मानी थी। इसलिए जब उसने सुना कि उनका दर्जा घटा और बदली हुई, तब उसने बड़ी निर्दयता से अपने व्यंग बाण चलाए। मगर इस वक्त उन्हें उदास देखकर उससे रहा न गया। बोली, क्यों इतने उदास हो? सरदार साहब ने कहा, क्या करूं, हंसू। रामा ने गंभीर स्वर से कहा, हंसना ही चाहिए। रोई तो वो जिसने अपनी कौड़ियों पर अपनी आत्मा भ्रष्ट की हो, जिसने रुपयों पर अपना धर्म बेचा हो। ये बुराई का दंड नहीं, ये भलाई और सज्जनता का दंड है। इसे सानंद झेलना चाहिए। यह कहकर उसने पति की ओर देखा तो नेत्रों में सच्चा अनुराग भरा हुआ दिखाई दिया। सरदार साहब ने भी उसकी ओर स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखा। उनकी हृदयेश्वरी का मुखारविंद सच्चे आमोद से विकसित था। उसे गले लगाकर वे बोले, रामा मुझे तुम्हारी ही सहानुभूति की जरूरत थी, अब मैं इस दंड को सहर्ष सहूंगा। तो ये थी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी सज्जनता का दंड। अपने अगले अंक में, अपने अगले एपिसोड में फिर किसी ऐसे ही कहानी, किसी ऐसे ही किस्से को लेकर हाजिर होंगे हम। तब तक के लिए अपने रेडियो मित्र संदीप शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: तो दोस्तों, ये था आज का कार्यक्रम सुनो कहानी। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए लेखक की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: नमस्कार। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम
3: अतुल्य भारत।
2: हाँ, घूमना किसे पसंद नहीं, नई नई जगहें देखना, नए नए लोगों से मिलना, एक अलग तरह की संस्कृति और एक अलग तरह का नजारा।
4: हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने भाई, मैं तो हमेशा तैयार रहता हूँ घूमने फिरने के लिए।
2: और इन सब का अपना एक अलग ही आनंद होता है।
4: हो भी क्यों ना,
2: एक अलग ही रोमांच है। इस रोमांच की तमन्ना हमें मजबूर करती है कि हम अपने खोल से बाहर निकले और देखें कि दुनिया कितनी बड़ी और कितनी विविध है।
4: बिल्कुल ठीक कहा कंचन तुमने, वरना हमारी जिंदगी तो ऐसी हो जाएगी जैसे कुएं के अंदर एक मेंढक, अगर हम घूमने नहीं निकले। एक बात बताऊं तुम्हें?
2: हाँ?
4: प्रसंगवश हमें 14वीं सदी के एक यात्री इब्न बतूता की याद आती है। मोरक्को के टेंजियर शहर का वो रहने वाला था।
2: हाँ?
4: और पैदाइशी तौर पर उसे घूमने का जबरदस्त जज्बा था। वह कहता था कि मुझे वो ज्ञान बिल्कुल नहीं चाहिए जो किताबों में लिखा है भाई, मैं तो चीजों को अपनी आंखों से देखना, उन्हें महसूस करने में ज्यादा विश्वास रखता हूँ।
2: हाँ, मैंने भी सुना है उनके बारे में। अच्छा? वो कहते थे कि मैं दुनिया देखने के लिए उतावला हो रहा हूँ। और घुमक्कड़पन के इसी उन्माद में 22 साल का ये युवक अकेले ही अपने घर से निकल पड़ा, ऐसे जैसे चिड़िया का बच्चा अपना घोंसला छोड़कर निकल पड़ता है।
4: बिल्कुल ठीक।
2: 14वीं सदी का माहौल आज जैसा तो नहीं होगा तब। उस जमाने में अकेले तो क्या, कारवा के साथ चलने पर भी जान की कोई गारंटी नहीं होती थी।
4: हाँ, आपको घर बैठे घुमाने का रोमांच अनुभव कराने के लिए चलो आज हम आपको सैर पर ले चलते हैं, एक रेडियो यात्रा पर। इस कड़ी में सबसे पहले हम चलते हैं बाबा भोलेनाथ की नगरी वाराणसी में।
2: वाह, वाराणसी से मुझे कहावत याद आ गई।
4: कौन सी?
2: शाम अवध सुबह काशी, यानी अवध की शाम और काशी की सुबह बड़ी ही सुहानी होती है।
4: ये तो ठीक है।
2: सच बात है, काशी यानी कि वाराणसी में सुबह मुंह अंधेरे ही हर हर गंगे हर हर महादेव करती टोलियां जब गंगा तट की तरफ बढ़ती हैं, तो मन एक बार की भक्तिमय हो उठता है। सूरज के जगने से पहले ही ये शहर जग पड़ता है, मंदिरों की घंटियां बजने लगती हैं और गंगा का घाट चहल पहल से भर जाता है।
4: काशी नगरी पूरी दुनिया में सबसे निराली है। भगवान शिव ने इसे अपने त्रिशूल पर धारण किया हुआ है और मानता तो यह भी है कि यह शहर दुनिया में होकर भी मानो दुनिया में नहीं है, और इसलिए जब पूरा विश्व प्रलय में डूब जाएगा तो कहते हैं तब काशी ही अपनी जगह पर कायम रहेगी, ऐसी मान्यता लोगों में आदि काल से चली आ रही।
2: और काशी को वाराणसी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वरुणा और 80 नदियों के बीच बसा हुआ है। श्रोताओं, यहाँ पर हम आपको बता दें कि ये दोनों ही नदियाँ गंगा की सहायक नदियाँ हैं। इन नदियों ने अपने प्यार भरे आलिंगन में इस शहर को ऐसे पाला है जैसे दो माताएं किसी बच्चे को पालती हैं।
4: वाह वाह, क्या कल्पना करी है तुमने। दुनिया के इतिहास में अनेक नगरों का उत्थान और पतन होता रहा है। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो व हड़प्पा को ही ले लो। आज से 5000 साल पहले बसे इन शहरों में अब केवल मलबे ही मलबे बचे हैं, लेकिन वाराणसी शायद पूरी दुनिया का ऐसा सबसे पुराना शहर है जो लगातार जिंदा है, अनवरत धड़क रहा है। और हो भी क्यों ना, शिव जी की खास पसंद जो है ये काशी।
2: हाँ, और इसके बारे में मार्क ट्विन ने तो ये भी कहा था कि ये शहर ओल्डर देन हिस्ट्री है। वे लिखते हैं कि ये शहर इतिहास से भी पुराना है, परंपरा से भी पुराना है, पुराणों से भी पुराना है, और इन सब की आयु को अगर एक साथ जोड़ लिया जाए तो ये शहर इससे भी दुगना पुराना है।
4: वाराणसी शहर इतना पुराना है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि विश्व के सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख है। इस ग्रंथ में इसे काशी कहकर के पुकारा गया है। काशी शब्द का अर्थ होता है सिटी ऑफ लाइट, प्रकाश का शहर या ज्योति का शहर।
2: और प्रकाश ज्ञान का भी प्रतीक होता है, धर्म का भी और जागरण का भी।
4: बिल्कुल,
2: ये हम नहीं कहते, हमारे पुराने श्लोक कहते हैं।
4: कौन से श्लोक?
2: अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, यानी हे ईश्वर, हमें असत्य से सत्य की ओर और अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। आपको बता दें कि ये पंक्तियां वृदारण्यक उपनिषद के नवरस मंत्र से ली गई हैं।
4: बिल्कुल, लेकिन वाराणसी के संदर्भ में प्रकाश का अर्थ ज्ञान नहीं, जागरण नहीं, बल्कि कुछ और ही है, और वो क्या है ये हम आपको बताएंगे थोड़ी देर में। अभी आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: ऋग्वेद के बाद अगला महत्वपूर्ण ग्रंथ स्कंद पुराण है, जिसमें पूरा का पूरा एक काशी खंड ही है।
4: अच्छा।
2: और इस खंड में 15,000 श्लोक हैं। इनमें से एक श्लोक में भगवान शंकर कहते हैं,
4: क्या?
2: अखिल विश्व के तीनों लोकों में केवल एक ही शहर मेरा है और वो है काशी।
4: भाई वाह, क्या बात है।
2: और इसी शहर में मेरा शाही महल भी है।
4: श्रोताओं, अगर आप भूल रहे हो तो हम आपको याद दिला दें कि गंगा भी शिव की जटा से ही निकली है, यानी हर तरह से वाराणसी शिव में है। तभी तो हर हर गंगे यहाँ का सबसे बड़ा मंत्र है।
2: और रामायण व महाभारत ग्रंथों में भी वाराणसी की चर्चा बारंबार मिलती है। गौतम बुद्ध की बात करें तो उनका समय भी आज से लगभग 2500 साल पहले का है।
4: बिल्कुल।
2: ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने अपना पहला उपनिषद ऋषिपत्तन में दिया था। ये ऋषिपत्तन ही आज सारनाथ है, जो वाराणसी से ही लगा हुआ है, जैसे कि भोपाल और बैरागढ़।
4: हाँ, गौतम बुद्ध बोध गया से ज्ञान प्राप्ति के बाद जब यहाँ आए तब यहाँ पर एक बगीचा हुआ करता था जिसे मृगाड़दव कहा जाता था। इस शब्द का मतलब होता है कि ऐसा बगीचा जिसमें हिरन रहते हों। आज भी यह बगीचा है जिसे डेयर पार्क कहा जाता है और आज भी यहाँ पे हिरन रहते हैं।
2: और इस बगीचे में ही गौतम बुद्ध जी ने 5 ब्राह्मणों को अपना पहला धर्म उपदेश दिया था। बौद्ध परंपरा में ये घटना धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाती है, जिसका मतलब होता है धर्म के पहिए का गतिशील होना।
4: हाँ, बुद्ध के निर्वाण के बाद सारनाथ में धमेक स्तूप बनाया गया जिसके आज केवल अवशेष ही मिलते हैं। यहाँ मुलागन गुटी नाम का एक विहार भी हुआ करता था। कहा जाता है कि बुद्ध ने अपना पहला वर्षाकाल यहीं व्यतीत किया था और अब इस विहार को श्रीलंका की महाबोधि सोसाइटी द्वारा पुनर्निर्मित किया गया है।
2: इस तरह बुद्ध से संबंधित होने के कारण सारनाथ आज दुनिया भर के बौद्ध लोगों के लिए एक पवित्र स्थान है। और यहाँ हर समय पर जापान, थाईलैंड, तिब्बत, श्रीलंका और म्यांमार देशों के तीर्थयात्रियों का मेला लगा रहता है।
4: बिल्कुल ठीक कहा तुमने। सारनाथ का एक और महत्व है और वह यह है कि यहाँ से प्राप्त अशोक की लाट से भारत सरकार का राज्य चिन्ह लिया गया है जिसमें 4 सिंह एक दूसरे की ओर पीठ करके बैठे हुए हैं।
2: बौद्ध धर्म के समान ही जैन धर्म से भी वाराणसी का गहरा रिश्ता रहा है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म भी यहीं हुआ था। उनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे।
4: वाराणसी अपने खूबसूरत घाटों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यूं तो गंगा हर जगह मनोहारी है पर काशी में तो इसकी छटा निराली है। मॉडर्न एज के जाने माने पेंटर मकबूल फिदा हुसैन को तो बनारस व यहाँ का गंगा तट इतना भाया कि उनकी पेंटिंग में अनेकों रंग इसमें बिखरे हुए हैं।
2: यहाँ इसके किनारों पर कुल 80 घाट बने हुए हैं, जो राजघाट से शुरू होकर 80 घाट तक फैले हैं। इन्हीं में से एक घाट का नाम मणिकर्णिका घाट है। राम जी के पूर्वज राजा हरिश्चंद्र ने जब अपने सपने में अपना राज्य दान दे दिया था तब वे यहीं आकर एक डोम के दास बने थे।
4: लाइफ का कंट्रास्ट अगर देखना हो तो मणिकर्णिका घाट और दशाश्वमेध घाट देखें। एक मृत्यु का प्रतीक है तो दूसरा जीवन का। एक पर दाह संस्कार के लिए शवों की लाइन लगी रहती है तो दूसरी तरफ शादी विवाह की मन्नतें पूरी करने वालों से अटा पड़ा रहता है। पूरा का पूरा वातावरण जीवन की किलकारियों से भरा रहता है।
2: उस क्षेत्र के वरवधु शादी के बाद दशाश्वमेघ अवश्य आते हैं। गंगा माँ को चुनर चढ़ाई जाती है, दीप दान चलता रहता है, मंदिरों के घंटे जीवन का उद्घोष करते रहते हैं। घाट क्या है, पूरा एक शहर है। विदेशी यात्रियों का सबसे ज्यादा जमावड़ा भी यहीं दिखाई देता है। घाट की सीढ़ियों पर वे ऐसे शांति से बैठे रहते हैं जैसे यहाँ विद्यमान आध्यात्मिक ऊर्जा को चुपचाप आत्मसात कर रहे हों।
4: हाँ, और दूसरी ओर मणिकर्णिका कुछ और नहीं बस मौत का सन्नाटा है। यहाँ आकर के कबीर का दोहा याद आता है।
2: कौन सा?
4: पानी केरा बुलबुला असमानस की जात, देखत ही छुप जाएगा जो तारा प्रभात।
2: यानी मनुष्य का शरीर और क्या है, बस पानी का एक बुलबुला ही तो है। यहाँ से लौटने के बाद हफ्तों तक जीवन की निसारता पीछा करती रहती है। वैराग्य अनुराग पर चोट करता रहता है पर अंत में जीत अनुराग की ही होती है। ऐसा ना हो तो सब सन्यासी ही हो जाएं।
4: बिल्कुल ठीक कहा तुमने। जब काशी की बात चले तो काशी विश्वनाथ मंदिर की चर्चा भला कैसे ना हो। यह मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। आपको बता दे कि इनमें से 2 ज्योतिर्लिंग हमारे मध्य प्रदेश में भी है, महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर। श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें कि वाराणसी को सिटी ऑफ लाइट्स भी कहते हैं, और यह लाइट कुछ और नहीं ज्योतिर्लिंग ही है।
2: दरअसल ज्योतिर्लिंग उस देव स्थान को कहते हैं जहां शिव मूर्ति की नहीं बल्कि शिवलिंग की उपासना होती है।
4: श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें कि शिव सनातन है, निराकार है। सबसे पहले उन्होंने स्वयं को अरिद्र नक्षत्र की एक रात्रि में एक अग्नि शिखा के रूप में प्रकट किया, जो धरती को फाड़ करके बाहर निकल रही थी। इस अग्नि शिखा को ही प्रतीकात्मक रूप से शिवलिंग के रूप में प्रकट किया जाता है।
2: श्रोताओं, 3 ज्योतिर्लिंग के नाम तो आपने सुन ही लिए, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर और काशी विश्वनाथ। चलिए अब आपको शेष 9 नाम भी बताए देते हैं। केदारनाथ, वैद्यनाथ, सोमनाथ, नागेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, घुश्मेश्वर, भीमाशंकर, मल्लिकार्जुन और रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग।
4: श्रोताओं, काशी के विश्वनाथ मंदिर को कभी कभी गोल्डन टेम्पल भी कहा जाता था। वजह यह थी कि इस मंदिर के शिखर पर 50 फीट ऊंचा सोने का पत्थर चढ़ा हुआ था। क्या आप जानते हैं कि यह पत्थर किसने चढ़ाया था? पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने।
2: इस मंदिर का कुछ रिश्ता हमारे मध्य प्रदेश से भी है।
4: हाँ।
2: राजमाता अहिल्याबाई होलकर कितनी शिव भक्त थी ये तो सभी जानते हैं।
4: बिल्कुल।
2: उन्होंने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया और गंगा के कुछ घाटों को भी पक्का करवाया था। कहते हैं कि कोई व्यक्ति यदि गंगा में डुबकी लगाकर बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर ले तो मोक्ष का द्वार उसके लिए स्वयमेव खुल जाता है।
4: और शायद यही वजह है कि आदि शंकराचार्य से लेकर के गुरु नानक, तुलसीदास, स्वामी विवेकानंद आदि कितने ही महापुरुषों ने इस मंदिर के दर्शन किए, स्वयं को धन्य किया। इतिहास के लंबे दौर में अनेक बार इस मंदिर को हमलों का सामना करना पड़ा, लेकिन हर बार दुगनी शान शौकत के साथ इसका पुनर्निर्माण किया गया।
2: श्रोताओं, वाराणसी शहर धर्म और आध्यात्म की एक गंगा है। तभी तो यहाँ एक से बढ़कर एक पवित्र स्थल है। अब संकट मोचन को ही ले लीजिए। उल्लेख मिलता है कि वाराणसी में असी नदी के पास एक जगह पर हनुमान जी ने गोस्वामी तुलसीदास को साक्षात दर्शन दिए थे। सो उन्होंने उस जगह पर संकट मोचन हनुमान मंदिर की स्थापना की।
4: लेकिन आज जो मंदिर का ढांचा है उसका निर्माण पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा करवाया गया था। इस मंदिर में बंदरों के झुंड मिलते हैं, इतने कि आप हैरान हो जाएं। ऐसा लगता है कि हम वानर लोक में आ गए हैं। पता नहीं जाने कैसे मालूम पड़ जाता है कि ये उनके राजा का मंदिर है।
2: जरा याद करें यहाँ पर हनुमान चालीसा की पंक्तियाँ।
4: कौन सी?
2: जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। यानी यहाँ हनुमान जी को कपिश कहा गया है।
4: बिल्कुल।
2: इसका अर्थ है कपि, यानी बंदरों के ईश और लौकिक अर्थ में राजा। प्रसंगवश आपको बता दें कि हनुमान चालीसा की रचना भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने ही की है और उसकी भाषा भी अवधी है।
4: हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि संकट मोचन मंदिर के बंदर भी बड़े नटखट और शरारती होते हैं। हो सकता है कि ये आपकी कोई कीमती चीज उठा ले जाए, लेकिन केवल बार्गेनिंग के लिए नहीं, आप उनसे अपनी चीज को वापस लेना चाहते हैं तो आपको कुछ ना कुछ चीज उनको देनी पड़ेगी अदला बदली के लिए। बंदरों को आप कुछ खाने पीने की चीज दे दीजिए, वापस बदले में वो आपकी चीज आपको वापस लौटा देंगे।
2: संकट मोचन का रुतबा अगर आपको देखना हो तो जरा कभी मंगलवार या शनिवार को पधार कर देखिए। घंटों के पहले अगर दर्शन करने की आपकी बारी आ जाए तो कहिएगा। कहते हैं अगर किसी की कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी ना हो तो उसका सबसे प्रभावशाली उपाय है संकट मोचन के दर्शन करना।
4: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद। कार्यक्रम है अतुल्य भारत। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज। आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, हम वाराणसी की बात करें और वाराणसी के शिल्प की बात ना करें ये तो हो ही नहीं सकता। वाराणसी का शिल्प बहुत मशहूर है पूरी दुनिया में, खासकर यहाँ की बनी हुई बनारसी साड़ियाँ। इन साड़ियों का भारतीय लोगों के लिए क्या दर्जा है, इसका अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हर दुल्हन की यह अभिलाषा होती है कि वह अपने विवाह के अवसर पर बनारसी साड़ी जरूर पहने।
2: ये साड़ियाँ होती तो सिल्क की हैं, पर इन पर सोने और चांदी की जरी की जाती है। एम्ब्रॉयडरी इतनी जबरदस्त होती है कि साड़ियाँ भारी भरकम हो जाती हैं, इसलिए ये केवल खास अवसरों पर ही पहनी जाती हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में इन्हें पहनना संभव ही नहीं।
4: भारत की बात छोड़ दें तो विदेशों में भी इन साड़ियों के प्रति भारी दीवानगी देखने को मिलती है। अगर आपने अपने किसी एनआरआई दोस्त की पत्नी को बनारसी साड़ी भेंट कर दी तो समझ लीजिए कि जिंदगी भर के लिए वह आपका हो गया। वास्तव में शादी विवाह के मौके पर इस साड़ी का तोहफा देना एक बड़ी ही महानता मानी जाती है।
2: यहाँ आपको बता दें कि सिल्क की बनी बनारसी साड़ियाँ बनारस की प्राचीन संस्कृति का अंग नहीं रही हैं। लंदन का एक व्यापारी रॉल्फ फिच 16वीं शताब्दी में भारत आया। उस समय भारत पर सम्राट अकबर की हुकूमत थी। फिच ने भारत के अनेक शहर घूमे जिनमें वाराणसी भी था। उसने लिखा है कि वाराणसी सूती कपड़ों का एक प्रमुख केंद्र था।
4: श्रोताओं एक बात हम आपको बता दें, सम्राट अकबर के काल तक वाराणसी सिल्क टेक्सटाइल के लिए नहीं जाना जाता था। वास्तव में बनारस की साड़ियां तो गुजरात के बुनकरों की देन है। 17वीं शताब्दी के बाद गुजरात में भयानक अकाल पड़ा और वहां से बहुत सारे बुनकर पलायन करके बनारस में आ गए और इन्हीं लोगों ने बनारसी साड़ियों की नींव डाली।
2: बनारस की बात चले तो यहाँ की गलियाँ कैसे छूट सकती हैं? पूरी दुनिया में मशहूर हैं यहाँ की गलियाँ।
4: बिल्कुल ठीक कहा आपने, मैं तो कई बार भटक चुका हूँ इन गलियों में।
2: बाहर वालों के लिए तो भूल भुलैया ही है, तो यहाँ वालों के लिए तोहफा, सड़क पर जाम लगा है कोई बात नहीं, भीतर ही भीतर गलियों से निकल जाइए।
4: आप पूरा का पूरा शहर इन गलियों के सहारे नाप सकते हैं। करोड़ों का व्यापार इन गलियों में होता है।

0: है कि सपनों की गलियों में तैर रहे हैं आप। विदेशी पर्यटकों की तो भरमार रहती है इस गली में, लेकिन बार्गेनिंग बड़ी जबरदस्त होती है। कुछ खरीदना हो तो होशियार रहिएगा आप।
1: अरे हाँ, बनारस जाइएगा तो बनारसी लस्सी पीना मत भूलिएगा।
0: अच्छा,
1: वो स्वाद, वो सुगंध, आहा, वो स्टाइल आप कहीं और पा ही नहीं सकते। ताजी मलाईदार दही आपके सामने ही फेंटी जाएगी और बर्फ का चूरा मिलाया जाएगा, शक्कर मिलाई जाएगी और ऊपर से गुलाब जल डालकर आपको सर्व की जाएगी मलाई की परत के साथ
0: जी।
1: मिट्टी के ये बड़े बड़े कुल्हड़ में देखते ही बस मुंह में पानी आ जाएगा।
0: अरे मुझे तो सोच कर ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। लस्सी बनाने की परंपरागत कला और पूरी तरह से हैंडमेड काम, ना मिक्सी ना फ्रिज और लस्सी की लस्सी।
1: लस्सी के अलावा एक और भी चीज मशहूर है बनारस की।
0: मुझे पता है आपका इशारा क्या है, बनारसी पान की तरफ ना।
1: हाँ, बनारसी पान भी बनारस की एक पहचान है। यूं तो कलकतिया पान भी मशहूर है।
0: हाँ।
1: पर बनारसी पान की बात ही कुछ और है। क्या आप जानते हैं कि इन दोनों में बेसिकली क्या अंतर है?
0: भाई, कलकतिया पान बिल्कुल पक्का हरा होता है और बनारसी पान हल्का सा पीलापन लिए हुए होता है। मुझे तो इतना ही पता है और इसीलिए इस कलकतिया पान की तुलना में इनमें कड़वापन कम होता है। बनारस के लोगों की कमजोरी है यह पान और शायद बनारस के बाहर के लोगों की भी। तभी तो डॉन फिल्म का यह गाना कि खाए के पान बनारस वाला, आज भी जब बजता है ना तो लोग झूम उठते हैं। श्रोता, बनारसी पान के बाद आपको याद दिला दे कि भारतीय शास्त्रीय संगीत का बनारसी घराना बड़ा प्रसिद्ध है और यह घराना तबला वादन में महारत रखता है।
1: धर्म प्राण वाराणसी को भारत के 7 मोक्षदायी स्थलों में एक माना जाता है।
0: बिल्कुल,
1: गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है कि अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका व द्वारवती स्थल मोक्षदायक हैं।
0: भारतीय उपमहाद्वीपों के शक्तिपीठों के बारे में आपने तो सुना ही होगा। ये वे स्थल है जहां पर दक्ष की पुत्री तथा भगवान शिव की पत्नी के विभिन्न अंग कट करके गिरे थे। इन सभी स्थलों पर आज शक्तिपीठों की स्थापना की गई है और ये पीठ अत्यंत पवित्र माने जाते हैं। और वाराणसी में सती के कान की बाली गिरी थी, इस स्थान पर ही आज विशालाक्षी मंदिर बना हुआ है। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद। कार्यक्रम है अतुल्य भारत। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़। देश का चैनल देश के लिए।
1: चलिए श्रोताओं, अब हम बात करते हैं वाराणसी से संबंधित कुछ महापुरुषों की।
0: बिल्कुल,
1: वाराणसी असाधारण नगर है। यहाँ के वातावरण में चैतन्य लहरियां बहुत होती हैं। शायद यही वजह है कि यहाँ आने वाले व्यक्ति को एक अजीब सी शांति का अनुभव होता है।
0: हाँ।
1: ऐसे लोगों का नाम गिनाने बैठे जो वाराणसी के दीवाने रहे हैं तो एक पूरा ही एपिसोड नाकाफी रहेगा, लेकिन हम कुछ चुनिंदा लोगों की बात करते हैं।
0: चलो, शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं महाकवि तुलसीदास से। इन्होंने अपना अंतिम जीवन वाराणसी के एक गंगा घाट पर व्यतीत किया और अंत में देह त्याग भी यहीं किया। इस घाट का नाम तुलसी घाट कहलाता है।
1: गोस्वामी तुलसीदास जी की तरह कबीरदास जी का भी वाराणसी से गहरा संबंध है। उनका पालन पोषण यहाँ के एक जुलाहा दंपत्ति नीरू और नीमा ने किया था। जिस जगह पर कबीर रहे और पले वो आज कबीर चौरा कहलाता है।
0: अब हम बात करते हैं महामना मदन मोहन मालवीय की। इनका जन्म तो इलाहाबाद में ही हुआ था, पर इनकी असली कर्मभूमि रही वाराणसी, जहां बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी के BHU की स्थापना करके वे अमर हो गए।
1: श्रोताओं, आपको ये बता दें कि ये यूनिवर्सिटी न केवल भारत बल्कि पूरे एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी है। इसका केवल मुख्य कैंपस ही 1300 एकड़ में फैला हुआ है।
0: हाँ, तो मदन मोहन मालवीय जो पेशे से वकील थे, भारत की गरीबी का सबसे प्रमुख कारण अशिक्षा मानते थे, सो उन्होंने वाराणसी में एक रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी की स्थापना करने की ठान ली। और उस समय भारत में जो यूनिवर्सिटीज थीं, वे केवल एफिलेटेड थीं,
1: मदन मोहन जी के सामने रास्ते

0: फैसला बहुत ही कठिन था। सरकार को राजी करना था, जमीन का इंतजाम करना था और ढेर सारा पैसा चाहिए था। लेकिन जब चाह होती है तो राह निकल ही आती है। राजा बनारस ने जमीन दे दी, भारत के धनपतियों ने अपनी तिजोरियां खोल दी और कांग्रेस के दबाव में ब्रिटिश सरकार ने कानून भी पास कर दिया।
1: सबसे बड़ा सहयोग तो एनी बेसेंट का मिला, जो पहले ही बनारस हिंदू स्कूल स्थापना कर चुकी थी। यह स्कूल ही बीएचयू के लिए आधारशिला बन गया और इस तरह जनता के पैसे से जनता की ताकत पर सन 1916 में भारत का पहला रेसिडेंशियल विश्वविद्यालय अस्तित्व में आ गया।
0: जो रोल डॉक्टर हरि सिंह गौर का सागर विश्वविद्यालय की स्थापना में था, उससे भी बढ़कर मदन मोहन मालवीय जी का बीएचयू की स्थापना में रहा, क्योंकि मदन मोहन मालवीय जी के सामने पैसे की जबरदस्त तंगी थी।
1: मदन मोहन केवल एक शिक्षा शास्त्री ही नहीं थे, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी महान सेनानी थे। कांग्रेस में उनका क्या स्थान था, यह इस बात से ही प्रमाणित होता है कि एक दो नहीं बल्कि कुल 4 बार वे इस संस्था के प्रेसिडेंट चुने गए। इसी संस्था के मंच पर सबसे पहले 1905 में बनारस अधिवेशन के दौरान ही उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की कि वे इस शहर में एक यूनिवर्सिटी की स्थापना करना चाहते हैं।
0: भारत के सबसे सरल, नेक और ईमानदार प्रधानमंत्रियों में जिनका नाम सबसे पहले जुमा पर आता है, वे हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी भी बनारस के ही लाल थे, जो गंगा उस पार के गांव में रहते थे।
1: गरीबी बेइंतहा थी, पढ़ने के लिए गंगा पार करके शहर आना पड़ता था, पर नाव का किराया देने के लिए पैसा नहीं होता था, तो वे तैर करके गंगा पार करते थे। बनारस की गंगा कोई मामूली गंगा नहीं है, इसे पार करना एक जीवट का काम है, और जिसे लाल बहादुर शास्त्री ने किया, दुबले पतले कमजोर से इंसान ने।
0: लेकिन पढ़ाई का जज्बा भुजाओं में बल बनकर नदी पार कराता रहता। शायद ये गंगा जल के स्पर्श का ही प्रभाव रहा होगा कि उनकी रग रग में ईमानदारी और सच्चाई भर गई। कहते हैं कि प्रधानमंत्री होने के बावजूद जब उनका देहांत हुआ तो वे अपने पीछे संपत्ति नहीं बल्कि कर्ज छोड़ गए थे।
1: हाँ, मुझे याद है, वाराणसी शहर बड़ी शिद्दत से अपने इस लाल को याद करता है। यहाँ के हवाई अड्डे का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया है, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मध्य प्रदेश के खुजराव हवाई अड्डे से यहाँ के लिए सीधी उड़ान भी मिलती है।
0: हम वाराणसी के कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं है, पर इच्छा रखते हैं कि अगर आपने वाराणसी न देखा हो तो एक बार यहाँ जरूर जाएं।
1: बिल्कुल श्रोताओं, अब वाराणसी की यात्रा हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले सप्ताह आपको फिर ले चलेंगे किसी दूसरे नगर की यात्रा पर। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद। इस कार्यक्रम का आलेख तैयार किया था श्रीमती पूनम जायसवाल ने और प्रस्तुत किया था प्रमोद शर्मा और
0: कंचन राजानी ने।
1: सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश

90.8 मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो मित्र प्रमिला, लेकर आई हूं आज का भारत भारती कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं युगल ध्रुपद गायन। कलाकार हैं अमिता सिन्हा महापात्रा और जानवी मुसलकर।

आज के इस कार्यक्रम में आपने युगल ध्रुपद गायन अमिता सिन्हा महापात्रा और जानवी मुसलकर से सुना। अब आज का भारत भारती कार्यक्रम खत्म करने की प्रमिला को दीजिए इजाजत। नमस्कार। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। देश का चैनल, देश के लिए। सुनते रहिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

0: और इसके साथ ही आज का तराने आजीती कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।
1: नमस्कार, मैं हूं अन्नू कपूर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। मैं प्रणाम करता हूं, नतमस्तक हूं, सलाम करता हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए हरदम तैनात रहते हैं, तैयार रहते हैं। नतमस्तक हूं साथ ही उन सभी क्रांतिकारियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें ये आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

नमस्ते भोपाल, मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद को। शाम के ठीक 5 बजे हैं, अब से लेकर रात्रि 10 बजे तक आप यूं ही हमारे कार्यक्रमों से जुड़े रह सकते हैं। आज शाम की सभा में मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो मित्र पूर्वा खले। बहुत बहुत नमस्कार।

कार्यक्रमों का सिलसिला आरंभ हो उसके पहले आइए हम आपको बताए देते हैं कि आज शाम की सभा में आप कौन कौन से कार्यक्रमों का हमारे साथ आनंद लेने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे ऋग्वेद की ऋचाओं का पाठ हमारे कार्यक्रम अक्षय निधि में। 5:10 से आनंद लीजिएगा भक्ति संगीत का मेरे साथ यानी आपके अपनी पूर्वा के साथ। वतन का राग कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा ठीक 6:00। आज ये कार्यक्रम आधारित होगा तुषार कांति घोष पर। वहीं 6:30 आप सुनेंगे कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे रानी दुर्गावती के युद्ध की विजय गाथा। शाम 7:00 सुनिएगा हमारा कार्यक्रम योग संवाद। आज इस कार्यक्रम में जो विषय है वो है वक्ता और प्रश्नकर्ता के लक्षण। श्रोताओं, आज है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस और आज इस दिवस को मनाने की जो महत्व है वो बढ़ता ही जा रहा है, तो उसी पर आधारित होगा हमारा आज का विशेष कार्यक्रम। ना भूलिएगा शाम ठीक 7:30। इस कार्यक्रम में डॉक्टर जेपी अग्रवाल मनोचिकित्सक से सुनीता सिंह ने खास चर्चा की है। रात 8:00 पेश की जाएगी रेडियो रिपोर्ट और 8:30 का वक्त होगा कार्यक्रम हिंदोस्तान हमारा। ये कार्यक्रम आज आधारित है बदरुद्दीन तैयब जी पर, जिनकी आज जयंती भी है। रात 9:00 सुनिएगा कार्यक्रम सुर सागर में गायन अपर्णा देशपांडे का और 9:30 आप सुन सकते हैं हमारा रेडियो रूपक युग प्रवर्तक विवेकानंद। तो श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे रेडियो आजाद दिन से आज शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में जानकारी। तो आइए अब शुरुआत करते हैं कार्यक्रमों के सिलसिले से। सबसे पहले आइए सुनते हैं अक्षय निधि।

0: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज सुनिए ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के सूक्त 38वें वाचन। ऋषि हैं ग्रत्समत एवं भार्गव शौनक, देवता है सविता और छंद है त्रिष्टुप।
1: उदिश्य देवः सविता सवाय शश्वत्तमं तदपा वहनी रस्थात नूनं देवेभ्यो विहिधाति रत्नमथा भजद्वीति होत्रम स्वस्तौ। संपूर्ण जगत को धारण करने वाले प्रकाशक तथा तेजस्वी सविता देव सभी प्राणियों को कर्म की प्रेरणा देते हुए प्रतिदिन उदित होते हैं। देवत्वधारियों स्तोताओं के लिए ये सविता देव रत्न धारण करते हैं, अतः वे स्तोता अपने मंगल की कामना से यज्ञ करें। विश्वस्य ही सृष्टये देव ऊर्ध्वः प्रबाहवा पृथुपाणिः सिसर्ति आपश्चिदस्य व्रत आ निम्रग्रा अयम् चिद्वातो रमते परिजमन। ये तेजस्वी सविता देव उदित होकर संपूर्ण विश्व के सुख के लिए अपनी विशाल किरणों रूपी भुजाओं को फैलाते हैं। सविता देव के अनुशासन में ही अत्यंत पवित्र जल प्रवाहित होता है तथा उन्हीं के नियमों में आबद्ध वायु भी प्रवाहित होते हुए आनंदित होती है। आशुभिश्चिद्यान्वी मुचाति नून मरीर मदतमानं चिदेतोह अह्यर्षूणां चिन्नयां अविश्यामनुव्रतं सवितुर मोक्यागात। अस्त होते हुए सविता देव अपनी द्रुतगामी रश्मियों को समेट कर चलते हुए यात्रियों को रोक देते हैं। शत्रुओं पर आक्रमण करने वाले वीरों को रोक देते हैं। उनके इस कार्य की समाप्ति के बाद ही रात्रि का आगमन होता है। पुनः समव्यद्वितम् वयन्ति मध्या कर्तोर्ण्य धाच्छक्म धीरः उत्सहम् हायास्थाद् व्यवृतुर् दर्ध ररमतिः सविता देव आगात। अंधकार रूपी रात्रि वस्त्र बुनने की तरह संपूर्ण प्रकाश को आबद्ध कर लेती है। ज्ञानी जन ऐसी स्थिति में करने योग्य कार्यों को बीच में ही रोक देते हैं तथा कभी न रुकने वाले ऋतु विभाग कर्ता सविता देव के उदित होते ही संपूर्ण जगत निद्रा को त्याग देता है। ना नौकांसि दुर्यो विश्वमायुर् वितिष्ठते प्रभवः शोको अग्नेः ज्येष्ठं माता सूनवे भागमाधा दन्वस्य केतमिषितं सवित्रा। जिस प्रकार अग्नि का तेज घरों तथा समस्त जीवन में व्याप्त है, उसी प्रकार सविता देव का तेज संपूर्ण लोकों में व्याप्त है। उषा माता सविता देव द्वारा प्रदत्त यज्ञ के श्रेष्ठ भाग को अपने पुत्र अग्नि के लिए धारण करती हैं। समाववर्ती विष्ठितो जिगीशुर विश्वेशाम कामश्च रता ममाभूत शश्वाम अपो विकृतम हित्वयागादनुव्रतम सवितुर दैव्यस्य। सविता देव के अस्त हो जाने पर विजयाकांक्षी वीर योद्धा आक्रमण को बीच में ही रोक देता है। गतिमान प्राणी घर जाने की इच्छा करते हैं तथा सतत कार्य करने वाले भी अधूरे काम को रोककर घर लौट आते हैं। त्वया हितमप्यमप्सु भागम धनवान्वा मृगयसो वितस्थुः वनानि विभवो नकिरस्य तानि व्रता देवस्य सवितुर मिनन्ति। हे सविता देव, अंतरिक्ष में आपने जो जल भाग स्थापित किया है उसे प्राणी मरु प्रदेशों में भी प्राप्त करते हैं। आपने ही पक्षियों के आश्रय के लिए जंगल प्रदान किए हैं। ऐसे तेजस्वी सविता देव के कर्म को कोई नष्ट नहीं कर सकता। याद्राध्यम वरुणो योनि मप्य मनिषितम निमिषि जरभुराणः विश्वो मार्तांडो व्रजमा पशुर गास्थशो जन्मानि सविता व्याकः। सविता देव के अस्त हो जाने पर सतत गमनशील वरुण देव सभी को सुखकारी तथा वांछनीय आश्रय प्रदान करते हैं। इस प्रकार सविता देव के अस्त होते ही पक्षी तथा जानवर अपने अपने स्थान पर पहुंचकर अलग अलग हो जाते हैं। न यस्येन्द्रो वरुणो न मित्रो वृत मर्यमा न मिनन्ति रुद्रः नारातयस्तमिदं स्वस्ति हुवे देवं सवितारं नमोभिः। जिन सविता देव के अनुशासन को इंद्र वरुण मित्र अर्यमा तथा रुद्रदेव भी नहीं तोड़ सकते हैं और न ही शत्रु तोड़ सकते हैं, ऐसे तेजस्वी सविता देव को हम अपने मंगल की कामना से नमस्कार पूर्वक आवाहित करते हैं। भगम धियम वाजयन्तः पुरंधिम नराशंसो ग्नास्पतिर नो अव्याह आये वामस्य संगते रईणाम प्रिया देवस्य सवितुः स्याम। समस्त जगत को धारण करने वाले सुखदाता स्तुत्य भजनीय ज्ञानदाता तथा प्रजापालक सविता देव हमारी रक्षा करें। उत्तम ऐश्वर्य तथा पशु आदि संपदाओं के प्राप्त होने पर भी हम सविता देव के प्रिय होकर रहें। अस्मभ्यं तद्दिवो अद्भ्यः पृथिव्यास् त्ववया दत्तं काम्यं राध आगात शम यत् स्तोत्रिभ्य आपये भवात्युरुशंसाय सवितर जरित्रे। हे सविता देव, आपके द्वारा प्रदत्त ऐश्वर्य स्तोताओं तथा उनके वंशजों के लिए कल्याणकारी है। अतः द्युलोक, भूलोक तथा अंतरिक्ष लोक का कांति युक्त ऐश्वर्य हमें प्रदान करें। हम आपकी स्तुति करते हैं।
0: अभी आप सुन रहे थे ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के सूक्त 38वें वाचन, प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम्बू त्रिपाठी।
2: साहस की बुलंद शुरुआत से लेकर आसमान की असीम ऊंचाइयों तक 8 अक्टूबर को पूरा देश मना रहा है भारतीय वायुसेना का 94वां वायुसेना दिवस।
3: वर्ष 1947-48, 1965 और 1971 के ऐतिहासिक युद्धों से लेकर ऑपरेशन मेघदूत और ऑपरेशन सफेद सागर तक विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना ने हर पल कर दिखाया है अदम्य पराक्रम, अत्याधुनिक तकनीक और सर्वोच्च बलिदान।
2: तो मध्य प्रदेश के जाबाज युवाओं, क्या आप तैयार हैं? बादलों को चीरकर देश का मान बढ़ाने के लिए तो बनिए अग्निवीर वायु, हासिल कीजिए वो मुकाम जो जिंदगी भर की पहचान बन जाए और गर्व से कीजिए भारत माँ की सेवा।
3: भर्ती और पात्रता से जुड़ी पूरी जानकारी के लिए
2: 15 एयरमैन चयन केंद्र के इंस्टाग्राम पेज 15ASC_भोपाल और आधिकारिक वेबसाइट IAFRecruitment.edcil.co.in पर विजिट करें।
3: नभस प्रशम दीप्तम।
4: जय हिंद।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ। अब ये समय है भक्ति संगीत का। भक्ति संगीत लेकर उपस्थित हूँ श्रोताओं, मैं आपके बीच आपकी रेडियो मित्र पूर्वा खले। आइए कार्यक्रम को आरंभ करें इस प्रार्थना के साथ। असतो मा सदगमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्माम अमृतम गमय। हे प्रभु, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलें, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलें, और हमारे कर्म ऐसे हों कि मृत्यु से हम अमरता को प्राप्त करें।

ईश्वर के स्मरण यानी सुमिरन से बढ़कर प्रभु को पाने का सबसे अच्छा और सरल तरीका कुछ भी नहीं। मन में उसका ध्यान हो

किसी की बुराई तलाश करने वाले मानव का चरित्र उस मक्खी से तुलना किया जा सकता है जो सारे खूबसूरत शरीर को छोड़कर केवल घाव पर ही बैठ जाती है। जरूरत है अपने में बुराइयां ढूंढने की, ना कि

निरंतर अपने पैरों पर ही रहता है। ठीक इसी तरह गाने बजाने की तरह हमें भी अपने सारे काम करते रहना चाहिए और उसके पैरों के ध्यान की तरह हमें भी परमात्मा में अपना मन लगाए रखना चाहिए।

श्रोताओं, संस्कृत में एक श्लोक है, खादति मोदते नित्यम शुनकः शूकरः खरः तेषामेषां को विशेषो वृत्तिर्येषां तु तादृशी। यानी कि खाना पीना आराम करना ये तो मनुष्य क्या, सभी पशु पक्षी भी करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति का अवसर इस मनुष्य योनि के सिवा और किसी को नहीं मिला। आइए इस कीमती जीवन को हम ईश्वर की भक्ति में समर्पित करें।

श्रोताओं, ये मानव जीवन बेहद ही दुर्लभ है, बड़ा भारी कीमती है। श्रीमद् भागवत में भी ये कहा गया है कि दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये मनुष्य की देह अत्यंत दुर्लभ है, इसकी प्राप्ति के लिए तो बड़े बड़े देवता भी ललचाते रहते हैं, क्योंकि इस देह से ही तो हम परोपकार के काम कर अपनी उन्नति कर सकते हैं।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ और आनंद ले रहे हैं भक्ति संगीत का। आज का ये कार्यक्रम आइए इस प्रार्थना के साथ समाप्त करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यानी कि सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी कोई कष्ट न देखे, सभी को अच्छा देखने को मिले और हे प्रभु किसी को भी कोई दुख न हो। इस प्रार्थना के साथ ही दीजिए अनुमति भक्ति संगीत यही समाप्त करने की। पूर्वाखले को नमस्कार। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ। देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए।

हूँ मधुश्री और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूँ देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

0: साहस की बुलंद शुरुआत से लेकर आसमान की असीम ऊंचाइयों तक 8 अक्टूबर को पूरा देश मना रहा है भारतीय वायुसेना का 94वां वायुसेना दिवस।
1: वर्ष 1947-48, 1965 और 1971 के ऐतिहासिक युद्धों से लेकर ऑपरेशन मेघदूत और ऑपरेशन सफेद सागर तक विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायु सेना ने हर पल कर दिखाया है अदम्य पराक्रम, अत्याधुनिक तकनीक और सर्वोच्च बलिदान।
0: तो मध्य प्रदेश के जाबाज युवाओं, क्या आप तैयार हैं? बादलों को चीर कर देश का मान बढ़ाने के लिए तो बनिए अग्निवीर वायु, हासिल कीजिए वो मुकाम जो जिंदगी भर की पहचान बन जाए और गर्व से कीजिए भारत माँ की सेवा।
1: भर्ती और पात्रता से जुड़ी पूरी जानकारी के लिए
0: 15 एयरमैन चयन केंद्र के इंस्टाग्राम पेज 15ASC_भोपाल और आधिकारिक वेबसाइट IAFRecruitment.edcil.co.in पर विजिट करें।
1: नभस प्रशम दीप्तम।
0: जय हिंद।
2: सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग।
2: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार।
3: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
4: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
3: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
4: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
3: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

वतन का राग कार्यक्रम में आज चर्चा एक ऐसे कलम के सिपाही की, जिनकी जीवन यात्रा एक दीपक की तरह थी, जिसने आंधियों से रोशनी का अर्थ सीखा, जिनके लिए पत्रकारिता केवल घटनाओं की खबर पहुंचाना भर नहीं था, बल्कि उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ था समय की आंखों में आंखें डालकर सच कहने का साहस। वो महान और प्रखर पत्रकार थे तुषार कांति घोष, जिनकी कलम ने गुलामी की रात में भी स्वतंत्रता का स्वप्न देखा और आजादी के बाद लोकतंत्र की चौकसी को अपना जीवन धर्म बनाया। तुषार कांति घोष का जन्म 21 सितंबर सन 1898 को अविभाजित बंगाल के कलकत्ता में हुआ था। उनका परिवार बंगाल का एक सम्मानित परिवार था। भारतीय पत्रकारिता और स्वाधीनता संग्राम से इसका गहरा संबंध था। उनके पिता शिशिर कुमार घोष भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उन पुरोधाओं में से थे जिन्होंने अपने भाइयों मोतीलाल घोष और वसंत कुमार घोष के साथ मिलकर अंग्रेजी दैनिक अमृत बाजार की शुरुआत की थी। अमृत बाजार केवल एक समाचार पत्र भर नहीं था, बल्कि ये ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विचारों का एक सशक्त और निर्भीक मंच बन चुका था। इस तरह बचपन से ही तुषार कांति घोष ने देश, समाज और स्वाधीनता की बातें सुनी, अन्याय के विरुद्ध उठती आवाजें सुनी। इसीलिए पत्रकारिता उनके लिए केवल पेशा नहीं, पारिवारिक संस्कार और राष्ट्रीय दायित्व था। उनकी आरंभिक शिक्षा कोलकाता के प्रतिष्ठित हिंदू स्कूल में हुई, जो उस समय राष्ट्रवादी मेधा का प्रमुख केंद्र माना जाता था। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबद्ध बंगवासी कॉलेज में प्रवेश लिया। यहाँ से उन्होंने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। अध्ययन के साथ साथ अंग्रेजी और बांग्ला साहित्य ने उनके भीतर भाषा की शक्ति जगाई तथा देश की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों ने उनके भीतर प्रश्न करने की बेचैनी पैदा की।

शिक्षा पूर्ण करने के बाद तुषार कांति घोष के समक्ष कई विकल्प थे, लेकिन उन्होंने अपने पारिवारिक मूल्यों और राष्ट्रीय दायित्व को सर्वोपरि मानते हुए पत्रकारिता के कठिन और जोखिम भरे मार्ग को चुना। सन 1930 के दशक की शुरुआत में उन्होंने अमृत बाजार पत्रिका के संपादक का दायित्व संभाला। उस दौर में किसी पत्र का संपादन करना केवल सुंदर और प्रभावकारी लेख लिखना भर नहीं था, ब्रिटिश सरकार की कड़ी निगरानी, क्षेत्रीय सेंसरशिप और वित्तीय अनिश्चितताओं के बीच समाचार पत्र निकालना एक युद्ध की तरह था। प्रेस चलाने के लिए कागज चाहिए, मशीन चाहिए, श्रम चाहिए और वितरण का जाल चाहिए। तुषार कांति घोष ने पत्रकारिता को केवल संपादकीय कक्ष में बैठकर नहीं समझा, वो मुद्रण कक्षों में जाते, तकनीक समझते और संकट के समय स्वयं समाधान ढूंढ निकालते। जब जेसूर क्षेत्र में कागज की कमी हुई तो कागज निर्माण और प्रसंस्करण की तकनीक समझने के लिए वो पांडुआ तक गए। तुषार कांति घोष ने भारतीय भाषाओं की पत्रकारिता को सशक्त बनाने का संकल्प लिया। इसी कड़ी में सन 1937 में अमृत बाजार पत्रिका समूह ने बंगाली दैनिक समाचार पत्र जुगांतर का प्रकाशन शुरू किया। कुछ ही समय में जुगांतर बंगाल और पूर्वी भारत का सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली बंगाली समाचार पत्र बन गया। ये अरविंद घोष के साप्ताहिक पत्र जुगांतर से अलग पत्र था। इसके माध्यम से क्षेत्रीय भाषाओं में निर्भीक पत्रकारिता और राष्ट्रवादी चेतना की एक नई लहर पैदा हुई। तुषार कांति घोष के भीतर ब्रिटिश सत्ता के समक्ष न झुकने का अटूट संकल्प था। यही कारण है कि उनके संपादन काल में अमृत बाजार पत्रिका अंग्रेज अधिकारियों और औपनिवेशिक न्यायपालिका की आंखों की किरकिरी बनी रही। तुषार कांति घोष के जीवन की सबसे उल्लेखनीय घटनाओं में से एक था सन 1935 का वो प्रसिद्ध अवमानना का मुकदमा, जिसने पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया। दरअसल 21 मार्च सन 1935 को बंगाल विधान परिषद में एनके बसु ने कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की आलोचना की थी। इसके बाद अमृत बाजार पत्रिका में कलकत्ता हाई कोर्ट शीर्षक से संपादकीय प्रकाशित हुई। इसमें अदालत के न्यायाधीशों पर कार्यपालिका के साथ निकटता के कारण न्यायपालिका की स्वतंत्रता प्रभावित होने जैसी गंभीर टिप्पणी की गई थी। इसे अदालत की अवमानना मानते हुए तुषार कांति घोष और तारिक कांति बिस्वास के विरुद्ध कार्रवाई की गई। अदालत में तुषार कांति घोष ने बताया कि उनकी अनुपस्थिति के दौरान ये लेख छपा था, लेकिन वो इसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। साथ ही उन्होंने अपने पक्ष में तर्क भी रखा। अदालत ने उन्हें माफी मांगने का अवसर दिया, लेकिन वो झुकने को तैयार नहीं हुए। परिणाम स्वरूप उन्हें 3 माह कारावास की सजा सुनाई गई। लेकिन वो जिंदगी भर न कभी झुके न रुके, वो निर्भीक निडर बस चलते रहे।

तुषार कांति घोष अपनी हाजिर जवाबी, तीक्ष्ण बुद्धि और हास्य व्यंग के लिए विशेष रूप से जाने जाते थे। अंग्रेजों के साथ उनकी संवाद शैली अत्यंत रोचक रहा करती थी। इसी तरह का एक किस्सा पत्रकारिता जगत में प्रचलित है। बताया जाता है कि एक बार बंगाल प्रांत के तत्कालीन गवर्नर ने चुटकी लेते हुए कहा, श्रीमान घोष, मैं आपकी अमृत बाजार पत्रिका नियमित रूप से पढ़ता हूँ। अखबार तो अच्छा है, लेकिन इसमें कई बार अंग्रेजी व्याकरण सही नहीं होता है और आपकी पत्रिका अंग्रेजी भाषा के साथ काफी हिंसा करती है। इस पर बिना एक क्षण गंवाए तुषार कांति घोष ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महोदय, अंग्रेजी भाषा के साथ हिंसा करना ही तो भारत के स्वाधीनता संग्राम में मेरा और मेरी पत्रिका का सबसे छोटा सा योगदान है। जवाब सुनकर गवर्नर महोदय चुप रह गए। इस तरह तुषार कांति घोष ने कलम के सहारे ऐसा युद्ध घोष किया कि ब्रिटिश सत्ता कभी चैन से नहीं बैठ सकी। अमृत बाजार पत्रिका और जुगांतर, मानो उनकी कलम ने दो भाषाओं में एक ही संदेश लिखा, जनता को जागना होगा। तुषार कांति घोष ने कभी शब्दों से तो कभी अपने मौन से भी जागरण का ये मंत्र फूंका। 16 अगस्त सन 1946 को अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग को लेकर मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आह्वान किया और कलकत्ता की सड़कों पर भयानक नरसंहार, सांप्रदायिक दंगे और आगजनी के दृश्य थे। पूरा शहर हिंसा की आग में जल रहा था। अनेक समाचार पत्र भड़काऊ खबरें छाप रहे थे, एक तरफा रिपोर्टिंग कर रहे थे। ऐसे समय में अमृत बाजार पत्रिका का संपादकीय कॉलम खाली छोड़ दिया गया। ऐसा 3 दिनों तक किया गया। 3 दिनों का ये मौन संपादकीय ब्रिटिश हुकूमत की विफलता और राजनीतिक उन्माद के विरुद्ध तुषार कांति घोष का तीखा और मौन प्रतिरोध था। स्वाधीनता के बाद भारत में कई बार ऐसी स्थितियां आईं जब केंद्र या राज्य सरकार ने मीडिया पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण का प्रयास किया। तुषार कांति घोष ने सदा इसका कड़ा विरोध किया। वो इस बात के पक्षधर थे कि समाचार पत्रों को किसी भी राजनीतिक दल, विचारधारा या कॉरपोरेट घराने का मोहरा नहीं बनना चाहिए। उन्होंने अमृत बाजार पत्रिका को एक ऐसा मंच बनाया जहां प्रशासनिक भ्रष्टाचार, नीतिगत कमियों और सत्ता के अहंकार पर बिना किसी डर के कड़ा प्रहार किया जाता था। तुषार कांति घोष प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया और द इंडियन न्यूज सोसाइटी के सर्वोच्च पदों पर रहे। उन्होंने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के गठन का पुरजोर समर्थन किया ताकि पत्रकारिता सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त रहे। इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट और कॉमनवेल्थ प्रेस यूनियन में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पत्रकार होने के साथ साथ उन्होंने बच्चों के लिए कई मनोरंजक, प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद पुस्तकें भी लिखीं। उन्होंने अमृत बाजार पत्रिका में भी बच्चों के लिए विशेष कॉलम शुरू किए थे ताकि बच्चों में पढ़ने की आदत और नैतिक मूल्यों का विकास हो। राष्ट्र निर्माण, साहित्य, शिक्षा और स्वतंत्र पत्रकारिता में उनके योगदान को देखते हुए सन 1964 में उन्हें पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया गया। एक समृद्ध और प्रेरणादायक जीवन जीते हुए 29 अगस्त सन 1994 को उन्होंने अंतिम सांस ली। नमन ऐसी महान विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम वतन का राग, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल देश के लिए, सुनते रहिए।
1: संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं।

0: नमस्कार, मैं हूं रूप कुमार राठौड़। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
1: साहस की बुलंद शुरुआत से लेकर आसमान की असीम ऊंचाइयों तक 8 अक्टूबर को पूरा देश मना रहा है भारतीय वायुसेना का 94वां वायुसेना दिवस।
2: वर्ष 1947-48, 1965 और 1971 के ऐतिहासिक युद्धों से लेकर ऑपरेशन मेघदूत और ऑपरेशन सफेद सागर तक विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायु सेना ने हर पल कर दिखाया है अदम्य पराक्रम, अत्याधुनिक तकनीक और सर्वोच्च बलिदान।
1: तो मध्य प्रदेश के जाबाज युवाओं, क्या आप तैयार हैं? पागलों को चीर कर देश का मान बढ़ाने के लिए तो बनिए अग्निवीर वायु, हासिल कीजिए वो मुकाम जो जिंदगी भर की पहचान बन जाए और गर्व से कीजिए भारत माँ की सेवा।
2: भर्ती और पात्रता से जुड़ी पूरी जानकारी के लिए
1: 15 एयरमैन चयन केंद्र के इंस्टाग्राम पेज 15ASC_भोपाल और आधिकारिक वेबसाइट IAFRecruitment.edcil.co.in पर विजिट करें।
2: नभस प्रशम दीप्तम।
1: जय हिंद।
3: क्या दिल ने कहा, क्या तुमने सुना?
4: हाय, मैं हूँ ईशा और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
5: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से।
6: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा और आज हम अपने कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से की 10वीं कड़ी लेकर हाजिर हैं। इतिहास के पन्नों से हमने अपनी पिछली कड़ी में सुना था, यानी 9वीं कड़ी में सुना था कि गढ़ा राज्य और दिल्ली की मुगल सेना के बीच अब से 459 वर्ष पहले सन 1564 ईस्वी में नरई का ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में पहले दिन गढ़ा के राजा वीर नारायण ने मुगल सेना का सामना किया और 3 बार मुगल सेना को नरई घाटी से पीछे धकेल दिया। इस प्रकार पहले दिन गढ़ा राज्य की विजय हुई, किंतु युद्ध में वीर नारायण के घायल हो जाने पर उन्हें सुरक्षित युद्ध क्षेत्र से बाहर निकाल लिया गया और युद्ध की कमान रानी दुर्गावती ने अपने हाथों में ले ली। वो अत्यंत पराक्रम से लड़ रही थी। उस दिन दोपहर के बाद आसफ खां की सेना के तोपखाने ने भी आग उगलनी शुरू कर दी। दोनों सेनाओं के मध्य भीषण युद्ध चल रहा था। दोनों ओर के सैनिक हताहत हो रहे थे। शाम होने को थी। इसी बीच रानी दुर्गावती की दाई कनपटी पर एक तीर आकर लगा, जिसे उन्होंने अपने हाथों से निकाल दिया। लेकिन अगले ही क्षण एक तीर और उनकी गर्दन में जा लगा और दूसरा तीर उनके सीने पर। रानी दुर्गावती अच्छी तरह जानती थी कि शत्रु मुगल सेना के हाथों जीवित लगना कितना अपमानजनक होगा। उन्होंने स्थिति को भांपते हुए अपने महावत आधार सिंह बखीला को कहा कि वो अपनी कटार से रानी की जीवन लीला समाप्त कर दे, जिससे वो शत्रु के हाथ ना लगे। लेकिन महावत आधार सिंह बखीला तो उन्हें अपनी मां मानते थे, वो ऐसा कैसे कर सकते थे। उन्होंने रानी के सामने हाथ जोड़ दिए और उनसे निवेदन किया कि वो किसी भी प्रकार से युद्ध क्षेत्र से उन्हें बाहर ले जाएंगे, वो केवल उन्हें आज्ञा प्रदान करें। लेकिन रानी दुर्गावती युद्ध क्षेत्र से कैसे पलायन कर सकती थी, इसलिए वो इसके लिए राजी नहीं हुई। अगले ही पल उन्होंने स्वयं ही अपने आप को कटार मार ली और गढ़ा की अस्मिता के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया। रानी दुर्गावती वीरांगना हुई। एक बार फिर इसी विषय पर हमसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रसिद्ध पुरातत्वविद डॉक्टर पूजा सक्सेना। पूजा जी, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
7: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।
6: पूजा जी, आगे जानना चाहेंगे आपसे कि रानी के प्राणोत्सर्ग के उपरांत क्या हुआ।
7: रानी दुर्गावती गढ़ा राज्य की अस्मिता के लिए वीरांगना हुई थी। वह प्राणोत्सर्ग करने के बाद भी विजयी हुई। उनकी वीरता, शौर्य, पराक्रम, जिजीविषा आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण बन गई। जैसा कि आख्यान में भी कहा गया है कि ताक निशाना महारानी के हो नहीं कोई उपचार, जख्मी चोट लगिन सतन माँ बहे रक्तन की धार। माता का रक्त जो है वो बह रहा है, उनके सीने पर वाण लगा है, चोट लगी है। जोर फिरंगी माथा माँ मोहे नहीं जावे आँच, नारी के तन आए बचा हूँ यही है हवे मोला सांच। नारी का तन अब बचाना होगा, उसके अपमान से बचाना होगा। कहत कहत माता गिरिए पावे गति निर्वाण, अमृत चोला ला करके हो परलोके सिधार। फिर आगे कहते हैं कि माता अब गिर रही हैं और निर्वाण को प्राप्त कर रही हैं। सोचिए, एक वीरांगना है, वो युद्ध क्षेत्र में युद्ध करके अपने कर्तव्य का निर्वाह करके अब निर्वाण को प्राप्त हो रही है। ऐसे भी निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है। अमृत चोला ला करके हो परलोके सिधार, और उन्होंने तो अब अमृत का चोला पहन लिया है
6: जी।
7: और वो अब परलोक को सिधार रही है। चलो चढ़ी गढ़ा माँ मितवा, करवो तन निसार, हाथ जोर विनती करे हो जय जय होए तुम्हार। तो माँ की जय है जिन्होंने अपना सब कुछ निछावर कर दिया इस युद्ध क्षेत्र में।
6: रानी महारानी जो आए, माता दुर्गा जो आए, रणमा जूझे तलवार, माता दुर्गा कहाए, जय जय होवे तुम्हार, जय जय होवे तुम्हार। वाह पूजा जी, रानी के प्राणोत्सर्ग करने पर जिस प्रकार हमें आख्यान में ये वर्णन मिलता है, उसी तरह क्या अन्य ग्रंथों में भी कुछ उल्लेख है?
7: जी हाँ, गणा राज्य के ख्याति लब्ध कवि थे कवि केशव दीक्षित और नरहरि महापात्र, जिनकी चर्चा हमने पहले भी की थी। इनके द्वारा गणेश नृप वर्णन संग्रह श्लोका नाम का एक ग्रंथ लिखा गया था, जिसमें इन्होंने लिखा कि रानी दुर्गावती वीर शिरोमणि राजा दलपति शाह की लक्ष्मी के समान है, जिसकी स्तुति चारों दिशाओं में श्रेष्ठ राजाओं और उत्तम ब्राह्मणों द्वारा की जाती है। सत्य के प्रति आसक्त मन वाली, चंद्रमा की तरह पवित्र कीर्ति युक्त, कर्ण के समान दानी, दुर्गा के अवतार वाली यह रानी दुर्गावती अपने असंख्य प्रबल शत्रुओं का मान हरण कर लेती है
6: जी।
7: इतना सुंदर वर्णन इन्होंने कहा है। और आगे लिखते हैं कि जिसके नाम की कीर्ति रूपी लता स्वर्ग पृथ्वी पाताल तीनों लोकों में अबाद गति से गंगा की तरह बढ़ने लगी, दुर्गा की अवतार यह रानी दुर्गावती अपने असंख्य प्रबल शत्रुओं का मान हरण करने वाली थी।
6: वाह क्या बात है पूजा जी। जैसे आपने बताया था कि मुगल सेना की तरफ से भी कुछ ऐसे ग्रंथ मिले हैं जिसमें रानी के बारे में उल्लेख था, क्या प्राणोत्सर्ग के बाद कभी कुछ उल्लेख है उनमें?
7: बिल्कुल, मुगल साहित्य में भी रानी दुर्गावती के पराक्रम की चर्चा होती रही। इसलिए अकबरनामा में उस पल को चित्रित किया गया जब रानी को अनेक तीर लग चुके थे।
6: अच्छा।
7: वह प्राणोत्सर्ग करने ही वाली थी। इस पेंटिंग में दिखाया गया है कि उनके हाथी सरमन को भी अनेक तीर लगे हुए हैं, फिर भी वह रण में चिंघाड़ रहा है। महावत आधार सिंह बखीला ने भी रानी को बचाने के लिए तलवार उठा रखी है और वह भी वीरता पूर्वक लड़ रहा है। उनके सेनानायक उन्हें चारों ओर से बचाने का प्रयास कर रहे हैं और मुगल सेना का शिकंजा कसता ही जा रहा है। अनेक सैनिक नदी के किनारे लहूलुहान पड़े हैं। अबुल फजल ने इस भीषण युद्ध का शब्दों में भी जिक्र किया, जिसमें अनेक सैनिकों के हताहत होने और गढ़ा राज्य के प्रमुख सेनापतियों जैसे कनूर कल्याण बखीला, चकरमान खरचली, खान जहान डकीत और महारक ब्राह्मण के नाम भी उल्लेखनीय हैं, जिन्होंने इस युद्ध में वीरगति प्राप्त की थी।
6: अच्छा।
7: मुगल इतिहासकार बदायूं ने भी रानी के प्राणोत्सर्ग पर लिखा है, लेकिन जिस तरीके से लिखा है वो बहुत बुरा है। बदायूं ने लिखता है कि प्रत्येक घृणित पशु अपना घृणित भोजन प्राप्त कर ही लेता है, यानी उसका कहने का अर्थ है कि दुर्गावती को जैसी मौत मिलनी चाहिए थी वैसी ही मिली, जो उसकी नियति होनी चाहिए थी वैसी ही हुई
6: जी।
7: और यहाँ तक ही वो रुकता नहीं है और आगे लिखता है कि यह सच है कि किसी ईसाई का कुआं शुद्ध नहीं होता, किंतु वह कम से कम एक यहूदी की लाश धोने के काम तो आ ही जाता है। युद्ध में शत्रुओं के लिए

0: मुगल सेना के साहित्य में यदि इस तरह का कुछ मिला है तो निश्चित रूप से इस तरह की लिखावट ही हम कह सकते हैं कि वो घृणित है। पूजा जी, रानी तो यहाँ वीरांगना हो गई, ये जिक्र आ गया, कहानी हमारी यहाँ तक हो गई, लेकिन जब रानी वीरांगना हुई उसकी एक दिन पहले उनके पुत्र जो कि राजा वीर नारायण थे वो बहुत गंभीर रूप से घायल हुए थे और उन्हें सेना किसी तरह बचा करके ले गई थी, तो उस सेना की टुकड़ी का क्या हुआ, राजा वीर नारायण का क्या हुआ और क्या मुगल सेना ने उन पर हमला नहीं किया?
1: जैसा कि हम जानते हैं कि नरई के युद्ध में घायल राजा वीर नारायण को गढ़ा की सेना की एक टुकड़ी बचाकर चौरागढ़ के किले में ले गई थी
0: जी।
1: और यहाँ बुरी तरह से घायल वीर नारायण का उपचार होने लगा, लेकिन आसफ खां को ये खबर लग चुकी थी कि वीर नारायण चौरागढ़ के किले में है। उसने चौरागढ़ की ओर अपनी सेना सहित कूच कर दिया।
0: अच्छा।
1: आसफ खां की सेना का सामना गढ़ा राज्य के मंत्री आधार सिंह कायस्थ ने किया, किंतु आसफ खां की सेना के सामने निश्चित ही था कि चौरागढ़ का बचना मुश्किल था
0: जी।
1: इसलिए जब सेना चौरागढ़ के प्रवेश द्वार पर पहुंच गई तो घायल वीर नारायण भी पूरी वीरता से उनका सामना करते हुए लड़े, किंतु इस युद्ध में वीर नारायण युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए।
0: निश्चित रूप से गढ़ा की सेना यहाँ पर बहुत वीरता से लड़ी, लेकिन बहुत दुखद के माँ और बेटे दोनों की मृत्यु एक दो दिन के अंदर अंदर वहां पर हो गई। तो क्या फिर मुगल सेना ने किले में प्रवेश किया?
1: अब यह निश्चित था कि मुगल सेना किले में प्रवेश करेगी ही।
0: जी जी।
1: वीर नारायण वीरगति को प्राप्त हो ही चुके थे
0: जी।
1: आधार कायस्थ भी मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे, तो मुगल सेना ने किले में प्रवेश किया। लूटपाट, आगजनी, फसलों को नुकसान पहुंचाना, पशुओं को खदेड़ना, ये सब तो होना ही था
0: जी।
1: और हुआ भी, लेकिन इसके अलावा स्त्रियों के साथ अत्यधिक दुर्व्यवहार होगा जैसा कि उस समय होता भी था, तो उसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। इसलिए युद्ध के परिणाम के अनुमान के अनुसार किले में जौहर की तैयारियां की जा चुकी थी। जैसे ही मुगल सेनापति आसफ खां की सेना चौरागढ़ के किले के अंदर घुसी, दूसरी ओर किले की स्त्रियों ने भीषण अग्नि में प्रवेश कर जौहर कर लिया। यह कितना भयावह दृश्य रहा होगा आप सोच भी नहीं सकते हैं। अबुल फजल ने इस जौहर का उल्लेख इस प्रकार किया है कि वृत्ताकार यानी कि एक गोलाकार कुंड में भीषण आग लगी थी, सभी स्त्रियां एक एक करके उसमें प्रवेश कर गईं। वह कहता है जैसे गुलाब की फसल आग लग जाने पर राख में तब्दील हो जाती है, उसी प्रकार स्त्रियां भी अग्निकुंड में प्रवेश करते ही राख में तब्दील हो गईं। सभी स्त्रियां उसमें जलकर राख हो गईं। वह आगे लिखता है कि जब उस जगह का द्वार खोला गया जहां अग्निकुंड था तो केवल दो ही स्त्रियां जीवित अवस्था में मिली थीं।
0: अच्छा।
1: ये दोनों स्त्रियां इसलिए बच गई थीं क्योंकि लकड़ी का एक विशाल शहतीर यानी कि बीम
0: जी
1: उनके पास आकर इस प्रकार गिरा कि वह आग में झुलस नहीं पाई और बेहोश हो गई।
0: वाकई श्रोताओं, कितना विभत्स, कितना ये कठिन दृश्य रहा होगा जिस किसी ने भी वो देखा होगा, भले ही वो दुश्मन सेना ही क्यों ना हो। और यदि आप उस जौहर की कल्पना भी करें तो रोंगटे यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि जो गढ़ा की जो महिलाएं थीं वो वाकई में सब की सब अपनी रानी की तरह ही उस जौहर में कूदकर वीरांगना हुई, क्योंकि उन्होंने अपने आप को दुश्मन के हाथों नहीं सौंपने दिया। पूजा जी, ये दो स्त्रियां कौन थी जो उस कुंड में जौहर करने के बाद भी किसी तरह से बच गई थी और क्या उनके साथ भी बुरा सलूक हुआ?
1: ये दोनों स्त्रियां कौन थीं इसका भी उल्लेख अबुल फजल ने ही किया है। पहली थी वीरांगना रानी दुर्गावती की बहन कमलावती।
0: अच्छा।
1: और दूसरी थी पूरागढ़ के राजा की कन्या यानी पूरागढ़ की राजकुमारी। इनका नाम तो नहीं मिलता है
0: जी।
1: पर उल्लेख है। इस राजकुमारी से ही राजा वीर नारायण का विवाह तय हुआ था और कुछ ही दिनों में इनका विवाह होने भी वाला था, किंतु राजा वीर नारायण के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो जाने का समाचार सुनते ही पूरागढ़ की राजकुमारी ने सहर्ष जौहर करना स्वीकार किया,
0: जबकि वो विवाहित भी नहीं थी।
1: जी हाँ, तब वह विवाहित भी नहीं थी, 16-17 साल की रही होंगी। वह अन्य स्त्रियों के साथ जौहर के लिए अग्निकुंड में सहर्ष ही प्रवेश कर गई थी, संभवतः रानी दुर्गावती की बहन कमलावती और इस राजकुमारी ने सर्वप्रथम अग्निकुंड में प्रवेश किया होगा। क्योंकि शायद आग पूरी तरह फैल नहीं पाई होगी और आग लगते ही ऊपर की ओर लगा लकड़ी का एक विशाल शहतीर यानी बीम का कोना जल गया होगा और वो नीचे

0: गिरा। उसके गिरते ही ये दोनों उसके पीछे दब कर बेहोश हो गईं और बच गईं। लेकिन इनका बचना शायद जौहर से भी ज़्यादा घातक सिद्ध हुआ। इनकी जो परिणति हुई उसका भी उल्लेख मिलता है। रानी दुर्गावती की बहन कमलावती के साथ ही राजकुमारी को भी अकबर के मुगल हरम की घृणित यातनाओं को झेलना पड़ा।
1: हो, ये कितना दुखद है श्रोताओं। देखिए कि एक 16-17 साल की जो बालिका जिसका विवाह राजा से तय हुआ है, और जब उस बच्ची ने, उस बालिका ने, उस तरुणी ने जब ये सुना कि उसके होने वाले पति वीर गति को प्राप्त हो गए हैं, तो वो सहर्ष जौहर के लिए तैयार हो गई और उस किले में आ गई जहाँ पे जौहर होना तय हुआ था। मनचाही मौत तो उसे नसीब नहीं हुई, वो किसी तरह बच गई, लेकिन फिर भी उसके शौर्य की गाथा सुनकर हम आज उसे वीरांगना निश्चित रूप से कह सकते हैं। लेकिन यहाँ आप अकबर का चरित्र देखिए कि अकबर का जो हरम था जहाँ इन बची हुई दो मासूमों को वहाँ पर ले जाया गया, जो किसी तरह मौत के मुँह से बच गई थी, फिर भी अकबर के हरम में उन्हें शामिल किया गया। ये कितना घृणित था, और इससे समझ में आता है पूरी मुगल सेना का चरित्र किस तरह का था। पूजा जी, जैसा कि महिलाओं ने जिस स्थिति से बचने के लिए जौहर किया था उससे ये तो नहीं बच पाई, लेकिन जिसके लिए हमेशा से अकबर की सेना, मुगल सेना और पहले के भी मुगल बदनाम थे कि जब वो युद्ध क्षेत्र के लिए जाते थे, जब वो कहीं किसी तरह से विजय प्राप्त कर लेते थे, उसके बाद वो जो जो चीज़ें करते थे वहाँ पर, क्या यहाँ पे भी उन्होंने वही किया, लूटपाट मचाई, क्या फसलों को नुकसान पहुँचाया?
0: बिल्कुल, रानी दुर्गावती के प्राणोत्सर्ग के बाद आसफ खां की सेना गढ़ा राज्य में घुस गई
1: जी।
0: और जैसा कि अक्सर मुगल सेना किया करती थी, उन्होंने यहाँ अंधाधुन पशुओं को खदेड़ा, फसलों को नुकसान पहुँचाया और उससे भी अधिक शहरों में लूटपाट की, गाँवों में घुस गए, वहाँ लूटपाट की। इसके अलावा जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत सारे मंदिरों को, मठों को क्षतिग्रस्त किया। और लंबे इतिहास में अगर हम देखें तो जो हम एक देख रहे थे कि गढ़ा राज्य में वैष्णव संप्रदाय की एक बहुत बड़ी श्रृंखला चल रही थी, लगातार आचार्य आ रहे थे और वैष्णव धर्म के अनेक मठ मंदिर यहाँ बन रहे थे, उनमें विद्या अध्ययन और अध्यापन किया जा रहा था, उस सब पर एक लगाम सी लग गई
1: जी।
0: और बहुत लंबे समय तक, हम देखते हैं लगभग 100 वर्षों तक, फिर दोबारा इस तरीके के अध्यापन केंद्र हमको गढ़ा राज्य में न के बराबर दिखाई देते हैं
1: जी।
0: इसके अलावा जो मंदिरों का निर्माण हो रहा था वो भी रुक गया और बहुत तरीके से क्षति पहुँचाई गई।
1: अच्छा पूजा जी, एक और चीज़ का वर्णन यहाँ पर सुनने को आता है कि आसफ खां, जिसे कि अकबर ने खुद वहाँ पर अपनी सेना का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा था, उसने खुद अकबर से ही यहाँ पर गद्दारी की थी, क्या ये बात सही है?
0: बिल्कुल सही है। चौरागढ़ पर अधिकार करने के उपरांत आसफ खां को अपरिमित धन मिला, कोई सीमा नहीं थी जिसकी
1: जी।
0: अबुल फजल खुद लिखता है कि उसे वहाँ सिक्के, ठोस रूप में सोना, नक्काशीदार पात्र, हीरे जवाहर मोती, सोने से बनी पशुओं की अनेक ठोस आकृतियां और अन्य दुर्लभ कीमती वस्तुएं मिली थीं। उसे 100 से अधिक बड़े बड़े घड़े मिले थे जो सोने के अशर्फियों से भरे हुए थे। लेकिन वह आगे भी लिखता है कि आसफ खान ने मुगल शासक अकबर के साथ ही धोखाधड़ी की, यह तो उसका पुराना चरित्र ही था
1: जी।
0: और चौरागढ़ के लूट के माल का सही ब्यौरा अकबर को आसफ खान ने दिया ही नहीं, बल्कि जो धन, सोना चांदी, हीरे जवाहरात, बड़ी संख्या में हाथी और अन्य दुर्लभ वस्तुएं मिली थीं, उसकी सही जानकारी उसने अकबर को दी ही नहीं
1: जी।
0: उसका 10% भी उसने नहीं बताया, ऐसा अबुल फजल ने लिखा है
1: जी।
0: जिसका खुलासा बाद में हुआ था और पता चला कि 10% ही केवल बताया गया था। अकबर नामा की एक अन्य पेंटिंग है जिसमें आसफ खां को चौरागढ़ की लूट का माल अकबर के सामने पेश करते हुए दिखाया गया है।
1: अच्छा,
0: इसमें सोने की अशर्फियों से भरे हुए कई थाल दिखाए गए हैं और कुछ में तो हीरे जवाहरत भरे हुए हैं
1: जी।
0: कुछ हाथी खड़े हैं और कुछ अन्य दुर्लभ वस्तुएं भी वो पेश कर रहा है जो उसने गढ़ा राज्य से लूटी थी
1: जी।
0: यानी जो पेंटिंग में दर्शाया गया है वह तो चौरागढ़ से प्राप्त संपदा का बहुत ही कम भाग है, किंतु मुगल दरबार इतनी संपदा देखकर ही आश्चर्यचकित हो गया था। आसफ खान लूट के माल का कुछ अंश अकबर को देकर और रानी को प्राणोत्सर्ग पर विवश करने जैसे कुकृत्य पर वाहवाही बटोर कर गणराज्य वापस लौट आया।
1: अच्छा,
0: इसके बाद मुगल दरबार और गणराज्य के बीच युद्ध के उपरांत की संधि हुई।
1: अच्छा,
0: गणराज्य की ओर से अपना अगला उत्तराधिकारी चंद्र शाह को घोषित किया गया। चंद्र शाह राजा वीर नारायण के चाचा थे, यानी कि राजा दलपत शाह के छोटे भाई और वीरांगना रानी दुर्गावती के देवर हुए
1: जी।
0: तो इस युद्ध के परिणाम स्वरूप गढ़ा के विशाल राज्य पर मुगलों का कब्जा हो गया
1: जी।
0: हमने गढ़ा राज्य के प्रतापी राजा संग्राम शाह के विषय में जब चर्चा की थी
1: जी।
0: तो बताया था कि उनके अधिकार में 52 किले थे। इन 52 गढ़ों में से 10 गढ़ गढ़ा राज्य को अकबर को देने पड़े।
1: पूजा जी, जो संधि के मुताबिक गढ़ा राज्य और मुगल शासक के अकबर के बीच जो संधि हुई, तो उसमें जो 10 किले थे, जो 10 गढ़ थे, वो मुगल शासक अकबर को गढ़ा राज्य ने दे दिए, तो क्या फिर अकबर ने उन पर शासन किया उसके आगे?
0: जी हाँ, अब ये 10 गढ़ों पर मुगल शासक का अधिकार था
1: जी।
0: और आसफ खान गढ़ा लौट चुका था
1: जी।
0: अब वो यहाँ का सूबेदार बन गया था। उसके पास अकूत संपदा थी जो उसने गढ़ा राज्य से लूटी थी
1: जी।
0: जिसका पता अकबर को भी नहीं था
1: जी।
0: तो अब वो यहाँ आकर अपनी मनमानी करने लगा। और जब अकबर को खबर पहुंची, तब फिर अकबर ने उसकी खबर ली।
1: अच्छा।
0: ये आगे का इतिहास है।
1: अच्छा।
0: लेकिन जब 10 गढ़ मुगल साम्राज्य के पास आ गए, तो अकबर को ये बात बहुत जल्दी समझ में आ गई कि इन गढ़ों पर दिल्ली से शासन करना अत्यधिक कठिन है। ये विंध्य पर्वत श्रृंखला के घने जंगलों में है, इन पर कब्जा जमाए रखना आसान नहीं था। इसलिए अकबर को यह गढ़ गोंडों को वापस करने पड़े।
1: वाह।
0: किंतु अकबर ने यह गढ़ गढ़ा मंडला के गोंड राजवंश के उत्तराधिकारी चंद्र शाह को वापस नहीं किए।
1: अच्छा।
0: बल्कि उन गढ़ों में जो स्थानीय किलेदार आदि थे, उनको ये गढ़ वापस किए गए, जिससे नए गोंड राजवंशों का उदय हुआ।
1: अच्छा।
0: ये जो 10 गढ़ दिए गए थे, ये थे रायसेन, कारूबाग, कुरबाई, भोपाल, भोरासो, गढ़गुन्नौर, बारीगढ़, चौकीगढ़, राहतगढ़ और मकड़ाई।
1: अच्छा।
0: ये सभी किले मध्य प्रदेश की वर्तमान राजधानी भोपाल
1: जी।
0: और उसके आसपास स्थित हैं।
1: जी।
0: भोपाल और रायसेन तो आसपास हैं ही, हम जानते हैं, मध्य प्रदेश में, और आजकल बड़े शहर भी हैं। गढ़गुन्नौर अब गिन्नौरगढ़ के नाम से जाना जाता है
1: जी।
0: बारीगढ़, चौकीगढ़, राहतगढ़ ये भी भोपाल के आसपास के जिलों में स्थित हैं
1: जी, बिल्कुल।
0: मकड़ाई और कारूबाग यह मध्य प्रदेश के हरदा जिले और उसके आसपास स्थित हैं। तो गिन्नौरगढ़ से भोपाल के गढ़ा राज्य का उदय हुआ, जिसमें सुप्रसिद्ध रानी कमलापति हुई
1: जी, बिल्कुल।
0: और मकड़ाई भी गोंड शासित स्वतंत्र राज्य बना, जो सर्वाधिक लंबे समय तक, यानी कि भारत की स्वतंत्रता तक, 1947 तक
1: जी,
0: गोंड राजवंश द्वारा शासित रहा।
1: अच्छा।
0: इधर गढ़ा मंडला के गोंड राजवंश में राजा चंद्र शाह के उत्तराधिकारी भी हुए
1: जी।
0: उनके उपरांत मधुकर शाह और प्रेम शाह क्रमशः गढ़ा के राजा बने
1: जी।
0: यहाँ जो उल्लेखनीय राजा रहे वो थे हृदय शाह
1: जी, बिल्कुल,
0: जो 1635 ईस्वी में सिंहासन पर बैठे
1: जी,
0: जिन्होंने गढ़ा की राजधानी स्थानांतरित करके वर्तमान मंडला जिला जो है मध्य प्रदेश का
1: जी,
0: वहां पर नर्मदा नदी के किनारे रामनगर के नाम से बसाई।
1: तो सच में बहुत इंटरेस्टिंग जानकारियां श्रोताओं हमें मिल रही हैं। 10वीं कड़ी आप सुन रहे हैं इतिहास के पन्नों से की, और हमारे साथ बनी हुई है इन तमाम एपिसोड्स में डॉक्टर पूजा सक्सेना, प्रसिद्ध पुरातत्वविद। पूजा जी, इसके बाद की कहानी क्या, किसका जिक्र होने वाला है, थोड़ा सा एक हिंट दे दीजिए, क्योंकि आज तो समय हो गया है, श्रोताओं की उत्सुकता जरा बरकरार रहनी चाहिए।
0: अब हम आगे जो सुनेंगे वो राजा हृदय शाह की कहानी सुनेंगे, उन्होंने अपनी राजधानी कैसे परिवर्तित की
1: जी,
0: कैसे बसाई, और क्योंकि वो बहुत अधिक संगीत प्रेमी थे।
1: अच्छा।
0: तो संगीत में उनका जो योगदान है वो उल्लेखनीय है, और स्थापत्य कला में भी। तो अगली कड़ी में हम उनके बारे में
1: जानेंगे। चलिए, तो राजा हृदय शाह, यानी कि जो कि राजा हृदय शाह के नाम से बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, खास तौर पर बुंदेलखंड रीजन में, हमारे पूरे मध्य प्रदेश में, उनके बारे में हम अपने अगले एपिसोड में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए अपने रेडियो मित्र संदीप शर्मा को। हम आपको बता दें, पूजा जी हमारे साथ बनी हुई हैं, डॉक्टर पूजा सक्सेना। अगले एपिसोड में भी पूजा जी हमारे साथ रहेंगी, तमाम जानकारियाँ हमसे साझा करेंगी। इस पूरे एपिसोड को रिकॉर्ड किया है और संपादन किया है अमित कुंदानी ने। बहुत बहुत शुक्रिया। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। इतिहास के पन्नों से, इतिहास के पन्नों से।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल देश के लिए। सुनते रहिए अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।
3: नमस्कार, मैं हूं अभिजीत दा, अभिजीत भट्टाचार्य, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। देश को आज़ादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है, जिन्होंने भारत माता को अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद कराया। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
4: साहस की बुलंद शुरुआत से लेकर आसमान की असीम ऊंचाइयों तक 8 अक्टूबर को पूरा देश मना रहा है भारतीय वायुसेना का 94वां वायुसेना दिवस।
5: वर्ष 1947-48, 1965 और 1971 के ऐतिहासिक युद्धों से लेकर ऑपरेशन मेघदूत और ऑपरेशन सफेद सागर तक विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना ने हर पल कर दिखाया है अदम्य पराक्रम, अत्याधुनिक तकनीक और सर्वोच्च बलिदान।
4: तो मध्य प्रदेश के जाबाज युवाओं, क्या आप तैयार हैं? बादलों को चीरकर देश का मान बढ़ाने के लिए तो बनिए अग्निवीर वायु। हासिल कीजिए वो मुकाम जो जिंदगी भर की पहचान बन जाए, और गर्व से कीजिए भारत माँ की सेवा।
5: भर्ती और पात्रता से जुड़ी पूरी जानकारी के लिए
4: 15 एयरमैन चयन केंद्र के इंस्टाग्राम पेज 15ASC_भोपाल और आधिकारिक वेबसाइट IAFRecruitment.edcil.co.in पर विजिट करें।
5: नभास प्रशम दीप्तम।
6: जय हिंद।
7: की हूँ कोई बच्ची नहीं, नई हूँ पर कच्ची नहीं,
8: मानो या ना मानो तुम

0: को जन्म देती है और वक्ता की दृष्टि ही शब्दों को ज्ञान का रूप देती है। आज हम जानेंगे कि एक सच्चा प्रश्नकर्ता कैसा हो जिसकी जिज्ञासा केवल उत्तर पाने की नहीं सत्य को समझने के लिए उठे, और वो वक्ता कैसा हो जिसके शब्द केवल सुनाई न दें बल्कि श्रोता के भीतर विचार का दीप जला दें। तो आइए आज योग संवाद कार्यक्रम में प्रवेश करें उस संवाद की परंपरा में जहां प्रश्न विनम्रता से जन्म लेते हैं और उत्तर आत्मबोध की ओर ले जाता है। आज का विषय वक्ता और प्रश्नकर्ता के लक्षण। हमारे बीच बातचीत के लिए उपस्थित हैं योग अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी। नमस्कार शशिकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका योग संवाद के इस अंक में।
1: नमस्कार।
0: वक्ता और प्रश्नकर्ता के लक्षण हम जानेंगे जो योग वासिष्ठ में बताया गया है। मेरे मन में पहला प्रश्न तो यही है, जब इसके पन्ने में पलट रही थी तो राज विद्या और राज गुह्य ज्ञान की चर्चा हुई, तो आप बताएं कि ये क्या है।
1: देखिए, राज विद्या राजगुह्य ज्ञान इसे इसलिए कहा गया कि सर्वप्रथम जो यह अध्यात्म विद्या है यह राजसभा में उपदिष्ट हुई, तदनंतर इसका प्रसार लोक में हुआ, इसी कारण इसे राज विद्या कहा गया। वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, राज विद्या एवं राजगुह्य नाम से जिसकी प्रसिद्धि है उस उत्तम अध्यात्म ज्ञान को पाकर राजा लोग दुख से रहित हो परमानंद को प्राप्त हो गए। देखिए, सतयुग के समाप्ति से पूर्व भारत में जो पवित्र कर्मकांड तथा ज्ञान कांड का उपदेश होता था वो अज्ञान रूपी रोग के वशीभूत रहने वाले लोगों के कष्ट को दूर करने के लिए होता था। अब यहां पर अभी वर्तमान में जब कलयुग आ गया तो इसमें इसके क्रम बदल गए। अब कर्मकांड पवित्रता का विषय नहीं रहा
0: जी।
1: अब कर्मकांड में देखें तो जो कर्मकांड कराने वाले विशेषज्ञ हैं उनकी भी अपनी कामनाएं हैं, और जो लोग कर्मकांड करा रहे हैं उनकी भी अपनी कामनाएं हैं। और पवित्रता इसलिए नहीं है कि जैसे कहा गया कि चित्त की अशुद्धि का मूल कारण है अज्ञान, तो देखें तो कर्मकांड की जो पूरी साधना है वो एक प्रकार से अज्ञान से प्रेरित है, वो मोक्ष के लिए नहीं है
0: जी।
1: जबकि उस समय सतयुग में कर्मकांड भी मोक्ष के लिए था, संसार में किस तरीके से आप अपनी अज्ञानता को दूर कर सकें, अंतःकरण के दूषण को समाप्त कर सकें, अंतःकरण को निर्मल कर सकें, क्योंकि आप देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितना सुंदर कहा, निर्मल मन जन सो मही पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा।
0: बड़ी रोचक सी बात है कि कोई भी कर्मकांड मन को निर्मल करने के लिए नहीं है।
1: नहीं है आज के समय में,
0: आज के समय
1: उस समय था सतयुग में। तो सतयुग के समाप्ति के बाद ऐसा मतलब उसका क्षरण हुआ, तो फिर उस समय ये जो उपदेश था ये राजाओं तक सीमित रखा गया। कई बार ये आजकल के समाज में मुझे सामना करना पड़ता है ऐसे प्रश्नों का कि इसका मतलब इसे गोपनीय रखा गया। गोपनीय नहीं रखा गया। ये देखिए क्या है, कोई भी साधन अगर पवित्र हृदय या पवित्र ज्ञान के साथ रहने वाले लोगों के पास है तो वो साधन आपके भय को निर्मूल करने का कारण बन सकता है, लेकिन वही अपवित्र कामना के साथ किसी के हाथ में वो साधन आ जाए तो

0: अब देखिए कितनी बड़ी बात है। आप देखिए कई बार मन की मलिनता से लोग वैराग्य की तरफ उन्मुख होते हैं।
1: जी जी,
0: संसार की सिद्धि नहीं हुई इसलिए वैरागी हो गए, या संसार में दुख दिखाई दिया इसलिए वैरागी हो गए। इसका मतलब का देखिए, ये वैराग्य जो है सब नैमित्तिक वैराग्य है ये। जैसे अगर आपको संसार में दुख न दिखता, संसार में सुख ही सुख दिखाई देता, तो क्या कोई वैरागी होता?
1: नहीं,
0: नहीं होता। तो ऐसा व्यक्ति जो संसार में दुख देख रहा है, तो उसके संसार से विराग का कारण क्या है? दुख,
1: दुख है।
0: अगर दुख न दिखता तो विरागी नहीं होता,
1: तो विरागी नहीं होता।
0: जबकि राम जी ऐसे नहीं है, ये निर्मल मन का द्योतक नहीं है। कल्पना करिए, मैं तो कई बार देखता हूं कि संसार से वैराग्य लेने वाले लोग अपनी साधनाओं में राग कर बैठते हैं।
1: बिल्कुल,
0: कह सकते हैं कि आप जगत से दूर जा रहे हैं, जंगल में चले गए, लेकिन जंगल में एक संसार बना लिया आपने, अपनी साधना का संसार, और वो संसार आपको राग से ग्रसित कर लिया, तो वैराग्य की सिद्धि कहाँ हुई? भाई यहाँ का आदमी संसार के पीछे भाग रहा है और वहां संसार से आप भागने में लगे हैं, यानी आपका संसार संसार से भागना हो गया
1: जी।
0: तो ये गलत है कि नहीं? एक बहुत सुंदर गीत किसी ने लिखा था कि अपमान रचयिता क्या होगा रचना को अगर ठुकराओगे, तो
1: जी जी जी
0: है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, संसार में आपको इसका ज्ञान होना चाहिए। वैराग्य ज्ञान का विषय है, अज्ञान से वैराग्य जो उत्पन्न होता है वो नैमित्तिक वैराग्य है, उसको राजस वैराग्य भी कह सकते हैं आप।
1: अच्छा, कि उस तो वैराग्य के प्रकार भी हैं।
0: वैराग्य के प्रकार भी हैं।
1: जी जी,
0: बिल्कुल।
1: तो आपने राजस वैराग्य की चर्चा कर दी है,
0: जी।
1: तो मैं चाहती हूँ थोड़ा विस्तार दें इसे।
0: राजस वैराग्य का मतलब हुआ कि जो वैराग्य किसी निमित्त से उत्पन्न हुआ हो, या उस निमित्त के कारण उत्पन्न होने वाले वैराग्य का मूल विषय उस निमित्त को मिटाना होगा। जैसे किसी को संसार में दुख का दर्शन हुआ, तो दुख के दर्शन के नाते उन्होंने संसार का त्याग किया, तो उनका निमित्त क्या बना? दुख।
1: दुख।
0: तो ऐसे में ये जो वैराग्य है ये राजस वैराग्य है। ये दुख के निर्मूलन के बाद ये वैराग्य समाप्त हो जाएगा, क्योंकि उसका कारण ही मूल ही दुख है। और जहां भी उन्हें कहीं सुख की अनुभूति होगी तो सुख में वो राग कर बैठेंगे, चाहे वो सुख किसी भी प्रकार का हो। तो एक प्रकार से देखें तो राजस वैराग्य हमेशा नैमित्तिक होता है।

0: तब वैराग्य हुआ। वैराग्य सत्संग करने का एक प्रबल माध्यम है।
1: तो आपने राजस वैराग्य और सात्विक वैराग्य दोनों को ही समझाया। तो सात्विक वैराग्य से हम ये समझें कि वो वैराग्य जो ज्ञान के साथ हमारे भीतर बना रहता है,
0: ज्ञान के साथ उत्पन्न होता है। देखिए, ज्ञान के साथ सत्य प्रकट होगा। भारत में ज्ञान, विषय के ज्ञान को ज्ञान नहीं कहा गया। भारतीय ज्ञान परंपरा में जब भी ज्ञान शब्द आया है, वो आया है आत्मा के संबंध में, ब्रह्म के संबंध में, ब्रह्म ज्ञान। इसीलिए कहते हैं कि ब्रह्म विद्या। भगवान ने भी गीता में कहा कि मैं विद्या में अध्यात्म विद्या हूं। तो अध्यात्म विद्या क्या है? अध्यात्म विद्या ये है कि जिस विद्या का आधार आपकी आत्मा हो, आपका ब्रह्म तत्व हो, चेतन का ज्ञान, उस ज्ञान से चित्त निर्मल होगा, अमल होगा, और सतत सुख, जो सुख की राशि है, ऐसा सुख जो दुख पर आधारित नहीं है, यानी संसार में जिस सुख दुख का हम अनुभव करते हैं, ये परस्पर आश्रित हैं, एक दूसरे के अनुपूरक हैं। क्योंकि संसार में जब भी आप कोई सुख का अनुभव करते हैं तो वो दुख से संदर्भित होता है, दुख पर आधारित होता है। ये कहते हैं कि सुख की राशि वो जो है, वो तभी आप सुख की राशि तक जुड़ सकते हैं जिसको सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्ण वयम नुमः, यानी कि जहां तीनों तापों का विनाश हो, ऐसा ज्ञान जो है सहज सुख की राशि होगा, और उसी को सच्चिदानंद रूप कहा गया। सत्चित आनंद है वो स्वरूप, यानी स्वरूप का ज्ञान ज्ञान है भारत में। बाकी विषयों के ज्ञान को ज्ञान कहा जाता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण में जब भी ज्ञान शब्द आएगा तो वो आएगा ब्रह्म ज्ञान के लिए, आत्म ज्ञान के लिए, चित्त की शुद्ध करने वाले ज्ञान के लिए, चित्त को निर्मल करने वाले ज्ञान के लिए।
1: अच्छा, आप ये बताएं कि ये ग्रंथ क्या कहता है कि परब्रह्म को कौन प्राप्त होता है?
0: परब्रह्म को वह प्राप्त होता है जिसकी सांसारिक बुद्धि नष्ट हो चुकी हो, जिसने सांसारिक बुद्धि को त्याग दिया हो। सांसारिक बुद्धि के त्याग के बिना परब्रह्म की अनुभूति नहीं हो सकती। यहाँ वशिष्ठ जी कहते हैं कि जो राजस वैराग्य है वो संसार में किसी न किसी निमित्त से उत्पन्न होता है, परंतु राम तुम्हारे मन में उत्पन्न हुआ वैराग्य अपूर्व है। अपूर्व का मतलब इसके पहले किसी को ऐसा वैराग्य नहीं हुआ। आप देखिए, शब्दों पर हम अगर ध्यान देंगे तभी वो शब्द अपने अर्थ के साथ अपनी आत्मा को प्रकट कर पाएंगे। अपूर्व शब्द का हम प्रयोग करते हैं, अपूर्व का मतलब पहले किसी को नहीं हुआ। तो राम का वैराग्य ऐसा वैराग्य है जो अपूर्व है। यह किसी निमित्त की अपेक्षा न रखकर स्वयं अपने विवेक से उत्पन्न हुआ है और सत्पुरुषों को आश्चर्य में डालने वाला है, अतः सात्विक है। ऐसा वैराग्य जो सत्पुरुषों के भी आश्चर्य का कारण बन जाए, ऐसा अपूर्व वैराग्य राम जी को हुआ है, जिसका कोई निमित्त नहीं है। वो कहते हैं कि संसार के दुख को देखा, ऐसा नहीं है कि दुख को देखा, ऐसे तो कहने में बात जब आती है तो उसका एक पक्ष या एक दृष्टिकोण सामने आ पाता है, लेकिन अगर हम उसको समग्रता से देखें तो राम जी को जो वैराग्य हुआ वो वैराग्य सात्विक वैराग्य है, जो किसी निमित्त से उत्पन्न नहीं हुआ है, जिसका कारण विवेक है। विवेक से उत्पन्न होने वाला वैराग्य आत्म ज्ञान की तरफ व्यक्ति को ले जाता है, प्रकाशित करता है।
1: अच्छा, आप ये बताएं कि दुख को सहन करने का सामर्थ्य कैसे आता है?
0: आपने सुंदर सवाल किया। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राघव, श्रेष्ठ पुरुषों में शीत, उष्ण, वात आदि द्वंद जनित दुखों को सहन करने की क्षमता ज्ञान के बल पर ही आती है, अन्यथा ज्ञान युक्ति के अतिरिक्त वे किसी प्रकार इसको सहन नहीं कर सकते। दुख की चिंताएं अज्ञानी मनुष्यों को पद पद पर आके घेर लेती हैं और समय अनुसार उन्हें संतप्त करती हैं, परंतु जो ज्ञानी पुरुष हैं वो इसको ज्ञान के बल पर नष्ट करते हैं। ऐसा नहीं विपरीत परिस्थितियां उनके जीवन में नहीं आती हैं। जब देह में व्यक्ति होगा तो देह विषमता को अनुभव करेगा।
1: जी जी।
0: आपके अनुरूप भी विषय हो सकते हैं और प्रतिकूल भी हो सकते हैं। लेकिन ज्ञान के बल पर इसको सहन करने का जो सामर्थ्य है वो ज्ञान के बल पर आता है। इसलिए दुख कभी भी अगर आप चाहते हैं नष्ट करना या चाहते हैं कि दुखों को हम निर्मूल करें तो उसके लिए ज्ञान की आवश्यकता है, और ज्ञान में अध्यात्म ज्ञान जो चित्त के रोग को मिटाता है, और चित्त के रोग का कारण है अज्ञान, और चित्त का रोग ज्ञान से ही मिटता है। अंतःकरण के रोग को ज्ञान से दूर किया जा सकता है। तो ज्ञान बल से जो सात्विक पुरुष हैं वो अपने को विवेक से उत्पन्न वैराग्य की साधना करते हैं और संसार के दुखों से अपने को मुक्त रखते हैं, यद्यपि परिस्थितियां उनके जीवन में भी अनुकूल प्रतिकूल होती रहती हैं।
1: जी। अच्छा, आप ये बताएं कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति हेतु किससे प्रश्न करना चाहिए?
0: बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन लोगों के पास जाए जो श्रुति आदि प्रमाण देने में कुशल तथा आत्म तत्व का यथार्थ ज्ञाता हो। ऐसे ज्ञानी पुरुष के पास जाकर प्रयत्न पूर्वक विनय भाव से प्रश्न करे। यानी वक्ता में ये गुण होना चाहिए कि वो श्रुति परंपरा का व्यक्ति हो। श्रुति परंपरा और स्मृति परंपरा ये दोनों अलग अलग है। श्रुति परंपरा में ऋषि होते हैं, इसीलिए ऋषियों को मंत्र दृष्टा कहा गया। यानी ऋषि का मतलब देखने वाला, जिसने उसको देखा है, जिसको कबीर साहब ने लोक भाषा में कहा कि तुमने जो कही किताबन लेखी, हमने जो कही वो आंखन देखी। तो जिसने देखा है वो उस श्रुति परंपरा का संवाहक हो सकता है, क्योंकि वो जानता है। और गीता में भी भगवान ने अर्जुन को कहा कि तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेशंति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। कि जो तत्वदर्शी है यानी जो देखने वाला है, उसके पास तुम जाओ और जाकर के उससे प्रश्न करो। ऐसे लोगों से मत प्रश्न करो जो कहीं सुनी बातों को सुन करके बता रहे हैं। इसलिए आप जब उपनिषद का अध्ययन करेंगी तो आपको ऐसा लगेगा, उसमें ऋषि साफ साफ कहते हैं कि जो ये ज्ञान है ये प्रवचन से प्राप्त नहीं होता, यह शास्त्र से प्राप्त नहीं होता, ये मेधा से प्राप्त नहीं होता, ये तब प्राप्त होता है और उन लोगों को प्राप्त होता है जो इसको ग्रहण करने की पात्रता रखते हैं, उनमें ये उतरता है। ये कहते हैं ना कि ये आत्मा का जो प्रकाश है वो सब में है, लेकिन प्रकट वहां होती है जहां पर उतरने का सामर्थ्य आया। यानी आपको अपने को योग्य बनाना है, ज्ञान तो आप में है ही। किसी संत ने इसको कहा है कि बलिहारी उस घाट की जामे प्रगट होए, घट घट व्यापे साइयां सूनी सेज न कोए, और बलिहारी उस घाट की जामे प्रगट होए। यानी परमात्मा तो हर घट में व्याप्त है, लेकिन वो धन्यवाद है उस घट का जिसमें उसका प्राकट्य हो गया, क्योंकि वो प्राकट्य करने के लिए विवेक ज्ञान से संपन्न हो गया। उसका जो वैराग्य था वो निमित्तिक नहीं रहा, वो बिना निमित्त के वैराग्य उत्पन्न हुआ, इसलिए उस सत्य को प्रकट करने का उसने सारी बाधाएं अपने जीवन से हटा दी, चित्त निर्मल हुआ और फिर स्वयं का प्रकाश प्रकाशित हो गया।
1: जी। अच्छा, प्रश्नकर्ता कैसा होना चाहिए, क्या इसके लक्षण बताए जा सकते हैं?
0: बिल्कुल बिल्कुल। आप कभी सोचिए ना कि जिस ज्ञान के प्रकाश ने उस गुरु को प्रकाशित नहीं किया जिससे आप प्रकाशित होने की कामना करके उसके पास गए हैं, तो जब वो गुरु विषम बुद्धि के साथ खड़ा है, उसकी बुद्धि समत्व में स्थित नहीं है, वो योगी नहीं है, तो फिर ऐसे में उसके द्वारा दिया गया ज्ञान आपके चित्त की विषमता को दूर कैसे करेगा? ये विचारणीय विषय है। तो प्रश्नकर्ता में तो इतनी समझ होनी चाहिए या वक्ता में इतनी समझ होनी चाहिए कि जिस ज्ञान से हम अपने जीवन को प्रकाशित नहीं कर पाए, उस ज्ञान के द्वारा हम अपने अनुयायी या हमसे जो प्रश्न लेकर के हमारे पास जिज्ञासु आए हैं उनके अज्ञानता को दूर कैसे कर देंगे। तो यहां पर ये बात उन्होंने कहा कि अतएव प्रश्न करने वाला जो है वो उस प्रमाण कुशल और तत्वज्ञानी वक्ता के उपदेश का जो पुरुष यत्न पूर्वक अनुसरण नहीं करता, उससे बढ़कर दूसरा कोई नराधम नहीं है। यानी अगर कोई तत्वज्ञानी जिससे आपने प्रश्न पूछा और उसने जो उत्तर दिया उसका जो अनुपालन नहीं कर रहा है, उसको इन्होंने कहा कि वो नराधम है। अतः वक्ता के व्यवहार आदि कार्यों से उसकी अज्ञता और तत्वज्ञाता का पहले निर्णय करके जो पुरुष उससे प्रश्न करता है, वह प्रश्नकर्ता उत्कृष्ट बुद्धि वाला माना जाता है। परंतु जो जिज्ञासु उत्तम वक्ता का निर्णय किए बिना ही उससे प्रश्न करता है, वह अधम कहलाता है और उसे तत्व ज्ञान रूप महान अर्थ की प्राप्ति भी नहीं होती। इसलिए ज्ञानी को चाहिए कि पूर्वापर का विचार करके उस जिज्ञासु के प्रश्न का उत्तर दे।
1: तो ये तो प्रश्नकर्ता की बात हुई, अब हम वक्ता की भी बात करते हैं कि जो वक्ता है वो प्रश्न का उत्तर देते समय किन बातों पर विचार करे, क्या कहा गया है?
0: वक्ता को इस बात का पहले विचार करना चाहिए कि जो आपका प्रश्न करता है क्या उसे पूर्वापर का ज्ञान है। पूर्वापर मतलब पूर्व के पक्ष का। जैसे आप देखिए, आप कहीं भी जहां हैं वहीं से तो चलना प्रारंभ करेंगे, तो जब तक प्रश्नकर्ता की स्थिति आपको पता न हो और बिना उसकी स्थिति जाने आप उसको वहां का ज्ञान देना शुरू कर दिए जहां वो है ही नहीं, तो निश्चित ही उसके लिए चलना दुभर हो जाएगा। तो पूर्वापर का जिसे ज्ञान हो, ऐसा विवेचन वक्ता को करना चाहिए। उसका निश्चय करने में जिसकी बुद्धि समर्थ हो और जो निंदनीय न हो, मतलब ऐसा वो प्रश्नकर्ता न हो कि वो निंदनीय दृष्टि का हो या वो पूर्वापर को जानता भी नहीं हो या ज्ञान को ग्रहण करने का सामर्थ्य नहीं रखता हो, ऐसे पुरुष को उसके पूछे हुए तत्व का उपदेश दे। परंतु जो आहार निद्रा भय मैथुन आदि पशुधर्म से संयुक्त हो, ऐसे अधम को तत्व का उपदेश न दे। यानी तत्व का उपदेश देने के लिए सबको उन्होंने अलाउ नहीं किया, इसीलिए इसको राज विद्या और राजगुह्य कहा गया, क्योंकि राजा लोग इसके पात्र थे। इसका उद्देश्य नहीं था कि राजाओं को जानबूझ करके किसी डिस्क्रिमिनेशन की वजह से उनको ये ज्ञान दिया गया, वो पात्र हो गए थे, इसलिए उनको उनके अंदर विवेक जागृत था। तो विवेकवान को ही तत्व ज्ञान का उपदेश देना चाहिए
1: पात्रता देख कर ही
0: जी, क्योंकि प्रश्नकर्ता की श्रुति आदि प्रमाणों द्वारा निर्णित पदार्थों के ग्रहण करने की योग्यता विचार किए बिना ही जो वक्ता उसे उपदेश देता है, मतलब अगर आपने प्रश्नकर्ता का विचार नहीं किया और उसको तत्व ज्ञान का उपदेश देना शुरू कर दिया, ऐसा वक्ता कहा गया कि वो वक्ता श्रेष्ठ नहीं है। इसीलिए आप देखिए अपने सामाजिक व्यवस्थाओं के संचालन के लिए भी जब हम व्यक्ति का चुनाव करते हैं तो चुनाव में हम उस व्यक्ति की पात्रता देखते हैं कि क्या ये व्यक्ति इस पद के अनुसार कार्य करने योग्य है कि नहीं, या ये शक्ति इसे दी जाए कि नहीं दी जाए। ये अलग बात है कि वहां पहुंच जाने के बाद लोग जिन संकल्पों के साथ उस पद तक पहुंचना चाहते हैं वो संकल्प भूल जाते हैं।
1: बिल्कुल, है ना। मुझे भी यही एक प्रसंग याद आ गया पात्रता की, चूंकि हम बात कर रहे हैं तो उस्ताद अलाउद्दीन खान जो थे
0: जी
1: वो संगीत सिखाया करते थे और उनकी जो पुत्री थी अन्नपूर्णा देवी बहुत छोटी थी
0: जी,
1: और अचानक उन्होंने उनका गाना सुन लिया था और कहा था कि इसे मैं संगीत दूंगा। तो उस वक्त उन्होंने ये बात कही थी कि उनके घर में उस समय तक लड़कियां संगीत नहीं सीख रही थी
0: जी।
1: एक बेटी ने सीखा था जिसका हश्र अच्छा नहीं हुआ था, तो उन्होंने अन्नपूर्णा देवी को संगीत नहीं सिखाने का निर्णय लिया था, लेकिन जब गाना सुन लिया तो उन्होंने ये बात कही कि कुपात्र को संगीत सिखाना पाप है और सुपात्र को संगीत न सिखाना पाप है
0: जी। बिल्कुल,
1: तो ये मतलब पात्रता वहां भी
0: जी
1: थी, तो वैसी बात ही हो गई।
0: वैसी ही बात है
1: जी।
0: आप देखिए ये सब जो बातें हैं ना, ये इतनी अर्वाचीन, मतलब मैं इसकी इतनी जरूरत है, इसकी प्राचीनता के साथ साथ इसकी महत्ता आज के समय में और अधिक है। वशिष्ठ जी कहते हैं राम से, रघुनंदन तुम प्रशंसनीय गुणों से युक्त अत्यंत श्रेष्ठ प्रश्नकर्ता हो और मैं उपदेश देना जानता हूँ। देखिए उन्होंने कहा कि मुझे भी मालूम है तुम्हारे प्रश्नकर्ता की हैसियत, मुझे पता है मैं उपदेश देना जानता हूँ, अतः हम दोनों का यह समागम उचित है
1: जी।
0: अब आप देखिए योग वासिष्ठ में वशिष्ठ जी के शिष्य राम के अन्य भाई लोग भी हैं
1: जी, जी,
0: लेकिन
1: जी।
0: ये योग वासिष्ठ ग्रंथ की चर्चा सिर्फ राम से हुई
1: राम
0: है,
1: से हुई है जी,
0: क्योंकि
1: जी।
0: बाकी लोगों में ऐसे प्रश्न की उत्कंठा नहीं है, ऐसी जिज्ञासा नहीं है जो जिज्ञासा राम में है
1: जी, जी, जी। अच्छा ये बताएं कि इसी ग्रंथ में मोक्ष प्राप्ति में सहायक द्वारपालों की चर्चा हुई, बड़ी रोचक है वो
0: जी, जी।
1: तो कौन कौन से वो द्वारपाल हैं, क्या बताया गया है हमारे सुनने वालों को आप बताएं
0: जी। उस मोक्ष के द्वार पर निवास करने वाले चार द्वारपाल बतलाए गए हैं जिनके नाम हैं शम, विचार, संतोष और साधु संगम। ये चार द्वारपाल हैं मोक्ष दिलाने में जो सहयोगी हैं। और राम को वो कहते हैं तुम शब्दार्थ के ज्ञाता हो, इस नाते तुम्हारे जो प्रश्न हैं वो श्रेष्ठ हैं और तुम इस उपदेश को सुनने की पात्रता रखते हो
1: जी।
0: तो जो ये चार द्वारपाल बताए गए हैं उसको कहते हैं वशिष्ठ जी, मनुष्य को इन चारों का ही प्रयत्न पूर्वक सेवन करना चाहिए, क्योंकि इनका भली भांति सेवन होने पर यह मोक्ष रूपी राजमहल के द्वार खोल देते हैं
1: जी।
0: यहाँ पर मोक्ष को राजमहल कहा गया है, यानी राजमहल का मतलब जहां उससे बड़ा कोई महल नहीं हो सकता, या उस महल में जाने के बाद किसी और महल की कामना नहीं हो सकती, यह है मोक्ष, यानी कामनाओं से मुक्त हो जाना मोक्ष का नाम है। तो कहते हैं कि भली भांति सेवन करना चाहिए, यदि इन चारों का सेवन न हो सके तो तीन का या दो का सेवन तो अवश्य करना चाहिए, दो का भी सेवन न हो सके तो सभी उपायों द्वारा प्राणियों को बाजी लगाकर किसी एक का आश्रय तो अवश्य ग्रहण करना चाहिए।
1: अच्छा।
0: क्योंकि जब एक वश में आ जाता है तब तीनों भी उसके अधीन हो जाते
1: हैं।
0: कितनी सरलता उन्होंने कह दी, किसी एक का अगर चार नहीं कर सकते तो किसी एक को भी साधो, इसी को कहा गया एक ही साधे सब, साधे सब, साधे सब जाए।
1: अच्छा, मेरे मन में ये था कि जो चार द्वारपाल उन्होंने बताए, इन चारों को अलग अलग से भी आप समझा दें हमारे सुनने वालों के लिए कि जो उन्होंने सम कहा या विचार कहा।
0: सम का मतलब होता है जो अपन शरीर के लेवल पर जो अनुशासन का पालन करते हैं उसको सम कह सकते हैं।
1: सम,
0: ठीक है। सम के बाद दम आता है, यानी जो मन के लेवल पर जो अनुशासन को पालन किया जाए, वहां पर उन्होंने दम न कह के उसको विचार कहा कि देखा जाए तो जब तक शरीर की इंद्रियों पर आपका अनुशासन नहीं होगा तब तक आप सद्विचार करने का सामर्थ्य नहीं रखेंगे, क्योंकि इंद्रियां लंपट हैं स्वभाव से, इंद्रियां हमेशा विषयों की तरफ भागेंगी। और कोई व्यक्ति ये कितना भी दावा करे कि हम सदचिंतन करते हैं, सदचिंतन आप तभी कर सकते हैं जब आपको सदव्यवहार करना आता हो, है ना। आपको सदव्यवहार का मतलब अनुशासित व्यवहार करना आता हो, ठीक है। हाँ। और अनुशासित व्यवहार बिना विचार के नहीं होगा, सद्विचार और सद्व्यवहार, तो ये दो बात हो गई, यानी सम और विचार। सम और विचार के बाद जो आता है संतोष आता है। अगर विचारों पर आपने संयम प्राप्त कर लिया, विचारों को अनुशासित कर लिया, विचार अब आपको नहीं बल्कि विचारों को आप नियंत्रित करते हैं, तो ऐसे में आपके अंदर संतोष अपने आप प्राप्त हो जाएगा।
1: जी, जी।
0: और जैसे ही संतोष आपको आता है तब आप साधुओं का संग करने के योग्य हो जाएंगे, जो साधु संगम कहा उन्होंने।
1: जी, जी,
0: कि साधुओं के पास जाकर के भी लोग साधु संगम नहीं करते, वहां पर भी संसार का संगम
1: जी,
0: करते
1: जी,
0: हैं
1: जी,
0: संसार की कामना लेकर के जाते हैं कि महाराज जी के आशीर्वाद से हमारी ये कामना सिद्धि हो जाएगी। जबकि साधु संगम करने का सामर्थ्य उसी में आता है जिसको शम विचार संतोष इन तीन साधनों की सिद्धि जिसने की हो। हालांकि वशिष्ठ जी ने कहा किसी एक को भी अगर साधे आप तो ये चारों ये तीनों बाकी सद जाते हैं।
1: जी, जी,
0: एक
1: जी,
0: को साध लेने से भी, क्योंकि साधु के पास जाकर के आप संसार लेके जाएंगे, लेकिन अगर वास्तव में वो साधु है तो वो संसार की नश्वरता का ज्ञान आपको कराएगा। बार बार वही कहेगा कि संसार किसको सुख दिया है, जाके ढूंढ के लाओ। मुझे याद आता है महात्मा बुद्ध जी जिन दिनों में प्रवास पर होते थे, भ्रमण करते थे, तो वहां पर एक रानी थी जिनको बहुत तपस्या के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। कुछ साल के बाद वो पुत्र नहीं रहता है। अब पुत्र के मर जाने के बाद वो इतनी विह्वल हो गई कि वो सारा सुध-बुध खो बैठी और पुत्र के शव को अपने सीने से चिपका कर रोती रही। अब राजा परेशान कि कैसे इनको मुक्त कराया जाए, तो उसी समय उनके राज्य में बुद्ध जी का विहार होना था, तो कहा कि बुद्ध आए हैं, बुद्ध के उपदेशों का इनके ऊपर असर होगा। तो वो आह्लादित होकर बुद्ध के पास पहुंची और बुद्ध से उन्होंने कहा कि मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए। महात्मा बुद्ध बड़े अद्भुत संत रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं तो चित्त का वैद्य, उन्होंने कहा कि मैं तो चित्त का वैद्य हूँ, यानी चित्त के रोगों का शमन करता हूँ और इनका चित्त रोगग्रस्त हो गया है, इसलिए इस सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रही हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं आपके पुत्र को जीवित कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। उन्होंने कहा बताइए, मैं तो रानी हूँ, इस राज्य में तो मेरा ही चलता है, मतलब मेरी बात को कौन नहीं मानेगा। कहते मुझे एक मुट्ठी जो है पीला सरसों चाहिए। तो बहुत खुश हो गए कि एक मुट्ठी पीला सरसों
1: और बेटा
0: जीवित हो जाए। तो वो तो फिर इतने भाव में आई, उनको बेटा का जीवन दिखने लगा, वो पूरे राज्य में खुद ही दौड़ने लगी हर घर में कि मुझे एक मुट्ठी पीला सरसों दे दो। और जब पूरा राज्य उनको देने को तैयार था तो फिर वो पूछती थी तुम्हारे यहाँ कोई मृत्यु तो नहीं हुई है। वो राजा एक शर्त थी,
1: ये बुद्ध की वो थी,
0: बुद्ध की शर्त थी कि सरसों वहीं का होना चाहिए जिसके घर में कोई मृत्यु नहीं हो। तो वो जहां भी जाती थी वहां मृत्यु की श्रृंखला तो है, जहां जन्म हुआ है वहां मृत्यु तो होगी।
1: ये चित्त का उपचार
0: था। तो फिर वो अंत में शाम तक उनका चित्त शांत हो जाता है और फिर वो बेटे के जो सौदाह में सहभागी बनती हैं, तो उनका चित्त शांत हो गया कि भाई मृत्यु तो होनी ही है। तो इस तरीके से आप देखें तो साधु संगम का असर होता है,
1: प्रभाव
0: होता है कि संसार के द्वारा मलिन चित्त भी निर्मल हो जाता है।
1: तो शशिकांत जी, बहुत ही सुंदर चर्चा रही आज की। योग वासिष्ठ में जो बताया गया है वक्ता और प्रश्नकर्ता के लक्षण, उस पर विस्तार से आपने चर्चा की। आज आप हमारे बीच उपस्थित हुए, आपका हम हृदय से आभार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार।
1: तो श्रोताओं, योग संवाद कार्यक्रम में आज हमने बात की वक्ता और प्रश्नकर्ता के लक्षणों पर। उम्मीद है आज का ये अंक आपको पसंद आया होगा। अगले अंक में बहुत जल्द फिर आपसे मिलेंगे। चलते चलते आपको हम बता दें कि इस कार्यक्रम में विशेषज्ञ के तौर पर हमारे बीच उपस्थित थे योग अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी। मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा का था, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का, और आपके साथ थी मैं सुनीता सिंह। अब इस कार्यक्रम से अनुमति दें। नमस्कार, आप सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम योग संवाद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए। अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।
1: साहस की बुलंद शुरुआत से लेकर आसमान की असीम ऊंचाइयों तक 8 अक्टूबर को पूरा देश मना रहा है भारतीय वायुसेना का 94वां वायुसेना दिवस।
2: वर्ष 1947-48, 1965 और 1971 के ऐतिहासिक युद्धों से लेकर ऑपरेशन मेघदूत और ऑपरेशन सफेद सागर तक विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायु सेना ने हर पल कर दिखाया है अदम्य पराक्रम, अत्याधुनिक तकनीक और सर्वोच्च बलिदान।
1: तो मध्य प्रदेश के जाबाज युवाओं, क्या आप तैयार हैं? बादलों को चीरकर देश का मान बढ़ाने के लिए तो बनिए अग्निवीर वायु, हासिल कीजिए वो मुकाम जो जिंदगी भर की पहचान बन जाए और गर्व से कीजिए भारत माँ की सेवा।
2: भर्ती और पात्रता से जुड़ी पूरी जानकारी के लिए
1: 15 एयरमैन चयन केंद्र के इंस्टाग्राम पेज 15ASC_भोपाल और आधिकारिक वेबसाइट IAFRecruitment.edcil.co.in पर विजिट करें।
2: नभस प्रशम दीप्तम।
3: जय हिंद।
0: मेगाहर्ट्ज पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ। आइए सुनते हैं हमारा आज का विशेष कार्यक्रम।
4: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह, लेकर उपस्थित हूं आज का विशेष कार्यक्रम। श्रोताओं, अक्सर हम कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है, यानी शरीर अच्छा हो तो मन भी अच्छा रहता है। लेकिन मन अगर बीमार हो तो इसका प्रभाव हमारे शरीर, हमारे जीवन और समाज पर कैसा होता है, क्या कभी आपने इस पर सोचा है? मन का स्वास्थ्य, जिसका संबंध आपकी भावनाओं से है, आपके विचारों से है, आपके तनाव, आपकी खुशी से है, निर्णय लेने की क्षमता या आपके जो आपसी संबंध हैं, सामाजिक संबंध हैं, उनसे होता है। इन सभी को प्रभावित करता है आपका मानसिक स्वास्थ्य। लेकिन ये एक ऐसा विषय है जिस पर अमूमन चर्चा बहुत कम होती है और इसीलिए जागरूकता भी इसके लिए कम है। मानसिक स्वास्थ्य को लेकर लोग जागरूक हों, खुलकर इस विषय पर बातचीत हो, बेहिचक बातचीत हो और जानकारी का प्रसार हो, इसी उद्देश्य से 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विशेष बात ये कि मन हमारे अस्तित्व का एक ऐसा हिस्सा है जिसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं है, लेकिन मन है तो, क्योंकि तभी मन कहीं लगता है, कहीं उचटता है, कभी उदास तो कभी उद्विग्न होता है, कभी काबू तो कभी बेकाबू होता है, यानी मन के इर्द गिर्द मनुष्य घूमता है। इसलिए मन का स्वस्थ रहना जरूरी है, मानसिक स्वास्थ्य बहुत आवश्यक है। आज इसी महत्वपूर्ण विषय पर हम बातचीत करने जा रहे हैं। हमारे बीच हैं डॉक्टर JP अग्रवाल, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष मनोचिकित्सा विभाग, गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल। नमस्कार डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम।
5: नमस्कार।
4: आज 10 अक्टूबर है और हम मानसिक स्वास्थ्य दिवस मना रहे हैं, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। तो मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले इस पर ही आप प्रकाश डालें कि इसका क्या इतिहास रहा है, किस उद्देश्य के साथ ये मनाया जाता है।
5: प्रतिवर्ष 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा मनाया जाता है। ये पूरे विश्व में एक साथ मनाया जाता है और ये साल 1992 से लगातार मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य, जैसा कि आपने सही बताया, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता कम है, लोग मानसिक रोगों को भूत प्रेत की बाधा के रूप में कई बार देखते हैं, अथवा मनोचिकित्सक के पास या मनोवैज्ञानिक के पास जाने में हिचकते हैं। तो उस हिचक को दूर करने के लिए, उस स्टिग्मा को कम करने के लिए और अवेयरनेस फैलाने के लिए हर वर्ष 10 अक्टूबर को ये दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष इसकी कोई स्पेशल थीम भी होती है। इस साल जो 2024 का मानसिक स्वास्थ्य दिवस है, उसकी थीम है कि कार्यस्थल पर हम मानसिक स्वास्थ्य को महत्व दे पाएं। तो इट इज अबाउट प्रायोरिटाइजिंग मेंटल हेल्थ एट द वर्क प्लेस। अगर हम कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य को महत्व देंगे तो उससे पूरे इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी बेहतर होगी।
4: बिल्कुल,
5: क्योंकि अगर मानसिक अस्वस्थ व्यक्ति कोई काम कर रहा है तो उसकी प्रोडक्टिविटी भी प्रभावित होगी, इंडस्ट्री पे भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और उसका समाज पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
4: तो आपने हम क्यों मनाते हैं इस दिन को इसके विषय में बताया और थीम भी बताई कि कार्यस्थल में इसके महत्व को विशेष रूप से देखा जाए और इस तरह का वातावरण निर्मित हो कि हर जो कर्मचारी है, जो काम करने वाला है, उसका मानसिक स्वास्थ्य ठीक हो, वो तनाव में ना हो और अधिक से अधिक उत्पादकता बनी रहे। तो ये तो इसका उद्देश्य हुआ, थीम हुई। अब हम ये जानना चाहते हैं कि जो हमारे आम सुनने वाले हैं, मानसिक स्वास्थ्य विषय पर चर्चा होती है लेकिन सामान्य तौर पर जब बीमारी की हम बात करते हैं तो शारीरिक बीमारी की चर्चा ज्यादा होती है, मानसिक स्वास्थ्य की चर्चा कम ही होती है। उसकी चिंता भी कम होती है, चर्चा भी कम होती है, जागरूकता भी कम है। तो दरअसल मानसिक स्वास्थ्य से आशय क्या है, हम ये जानना चाहते हैं।
5: विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हेल्थ की एक डेफिनेशन दी है। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हेल्थ मतलब किसी को कोई बीमारी नहीं है तो वो हेल्दी है। हेल्थ इज द स्टेट ऑफ वेलबींग, हेल्थ इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। जब हम मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं तो हम बात करते हैं मेंटल वेलबींग की। मेंटल वेलबींग वो अवस्था है जहाँ पे कोई भी व्यक्ति अपनी क्षमता के हिसाब से कार्य कर पाता है।
4: अच्छा।
5: वो अपनी क्षमताओं को सही तरीके से समझ पाता है, उस हिसाब से समाज के लिए और परिवार के लिए काम कर पाता है, वो अपनी दैनंदिन जो तनाव है उनको हैंडल कर पाता है। तो स्ट्रेस इज अ पार्ट ऑफ एवरी डेज लाइफ, स्ट्रेस हर जगह है, हर इंसान को है
4: जी।
5: पर अगर वो अपने रूटीन स्ट्रेस को खुद से मैनेज कर पा रहा है, वो अपनी पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज कर पा रहा है, वो समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, अपने परिवार के लिए ठीक ठाक से काम कर पा रहा है, तो उसको स्टेट ऑफ वेलबींग मानते हैं, उसको मानसिक स्वास्थ्य मानते हैं।
4: तो ये मानसिक स्वास्थ्य है आपने बताया। अच्छा, अगर कोई व्यक्ति स्वयं पहचानना चाहे, जैसे कि मानसिक स्वास्थ्य का जो संबंध है, मुझे ऐसा लगता है कि भावनाओं से ही उसका ज्यादा संबंध है, हमारी जो भावनाएं हैं उनका उतार चढ़ाव, उनका जो डेविएशन है वो भी मानसिक स्वास्थ्य में आता है। तो अगर हम तनाव की बात करें, से आपने कहा कि तनाव को वो हैंडल कर लेता है, मान लीजिए मैं काम करती हूँ और मुझे भी अपने काम का एक तनाव होता है, मैं कब समझूंगी कि मैं तनाव को हैंडल कर पा रही हूँ और नहीं कर पा रही हूँ, या मेरा परिवार कैसे समझे कि जिन परिस्थितियों में काम कर रही हूँ, जिस प्रकार का मेरा स्ट्रेस है काम का, वो हैंडल हो रहा है या नहीं हो रहा, वो कैसे समझे?
5: जब हम तनाव को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाते तो हमें कुछ चेंजेस दिखाई देने लगते हैं, कुछ घबराहट के, तनाव के या अवसाद के। तो अलग अलग तरह के चेंजेस दिखाई दे सकते हैं। अगर हम तनाव को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहे तो हो सकता है हमारी नींद प्रभावित हो सकता है हमारी भूख प्रभावित हो सकता है हमारी काम करने की क्षमता प्रभावित हो सकता है हम अपने आप को अकेला कर लें, समाज से कट जाएं, लोगों से जितना पहले हम मिलते जुलते थे उतना नहीं मिले। कई बार ऐसे सिम्टम्स आते हैं जैसे कि हार्ट रेट बढ़ जाना, पसीना ज्यादा आना, हाथ पैर फूलना, हाथ पैर कांपना, जुबान सूखना, ये सब जो सिम्टम्स हैं वो एंजाइटी के सिम्टम्स हैं। तो ये जब तनाव बढ़ता है और हम वो तनाव को हैंडल नहीं कर पाते तो इस तरह के सारे फिजिकल सिम्टम्स, नींद से संबंधित सिम्टम्स, भूख से रिलेटेड सिम्टम्स, हमारी प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड सिम्टम्स, ये सब दिखाई देने लगते हैं।
4: तो हम समझ सकते हैं कि हम मानसिक, हमारा स्वास्थ्य जो है वो बिगड़ रहा है और उस पर हमें काम करने की जरूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम ये जानना चाहते हैं कि जो मानसिक रोग हैं उनके कितने प्रकार हैं और कितने प्रतिशत लोगों में ये पाए जाते हैं?
5: देखिए, मानसिक रोग अलग अलग प्रकार के हैं। अगर ब्रॉडली हम बात करें तो दो प्रकार के मानसिक रोग हैं। एक होते हैं गंभीर मानसिक रोग, जिसके अंदर सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, सिजोअफेक्टिव डिसऑर्डर, ये आते हैं
4: जी।
5: ये हमारे प्रदेश में करीब 1.5 से 2% लोगों में पाए जाते हैं। मतलब अगर हमारी 8 करोड़ की आबादी है तो करीब करीब 20 लाख के आसपास लोगों में ये रोग हो सकते हैं
4: जी।
5: दूसरे होते हैं जिन्हें कहते हैं कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स। कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स मतलब सामान्य मानसिक परेशानियां, जैसे कि डिप्रेशन है, एंजाइटी डिसऑर्डर है, इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर है, या स्ट्रेस रिलेटेड अदर डिसऑर्डर्स है, ये करीब के 12% लोगों में पाए जाते हैं। तो टोटल अगर हम बात करें तो करीब के 14 से 15% लोगों में भिन्न तरह के मानसिक रोग पाए जाते हैं।
4: मतलब 14 से 15% लोग मानसिक स्वास्थ्य की गड़बड़ी से जूझ रहे होते।
5: और इसमें समस्या ये है कि ट्रीटमेंट गैप बहुत बड़ा है। जो हमारा नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे हुआ था उसमें ये पाया गया 90.6% लोगों को कभी भी मानसिक रोगों के लिए जो पीड़ित हैं उनको इलाज नहीं मिल पाता।
4: ये गंभीर बात है,
5: ये गंभीर बात
4: है। तो जरूरी है इस पर बात करना और जरूरी है इसका इलाज लेना। अच्छा डॉक्टर साहब, मानसिक स्वास्थ्य पर इन दिनों चर्चा भी बहुत है और लगातार ऐसा क्या आपके सोच में या जानकारी में है कि मानसिक स्वास्थ्य से जो संबंधित रोगी हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है, और क्या कारण इसका आप देखते हैं, क्यों ये समस्या इतनी ज्यादा होती जा रही है इस समय इन दिनों?
5: मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं काफी मात्रा में बढ़ रही है। अगर हम देखें आंकड़े तो जो आंकड़े हमें 2010, 12, 15 के मिलते हैं उससे मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं काफी बढ़ी हैं। इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं।
4: अच्छा।
5: एक अगर जो सिग्निफिकेंट कारण मुझे पिछले 3-4 वर्ष में नजर आता है वो है कोरोना वायरस की वजह से जो महामारी आई। कोविड महामारी के बाद अलग अलग तरह की मानसिक समस्याएं बढ़ी हैं।
4: अच्छा।
5: उसके अलावा हम पहले

0: इतना अधिक संपर्क है या मोबाइल से इतना ज़्यादा कांटेक्ट है, दिन में इतनी बार हम मोबाइल देखते हैं, इससे हमारा मानसिक स्वास्थ्य खराब होता है।
1: तो कोरोना वायरस से अलग अलग तरीके की समस्याएं बढ़ी। किसी ने अपने परिवारजनों को खोया, किसी की आजीविका प्रभावित हुई,
0: हाँ
1: और बच्चों के साथ जो सबसे बड़ी समस्या आई, क्योंकि उन्हें बाहर जाने का अवसर नहीं मिला,
0: बिल्कुल।
1: पेरेंट्स ने ही रोका उन्हें घर के अंदर, और उसके कारण उनकी जो सोशल स्किल्स डेवलप हो सकती थी वो कम हुई। कई बच्चे पढ़ाई में पीछे हुए, और जो मोबाइल का असीमित उपयोग उस फेज में चालू हुआ, उसकी वजह से कई सारी समस्याएं आज तक चली आ रही हैं। अगर हम आत्महत्या के आंकड़ों की बात करें तो 2018 के अंदर 1,34,000 लोगों ने आत्महत्या की वजह से जान गंवाई।
0: अच्छा।
1: 2019 में आंकड़ा 1,39,000 पे पहुंचा।
0: अच्छा।
1: पर जब कोरोना वायरस आया तो वो आंकड़ा सिग्निफिकेंटली पिछले 3 साल में काफी बढ़ा है। 2020 में वो आंकड़ा पहुंचा 1,53,000 के ऊपर, 2021 में पहुंचा 1,64,000 के ऊपर, और जो हालिया नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़े आए हैं उस हिसाब से 1,71,000 लोगों ने 2022 के अंदर अपने प्राण आत्महत्या की वजह से गंवाए हैं।
0: अच्छा।
1: तो अगर आप देखें 2018 से लेकर 2022 तक, तो हम 1,34,000 से 1,71,000 तक पहुंच चुके हैं, जो कि काफी चिंताजनक है।
0: बिल्कुल। तो ये जो आपने बात की कि एक गलत कदम उठाना, अपने जीवन को समाप्त करने की कोशिश करना, जाहिर सी बात है कि ये भी मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा विषय है। अक्सर यूं होता है कि हम सुनते हैं कि कहीं ऐसी घटना हुई, तो हम सुनते हैं कि उनके आसपास के लोग या जो भी उस व्यक्ति से जुड़ा व्यक्ति बताता है कि अभी तो 2 घंटे पहले सब कुछ ठीक था, आधे घंटे पहले तो सब कुछ ठीक था, अचानक ही कर लिया। तो वो कौन सी स्थिति होती है जो अचानक ऐसा एक व्यक्ति करता है, और दूसरी बात, क्या वाकई कोई लक्षण नहीं होता, सामान्य जीवन चल रहा होता है और एक व्यक्ति अचानक आत्महत्या कर लेता है?
1: नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। आमतौर पे सुसाइड करने वाला व्यक्ति प्लान करके सुसाइड करता है। ये बस उसके मन की भावनाएं हम समझ नहीं पाते। शायद हम सुसाइड के जो वार्निंग साइंस है उनको नहीं समझ पाते, जो परिवारजन है या जो उसके मित्र हैं, और इस वजह से टाइमली उसका रोकथाम नहीं हो पाता। कई बार ऐसा होता है कि जो सुसाइड करने वाला व्यक्ति है वो अलग अलग तरह के संकेत दे रहा होता है। वो कई बार ऐसी बातें कर रहा होता है कि मेरी मरने की इच्छा कर रही है, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। तो ऐसी कोई भी अगर बातें करे तो हमें गंभीरता से लेना चाहिए।
0: हाँ।
1: उसके अलावा कई बार वो ऐसा कह रहा होता है कि मेरे अगर नहीं रहा तो आप ये काम कर लेना, या अपने रिश्तेदारों को कोई और सजेशन दे रहा होता है। कई बार उसे उसकी विशलिस्ट होता है कि मरने के पहले मैं क्या क्या काम करके जाऊं, तो कई बार उस तरह की गतिविधियां कर रहा होता है। किसी को जाके थैंक यू बोल रहा होता है कि आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया। किसी को हो सकता है जाके अपने नोट्स दे रहा हो कि मैं ये दे के जाऊं। तो मरने के अलग अलग संकेत कई बार वो दे रहा होता है,
0: उसको हम देख नहीं पाते हैं,
1: हम समझ नहीं पाते। उसके व्यवहार में परिवर्तन आ रहा होता है, वो समाज से कई बार कटा कटा रह रहा होता है, या जब उससे बात करने की कोशिश की तो वो उस हिसाब से जवाब नहीं दे रहा, उसके पर्सनैलिटी में चेंजेस हमें दिखाई देते हैं। जो उसकी प्लानिंग है उसे हम समझ नहीं पाते, और ऐसे कई सुसाइड केसेस होंगे उसकी एक तरह से अगर हिस्ट्री देखें तो हमें मिलेगा कि हाँ ये बात कह रहा था।
0: हाँ।
1: ये ऐसी बात कह रहा था।
0: हाँ हाँ।
1: ये ऐसी बात कह रहा था, शायद इसके मन में ऐसा था कि मरना चाह रहा है।
0: बिल्कुल।
1: पर
0: बिल्कुल।
1: उस समय हम शायद पकड़ तो नहीं पाए।
0: लेकिन बहुत छोटे संकेत हैं। अमूमन कोई आदमी कह देता है ऐसी जिंदगी से क्या फायदा, कह देता है एक आदमी,
1: उसे भी गंभीरता से लेना चाहिए।
0: लेकिन उसे गंभीरता से लेना चाहिए, वही मैं कहने जा रही थी कि बहुत एक साधारण सी पंक्ति सुनाई पड़ती है ये, लेकिन हो सकता है कि उस व्यक्ति के भीतर कुछ बहुत गहरी घुटन हो जिसकी प्रतिक्रिया इस तरह से निकल रही
1: है। एक तरह से हम कहते हैं, अभी एक नया कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं गेट कीपर ट्रेनिंग। गेटकीपर एक तरह से वो लोग हैं जो समाज के अलग अलग वर्गों से आते हैं। टीचर्स हो सकते हैं, एम्प्लॉय हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, नर्सेज हो सकती हैं। अगर उन्हें ये ट्रेनिंग दी जाए कि भाई ये सुसाइड के वार्निंग साइंस है, अगर आपको इनमें से कोई भी ऐसा लगता है कि किसी के अंदर है तो आपके कान अलर्ट हो और आप उसे आगे समझा पाए, खुद से रोक पाए या दूसरों की मदद कर पाए। जैसे मान लीजिए नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स है, NDRF है, SDRF है, वो भी एक तरह से उस गेटकीपर का ही पार्ट है। मान लीजिए उन्होंने किसी इंडिविजुअल को बचाया फ्लड में से या किसी और चीज से, और उस फ्लड में या उस जो डिजास्टर था उसमें उसका कुछ नुकसान हुआ। हो सकता है ऐसे व्यक्ति में जिसका नुकसान हुआ है पर जिसे बचाया जा सका, उसके मन में भी आत्महत्या के विचार
0: आए। बिल्कुल।
1: ठीक है। तो उसका जो साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड है, मानसिक जो उसे हम रिलीफ दे सकते हैं, उसका प्रयास की ट्रेनिंग एक तरह से बहुत वाइड लेवल पे होनी चाहिए। तो अगर उसकी वाइड लेवल पे ट्रेनिंग होगी तो लोगों को मानसिक स्वास्थ्य की वैल्यू भी समझ आएगी, और ये भी वो जज कर पाएंगे कि क्या इस इंसान में कोई सुसाइड के विचार है। और अगर है तो उसकी देखभाल भी की जानी चाहिए।
0: तो मतलब सिर्फ बचा लेना आवश्यक नहीं है, उसके बाद एक ध्यान रखने की भी आवश्यकता है कि किस मानसिक स्थिति से एक व्यक्ति,
1: जैसे मान लीजिए एक आदमी ने डूब कर आत्महत्या की कोशिश की, गोताखोरों ने उसे बचा लिया, ठीक है, बचा के उन्होंने वापस उसके घर छोड़ दिया, पर उसके जो सुसाइडल विचार है वो अभी भी चलते आ रहे हैं,
0: अभी भी चले आ रहे
1: हैं। वो अगले दिन वापस गया और अगले दिन वापस डूब गया।
0: हाँ, हाँ।
1: और इस बार नहीं बचा पाए।
0: हाँ, हाँ।
1: तो जब समाज के हर सेक्शन को मानसिक स्वास्थ्य की वैल्यू समझ आएगी, को हमारे सोसाइटी में एक मैकेनिज्म होगा कि भाई ये आदमी को खतरा है, इसकी इस तरीके से देखभाल की जानी चाहिए।
0: बिल्कुल, तो ये बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया कि एक जागरूकता हर इंसान, समाज में जितने भी लोग हैं उनके भीतर होनी चाहिए। और थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि ये समय जो है, ये जो दौर है कम से कम सोशल मीडिया का, इसमें हर इंसान को कहने की बहुत जल्दी है और बहुत शौक। सुनने वाले लोग कम हो गए हैं। सुनना बहुत जरूरी है, कोई व्यक्ति क्या कह रहा है, उसके ऊपर क्या गुजर रही है, वो क्या महसूस कर रहा है, इन बातों को खामोश होकर सुनने की आवश्यकता बहुत गहरी है, तभी फिर हम मानसिक स्वास्थ्य की बात कर सकेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, जो नशे की प्रवृत्ति है ये भी लगातार बढ़ती जा रही है, इसका संबंध भी मानसिक स्वास्थ्य से है?
1: नशा एक तरह से मानसिक रोग है।
0: मानसिक रोग है
1: जी। अगर कोई भी व्यक्ति नशे पर निर्भर है या वो अत्यधिक नशा कर रहा है, वो एक मेंटल डिसऑर्डर है, जिसे हम कहते हैं मेंटल डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू साइकोएक्टिव सब्सटेंस।
0: अच्छा।
1: जो नशा है वो दिमाग के अंदर कुछ बायोलॉजिकल चेंजेस करता है, बायोकेमिकल चेंजेस करता है, जिस वजह से इंसान नशे का आदि हो जाता है। कई बार क्या होता है कि इंसान को कोई और मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं, जैसे कि एंजाइटी है या डिप्रेशन है या टेंशन ही है, और वो सोचता है कि शायद नशा करने से ये समस्याएं कम होगी।
0: कम होगी हाँ।
1: क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता कम है, तो उसे ये समझ नहीं आता है कि इसके लिए मुझे साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए या साइकाइट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, वो नशे की तरफ चला जाता है। नशा करने से तनाव का कोई लॉन्ग लास्टिंग फायदा नहीं मिलता। पर होता क्या है कि पहले तो सिर्फ थोड़ा बहुत तनाव या अवसाद या एंजाइटी थी, अब उससे एक बड़ी समस्या उसने खुद पैदा कर ली है कि वो नशे का आदी हो गया है।
0: बिल्कुल।
1: और नशे के आदी होने के बाद तो समाज में कई सारी समस्याएं बढ़ती हैं। क्राइम बढ़ता है, एक्सीडेंट बढ़ते हैं, परिवार टूटते हैं, आजीविका चली जाती है, और पूरे समाज पर इसका विकृत प्रभाव पड़ता है। तो नशा किसी समस्या का हल नहीं है, नशा अपने आप में एक बड़ी समस्या है।
0: बिल्कुल।
1: और अगर आप नशे को बीमारी के रूप में देखेंगे, तभी हम उस व्यक्ति को उचित इलाज दिला पाएंगे।
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि अगर नशे के पदार्थों की वजह से दिमाग में कुछ बायोकेमिकल चेंजेस हुए हैं, तो उन्हें दवाइयों से ठीक करना आवश्यक है।
0: हाँ।
1: सिर्फ काउंसलिंग से या बातों से ठीक करना कई बार संभव नहीं है।
0: तो जो नशे की लत है, इसको एक मानसिक रोग की तरह देखा जाए, है ना, एक सामान्य बात नहीं है कि आपने यूं ही कोई नशा कर लिया। ये आपके भीतर, अगर आप किसी भी नशे पर डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है और आपको उपचार की आवश्यकता है। अच्छा, सामान्य तौर पर डॉक्टर साहब, कोई भी इंसान अपने मानसिक रोग पर चर्चा नहीं करना चाहता, और अगर उसको कोई ऐसी दिक्कत है तो वो डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहता, या ऐसे उसके मन में कुछ विचार आते हैं कि लोग मुझे पागल समझेंगे, है ना, या चिकित्सा के समय उसको इस प्रकार की भ्रांति होती है कि पता नहीं किस तरह का ट्रीटमेंट होगा, क्या किया जाएगा मेरे साथ, तो इन भ्रांतियों पर आप क्या कहेंगे, और क्यों नहीं जाकर डॉक्टर से बात कर पाता कोई व्यक्ति?
1: देखिए, मानसिक रोगों के प्रति, मानसिक रोग विशेषज्ञों के प्रति और मानसिक रोग की दवाइयों के प्रति लोगों में बहुत सी भ्रांतियां हैं, और इससे समाज का बहुत नुकसान हो रहा है। इन भ्रांतियों का निराकरण बहुत आवश्यक है। और मानसिक रोग वैसे ही हैं जैसे कि शारीरिक रोग है। मानसिक रोग एक तरह से जो हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है, ब्रेन या दिमाग, उसके रोग है। तो जैसे किसी को लीवर, किडनी, हार्ट की कोई बीमारी हो सकती है, वैसे दिमाग से संबंधित रोग किसी को भी हो सकता है। अगर किसी को डिप्रेशन हो रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो कमजोर है। किसी को अगर हार्ट अटैक आ रहा है, इसका मतलब ही नहीं वो कमजोर है। बीमारियां किसी को भी हो सकती है। सही जानकारी मिलना अति आवश्यक है। मानसिक रोगों के प्रति जो भ्रांतियां हैं वो अलग अलग किस्म की हैं। कई लोग ये मानते हैं कि शायद जादू टोना करने से ठीक हो जाएंगे।
0: हाँ।
1: कई लोग इसे भूत प्रेत की बाधा मानते हैं। कई लोग ये मानते हैं कि ये कमजोरी की निशानी है। कई लोग मानते हैं कि शायद शादी करने से ठीक हो जाएगी। कई लोग ये मानते हैं कि जो मानसिक रोग के प्रति दवाइयां दी जा रही हैं उनसे नुकसान बहुत ज्यादा होता है। मेरे पास बहुत रेगुलरली वो पेशेंट आते हैं जिन्हें अगर थोड़ी सी भी दवा दी जाए तो वो बड़े घबरा जाते हैं कि पता नहीं हम दवाइयों से क्या क्या नुकसान हो जाएंगे। जबकि वास्तविकता यह है कि दवाइयों के फायदे बहुत ज्यादा हैं और नुकसान बहुत कम है, और नुकसान वो है जो साइकेट्रिस्ट जानता है। तो वो आमतौर पे दवाई के जो बेस्ट ऑप्शन होते हैं पेशेंट के लिए वही दवाई देने की कोशिश करता है। तो जो अगर नियमित इलाज मनोचिकित्सक के मार्गदर्शन में चलेगा उसके साइड इफेक्ट नहीं होंगे। पर कई बार क्या होता है, पेशेंट ने दवाई लेनी चालू की, वो आया ही नहीं दिखाने वापस, और वही दवाइयां सालों साल खाता रहा। तो ऐसी कंडीशन भी नहीं आनी चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: अगर रेगुलर फॉलोअप रहेगा, रेगुलर ट्रीटमेंट चलेगा, तो मरीज को फायदा अवश्य होगा।
0: हाँ।
1: तो इन भ्रांतियों को दूर करने के लिए एक तरह से, जैसे आज हम ये मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, इसका मेन टारगेट ही जागरूकता फैलाना और भ्रांतियों को दूर करना है।
0: दूर करना है, बिल्कुल। तो इसमें कोई संकोच की बात नहीं है। जैसे शरीर का कोई भी अंग बीमार हो सकता है, उसी तरह आपका मस्तिष्क भी बीमार हो सकता है और उसी तरह उसका इलाज हो सकता है।
1: मानसिक रोग शारीरिक रोगों की तरह ही है, उनका भी वैसा ही उपचार संभव है जैसा कि शारीरिक रोगों का है। तो अगर किसी को डिप्रेशन हो सकता है, वैसा ही है जैसा कि किसी को डायबिटीज हो सकता है, या किसी को ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, तो उनमें भी कई बार लंबा ट्रीटमेंट चल सकता है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी पेशेंट को हमने दवाई चालू की तो जीवन भर चलेगी। बीमारी की अवस्था के ऊपर, बीमारी के टाइप के ऊपर डिपेंड करता है कि दवाई कब तक देनी पड़ेगी। और बहुत से मरीजों की दवाई बंद भी हो जाती है और उसके बाद कभी उनका वापस बीमारी नहीं आती है।
0: नहीं आती, बिल्कुल। अच्छा, मेरे मन में एक बात थी कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो आपकी दिनचर्या है उसमें परिवर्तन कर लें, या योग प्राणायाम करें, ध्यान करें, थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटीज बढ़ा लें, तो इससे भी बहुत आपके मानसिक स्वास्थ्य पर असर होता है। ये कारगर बातें होती हैं?
1: बिल्कुल। देखिए, जितना तनाव बढ़ता है उतने मानसिक स्वास्थ्य समस्या या मानसिक रोग बढ़ते हैं। तो कोई भी चीज जो हमें रिलैक्स करती है, जो हमारे दिमाग को रिलैक्स करती है, वो जैसे योगा हो, प्राणायाम हो, एक्सरसाइज हो, जो हमें हमारी समस्याओं से निजात दिलाती है, वो लाभकारी हो सकती है। तो मानसिक रोगों से बचने के भी यही मेन उपाय हैं कि हमें स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए, हमें व्यायाम को टाइम देना चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए, हमें योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन की ओर ध्यान देना चाहिए, हमें मोबाइल का उपयोग सीमित करना चाहिए,
0: बिल्कुल,
1: और हमें नींद को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। अगर हम नींद कम करते हैं तब भी मानसिक रोग बढ़ते हैं।
0: अच्छा,
1: तो इन सबको अगर ध्यान देंगे तो हम बेहतर मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त कर सकेंगे।
0: बिल्कुल। आपने मोबाइल की बात की तो मुझे बच्चों की याद हो आई कि बच्चे जो हैं, उनका जो एडिक्शन है मोबाइल को लेकर, वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। किस तरह की जो नकारात्मक प्रभाव है वो हो रहे हैं उन पर?
1: देखिए, कोई भी टेक्नोलॉजी है उसके कुछ फायदे होते हैं और कुछ नुकसान भी होते हैं। अगर मोबाइल नहीं होता तो शायद कोविड काल में पढ़ाई बंद हो जाती।
0: बिल्कुल।
1: तो कुछ हद तक तो मोबाइल ने हमें राहत दी, पढ़ाई हो पाए, बच्चे पास हो पाए।
0: जी।
1: प्रॉब्लम ये है कि जब हमने असीमित उपयोग चालू कर दिया, असीमित उपयोग मतलब अब मोबाइल का जो ड्यूरेशन है वो 6 से 8 घंटे का हो गया प्रति बच्चा, तो वो चिंताजनक है। उसे रेस्ट्रिक्ट करना बड़ा आवश्यक है।
0: बिल्कुल।
1: जो ऑनलाइन गेम्स हैं, ऑनलाइन शॉपिंग है, ये एक तरह से आजकल एडिक्शन की कैटेगरी में आने लग गए हैं।
0: तो बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है?
1: बिल्कुल प्रभावित हो रहा है। और अगर किसी की भी बच्चे को अत्यधिक मोबाइल की लत लग रही है, तो उसे मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक के पास जाकर उपचार कराना चाहिए।
0: तो बहुत ही सुंदर तरीके से आपने बताया। अब मैं ये जानना चाह रही थी कि हम कितना भी कहें, लेकिन जब तक हमें स्वयं को नहीं लगता कि ये दिक्कत हमारे साथ है, तब तक हम डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। और जो मनोरोग है या मानसिक स्वास्थ्य जो है, वो एक ऐसा कोई बुखार तो है नहीं कि थर्मामीटर लगाया और एक टेम्परेचर नज़र आ गया और हम डॉक्टर के पास चले गए। ये तो नहीं हो पाता मानसिक रोगी के साथ। तो क्या ऐसा कोई उपाय है कि घर बैठे हम खुद अपनी जांच कर सकें कि क्या हमें परामर्श की आवश्यकता है, डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता है?
1: मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने अभी एक नया मोबाइल प्ले स्टोर का ऐप लॉन्च किया है, जिसका नाम है मनहित।
0: मनहित
1: एक बहुत अच्छा ऐप है। उसके बनाने में मैं, हमारे डिपार्टमेंट की डॉक्टर समीक्षा, नेशनल हेल्थ मिशन के डिप्टी डायरेक्टर और एम्स के साइकाट्रिस्ट और मध्य प्रदेश के बाहर के भी साइकाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट सबने सहयोग करके उस ऐप को बनाया है। वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है।
0: जी।
1: वो ऐप इस मामले में यूनिक है कि उसके अंदर एक तो अवेयरनेस मटेरियल काफी है, वीडियोज है अवेयरनेस के, जो भ्रांतियां हम जिनकी बात कर रहे थे उनको निराकरण करने के लिए भी अवेयरनेस मटेरियल है। उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है सेल्फ असेसमेंट।
0: अच्छा।
1: जैसे आप अगर उसमें अपना सेल्फ असेसमेंट करना चाहते हैं तो क्वेश्चनेयर आता है, आपने क्लिक किया, अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, उसका आप अपना रिप्लाई डालते जाते हैं और वो फिर आपको आपका स्कोर बताता है उस क्वेश्चनेयर का।
0: अच्छा।
1: कि अगर आपका स्कोर सामान्य है तो ये बताता है कि आपका स्कोर सामान्य है, अगर आपका स्कोर सामान्य से अधिक है या आप मानसिक अस्वस्थता की श्रेणी में आ रहे हैं, तो ये बताता है कि भाई आपको ये तकलीफ लग रही है, अब या तो आप टेलीमानस के माध्यम से संपर्क कर लीजिए काउंसलर को, या मनकक्ष जो खुले हुए हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, या मेडिकल कॉलेजेस के जो साइकेट्री डिपार्टमेंट है वहां जाके संपर्क कीजिए, ताकि आप अपनी समस्या का समाधान खोज पाए।
0: तो मनहित, इसकी आपने चर्चा की।
1: और जो दूसरा है इसके अंदर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक स्कीम है
0: जी,
1: जिसे कहते हैं टेलीमानस, उसमें एक हेल्पलाइन नंबर है, मनहित जो है आपको बीमारी है या नहीं है इसकी जानकारी दे सकता है, पर अगर आपको कुछ प्रॉब्लम निकलती है तो उसके सॉल्यूशन के रूप में टेलीमानस है। तो टेलीमानस का जो हेल्पलाइन नंबर है डेट इज 144 16
0: 144 16 16
1: ये 24/7 हेल्पलाइन है, हर रीजनल लैंग्वेज में अवेलेबल है, हर स्टेट में इंडिया के संचालित हो रही है। इसमें ट्रेन काउंसलर्स हैं, साइकाट्रिस्ट भी हैं, जो आपकी प्रॉब्लम गंभीरता से सुनेंगे और उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे।
0: बिल्कुल।
1: अगर उसका समाधान ऑनलाइन या फोन के माध्यम से नहीं भी हो पाया तो वो आपको सलाह देंगे कि आप मनकक्ष जो कि जिला अस्पताल में है या मेडिकल कॉलेज के जो साइकेट्री डिपार्टमेंट है वहाँ जाके अपनी समस्या का उपचार कराएं।
0: तो आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि हमें ये समस्या है या नहीं, हमारा मानसिक स्वास्थ्य कैसा है, उस रोग की ओर हम बढ़ तो नहीं रहे, ये हम अगर स्वयं जांच करना चाहते हैं तो मनहित ऐप के जरिए हम ये पता कर सकते
1: हैं। मेरा मानना ये है कि मध्य प्रदेश के हर नागरिक के मोबाइल में टेलीमानस का नंबर सेव होना चाहिए और मनहित ऐप इंस्टॉल होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो वो मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी होगा, उसकी अवेयरनेस की सामग्री भी पढ़ पाएगा, सेल्फ असेसमेंट भी कर पाएगा, और कोई अगर रोग की श्रेणी में आ रहा है तो उसका टेलीमानस के माध्यम से निराकरण भी होगा।
0: और जो मानसिक स्वास्थ्य है उसमें सबसे बड़ी जो चुनौती है वो यही है कि इंसान बोल नहीं पाता है, क्योंकि मन में एक घुटन की अवस्था है, वो बोल नहीं पा रहा, वो परेशान है, या मान लीजिए तनाव की स्थिति है। कोई युवाओं में कितने इस तरह की बातें होती हैं जो वो न अपने दोस्तों से कर पा रहे हैं, न माता पिता से कर पा रहे हैं, न भाई बहन से कर पा रहे हैं, तो एक अपरिचित व्यक्ति से जो उनकी सहायता के लिए खड़ा है उससे वो कह सकते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है।
1: बिल्कुल। क्या होता है कई बार मानसिक तौर पर परेशान व्यक्ति जाके सेवाएं लेने में संकोच महसूस करता है, और अगर उसके मोबाइल के अंदर ही कुछ होगा असेसमेंट टूल तो वो ज्यादा इजीली ले पाएगा, और अगर उसका स्कोर ज्यादा आता है तो अपने घर वालों को भी बता पाएगा कि देखिए मेरे को ये समस्या थी, मैंने ये स्कोर किया है, इसके अंदर इसमें समस्या ज्यादा आ रही है, तो आप मुझे ले चलिए, तो घर वाले भी उसे अति गंभीरता से लेंगे और उसका उपचार करा पाएंगे।
0: बिल्कुल। तो हम ये चाहते हैं डॉक्टर साहब कि चलते चलते हमारे जो सुनने वाले हैं उनके लिए आपको एक अच्छा सा संदेश दें आज के दिन इस विषय को लेकर।
1: मानसिक स्वास्थ्य के महत्व को समझना बहुत आवश्यक है। अगर हम मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे तो हम समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को और अपने कर्तव्यों को अच्छे से निभा पाएंगे, और हम समाज के लिए अधिक उपयोगी होंगे, हमारी प्रोडक्टिविटी भी अपनी वर्क प्लेस पे बेस्ट होगी।
0: तो श्रोताओं, आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर हमने डॉक्टर जेपी अग्रवाल जी से बातचीत की और बहुत विस्तार से उन्होंने इस विषय पर आपको जानकारी दी। उम्मीद है आज की ये जो जानकारी है वो आपके लिए लाभप्रद होगी और ये जानकारी आप अपने जानने वालों तक भी जरूर पहुंचाएंगे। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। चलते चलते आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की परिकल्पना की अदिति गौड़ ने, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का था, और आपके साथ थी मैं आपकी दोस्त सुनीता सिंह। अब इस कार्यक्रम से इजाजत दें। नमस्कार। सुनते रहिए 90.8 MHz पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा आज का विशेष कार्यक्रम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए।
1: साहस की बुलंद शुरुआत से लेकर आसमान की असीम ऊंचाइयों तक 8 अक्टूबर को पूरा देश मना रहा है भारतीय वायुसेना का 94वां वायुसेना दिवस।
2: वर्ष 1947-48, 1965 और 1971 के ऐतिहासिक युद्धों से लेकर ऑपरेशन मेघदूत और ऑपरेशन सफेद सागर तक विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायु सेना ने हर पल कर दिखाया है अदम्य पराक्रम, अत्याधुनिक तकनीक और सर्वोच्च बलिदान।
1: तो मध्य प्रदेश के जाबाज युवाओं, क्या आप तैयार हैं? बादलों को चीरकर देश का मान बढ़ाने के लिए तो बनिए अग्निवीर वायु, हासिल कीजिए वो मुकाम जो जिंदगी भर की पहचान बन जाए और गर्व से कीजिए भारत माँ की सेवा।
2: भर्ती और पात्रता से जुड़ी पूरी जानकारी के लिए
1: 15 एयरमैन चयन केंद्र के इंस्टाग्राम पेज 15ASC_भोपाल और आधिकारिक वेबसाइट IAFRecruitment.edcil.co.in पर विजिट करें।
2: नभास प्रशम दीप्तम।
1: जय हिंद।
3: ये दुनिया 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद पर। मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
4: ये मेरा इंडिया।
3: देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: पहले हम आपको सुनवाने जा रहे हैं 8 अक्टूबर को मंचित नाटक जंगली बूटी के संपादित अंश। इसका निर्देशन किया प्रीति झा तिवारी ने।
1: तो लीजिए, प्रस्तुत है नाटक जंगली बूटी।

0: अरे ये अंगूरी, अरे तू काहे हंस रही है पगलिया को देख के?
1: हम भी हंस रहे, वही तो गाना गा रही है।
0: अरे जब वो गा रही है तो तू हंस काहे रही है? बेटा ऐसे नहीं हंसते।
1: ठीक है नहीं हंसूंगी, लेकिन तू भी तो हंसती है।
0: बेटा वो हंसना अलग है और किसी को देख के हंसना अलग।
1: अम्मा ऐसे देख के हंसने से क्या होता है?
0: अरे बेटा ऐसे किसी का मजाक नहीं उड़ाते। किसी को देख के उसका मजाक उड़ाए और हंसे ना तो भगवान पाप देता है पाप, समझी? अब चलो घर, पगलिया के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। दिन भर भटकती रहती है।

0: रहते हैं हा? अपनी छोटी बहनिया का ध्यान रखो, कम से कम कुछ तो करो।
1: वो तो दिन भर वहाँ झूले में सोती रहती है आराम से, फिर हम उसके काम क्यों करें?
0: अच्छा तो ब्याह नहीं करना है क्या? ब्याह के बाद क्या करोगी?
1: शादी करना जरूरी होता है?
0: बिल्कुल जरूरी होता है। काहे रोटी कौन खिलाएगा?
1: तो फिर पति क्यों होता है? वो क्या लड़की को काम करने के लिए लेके जाता है?
0: अरे ठीक है भाई नहीं करेंगे, पर ये बताओ ब्याह नहीं करोगी तो मोटा मोड़ी बच्चे कैसे होंगे?
1: तो अम्मा बाबा ने हमारी शादी करा दी।
0: अरे बेटा अभी बात करने गए हैं, अभी 4-5 साल है तुम्हारे ब्याह में।
1: अम्मा हम शादी नहीं करेंगे, हम तेरे साथ ही रहेंगे, हम नहीं शादी करना।
0: अरे ठीक है बेटा मत करना शादी, चलो
1: हम नहीं करेंगे, हम बता
0: रहे हैं। मत करना, चलो अभी बहुत काम पड़ा है, जाओ जाके कुआं में से पानी लेके आओ।
1: बाबा को बता देना हम नहीं करेंगे शादी।
2: प्रभाती भैया, रो प्रभाती भैया, उठे या नहीं या सोई रहे हो भैया? आज काम पर नहीं जाना क्या? तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं।

0: शाम को ही आया भैया और आते से सीधा काम पर चला गया।
1: कह तो रहा था कि दो चार दिन में आ जाएगा।
0: हाँ आने तो वाला था दो चार दिन में,
1: फिर
0: पर अम्मा की तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब हो गई तो गांव में ही रुक गया।
1: तो इतने दिन की छुट्टी मिल गई थी?
0: नहीं, फिर हमने मैनेजर साहब को फोन किया।
1: हाँ।
0: वो मान गए।
1: मैनेजर?
0: हमारी कंपनी के मैनेजर जिन्होंने हमारी नौकरी लगवाई थी।
1: अच्छा हो तो
0: आप कब आए भैया?
1: हो गया 10-12 दिन।
0: संजोग दी तो भैया कल शाम को हम आए और कल हमको ये मिठाई मिली।
1: अरे वाह, कौन दिया?
0: वो कोने के बंगले में मैडम जी रहती है ना।
1: हाँ।
0: कुएं के पीछे जिनका घर है।
1: हाँ हाँ हाँ।
0: उन्हीं ने दिए।
1: ताजी है?
0: पता नहीं, होगी एक दो दिन पहले की।
1: नहीं नहीं, एक दो दिन से ज्यादा हो गए, लेकिन खराब नहीं हुई है।
0: ठीक है भैया हम जाते हैं।
1: बैठ जा, चाय पी के जाना।
2: अरे पी लो, बन गई है।
0: हम घर पे पी लेंगे।
1: तो घर पे कब से चाय बनाने लग गया? पी ले भाई, नहीं तो नींद नहीं आएगी।
0: ठीक है।
2: नहीं नहीं हम नहीं खाएंगे।
1: क्यों नहीं खाएगी?
2: हमारी अम्मा ने मना किया है।
1: क्या मना किया?
2: किसी बाहर के आदमी से लेके कुछ नहीं खाना, पाप लगता है।
1: अरे तो वो थोड़ी खिला रहा है, खाएगी तो अपने हाथों से।
2: नहीं नहीं हम नहीं खाएंगे, कोई कुछ भी मिला के खिला देता है खाने में।
1: अरे किसके पास इतना टाइम है जो कुछ मिला के खिला देगा। एक काम कर, तुझे खाना है तो खा ले, नहीं तो मैं रात में आके खा लूंगा।
2: अरे ले जा, काम पर ही खा लेना।
1: अरे नहीं नहीं वहां कुछ नहीं ले जा सकते और ना ही वहां से कुछ ला सकते। ठीक है हम चलते हैं, शाम को आके खा लेंगे। और देखो हमको देर हो जाएगी आपके आने में।
2: ठीक है।

0: और आइए अब सुनते हैं सहयात्रा, इस नाटक के संपादित अंश जिसका मंचन किया गया 9 अक्टूबर की शाम। इसका निर्देशन किया विद्यानिधि बनारसे ने।
1: उन्होंने समय से पहले ही इस दुनिया से विदा क्यों ले? समय पर तलाक न लेने के कारण। तुम तलाक के मुकदमे लड़ते हो इसीलिए ऐसा कह रहे हो, और तुम चित्रकार कलाकार इसीलिए उनके लिए दुखी हो रहे। वैसे तुम्हारे पोर्ट्रेट्स की प्रदर्शनी कब?
2: फिलहाल तो प्रदर्शनी की कोई प्रेरणा नहीं है।
1: हमारी प्रेरणा मेडिकल सेमिनार के लिए गई थी, वो वापस आई है नहीं?
2: सुबह ही आई, लेकिन उस ड्रग कंपनी के प्रति उसकी निष्ठा देखो। हफ्ते भर से थकी आ रही आई और बिना आराम के सीधी काम पर चली गई, अभी आते ही सो गई।
1: तुमने उसका पोर्ट्रेट पूरा किया है?
2: हाँ, वो तो रह ही गया।
1: भाभी, चित्रकार को आपके पोर्ट्रेट की याद दिला दी।
3: अच्छा, साल भर में कितने पोर्ट्रेट बना रहे?
2: अरे यार, तुम्हें क्या जरूरत थी ये बात बीच में लाने? तुम जाओ, निकलो यहाँ से।
1: बाबा, अब हमारी मुलाकात कल दोपहर को होगी, चलता।
2: अच्छा, साल भर में कितने पोर्ट्रेट बना? पूछो सर। हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दें तो,
3: हम बूंद के पलकों को इस दिल को सजा दें तो।
2: तो तुम इतना थक गए तो तुरंत काम पर जाना जरूरी था क्या?
3: रिपोर्ट देने की सेमिनार की, अब तुम आर्टिस्ट लोगों की तरह मूड नहीं है क्या? कर काम डालते नहीं आता ना।
2: अच्छा, तो अब तुम्हें मेरा आर्टिस्ट होना भी तकलीफ दे रहा है?
3: नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है।
2: सेमिनार कैसा रहा?
3: सेमिनार फैंटास्टिक था।
2: यू डोंट वांट टू स्टे मैरिड टू अ लूजर? यानी तुम्हें मेरे साथ घर नहीं बसाना है?

0: उसे दोष नहीं दे रहा हूं जानता। उसके भीतर जो भी भावनाएं थी उसने ईमानदारी से बोलकर दिखा दी। हाँ, शादी के बाद उसमें बदलाव आया है। ये प्यार में पड़ने वाली ना समझ उम्र पीछे छूट गई है, तो वो अब अपने जीवन को कोई आकार देना चाहती है, और उस आकार में शायद मैं फिट नहीं बैठ रहा हूं। केवल स्वीकार करने की एक बार गलती की तो क्या वो हमेशा के लिए अपने आप को मुझ जैसे एक लूजर के साथ बांध कर रखे?
1: यू आर नॉट अ लूजर।
0: मैं इस दुनिया को ना कभी अपना हुनर दिखाऊंगा। लेकिन आज उसकी कल्पना में मैं बदल गया हूं।

0: साहस की बुलंद शुरुआत से लेकर आसमान की असीम ऊंचाइयों तक 8 अक्टूबर को पूरा देश मना रहा है भारतीय वायुसेना का 94वां वायुसेना दिवस।
1: वर्ष 1947-48, 1965 और 1971 के ऐतिहासिक युद्धों से लेकर ऑपरेशन मेघदूत और ऑपरेशन सफेद सागर तक विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायु सेना ने हर पल कर दिखाया है अदम्य पराक्रम, अत्याधुनिक तकनीक और सर्वोच्च बलिदान।
0: तो मध्य प्रदेश के जाबाज युवाओं, क्या आप तैयार हैं? बादलों को चीरकर देश का मान बढ़ाने के लिए तो बनिए अग्निवीर वायु, हासिल कीजिए वो मुकाम जो जिंदगी भर की पहचान बन जाए और गर्व से कीजिए भारत माँ की सेवा।
1: भर्ती और पात्रता से जुड़ी पूरी जानकारी के लिए
0: 15 एयरमैन चयन केंद्र के इंस्टाग्राम पेज 15ASC_भोपाल और आधिकारिक वेबसाइट IAFRecruitment.edcil.co.in पर विजिट करें।
1: नभस प्रशम दीप्तम।
2: जय हिंद।

0: नमस्ते, मैं हूँ रानी मुखर्जी और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: नब्बे दशमलव आठ मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम हिंदोस्ता हमारा।

हिंदुस्तान हमारा स्वाधीनता संघर्ष की महाकथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अनुसूचित जाति और जनजाति सहित सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं।

0: अरे काका मजा आ गया, क्या बात है। लोकल ट्रेन, अरे काका कितनी ऊंची बिल्डिंग है मुंबई में, बाप रे बाप।
1: हाँ बेटा, मैं इस मुंबई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 150 साल पुरानी मुंबई की बात कर रहा हूँ। उस समय ऐसी बिल्डिंग तो नहीं थी, लेकिन इस मुंबई में एक रईस मुसलमान परिवार रहा करता था। अच्छा? और उसमें एक लड़का पैदा हुआ, उसका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी।
0: अरे काका बदरुद्दीन तैयब जी तो नाम सुना है मैंने।
1: हाँ, जैसा कि तुम जानते हो कि पढ़ाई लिखाई करके वो 16 साल का हुआ और सन 1860 में वो बैरिस्ट्री पास करने इंग्लैंड गया।
0: अच्छा, मुंबई से इंग्लैंड।
1: 150 साल पुराना इंग्लैंड।
2: यार बदरुद्दीन, लगता है हम इंग्लैंड में नहीं यार, हिमालय की वादियों में आ गए। हिमालय की वादियों में।
3: बिल्कुल ठीक कहा यार तुमने।
2: ये यार कहा हमारे बंबई का प्यारा मौसम और कहा ये इंग्लैंड की जानलेवा ठंड।
3: अरे जनाब, आईने में जाकर अपनी नाक देखिए,
4: ठंड के मारे कैसी टमाटर जैसी लाल हो रही है।
2: अरे हाँ, नाक का जिक्र किया तुमने तो मुझे याद आया, अरे कॉन्ग्रेचुलेशन डियर।
3: अरे किस बात के लिए भला?
2: अरे मुल्क की और अपने वालदेन की नाक ऊंची करने के लिए।
3: अच्छा अच्छा, समझा। छोड़ो भी अब उस किस्से को।
2: अरे वाह, छोड़ो कैसे, लेक्चर कंपटीशन में अव्वल आए हो अव्वल।
3: अरे वो तो बस यूं ही।
2: जिनकी मादरी जबान अंग्रेजी, उन अंग्रेजों को अंग्रेजी जबान में ही पटकनी दे दी और कहते हैं बस यूं ही। क्या अदा है मियां।
3: अरे भाई, इंग्लैंड में रहते हमें 150 साल भी तो हो गया है।
2: तुम कुछ भी कहो बदर, लेकिन कमाल तुमने किया है, केवल 150 साल। अरे सिर्फ 150 साल में अंग्रेजी, लैटिन और फ्रेंच, बाप रे बाप, तीन तीन जबानों पर कमाल की पकड़ की है तुमने।
3: भाई वल्लाह। नहीं, कमाल कुछ नहीं यार, बस मन किया सीखने का, मेहनत की और सीख ली।
2: हम तो ना सीख पाए।
0: डेढ़ साल में अंग्रेजी, लैटिन और फ्रेंच, तीनों भाषाओं पे कमांड।
1: अरे सल्लू, हमने पहले ही कहा था कि मियां बदरुद्दीन कमाल के होनार थे। अब दिमाग तो अल्लाह के फजल से तेज पाया ही था और दिमाग तेज बना भी रहा, पर नजरें कमजोर हो गई उनकी। तो मियां बदरुद्दीन को पढ़ाई बीच में ही छोड़कर मादरे वतन यानी हिंदुस्तान लौटना पड़ा।
3: अच्छा।
1: लेकिन सेहत ठीक होने पर बदरुद्दीन पढ़ाई जारी रखने के खातिर फिर लौट गए इंग्लैंड।
0: अरे वाह, ये हुई ना बात।

0: दिन कहिए जनाब, सेहत कैसी है?
1: थैंक्स।
2: सेहत तो बिल्कुल उम्दा है। तुम सुनाओ, क्या हाल चाल है यहाँ का?
0: यहाँ भी सब उम्दा ही है। कल ही फिरोज शाह मेहता जी से एक मीटिंग में हिंदुस्तान की मौजूदा हालात पर तकरीर सुनी है।
2: उमेश चंद्र बैनर्जी और वाडिया भी रहे होंगे मीटिंग में, क्यों ठीक है ना?
0: अरे भाई बदरुद्दीन, कल पहली बार मैंने दादा भाई नौरोजी को देखा।
2: हाँ।
0: भाई देखकर मैं तो हैरान ही रह गया।
2: मेरे साथ भी बिल्कुल ठीक यही हुआ था।
0: अच्छा? हाँ।
2: अरे कहने को तो उम्र में 20 साल बड़े हैं मुझसे।
0: अच्छा?
2: पर मिलते हैं तो हम उम्र दोस्त हो जैसे।
0: अरे अच्छा ये और सुनाओ, मुल्क के हालचाल सुनाओ। तुम तो
2: एक गुलाम मुल्क के जैसे होते हैं वैसे हैं। 1858 के महारानी विक्टोरिया के ऐलान के बाद हिंदुस्तान पर हुकूमत गोरों की हो गई।
0: ठीक कहा भाई। उस दिन फिरोज शाह मेहता जी ने भी अपनी तकरीर में यही कहा था कि महारानी विक्टोरिया अब हिंदुस्तान की भी महारानी हो गई है।
2: कितनी शर्मनाक बात है ये हम सब के लिए।
0: पर यार हम लोग कर भी क्या सकते हैं यहाँ?
2: जो कुछ होना है और जो कुछ करना है वो हमें ही करना होगा। रियासतें और रियासतदार तो महारानी के इस ऐलान से कि अब उनकी रियासतों को अंग्रेज नहीं हड़पेंगे खुश है। उनसे उम्मीदें लगाना फिजूल है।
0: अरे भाई जनता गदर के बाद पहले से ही सहमी हुई है, और फिर कौन करेगा?
2: मैंने अभी तो कहा ना तुमसे कि जो कुछ करना है हमें ही करना होगा।
0: यहाँ गोरों के मुल्क में रहते हुए
2: क्या दिक्कत है इसमें? गोरे हजारों मील दूर रहकर हमारे मुल्क में घुसकर हम पर हुकूमत करने की हिमाकत कर सकते हैं, तो हम उन्हीं के मुल्क में घुसकर इस हिमाकत पर उनको सबक सिखाने का काम क्यों नहीं कर सकते?
0: वाह भाई वाह। भाई देख रहा हूं कि तुम्हारे दिल में आजादी का दिया टिमटिमाने लगा है।
2: नौरोजी, बैनर्जी और मेहता जी की जलाई मशाल को दिया तो ना कहो मेरे दोस्त।
0: मुल्क के हालातों से मन में बेचैनी होने लगी है, लेकिन इसका असर हमारी तालीम पर ना हो इसका ख्याल हमें रखना चाहिए।
2: बजा फरमाते हैं जिल्ले इलाही, बाखुदा तालीम बेहतर ढंग से ही ली जाएगी, कोई बेनियाजी ना बरती जाएगी।
3: आमीन
0: सुम्मा आमीन।
3: दरबार की आज की कार्रवाई बर्खास्त। शब बख़ैर।
4: अरे काका फिर क्या हुआ?
5: तालीम बेहतर ढंग से हासिल की बदरुद्दीन ने और कानून की पढ़ाई पूरी करके बंबई लौट आए।
4: फिर से बंबई लौट आए?
5: हाँ भाई, और फिर बकाला शुरू कर दी।
4: अच्छा अच्छा।
6: क्या मैं भीतर आ सकती हूँ?
2: कौन? बेगम लाहौल विलाकुवत, हमारे कमरे में आने के लिए आपको कब से इजाजत की दरकार होने लगी?
6: दूसरे कमरों की बात और है, दफ्तर दफ्तर होता है आखिर। किसी मुवक्किल से बात चल रही हो और हम यूं ही दफ्तर में घुसे चले आए, क्या ये ठीक होगा?
2: मुवक्किल? कह तो आप ऐसे रही हैं जैसे हालात से ना वाकिफ हों। क्या समझे हम इसे कि आप भी हमारा मजाक?
6: तौबा तौबा, हम आपका मजाक उड़ाएंगे भला? आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया?
2: अरे आप तो नाहक ही नाराज होने लगी।
6: हमारी नाराजगी बेवजह नहीं थी। खैर छोड़िए।
2: छोड़ दिया। हाँ अब बताइए मसला क्या है जो आपने दफ्तर की ओर रुख किया?
6: कुछ खास नहीं, बस यूं ही आजकल आप काफी उलझे नजर आते हैं, खासकर तब जब आप अदालत से लौट कर आते हैं। क्या वहाँ कोई परेशानी है?
2: हाँ परेशानी है, लेकिन मेरे अकेले की नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तानी वकीलों की है।
6: भला ऐसी कौन सी परेशानी है?
2: हाई कोर्ट में सभी जज विलायती हैं और वे हिंदुस्तानी वकीलों के मुकाबले विलायती वकीलों को ज्यादा तरजीह देते हैं।
6: ये तो सरासर नाइंसाफी है।
2: हालात तो यहाँ तक खराब है कि तमाम काबिलियत के बावजूद ये म्यूनिसिपैलिटी, रेलवे, डाक्टर और तमाम कंपनियों के मालिक हिंदुस्तानी वकीलों को विलायती वकीलों के मुकाबले कमतर समझते हैं, क्योंकि वो सारी विलायती कंपनियां हैं ना।
6: ओहो, ये तो परेशानी की बात है।
2: परेशानी सहने की भी एक हद होती है। फिरोज शाह मेहता को ही देख लीजिए, आजकल हिम्मत हार कर घर पर बैठे हुए हैं। वाडिया तो उकता कर सब कुछ छोड़ छाड़ कर पहले ही काठियावाड़ चले गए थे।
6: क्या वहाँ सब ठीक ठाक चल रहा है?
1: ठीक चल रहा है कि क्या बात है, वहाँ तो वो नाम और पैसा दोनों ही कमा रहे हैं।
6: आपने क्या सोचा है?
1: छोटी मोटी परेशानियों से घबराने वाला आदमी नहीं है बदरुद्दीन। मैं यहीं डटा रहूंगा और हालात का मुकाबला करूंगा। आई एम सन ऑफ इंडिया, भारत पुत्र हूँ मैं।
6: आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू डियर।
1: थैंक यू।
7: अल्लाहु अकबर, अल्लाह अकबर।
5: हाँ तो सल्लू, ऐसा था बदरुद्दीन का जज्बा मुल्क के लिए और मुल्क वालों के लिए।
8: वाह।
5: अपनी लगन, मेहनत, विषय की पकड़, सूझबूझ और सॉलिसिटर भाई कमरुद्दीन की मदद से बदरुद्दीन ने धीरे धीरे पैर जमा लिए।
8: वाह काका।
6: तो एडवोकेट बदरुद्दीन तैयब जी साहब ने आखिरकार तमाम मुश्किलातों पर फतह पा ही ली।
1: इस फतह में आप बराबरी से शरीक हैं बेगम, मुबारकबाद कबूल करें।
6: या अल्लाह, हम किस तरह शरीक हैं भला? बिना वकालत किए आपकी बीवी होने के नाते वकीलन भी कहलाती हैं जरूर, पर वो अलग बात है।
1: अरे आप साथ रहकर हौसला अफजाई ना करती तो मुमकिन है कि हम भी हालात का सामना ना कर पाते भाई।
6: इतने मक्खन के बाद तो आपकी पेश की हुई मुबारकबाद दोनों हाथों से थामना पड़ेगी, वरना चिकनाई पर खड़ी फिसल कर गिर जाएगी।
1: इस वक्त कौन आ गया दाल भात में? मूसल चंद।
9: अरे भाई बद्रू।
6: बग्घी से तो मूसल चंद नहीं, आपके मित्र गोपी चंद उतर रहे हैं।
1: नाम भले ही गोपी चंद हो, काम तो मूसल चंद का ही किया है।
9: आया भाई।
10: अस्सलाम वालेकुम मियां।
1: वालेकुम अस्सलाम। आइए आइए।
10: ये मूलचंद कौन है मियां? क्या कोई नया मुवक्किल है?
1: उसे छोड़ो मियां, आप तो ये बताइए आना कैसे हुआ?
10: बस तुम्हारी याद खींच लाई यार दोस्त।
1: बैठो बैठो बैठो, रहे नसीब, हुजूर ने याद तो फरमाया।
10: अरे सोचा मुलाकात के साथ दो दो बातें भी हो जाएंगी। अरे हाँ, ये बताओ कि क्या तुम्हें बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर जॉर्ज कैंप बेल के नए फितूर के बारे में पता है कि नहीं है?
1: अब घोरों की तो आदत हो गई है, कोई ना कोई नया गोल खिलाते रहते हैं। अरे अब कौन सा नया गोल खिलाया है इस कैंप बेल ने?
10: अरे सुनोगे तो हैरान रह जाओगे।
1: अच्छा सुनाइए, सुना लीजिए अब आप बस।
10: हुजूर कैंप बेल साहब ने प्रस्ताव रखा है कि वकालत और वकीलों वाला सिस्टम ही खत्म कर दिया जाए।
1: वल्लाह क्या दिमाग पाया है हुजूर ने, काबिल तारीफ सच में।
10: अरे आपका दिमाग चल गया है हुजूर मेरे ख्याल से तो। अरे वो आपके पेट में लात मारने का प्रस्ताव लेकर आया है और आप हैं तो उसके दिमाग की तारीफ कर रहे हैं, भाई हद है।
1: पहली बात तो ये है कि कोई किसी के पेट पर लात मारने की कुव्वत नहीं रखता।
10: अच्छा।
1: अरे सब अल्लाह मियां का दिया हुआ खाते हैं यार। रही दूसरी बात, तो मियां बिलाशक दिमाग तो कमाल का पाया है उसने, आप कुछ भी कह लीजिए।
10: अरे मैं कुछ समझा नहीं।
1: मैं समझाता हूँ। देखिए अंग्रेजों को शुभा है कि हिंदुस्तानी वकील खासकर इंग्लैंड में पढ़े।

0: बंगाल में जो उमेश चंद्र बनर्जी, मनमोहन घोष और लालचंद घोष कर रहे हैं, तीनों वकील,
1: और यहाँ मुंबई में फिरोज शाह मेहता, तेलंग और खुद आप जनता को जगाने का काम जो कर रहे हैं, तीनों वकील।
0: अब मेरी छोड़िए, मैं कुछ खास नहीं कर पा रहा हूँ।
1: अरे खास ही कर रहे हैं आप जनाब, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जनता के हर आंदोलन के पीछे आप वकीलों का ही तो हाथ है, और किसका है?
0: लगता है मियाँ अंदर करवा गई, मानोगे?
1: अच्छा चलते हैं, खुदा हाफिज।
0: अरे जा रहे हो?
1: अरे
0: अरे तो चाय
1: नहीं, नहीं
0: थोड़ा सा
1: बस
0: माली।
1: अरे तो
2: हाँ तो सल्लू, देखा तूने?
3: हाँ काका,
2: बदरुद्दीन सिद्धांत के पक्के और आत्मसम्मानी शख्स थे,
3: ये तो दिखा काका।
2: बहुत गंभीर सौम्य बदरुद्दीन साहब को किसी किस्म की कोई लत नहीं थी, सिगरेट शराब से कोसो दूर।
3: अच्छा?
2: सारे काम नियम पूर्वक करते और समय के पावन थे, आत्मसम्मान तो जैसे कूट कूट कर भरा था उनमें।
3: वाह।

0: ये मिस्टर पार्सन क्या समझते हैं अपने आप को?
1: क्या हो गया मिस्टर पार्सन को और आप इतनी जल्दी कैसे लौट आए?
0: अरे नया आया है बम्बई में जज बनकर, इसलिए सोचा कर्टसी विजिट दे आऊं।
1: ठीक किया आपने।
0: पर मिस्टर पार्सन ने कहाँ ठीक किया?
1: आखिर किया क्या उसने?
0: कहने लगा इस वक्त बिजी हूँ।
1: अरे ये तो सरासर बदतमीजी है।
0: वही तो मैं कह रहा हूँ।
1: पता नहीं ऐसे लोगों को क्या देखकर जज बना दिया है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने।
0: अरे रंग देखकर, गोरा होने से बड़ी और कोई काबिलियत नहीं होती उनकी नजर में।
1: ओह इसीलिए आप इतनी जल्दी चले आए?
0: मैंने भी कह दिया बहुत काम रहते हैं मेरे पास, बहुत बिजी हूँ, जल्दी आ वहाँ से मैं।
1: ठीक किया आपने।
0: उसे उसकी गलती का एहसास हो गया था शायद, इसीलिए मेरे पीछे पीछे बग्गी तक चला आया और लगा घोड़ों की तारीफ करने, पर मैंने उसकी बातों पर कान नहीं दिया, चला आया वहाँ से मैं।
2: वाह काका, बड़े स्वाभिमानी थे बदरुद्दीन साहब।
3: हाँ सल्लू, ऐसे स्वाभिमानी थे बदरुद्दीन तैयब जी साहब। बकाला धीरे धीरे जमने लगी थी, अब उन्होंने सार्वजनिक कामों में भी खुलकर हिस्सा लेना शुरू कर दिया। सन 1872 में एक नया कानून पास हुआ जिसके तहत 1873 में बम्बई कॉरपोरेशन के कुछ सदस्यों का चुनाव हुआ।
4: अरे बदरुद्दीन साहब आदाब अर्ज़ है, आइए।
5: आदाब।
4: बदरुद्दीन साहब सुना है आप चुनाव में खड़े हो रहे हैं?
0: ठीक सुना है आपने।
4: हमारे लायक कोई काम हो तो बताइए।
0: अरे हम तो सिर्फ खड़े हो रहे हैं मियाँ, सारे काम तो आप लोगों को ही संभाल ले।
2: अरे इत्मीनान रखिए, माशाल्लाह फतह हमारी होगी।
0: आमीन आमीन।
4: बदर साहब तो इजाजत दीजिए, आज ही से काम में लगना होगा।
3: हाँ तो सल्लू, बम्बई कॉरपोरेशन का चुनाव उन्होंने शानदार तरीके से जीता, फिर 1882 बम्बई व्यवस्थापिका परिषद में नामजद हुए।
2: अरे वाह।
3: पर खराब सेहत होने के कारण इस्तीफा देना पड़ा, पर जब तक रहे तब तक भारतीयों के अधिकारों की जोरदार तरीके से वकालत करते रहे।
2: वाह वाह।
0: बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के सदर होने के नाते एक और अहम जिम्मेदारी हमारे कंधों पर आ पड़ी है।
1: सदर हैं तो जाहिर है कि जिम्मेदारियां भी होंगी ही।
0: ठीक फरमाती हैं आप, पर इस बार एक अलग किस्म की और ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी एसोसिएशन के कंधे पर आ पड़ी है।
1: ऐसी कौन सी जिम्मेदारी है भला जिसने आपको इतना परेशान किया हुआ है?
0: परेशान नहीं है हम, परंतु जिम्मेदारी तो आखिर जिम्मेदारी होती है ना, जिसे अच्छे से निभाना होता है। एसोसिएशन के झंडे तले इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन भी होगा और चुनाव भी।
1: फिर तो आपकी मसरूफियत आने वाले दिनों में बहुत बढ़ जाएगी।
0: ठीक फरमाती हैं आप।
1: हमारा तो कहना है कि जो भी करना है जरूर करिए, पर पहले खुद की सेहत का ख्याल रखिए।
0: अच्छा अच्छा, आज आपने वो आपकी हमेशा वाली कहावत नहीं दोहराई, क्या है वो? एक से
1: हाँ,
0: क्या
1: एक से सेहत हजार
0: नियामक।
1: हाँ हाँ, उड़ा लीजिए मजाक।
3: इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए खूब धूमधाम से तैयारियां की गईं, पर आखिरी वक्त बदरुद्दीन साहब को किसी काम से कैम्बे जाना

0: पड़ा और वे कांग्रेस के पहले अधिवेशन में भाग न ले पाए। दूसरे अधिवेशन में भी वे उपस्थित न रह पाए क्योंकि उनकी सेहत ठीक नहीं थी।
1: लीजिए, आ गए आपके दोस्त।
2: आइए आइए, पूरे 3.5 मिनट लेट हैं आप। सुनाइए क्या हाल है।
3: 3 मिनट और 41 सेकंड। खैर, हमारे हाल चाल तो ठीक है, पर सुना है अंग्रेजों को ठीक नहीं है।
2: जो सबके हाल खराब किए रहते हैं उनके हाल खराब है क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया?
3: ये पूछो कि क्या नहीं हुआ है। कांग्रेस का गठन हुआ है
2: तो
3: अरे अंग्रेज सरकार फिक्रमंद हो गई है। उन्हें शक होने लगा है कि कांग्रेस आगे चलकर उनके लिए मुसीबत का कारण न बन जाए।
2: अरे इन गोरों को तो हम हिंदुस्तानियों की हर बात पर शक होता है,
3: और इस शक का इलाज लुकमान हकीम के पास भी नहीं होता है।
2: अरे इलाज करना किसे है, कांग्रेस के अपने मकसद है और वो उन मकसदों के लिए काम करेगी।
3: अरे सुनने में तो और बहुत कुछ आया है।
2: और क्या सुना है आपने?
3: ब्रिटिश गवर्नमेंट उसी पुरानी फूट डालो राज करो वाली नीति चला रही है। पता नहीं कितना सच है कितना झूठ।
2: 100% सच, 100%।
3: क्या कह रहे हो?
2: लॉर्ड डफरिन बंबई आकर मुझसे मिलकर गए हैं। दोनों कौमों को बांटने वाली भड़काऊ बातें। बोले कांग्रेस तो हिंदुओं की संस्था है और हम लोग कैसे झांसे में आ गए। देखिए,
3: आपने क्या जवाब दिया?
2: हमने साफ साफ कह दिया कि मियां डफरिन साहब, आपकी दाल यहां नहीं गलने वाली, और बेहतर तो यही होगा कि इस मकसद से आप कहीं और बात करने न जाएं, अगर आपको अपनी इज्जत प्यारी है तो।
3: आपकी बात समझ में आई या यूं ही सर के ऊपर से निकल गई?
2: देखो मियां, कुछ तुम्हें 12 साल बाद भी नलकी से बाहर निकालो तो टेढ़ी ही निकलती हैं। और कुछ मर्दूत तो नलकी को भी टेढ़ा कर देती हैं।
3: भैया दुम वाली मिसाल तो खूब दी आपने।
2: कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में सेहत खराब होने की वजह से हम नहीं जा पाए, पर पता चला कि उसमें मुस्लिमों ने भाग नहीं लिया था।
3: हाँ भाई, हमें भी इस बात का पता चला था और सुनकर बहुत अफसोस हुआ था इस बार।
0: कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन का अध्यक्ष सर्वसम्मति से बदरुद्दीन तैयब जी को चुना गया। अध्यक्ष पद से उन्होंने बड़ा प्रभावशाली, ओजस्वी और मर्मस्पर्शी भाषण दिया। जाति के आधार पर आपस में भेदभाव ना करने की सलाह दी और बंटवारे के खतरों से आगाह किया।
4: कौन है भाई, कौन है?
5: अरे साहब, आपकी चिट्ठी आई है पोस्टमैन ने।
4: ओ आता हूँ, ठहरो एक मिनट, मैं जाता हूँ, तुम बैठो।
5: ये लीजिए।
4: कैसे हो?
6: डियर मिस्टर बदरुद्दीन तैयब, प्लीज मेक ऑफ दिस आवर जज।
2: बेगम, बेगम मुबारकबाद। अरे भाई, अदालत में एक जगह खाली है जज की, सरकार ने हमें जज बनने का ऑफर दिया है।
1: क्या? अरे सच में?
2: हक का मजमून तो यही कह रहा है भाई।
1: फिर क्या सोचा है आपने?
2: अब सोचना क्या है, कबूल करेंगे और क्या।
1: क्या अंग्रेज सरकार की मुलाजिमत करेंगे?
2: बेगम, इसका दूसरा पहलू देखिए। इन गोरे जजों के हाथों तो हिंदुस्तानियों को इंसाफ मिलने से रहा। कम से कम एक काला हिंदुस्तानी दूसरे काले हिंदुस्तानियों को इंसाफ तो दिला पाएगा।
1: बात तो एकदम सच है, पर क्या ये मुमकिन होगा?
2: देखिए बेगम, आदमी उसूलों का पक्का बना रहे बस, फिर कुछ नामुमकिन नहीं रहता। किसी ताकत या खतरे से टकरा जाने की ताकत आ जाती है उसमें। कल ही अपना जवाब भिजवा दूंगा।
1: कल क्यों, आज क्यों नहीं? भूल गए पुरानी सीख, काल करे सो आज कर।
5: अरे वाह, तो काका बदरुद्दीन तैयब जी जज बन गए।
0: और थोड़े ही समय में बदरुद्दीन तैयब जी साहब जज के रूप में खासे मशहूर हो गए।
5: वो तो होना ही था काका। क्या बात है?
0: काबिलियत और स्वतंत्र विचारों के दम पर उन्होंने अच्छे अच्छों को कायल कर दिया। उनकी निष्पक्षता और न्याय प्रियता की चर्चा हर कहीं हर कोई करता था।
5: वाह।
3: अरे कमाल कर दिया बदर साहब, आपने तो वाकई कमाल कर दिया। काफी लोगों की निगाहें लगी थी इस मसले पर, किस पेचीदा मामले पर, देखें जज साहब क्या फैसला सुनाते हैं।
6: हमें भी इस बात का भलीभांति एहसास था।
3: अच्छा, ऐसे फैसले करते समय कुछ घबराहट होती है क्या?
6: यकीन करो, ऐसा कुछ नहीं होता।
3: अगर हम आपकी जगह होते तो हमें तो घबराहट होती, क्यों भाई?
6: हाँ।
2: हमारे ख्याल से एक बात बहुत साफ होनी चाहिए हर जज के दिमाग में।
3: और वो क्या है?
2: यही कि इंसाफ केवल कानून की किताबों में ढूंढने से नहीं मिलता, क्योंकि उनमें केवल दफाएं और उन दफाओं में दी जाने वाली सजाएं होती हैं। बस
3: तो इंसाफ कहां रहता है?
2: आपके साफ दिलो दिमाग में रहता है। दिल की गहराई से आवाज उठे और उसकी ताईद आपका दिमाग भी करे तो समझिए कि आप इंसाफ की राह पर हैं।
0: वकालत और फिर जज का काम करने के अलावा बदरुद्दीन साहब ने राजनीति, शिक्षा और समाज सुधार के कामों को भी बखूबी किया।
2: अच्छा।
0: जज रहते हुए भी उनकी इजलास में एक बार लोकमान्य तिलक की जमानत का मामला भी आया।
2: अरे वाह। अच्छा।
0: लोकमान्य तिलक। हाँ सुनो, तो किस्सा कुछ यूं था कि जून 1897 में रैंड नाम के एक अंग्रेज की हत्या कर दी गई।
3: आदावर से बदर साहब, और क्या हाल चाल है?
4: आदावर से, आजकल तो ये रैंड मर्डर का मामला बहुत गर्म है
3: भाई। पता चला है कि अंग्रेज बहुत बौखलाए हुए हैं। हुकूमत के खिलाफ इसे साजिश समझ रहे हैं।
2: ठीक कहा आपने, ये अशांति और उत्तेजना फैलाने के इल्जाम में सरकार ने तिलक के खिलाफ वारंट जारी कर दिया है।
3: लेकिन ये रैंड मर्डर से तिलक जी का क्या संबंध?
2: बात आपको समझ में आ गई है पर सरकार को नहीं दिया।
3: मामला क्या है?
2: अरे देखिए, तिलक एक अखबार निकालते हैं, केसरी, पता है ना आपको?
3: जी जी जी।
2: तिलक ने शिवाजी मेले में शिवाजी द्वारा की हत्या को उचित ठहराने वाले भाषण दिए। हाँ, और यही भाषण केसरी में छाप दिए। माना मिल गया सरकार को।
3: सरकार तो नाइंसाफियों की हदें पार कर रही है।
2: तिलक की जमानत की दरखास्त दो बार खारिज की जा चुकी है। तीसरी बार मेरे सामने मेरी अदालत में जमानत के लिए दरखास्त दाखिल की गई है, मालूम है आपको?
3: तीसरी बार? अरे साहब, आपको तो कोई परेशानी नहीं होगी ना?
2: बिल्कुल नहीं, कल जमानत की दरखास्त पर फैसला सुनाना है।
0: और अगले रोज फैसला सुनाया बदरुद्दीन तैयब जी साहब ने।
4: ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर।
2: तिलक एक सज्जन और विद्वान पुरुष हैं, लिहाजा सुनवाई के वक्त वे अदालत नहीं पहुंचेंगे, ऐसा शक करने की कोई वजह नहीं बनती। जमानत मंजूर न होने की दशा में इंसाफ का गला घुट जाएगा, क्योंकि मुमकिन है कि एक महीने बाद वे बेगुनाह साबित हो जाएं। इसीलिए जमानत मंजूर करना ही न्याय संगत होगा।
0: निष्पक्ष न्यायाधीश के रूप में बदरुद्दीन की ऐसी धाक थी सल्लू कि इस फैसले के खिलाफ बोलने का साहस किसी को ना हुआ, अंग्रेजों को भी नहीं हुआ। इस महान देशभक्त और समाज सुधारक ने 11 साल जज के रूप में गुजारे और 19 अगस्त 1906 को इंग्लैंड में हार्ट फेल से वे गुजर गए। सारा देश शोक में डूब गया। हमारा शत शत नमन।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हिंदुस्तान हमारा। निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग। अब हमें आज्ञा दीजिए, फिर मिलेंगे एक और क्रांतिवीर की जीवन गाथा लेकर कार्यक्रम हिंदुस्तान हमारा।

0: फिर से हो रहा।
1: जननायक स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह। ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हिंदोस्तां हमारा, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल देश के लिए। सुनते रहिए।
3: साहस की बुलंद शुरुआत से लेकर आसमान की असीम ऊंचाइयों तक 8 अक्टूबर को पूरा देश मना रहा है भारतीय वायुसेना का 94वां वायुसेना दिवस।
4: वर्ष 1947-48, 1965 और 1971 के ऐतिहासिक युद्धों से लेकर ऑपरेशन मेघदूत और ऑपरेशन सफेद सागर तक विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायु सेना ने हर पल कर दिखाया है अदम्य पराक्रम, अत्याधुनिक तकनीक और सर्वोच्च बलिदान।
3: तो मध्य प्रदेश के जाबाज युवाओं, क्या आप तैयार हैं? बादलों को चीर कर देश का मान बढ़ाने के लिए तो बनिए अग्निवीर वायु, हासिल कीजिए वो मुकाम जो जिंदगी भर की पहचान बन जाए और गर्व से कीजिए भारत माँ की सेवा।
4: भर्ती और पात्रता से जुड़ी पूरी जानकारी के लिए
3: 15 एयरमैन चयन केंद्र के इंस्टाग्राम पेज 15ASC_भोपाल और आधिकारिक वेबसाइट IAFRecruitment.edcil.co.in पर विजिट करें।
4: नभास प्रशम दीप्तम।
3: जय हिंद।
5: नमस्कार, आदाब, मैं हूँ पिनाज मसानी और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद।
6: दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको, दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको।

भारत भवन में पधारे हुए सभी सिद्धिजनों को हृदय से नमन करूंगा, वंदन करूंगा। आज बुंदेली संस्थान में जो बहन उर्मिला पांडे जी के साथ में संगत कर रहे हैं, वो मेरी बाईं तरफ से जो दिख रहे हैं, जो आर्गन पर संगत कर रहे हैं, वही अमित गंगेले, आशीर्वाद जरूर प्रदान करते जाइए। एक बुंदेली जगत की बहुत बड़ी विभूति वीरेंद्र गुरु जी, जो हमेशा बुंदेली के लिए समर्पण भाव से काम करते हैं, आदरणीय वीरेंद्र गुरु जी। और जो पैर पर साथ दिया है आज भाई हर्ष लोधी, एक बहुत अच्छी वाद्य कलाकार है। और एक जो तबला पर संगत पैदा कर रहे हैं, आदरणीय मधुरेंद्र आनंद जी, जो हमेशा बुंदेली के लिए समर्पण भाव से काम करते हैं। और जो ढोलक पर बहुत अच्छी संगत कर रहे हैं भाई अंकित गंगेले, इनके लिए भी आशीर्वाद प्रदान करें। और आज सहगायिका के रूप में पधारी हैं बहन उर्मिला पांडे जी के पास में विराजमान हैं गायत्री दुबे जी, और उन्हीं के बगल में विराजमान हैं अनामिका पांडे जी, क्योंकि गायत्री के अलावा सभी का साथ बहुत जरूरी है। तो आप सबका समर्पण इस बुंदेली के लिए मैं सभी लोगों का हृदय से नमन करूंगा। आपके बीच राजेश तिवारी, जो पुनः सभी का वंदन और नमन करूंगा।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर सागर 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल, देश के लिए। सुनते रहिए।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिजीता अभिजीत भट्टाचार्य और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। देश को आजादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है, जिन्होंने भारत माता को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराया। सुनते रहिए 90.8 MHz पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: साहस की बुलंद शुरुआत से लेकर आसमान की असीम ऊंचाइयों तक 8 अक्टूबर को पूरा देश मना रहा है भारतीय वायुसेना का 94वां वायुसेना दिवस।
2: वर्ष 1947-48, 1965 और 1971 के ऐतिहासिक युद्धों से लेकर ऑपरेशन मेघदूत और ऑपरेशन सफेद सागर तक विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायु सेना ने हर पल कर दिखाया है अदम्य पराक्रम, अत्याधुनिक तकनीक और सर्वोच्च बलिदान।
1: तो मध्य प्रदेश के जाबाज युवाओं, क्या आप तैयार हैं? बादलों को चीर कर देश का मान बढ़ाने के लिए तो बनिए अग्निवीर वायु, हासिल कीजिए वो मुकाम जो जिंदगी भर की पहचान बन जाए और गर्व से कीजिए भारत माँ की सेवा।
2: भर्ती और पात्रता से जुड़ी पूरी जानकारी के लिए
1: 15 एयरमैन चयन केंद्र के इंस्टाग्राम पेज 15ASC_भोपाल और आधिकारिक वेबसाइट IAFRecruitment.edcil.co.in पर विजिट करें।
2: नभास प्रशम दीप्तम,
3: जय हिंद।
4: 90.8 MHz पर आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ। आइए सुने कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।
5: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: स्वामी जी की द्वितीय अमेरिका यात्रा 1899 के लिए तैयारियां की जा रही थी। वे अपने एक मित्र से मिलने कलकत्ता गए हुए थे और लौटते समय कुछ क्षण बाग बाजार में बलराम बाबू के घर रुक गए थे। बेलूर मठ तक साथ चलने के लिए उन्होंने अपने एक मित्र प्रियनाथ सिंह जी को बुलवा भेजा। उनके आने पर स्वामी जी का और उनका इस प्रकार वार्तालाप हुआ।
1: आज एक मजेदार बात हुई। मैं एक मित्र के घर गया था। उन्होंने एक चित्र बनवाया था। विषय था कुरुक्षेत्र में अर्जुन कृष्ण संवाद। श्री कृष्ण रथ में खड़े हैं, हाथ में रास है और अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं। उन्होंने मुझे ये चित्र बताकर मेरी सम्मति मांगी। मैंने कहा ठीक ही है, किंतु जब वे नहीं माने तो उन्हें मुझे अपना यह प्रमाणिक मत बताना ही पड़ा कि उस चित्र में मुझे प्रशंसा योग्य कुछ नहीं दिखाई पड़ा। प्रथम तो श्री कृष्ण के युग का रथ आज के स्तूपाकार वाहनों के समान नहीं होता था और दूसरे श्री कृष्ण की आकृति में भावों का नितांत अभाव था।
2: क्या उस युग के रथ स्तूपाकार नहीं होते थे?
1: क्या आप नहीं जानते कि बौद्ध युग के बाद इस देश की हर बात में एक प्रकार की व्यवस्था सी आ गई। प्राचीन राजागण स्तूपाकार रथों में कभी युद्ध नहीं करते थे। राजस्थान में आज भी कुछ रथ हैं जो उन प्राचीन रथों से कुछ मिलते जुलते हैं। यूनान की पौराणिक कथाओं में वर्णित रथों के आपने चित्र देखे हैं? उनमें दो पहिए होते हैं और इन पर पीछे से चढ़ा जाता है। हमारे रथ ऐसे ही थे। यदि चित्र के इन गौण अंगों का ही सही अंकन नहीं हुआ तो चित्र बनाने से क्या लाभ? ऐतिहासिक चित्र तभी उच्च कोटि का होगा जब उचित अध्ययन और गन्वेषणा के पश्चात वस्तु का वैसा ही चित्रण किया जाए जैसी वो उस युग में थी। यदि चित्र में यथार्थता नहीं है तो उसका कोई मूल्य नहीं। आजकल हमारे जो युवक चित्रकला के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं वे साधारणतया ऐसे होते हैं जिन्हें पढ़ाई में कोई सफलता नहीं मिली और जिनसे घरवाले भी निकम्मा समझकर निराश हो गए हैं। इन व्यक्तियों से आप कैसे कलाकृति की आशा कर सकते हैं? सुंदर चित्र बनाने के लिए उतनी ही प्रतिभा लगती है जितनी की एक श्रेष्ठ रूपक लिखने में।
2: तो फिर इस चित्र में श्री कृष्ण का चित्रण कैसा होना चाहिए?

0: मुद्रा और भाव वैसी ही बना ली जिस तरह कृष्ण की चित्र में होनी चाहिए और बोले,
1: देखो श्री कृष्ण ने घोड़ों की रास इस प्रकार पकड़ रखी है। रास इतनी तनी है कि घोड़े अपने पिछले पैरों पर उठ गए हैं और उनके अगले पैर हवा में उठे हैं और मुख खुल गए हैं। इससे श्री कृष्ण की छवि में उनकी महान कर्मशीलता प्रकट होती है। उनका मित्र अर्जुन दोनों सेनाओं के बीच में धनुष बाण एक ओर फेंक रथ में कायर की भांति शिथिल और शोक मग्न होकर बैठ गया है और श्री कृष्ण एक हाथ में कोड़ा लिए और दूसरे हाथ से रास खींचे अर्जुन की ओर थोड़ा सा मुड़ गए हैं। उनका शिशु सरल मुख स्वर्गीय प्रेम और सहानुभूति से दीप्त हो उठा है और वे अपने सखा को गीता का संदेश सुना रहे हैं। अब बताओ, गीता नायक के इस प्रकार के चित्र से मन में कैसे भाव जागृत होंगे?
2: ऐसे चित्र से श्री कृष्ण कर्मरत स्थित प्रज्ञ महान कर्मयोगी मालूम होंगे।
1: हाँ बिल्कुल ठीक है। शरीर का एक एक अंग कार्यरत है और फिर मुख पर नील गगन की गंभीर शांति और प्रसन्नता व्याप्त है। यही तो गीता का मूल तत्व है, सब परिस्थितियों में शांत और स्थिर अनुद्विग्न रहते हुए शरीर मन और आत्मा ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देना। कर्म करते हुए भी जिसका मन शांत है और जब कोई बाह्य चेष्टा नहीं हो रही तब भी जिसमें ब्रह्म चिंतन रूपी महान कर्म की धारा सतत बन रही है वही मनुष्यों में बुद्धिमान है, वही योगी है, वही कर्म कुशल है।
3: इसी समय जो व्यक्ति नाव का प्रबंध करने गया था वो लौट आया और उसने सूचना दी कि नाव तैयार है। इसलिए स्वामी जी ने अपने मित्र से कहा,
1: चलो अब मठ चलें। तुम घर पर तो कहकर आए ही होगे कि मेरे साथ मठ तक जा रहे हो।
3: नौका तक जाते उनका वार्तालाप चलता ही रहा। स्वामी जी बोले,
1: फल की चिंता त्याग कर मन और आत्मा को प्रभु में लगाकर कर्म करना, अनंत कर्म करना। गीता के इस निष्काम कर्म योग का संदेश हर एक तक पहुंचाना चाहिए।
2: क्या यही कर्म योग है?
1: हाँ यही कर्म योग है, पर बिना साधना के कोई सन्यासी नहीं बन सकता। चारों योगों को मधुर समन्वय जब तक नहीं हो पाता तब तक किस प्रकार मन और आत्मा प्रभु में तल्लीन हो सकेगी?
2: साधारणतया ये धारणा हो गई है गीता में कर्म से केवल वैदिक यज्ञों और धार्मिक अनुष्ठानों से ही तात्पर्य है और किसी अन्य प्रकार का कर्म निरर्थक है।
1: ये ठीक है, पर इस परिभाषा को विस्तृत करना होगा। तुम्हारी हर चेष्टा, एक एक सांस और मन में प्रतिक्षण उठने वाले एक एक विचार के लिए कौन उत्तरदायी है? क्या तुम स्वयं नहीं?
2: हूं भी और नहीं भी हूं। मेरे पास इसका कोई संतोषप्रद उत्तर नहीं है। सच तो यह है कि मनुष्य केवल निमित्त मात्र है, कर्म तो ईश्वर कराते हैं और जब उनकी इच्छा और प्रेरणा से ये शुभाशुभ कर्म होते हैं तो मैं उनके लिए कैसे उत्तरदायी हो सकता हूं?
1: ठीक है, पर यह तर्क उस पर ही लागू होगा जिसे सिद्धावस्था प्राप्त हो गई है। जब कर्म से मन और चित्त शुद्ध हो जाता है और इसका ज्ञान हो जाता है कि सारे काम ईश्वर ही करा रहे हैं तभी ऐसा कहने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, नहीं तो यह कोरी बकवास ही है।
2: क्यों? यदि किसी तर्क से यह धारणा निश्चित हो गई हो कि सब काम ईश्वर ही करा रहे हैं तो?
1: जिस क्षण यह दृढ़ धारणा हो जाती है उस क्षण में किए गए कार्य के लिए यह युक्ति लागू की जा सकती है, पर ऐसी धारणा क्षण भर ही टिकती है, ज्यादा नहीं। अच्छा जरा मनन करके तो देखो कि अपने दैनिक जीवन में ऐसे कितने काम हैं जिनके संबंध में यह कहा जा सकता है कि ये काम मैं स्वयं अहम भाव से नहीं कर रहा हूं। कब तक मनुष्य को इस बात की स्मृति रहती है कि ईश्वर ही ये सब कार्यकलाप करवा रही हैं, किंतु इस प्रकार सतत चिंतन मनन और अध्यवसाय से धीरे धीरे एक अवस्था आ जाती है जब अहम भाव नष्ट हो जाता है और उसके स्थान में प्रभु की स्थापना हो जाती है। तब तुम ये कह सकोगे कि अंतर्यामी प्रभु ही मुझसे ये सब करा रहे हैं। किंतु मित्र, यदि हृदय में अहंकार भरा हुआ है तो वहां ईश्वर के लिए स्थान ही कहां रह पाता है? तब हृदय में ईश्वर रह ही नहीं सकते।
2: पर दुष्कर्म की प्रेरणा भी तो ईश्वर ही देते हैं।
1: नहीं, कभी नहीं। इस तरह सोचना प्रभु का अनादर है।
2: मैं समझा नहीं स्वामी जी।
1: ईश्वर दुष्कर्म में किसी को प्रेरित नहीं करते। दुष्कर्म का कारण तो मनुष्य की आत्मतुष्टि की इच्छा है। यदि कोई ऐसा कहे कि ईश्वर सब कर्म कराते हैं और स्वेच्छा पूर्वक दुष्कर्म करता जाए तो उसका नाश अवश्यम भावी है। यही तो आत्म प्रवंचना का मूल है। क्या तुम्हें कोई सत्कर्म करने पर प्रसन्नता नहीं होती और फिर तुम उस सत्कार्य का श्रेय अपने को देने लगते हो? कहते हो, ये मैंने किया, मैंने। ये मानवीय स्वभाव है। मनुष्य ऐसा कहे बिना नहीं रहेगा। किंतु ये कितना अनुचित है। अच्छे काम का श्रेय तो मनुष्य स्वयं ले ले और बुरे काम का दोष ईश्वर के सिर मढ़ दे। ये एक खतरनाक तर्क है।
2: थोड़ा और विस्तार से समझाइए स्वामी जी।
1: जिन्होंने वेदांत और गीता पढ़ ली पर उसका मर्म नहीं समझा, वे ही उस तरह की बात करते हैं। कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए, बल्कि ये मानना चाहिए कि हमारे भले काम तो भगवान की प्रेरणा से हुए और बुरे काम के लिए हम ही उत्तरदायी हैं। इससे परमात्मा में श्रद्धा और विश्वास जागृत होगा और पग पग पर उनकी असीम कृपा का अनुभव होने लगेगा। सच तो ये है कि अहम का निर्माण करने वाले हम ही हैं, कोई और नहीं। यही सत विवेक है, वही वेदांत है। इसलिए साधक को हमारे

0: ही होता है तो मेरा यह विश्वास है कि उस व्यक्ति से कोई नीच काम भविष्य में नहीं होगा। शीघ्र ही उसके मन के सब विकार नष्ट हो जाएंगे। हमारे प्राचीन धर्मग्रंथों पद्धति की पूजा हमारे देश में बौद्ध धर्म के अवनति काल में शुरू हुई, जबकि बौद्धों के अत्याचारों से त्रस्त होकर लोग छिप छिप कर वैदिक यज्ञानुष्ठान करने लगे। दो दो महीनों तक लगकर यज्ञ करने का अब उन्हें कोई अवसर ही नहीं मिल पाता था, इसलिए वे मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसकी रातों रात पूजा कर लेते और फिर पानी में उसे विसर्जित कर लेते, जिससे पूजा का कोई चिन्ह सवेरे शेष न रह जाए।
1: लोग क्या इतने डरे हुए थे कि छुप छुप कर पूजा करते थे?
0: हाँ, मनुष्य को एक मूर्त पार्थिव प्रतीक चाहिए, उसके बिना उसके हृदय को संतोष नहीं मिलता, इसलिए हर घर में रात की पूजा शुरू हो गई। फिर मनुष्यों की प्रवृत्तियां भी कुछ इंद्रिय सुख भोग की ओर झुकी। श्री रामकृष्ण कहा करते थे कि कुछ लोग घर में पीछे के दरवाजे से ही आते हैं, इसलिए जब उस युग के धर्माचार्यों ने देखा कि कुछ लोग अपनी दुष्ट वृत्तियों और दुष्ट स्वभाव के कारण धर्म विमुख हो गए हैं, धार्मिक क्रियाकलापों और यज्ञानुष्ठानों में भाग नहीं लेते हैं, तो उन्हें धीरे धीरे क्रम से धर्म और सदाचार के मार्ग पर लाने के लिए उन्होंने तांत्रिक पूजा प्रणाली का आविष्कार किया।
1: जब वे तांत्रिक पूजा में होने वाले नीच कर्म धर्म सम्मत और अच्छा समझकर करने लगे तो इससे उनकी दुष्ट प्रवृत्तियां कैसे नष्ट हुई?
0: नहीं, अब उनकी ये प्रवृत्तियां विपरीत दिशा में अग्रसर होने लगी। अब उनके आचरण का लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति हो गया।
1: पर क्या वास्तव में यह संभव है?
0: क्यों नहीं, ईश्वर प्राप्ति के लक्ष्य से किए गए किसी भी काम का फल शुभ ही होता है। लक्ष्य अच्छा रहे फिर एक ही बात है, और बताओ उनके सफल होने में क्या बाधा हो सकती है?
1: किंतु इस तरह की साधना करने वाले अधिकांश मांस मदिरा आदि प्रलोभन में फंस जाते हैं।
0: हाँ, और इसलिए भगवान श्री राम कृष्ण को आना पड़ा। इस प्रकार की तांत्रिक साधना के दिन अब लद गए। उन्होंने भी तांत्रिक साधनाएं की, पर उस तरह नहीं। जहां मदिरा पान का विधान होता, वहां वे केवल एक बूंद से अपने ललाट का स्पर्श करा देते। तांत्रिक साधना में फिसलने का बहुत ज्यादा डर है, इसलिए तो मैं कहता हूं इस प्रांत में तांत्रिक साधनों की अब इति होना चाहिए। हमें इन साधनाओं से आगे बढ़कर वेदों का अध्ययन करना चाहिए, चारों योगों के एक मधुर समन्वय का अभ्यास करना चाहिए और ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण करना चाहिए।
1: चारों योगों के समन्वय से आपका क्या तात्पर्य है?
0: सत और असत का विवेक, विचार शून्यता और भक्ति, कर्म और ध्यान योग का अभ्यास, इसके साथ साथ स्त्रियों के प्रति आदर भाव होना चाहिए।
1: स्त्रियों के प्रति आदर किस तरह प्रकट किया जाए?
0: स्त्रियां आदि शक्ति जगमाता की प्रतीक हैं। जिस दिन से हम माँ की सच्ची पूजा करने लगेंगे और हर एक व्यक्ति माँ के लिए अपना बलिदान दे देगा, उसी दिन से भारत का यथार्थ में भला होने लगेगा और वो समृद्धि के मार्ग पर अग्रसर होता जाएगा।
2: एक अन्य अवसर पर प्रियनाथ जी ने स्वामी जी से कहा था,
3: स्वामी जी, आपके बाल्यकाल में जब हम आपसे विवाह कर लेने को कहते तो आप क्या कहा करते थे? मैं विवाह नहीं करूंगा और तुम लोग देखोगे कि मैं क्या बनता हूं। आपने अपना कथन सत्य कर दिखाया।
0: हाँ बंधु, तुम्हें तो मालूम ही है उन दिनों मेरे पास खाने को भी नहीं था और साथ ही मुझे कठिन परिश्रम भी करना पड़ता था। ओह, कितना कठोर श्रम था वो। आज अमेरिका वालों ने प्रेम से मुझे ये अच्छा सा बिछौना दे दिया है और खाने को भी मिल जाता है, पर मेरे लिए शारीरिक सुखों का विधान ही नहीं है और बिछौने पर लेटने से तो मैं बीमार हो जाता हूं और मेरा दम घुटने लगता है। पलंग से उतरकर फिर जब मैं जमीन पर सोता हूं तब मुझे आराम मिलता है।
4: इस तरह के अनेकों विषयों में दोनों ने बातचीत की थी। प्रियनाथ जी।

0: के संस्मरण से हमें और भी कई विषयों में स्वामी जी के विचार मालूम पड़ते हैं। आत्मसंयम विषय पर उन्होंने कहा था,
1: हमारे वार्तालाप या संगीत आदि सामूहिक कार्यकलापों में आत्मनियंत्रण और संयम का शोचनीय अभाव पग पग पर दृष्टिगोचर होता है। हर एक व्यक्ति आत्म प्रदर्शन का ही प्रयत्न करता रहता है। रेलवे स्टेशनों और बंदरगाहों पर जो धक्का मुक्की और ठेलम ठेल होती है, वो भी इसी का उदाहरण है।
2: स्वामी जी के मित्र प्रियनाथ सिंह की एक दिन बेलूर मठ में इस विषय पर बातचीत हुई। स्वामी जी ने कहा,
1: देखो, अपने यहां एक कहावत है, यदि लड़के की पढ़ने में रुचि नहीं है तो उसे सभा में भेज दो। सभा का तात्पर्य यहां सामाजिक गोष्ठियों और भेंटों से नहीं है, जो कि समय समय पर लोगों के घरों में होती रहती हैं। सभा का तात्पर्य राजसभाओं और दरबारों से है। जब बंगाल स्वतंत्र था तो सुबह शाम राजाओं के दरबार भरा करते थे। वहां प्रातःकाल राज्य के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा होती थी, और उन दिनों कोई समाचार पत्र न होने से राजा राजधानी के प्रमुख व्यक्तियों से बातचीत कर जनता और राज्य संबंधी समस्त जानकारियां प्राप्त करते थे। सभी प्रमुख व्यक्तियों को इन सभाओं में उपस्थित रहना पड़ता था, क्योंकि यदि वे अनुपस्थित रहते तो राजा इस संबंध में पूछताछ करते। इस प्रकार के दरबार अपने ही देश में नहीं, सभी देशों में सभ्यता और संस्कृति के केंद्र रही हैं। आजकल पश्चिम भारत, विशेषतः राजस्थान, इस विषय में बंगाल से कहीं अधिक अच्छा है, क्योंकि वहां आज भी हमें इन प्राचीन दरबारों की झलक दिखाई पड़ती है।
3: तो महाराज, हमारे अपने राजा ना रहने से हमारी जनता के आचार विचार और सभ्यता लुप्त हो गई है।
1: इस अधःपतन का मूल हमारी स्वार्थ वृत्ति है। जहाज में चढ़ना हो तो सब यही देखते हैं कि अपनी जान सलामत रहे। संगीत या आमोद प्रमोद के कार्यक्रमों में प्रत्येक व्यक्ति आत्म प्रदर्शन करने के प्रयत्न में रहता है। ये सब हमारी स्वार्थमयी मनोदशा की ही अभिव्यक्ति है। आत्मत्याग और संयम का अभ्यास ही इसे मिटा सकेगा। ये अभिभावकों और माता पिता का दोष है कि वे अपने बच्चों को सदाचार की भी शिक्षा नहीं दे सकते। आत्मत्याग ही व्यथार्थ में सभ्यता की नींव है।
3: तो क्या माता पिता अपने बच्चों को डांटे फटकारे नहीं? इससे तो वे और बिगड़ जाएंगे।
1: माता पिता का आवश्यकता से अधिक शासन होने से हमारे बच्चों को उचित विकास का अवसर नहीं मिल पाता। कुछ माता पिता संगीत को अनुचित समझते हैं, किंतु जब उनका पुत्र कोई अच्छा सा गीत सुन लेता है और उसे सीख लेने की उसमें लगन पैदा हो जाती है तो उसे कोई अड्डा ढूंढना पड़ता है। हम धूम्रपान को अत्यंत गर्हित समझते हैं, तो लड़कों के लिए घर के नौकरों के साथ छिप छिप कर बीड़ी सिगरेट पीने के सिवाय कोई चारा नहीं रह जाता।
3: तो फिर बच्चों में सदाचार कैसे पैदा हो?
1: हर एक व्यक्ति की असंख्य वृत्तियां हैं, जिसकी तुष्टि के लिए उसे उचित अवसर और सुविधाएं चाहिए, पर हमारे देश में वो नहीं दी जाती। इसलिए यदि हमें ये स्थिति बदलनी है तो पहले माता पिता और पालकों को ही शिक्षित करना होगा। कितनी शोचनीय और दयनीय दशा है हमारी। अभी तो हमारी सभ्यता का ही हम पर्याप्त विकास नहीं कर पाए। तदुपरांत भी हमारे शिक्षित बाबू लोग चाहते हैं कि अंग्रेज शासन व्यवस्था उन्हें सौंप दें। मुझे तो हंसी भी आती है और रोना भी। पहले तो हम में वो क्षत्रिय भाव ही कहाँ है जो हर व्यक्ति को आत्मनियंत्रण, संयम, सेवा और आज्ञा पालन सिखलाता है। ये भाव वीरता, आत्मतुष्टि और प्रभुत्व में नहीं, आत्मत्याग में है। हमें दूसरों के हृदय और जीवन पर अधिकार पाने के पहले आदेश मिलने पर अग्रसर हो अपने जीवन की बलि देने के लिए तैयार रहना चाहिए। पहले अपनी बलि देनी चाहिए।
2: श्री रामकृष्ण के किसी भक्त ने एक बार अपनी एक पुस्तक में श्री रामकृष्ण को प्रभु का अवतार न मानने वालों की बहुत कटु आलोचना की। स्वामी जी ने उन्हें बुलाकर इस प्रकार आड़े हाथों लिया।
1: तुम्हें इस प्रकार दूसरों के लिए अपशब्द लिखने का क्या अधिकार था? यदि उनका तुम्हारे प्रभु में विश्वास नहीं है तो क्या हुआ? क्या हमने कोई पंथ चलाया है? क्या हम रामकृष्ण पंथी हैं जो उन सबको अपना दुश्मन समझने लगे जो उनको नहीं पूजते? तुम्हारे इस संकुचित धार्मिक ओछेपन से तुमने श्री रामकृष्ण को ही छोटा कर दिया है। यदि तुम्हारे प्रभु स्वयं भगवान ही हैं तो तुम्हें तो ऐसा समझना चाहिए कि कोई किसी भी नाम से उन्हें क्यों ना पुकारे, वो उनकी ही अर्चना करता है। और दूसरों को अपशब्द कहने वाले तुम होते कौन हो? क्या तुम सोचते हो कि उनकी निंदा और कटु आलोचना करने से वे तुम्हारी बात मानने लगेंगे? कैसी मूर्खता है! दूसरों का हृदय तुम तभी जीत पाओगे जब तुम उनके लिए अपना बलिदान कर दोगे, नहीं तो वे तुम्हारी बात क्यों सुनेंगे?
0: थोड़ी देर बाद स्वामी जी शांत हो गए। उन्होंने धीर भाव से कहा,
1: मित्र, क्या कोई जब तक स्वयं वीर न हो ईश्वर के प्रति विश्वास और आत्मसमर्पण कर सकता है? मनुष्य जब तक वीर और महान नहीं बनता तब तक उसके हृदय का द्वेष और ईर्ष्या कैसे मिट सकती है? और जब तक हृदय में द्वेष और ईर्ष्या है तब तक कोई यथार्थ में सभ्य कैसे बन सकता है? इस देश में वो कठोर पौरुष, वो वीरत्व और महानता की भावना ही कहां है? कहीं भी नहीं। मेरी आंखें उसे ढूंढती रहती हैं और अब तक मुझे उसका एक, केवल एक ही उदाहरण दिख पाया।
3: अपने गिरीश घोष बाबू, वे तो श्री रामकृष्ण देव के ग्रही शिष्य, सुप्रसिद्ध बांग्ला नाटककार तथा अद्भुत अभिनेता हैं।
1: हाँ, वही गिरीश घोष की बात कर रहा हूं। वे इस प्रकार आत्मत्याग के लिए सदैव तत्पर रहते थे, इसलिए क्या श्री रामकृष्ण ने उनका सब भार अपने पर नहीं ले लिया? प्रभु के प्रति आत्मसमर्पण की कितनी अनन्य भावना है, मुझे उनके समान दूसरा कोई नहीं दिखा, और उन्हीं से मैंने आत्मसमर्पण का पाठ पढ़ा है।
2: ऐसा कहते हुए स्वामी जी ने उनके आदर में अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल, देश के लिए। सुनते रहिए।
1: मैं हूं हरिप्रसाद चौरसिया, आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पे, देश का चैनल, देश के लिए।
0: नब्बे 90.8 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं, आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ। रात्रि के 10 बजने वाले हैं। चलते चलते हम आपको बताए दे रहे हैं कि कल यानी 11 अक्टूबर रविवार को हमारी सुबह की सभा में आप कौन कौन से कार्यक्रम सुनेंगे। सुबह 7 बजे जब सभा आरंभ होगी, आप सुनेंगे जीवन सौरभ। 7:10 से ऋग्वेद की ऋचाओं का पाठ सुनिएगा कार्यक्रम अक्षय निधि में। 7:20 से आनंद लीचे का भक्ति संगीत का। सुबह 8 आप सुनेंगे कार्यक्रम वतन का राग। ये कार्यक्रम आधारित होगा बाजी राउत पर। सुबह 8:30 का वक्त होगा कार्यक्रम बाल सभा का। कल बाल सभा में विषय रहेगा उत्सवों में बच्चों की भूमिका। सुबह 9 सुनिएगा विशेष कार्यक्रम जो कि आधारित होगा ऑपरेशन पवन पर। सुबह 9:30 सुनिएगा हमारा कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व। कल इस कार्यक्रम में आप भारतीय वायुसेना में भर्ती प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सुबह 10 का वक्त होगा कार्यक्रम देश के संस्थान का। कल इस कार्यक्रम में हमने जिस संस्थान को शामिल किया है उसका नाम है RBI, अर्थव्यवस्था का प्रहरी, भारतीय रिजर्व बैंक। सुबह 10:30 सुनिएगा हमारा कार्यक्रम आजाद हिंद जो कि आधारित होगा जय प्रकाश नारायण पर, जिनकी कल जयंती है। दिन में पेश की जाएगी 11 रेडियो रिपोर्ट और 11:30 का वक्त होगा हमारे कार्यक्रम काव्य गुंजन का। कल आप काव्य गुंजन में सुनेंगे रश्मि रथी का भाग 17। तो अभी आप सुन रहे थे रेडियो आजाद हिंद से कल सुबह की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में जानकारी। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल, देश के लिए। सुनते रहिए। और अब दीजिए इस सभा से अनुमति आपके अपने पूर्वा को। नमस्कार।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। रात्रि के 10 बजे हैं, अब हमारी ये सभा समाप्त होती है। कल सुबह 7 बजे आपसे फिर भेंट होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।